0: हर खबर की पड़ताल, इसकी परत दर परत को खंगालते हैं, तो आपके सामने सच और झूठ का फर्क लेकर आते हैं। तो आज फैक्ट चेक में जिन दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की बात करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बिहार के भोजपुर का है, जहां पर हाल ही में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का ये वीडियो है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का ये वीडियो है महाराष्ट्र का। क्या है इसकी सच्चाई, आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला काफी गर्मा गया है। इस एनकाउंटर की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष, पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा, मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस समय गोली नहीं मारी गई थी। इससे घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। ये भ्रष्ट और घूसखोर पुलिसकर्मी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
0: भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी? भोजपुर एनकाउंटर मामले में अब इसी सवाल का जवाब एसएफएल रिपोर्ट देगी। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने शाहपुर के निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत के पास से बरामद पिस्टल समेत 3 हथियार जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच से गोली, खोखो और हथियारों का मिलान होगा। बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़कर उसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के ऊपर लिखा है भरत तिवारी एनकाउंटर लाइव वीडियो। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि ये बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इसे सुना। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, पहले आप भी ने सुनी। भारत माता की जय, गौ माता की जय, ये आवाजें आपने भी सुनी होंगी। वीडियो को देखने में ये इशारा मिल रहा था कि भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये वीडियो नहीं हो सकता है। वीडियो में एक व्यक्ति को हाथ पैर पकड़कर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। इस दौरान एक और युवक भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि भरत तिवारी के का जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त उसके हाथ कोई भी उसके साथ दूसरा शख्स नहीं था। इसके अलावा सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि जब भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले कोई वीडियो सामने अभी तक नहीं आया, किसी भी एजेंसी ने ऐसे किसी तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया, लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी घटना से संबंधित वीडियो को भरत तिवारी के एनकाउंटर से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या, आप भी जानिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो की पड़ताल की। वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें एक लोगो नजर आया। सर्च के दौरान हमें इसके फेसबुक पेज पर ये वीडियो मिल गया। यहाँ इसे 21 जून को पोस्ट किया गया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो यूपी के महाराजगंज जनपद का है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। ये कार्यकर्ता मदनपुरा गौशाला में गायों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सर्च के दौरान इस प्रदर्शन से संबंधित और भी वीडियो पोस्ट मिले। ऐसे एक वीडियो में वो लड़का आप बीती सुनाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे।
3: अंकित सिंह जी एक बार भी नहीं बोले हैं कि नहीं रुक जाओ, उसके गर्दन दबे हुए हैं। ये सच्चा साहब निचलौर के अंकित सिंह जी हैं।
2: सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 21 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित मदनपुरा गोसदन की है। वहां पर दो गौवंशियों पशुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद गोरक्षक दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने गौशाला के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक और रिपोर्ट एक वेबसाइट पर 21 जून 2026 को प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के अनुसार गो आश्रय केंद्र में गौ रक्षा प्रमुख राहुल गुप्ता, चंदन दुबे, जिला सह संयोजक बजरंग दल, प्रखंड गोरक्षक बजरंग दल विवेक मौर्य व कुलदीप कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गो आश्रय स्थल के अंदर और बाहर दो गायों को मृत अवस्था में देखकर हंगामा शुरू कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आई जेसीबी मशीन के आगे बैठकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस टीम कार्यकर्ताओं की घेराबंदी कर गायों के शवों को वाहन में डालने लगी थी। इस तरह हमारी पड़ताल में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर वाले वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। असल में ये वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है। दरअसल निचलौल की ग्राम सभा मदनपुरा के गो आश्रम में दो गाय मृत मिली थी। इसी के खिलाफ गौरक्षक दल और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन के वीडियो को अब गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि आसमान से विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो महाराष्ट्र का है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर विशालकाय ओले गिरने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस आसमानी आफत से बचने की कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताकर शेयर भी कर रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र में भारी ओलावृष्टि। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से बर्फ के विशालकाय गोले सड़क पर गिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें वहां खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे महाराष्ट्र का बताकर शेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को गौर से देखने पर इसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिससे हमें इस दावे की असलियत पर शक हुआ। धारण के तौर पर यहां काफी अफरा तफरी का माहौल है। ओले जब नीचे गिरते हैं तो उनकी गति सामान्य नहीं लगती। इसके अलावा वीडियो में कई जगह लोग एक दूसरे में समाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान महाराष्ट्र में कहीं भी इस तरह के विशालकाय ओले गिरने की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें किसी विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट में ये वीडियो नहीं मिला, जहां इसे महाराष्ट्र में ओलावृष्टि का बताया गया हो। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर शक हुआ। उदाहरण के लिए इतने भारी ओले बिजली के पतले लटकते हुए तारों पर गिर रहे हैं, लेकिन तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। एक सफेद कार के शीशे पर एक भारी ओला सीधे गिरता है, लेकिन शीशा टूटने के बजाय ओला अजीब ढंग से सरक कर नीचे चला जाता है। एक दुकान के बोर्ड पर लिखे हुए शब्द बहुत ही अजीब और विकृत तरीके से लिखे गए हैं, जिन्हें ठीक से पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसके बाद हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म हाई मॉडरेशन पर जांचा। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वीडियो को संभावित आई जनरेटेड बताया। AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म साइट इंजन ने भी ओले गिरने के वायरल वीडियो में मौजूद दृश्यों को 99% संभावना के साथ AI निर्मित बताया। एक और AI इमेज डिटेक्शन वेबसाइट इजिट AI ने भी वीडियो में मौजूद दृश्य को 99% स्कोर के AI जनरेटेड बताया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में विशालकाय ओले गिरने के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है।
0: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: Good news today.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: अच्छा, कि आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: बचपन में जहां बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वहीं एक मासूम की रोटियां बेलते बेलते खड़े खड़े सो जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। ये वीडियो मजबूरी और गरीबी की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देख हर कोई इमोशनल हो रहा है। इस बच्चे की वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो के कमेंट में लोगों का खूब प्यार मिलता नजर आ रहा है।

वृंदावन की आस्था और भक्ति का एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में विदेशी महिला और पुरुष श्रद्धालु राधा कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी अटूट आस्था और समर्पण ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो में विदेशी श्रद्धालु जमीन पर लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। हर दंडवत के बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। ये परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है।

0: फीफा वर्ल्ड कप के बीच इन दिनों एक विदेशी फुटबॉलर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं बल्कि भारत और भगवान शिव के प्रति उनके गहरे लगाव की हो रही है। स्लोवेनिया के फुटबॉलर लुका मेजसेन ने अपनी पीठ पर भगवान शिव का विशाल टैटू और महामृत्युंजय मंत्र बनवाया है। उनका कहना है कि भारत ने उनकी जिंदगी और सोच को बदल दिया। वीडियो में वो बताते हैं कि ये टैटू उनके लिए सिर्फ एक डिजाइन भर नहीं बल्कि भारत में बिताए समय और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की पहचान है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरता कौन है हमें?
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा बाबा
3: कल नहीं उठा पुटा हो?
2: अच्छा
3: हाँ दूध पी के आ रहे हैं दूध।
2: चलो बाबा चलो आजा।
0: स्काई डाइविंग हर किसी के बस का काम नहीं। हजारों फीट ऊपर जब खुले आसमान में कूदना होता है तो ज्यादातर लोगों की सांस फूल जाती है, मगर इस उम्र दराज शख्स ने इस डर को आसपास फटकने भी नहीं दिया। दरअसल पोता दादा जी को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया तो वो भी स्काई डाइविंग कराने के लिए। वीडियो के शुरू में दादाजी को भारत का झंडा लिए दिखाया गया है। दादाजी इस दौरान खुश और उत्साह में नजर आते हैं। अंकित के दादा की ये पहली स्काई डाइविंग नहीं थी, वो इसके पहले 15,000 फीट से ये कारनामा कर चुके हैं। वो बुजुर्ग हैं लेकिन उत्साह किसी बच्चे जैसा ही था। वो खुशी खुशी 18,000 फीट वाला रोमांच महसूस करने के लिए प्लेन में चढ़ते नजर आते हैं, फिर कूदते भी पूरे जोश में हैं। वीडियो में अंकित बाबा से पूछते दिखते हैं कि डर तो नहीं लग रहा? वो कहते हैं डरता कौन है मैं। बाबा जी का उत्साह जवानों को टक्कर दे रहा था। वो कूदने से पहले जय हिंद जय भारत और जय हरियाणा भी कहते हैं, आप खुद उन्हें देख लीजिए।
2: तो भाई अभी हम अपने बाबा जी को लेके आए हैं भाई स्काई डाइविंग करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछली बार भाई 15,000 फीट से करवाई थी, अब की बार भाई 18,000 फीट से करवा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाबा डरता तो नहीं?
3: डरता कौन है हमें?
2: अच्छा
3: हरियाणा क्या हमें?
2: अच्छा
3: कल नहीं उठा पुटाओ?
2: अच्छा
3: हाँ दूध पी के आ रहे
2: हैं दूध। चलो बाबा चला
3: चलो।
0: एक कलाकार का वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत धैर्य और शानदार हुनर की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में एक कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारी को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म कर उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच, गर्दन, पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देख साफ पता चल रहा है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का एक्सपीरियंस भी छिपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को पसंद आ रहा है।

सोशल मीडिया पर मुंबई लोकल ट्रेन का एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। रोजाना की भागदौड़ और भीड़भाड़ के बीच एक यात्री ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा कोच संगीत से गूंज उठा। वीडियो देख लोग कह रहे हैं कि सफर में ऐसे पल हर किसी का दिन बना सकते हैं। इस वायरल वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई नवेली बहू का डांस वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल है कि हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये कि बहू ने पूरे घूंघट में रहकर हरियाणवी गाने पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उनके डांस में आत्मविश्वास, सादगी और देसी अंदाज का ऐसा मेल देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया।

स्पेन का एक पारंपरिक खेल इन दिनों भारत में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देख कई लोगों को बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि ये खेल भारत के पुराने खेल गिल्ली डंडा जैसा ही दिखता है। इस स्पेनिश खेल का नाम है बिलार्डा, जो स्पेन के उत्तर पश्चिमी हिस्से गैलिसिया में खेले जाता है। बताया जाता है कि ये खेल बहुत पुराना है और इसका जिक्र 13वीं सदी के इतिहास में भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस खेल को फिर से फेमस बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए वहां की खेल संस्थाएं प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं। अब बिलार्डा में लीग मैच, प्लेऑफ और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी कराए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में खिलाड़ी एक छोटी लकड़ी को एक बड़ी लकड़ी के सहारे हवा में उछालते हैं और फिर उसे जोर से मारकर आगे की तरफ भेजते हैं। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत में गिल्ली डंडा खेलते समय अपनाया जाता है। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल है, जिसे देख लोग काफी इम्प्रेस हो रहे हैं। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच एक अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में केयरटेकर को पैर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ाकर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ाकर चलने लगता है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे दिखता है, जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देख हाथी भी बाकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीता हुआ है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो

0: का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
2: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
4: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
3: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
5: Because people who all watch games, they hear the voice.
3: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की है, लेकिन जरा ठहरिए। ये युवती कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है। जी हाँ, जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनका हुनर जो है सही कीमत पा रहा है।
7: हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी ने वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी और न ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है, लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया, बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत में यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है।

0: चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे
2: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
3: Somebody save me
2: to timeless favorites
3: and life is like a song
2: and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: You and that so much more than a history.
0: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जुटने लगी भक्तों की भीड़, भोले के जयकारों की गूंज, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव, 5000 दीपों से की गई महाआरती, मधुर भक्ति सुरों से गूंजा सरयू तट। सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत, भगवान के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3,00,000 रुपए की डिजाइनर पोशाक। मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम त्रिशूल का उद्घाटन, दिखाई जाएगी तीनों सेनाओं के पराक्रम की झांकी, नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश। सेना की पहल पर गुरेज घाटी में 50 साल बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल की वापसी, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज भारत के 31वें सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
7: और मेरे पागल भक्त के 3 लक्षण हैं। हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना, सूत्र है। आप भक्त हुए या नहीं, इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा। कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती, क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी, बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी शर्म नहीं आती, पाप पड़ेगा पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने जा कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा, क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला, इधर जल्दी आने की जल्द थी जिद थी तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया कर। हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो तीन दिन तो हमने भी नहीं नहाया, महाराज जी को ये बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाते हैं। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, तीन दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। तीन दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को, छू लिया मतलब हमने नहा लिया। और स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत तीन दिन ठोके। राम भगवान बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है, अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और कोई और ये करते थे यहां? हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। आह, क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे यहां। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए। अच्छा, जा रहे बाबा? इशारे, बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। अब बोलते भी कब थे, कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके, कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम हैं भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। और भरोसा कैसा हो, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाएं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदम्ब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो, ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले ने ही उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन, बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेफिजूली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेफिजूली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे हूं। ना ना ना, जाओ जाओ, और सुनो छूना लेना, पाप पड़ेगा पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाएं नहीं उलझाई। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता, ध्यान से सुनना मेरे पागलो, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए। और बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी, बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए दारी के, छूना लेना, क्यों बेफिजूली की बातें बतावे, हम जानते हैं का जानते हो, तू अकेलो नहीं ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना, हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है बहाने बनाने। हम ना मानेंगे, हम कैसे माने कि तू ठाकुर है, हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया। भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएगा, कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं। बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाएं और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी। ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाई रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। बाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे यो देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा किशोरी जू जल्दी चलो नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते। अब वो कह रहे हो तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी हैं। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे हैं जब तक तब किशोरी जी ना आएंगी राधा जी तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तुम हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठाकुरानी बोली गजब है। अब ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले ले बाबा इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा यही ठाकुर जी है। बाबा मस्ती में झूम गए। ठाकुर जी ने एक एक जटाएं लता से सुलझाई, और जब सुलझाई दोनों के चरणों में डूब गए। उनका नाम महात्मा कदम खंडी हुआ। मेरे पागलो, कलयुग में भी ठाकुर उलझे जीवन को सुलझाने आ सकता, बस भरोसा ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा इतना दृढ़ भरोसा होगा, तुम इतनी दृढ़ता के साथ हमारे ठाकुर जी पर भरोसा करोगे तो भगवान आएगा, भगवान सुलझाएगा। और भगवान तो वो उलझे हुए लोगों को ही सुलझाते हैं, भगवान का काम। और मेरे पागलों, हम लोग तो उलझे ही है, वो तो सुलझाने का काम। तो भक्त के तीन लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा, और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो? बच्चों की तरह, बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। नामदेव जी के घर पर भगवान स्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते। नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कर बना करके, रोटियां बना करके रखते, और बाहर जाते जल लेने के लिए जलाशय जाते। तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विट्ठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले, घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा, सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी। दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई, जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया, और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए। कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट, ऐसा भोलापन। स्वान में भी भगवान देख, ऐसा भोलापन। भक्त के तीन लक्षण, भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो गए तो मेरे पागल, तुम भगवान के भगत हो गए।
8: एक बात बोले, वृंदावन की महिमा ही अलग है। वृंदावन में तीन रानी हैं। कितनी रानी? कौन कौन? रज रानी, यमुना पट रानी और हमारी राधा रानी। तीन रानी, तीनों का महत्व है। जैसे ही ब्रज जाओ तो रज को माथे में लगाओ, फिर यमुना जी में डुबकी लगाओ और फिर राधे राधे गाओ।
7: हाँ,
8: ब्रज को माथे में लगाओगे तो क्या होगा, तन शुद्ध हो जाएगा। और रज की तो महिमा है ही है। धूल उड़ावत गज फिरत

0: रज की महिमा क्यों है? क्योंकि उसी रज में वो ब्रह्म खेले हैं, डोले हैं। जिस रज के ऊपर हमारे कन्हैया डोले हैं, उस रज का एक कण शरीर पे लग जाए तो जय जय हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो रज से, रज लगाने से तन शुद्ध। पर यमुना जी कौन है? यमुना जी में स्नान करने से क्या फायदा? बोले दो फायदा। एक, यमुना एक तो पटरानी है, और किसी भी तीर्थ में जाओ तो स्नान की महिमा है। तो ब्रज एक धाम है, भगवान का घर है, तो यमुना जी में स्नान की महिमा। और दूसरी बात, यमुना जी यम की बहन है। किसकी बहन है? यमराज की बहन है। तो यदि काले काले कोट वाले जो यमराज जो भैंसा पे बैठता है उससे बचना है तो यमुना मैया की शरण लेनी चाहिए। हाँ, यमुना जी उससे बचाती हैं। बोलो सीताराम। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से पूछो। एक बार यमुना जी अपने भाई यम से यम द्वितीया पर टीका लगाने गई। यमराज जी तो ऑफिस में थे नहीं, ड्यूटी में थे, कहां नरक में। कर क्या रहे थे? सुटाई पिटाई कर रहे थे। किसकी? पापियों की। खूब सुटाई पिटाई चल रही थी। किसी को उल्टा लटकाए थे, कोई कड़ाई में खोल रहा था, कोई कांटों में भाग रहा था, दबा के सुटाई पिटाई चल रही थी। जैसे ही यमुना जी ने देखा सो डर गई। हे भगवान, भैया ये क्या है? यमराज बोले तुम इधर क्या कर रही बहन? यमुना जी बोले हम तो टीका लगाने आए, पर तुम काम क्या करते हो? यमराज बोला यही तो करते हैं जो हो रहा। अरे भैया ये तो बड़ा लफड़ा है, तुम तो लोगों को मारते पीटते हो, यातनाएं देते हो, आज के बाद ये काम बंद करो वरना हम आना बंद कर दें। यमराज बोला बहन आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, भगवान का आदेश है, और ये इसलिए नहीं हम इनको मारते पीटते कि ये खराब है, इसलिए मारते पीटते कि ये बड़े उपद्रवी हैं, पाप करते हैं, तो समझाना भी तो पड़ता है भाई। भगवान के लिए तो सब समान है। बाल्यकाल में जब स्कूल में बच्चा पढ़ता नहीं है तो माताजी पिताजी क्या कहते? मार साहब अच्छे लगो, दबा के मारो, सुटाई करो। और कई अब आज के जमाने में तो मारना पीटना बंद हो गया, हमारे जमाने में ऐसी सुटाई पिटाई होती थी कि 3 दिन तक सिकाई चलती थी। आओ, आओ, आओ। आजकल तो छूलो तो आपत हो जाती।
1: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up. And suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at Quo.com/tunein. That's Quo.com/tunein.
2: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: Khabrein. कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जुटने लगी भक्तों की भीड़, भोले के जयकारों की गूंज, सवे रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव, 5000 दीपों से की गई महाआरती, मधुर भक्ति सुरों से गूंजा सरयू तट। सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत, भगवान के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम त्रिशूल का उद्घाटन, दिखाई जाएगी तीनों सेनाओं के पराक्रम की झांकी, नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश। सेना की पहल पर गुरेज घाटी में 50 साल बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल की वापसी, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज भारत के 31वें सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: दिव्य अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बड़ी तादाद में जुटे लगे श्रद्धालु, बम बम भोले के जयकारों की गूंज। वहां बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में बनाए गए स्वागत द्वार, यात्रा शुरू होने से पहले देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में शिव भक्तों को दिव्य सौगात। तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। कवी नदी के तट पर महाआरती के दौरान काशी और हरिद्वार की गंगा आरती जैसा भव्य नजारा। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जम्मू की पहचान बनाने की तैयारी। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार हुई महाआरती में बड़ी तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का भी किया गया आयोजन। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव। सरयू तट पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। सरयू तट पर 5151 दीपों से की गई भव्य महाआरती। मधुर भक्ति सुरों से गूंजा सरयू तट। मां सरयू का दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना। सजाई गई भव्य झांकी। सरयू जयंती महोत्सव में सरयू तट पर दिव्य नजारा। देश विदेश के सुगंधित पुष्पों से की गई मनोहरी सजावट। मां सरयू का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ दुग्धाभिषेक। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु हुए शामिल। सूरत में भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुभारंभ। रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाने के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयारी की विशेष पोशाक। प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई। रथ यात्रा के लिए पहली बार मुंबई से आया विशेष रथ। 16 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ। सूरत में 17 किलोमीटर रूट पर निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में जुटते हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन। दिखेगी देश के वीर सैनिकों के साहस बलिदान और गौरवशाली इतिहास की झलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का लोकार्पण। 1947 से लेकर कारगिल युद्ध और पुलवामा तक के सैन्य अभियानों की वीर गाथा दिखाई जाएगी। वॉर मेमोरियल म्यूजियम में डिजिटल स्क्रीन, लाइट साउंड शो, इलेक्ट्रेटिव पैनल से सैन्य अभियानों की होगा प्रदर्शन। नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश। मुरादाबाद में 11 महीने में तैयार हुआ है त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय। तीनों सेनाओं की उपलब्धियों के बारे में दी जाएगी जानकारी। वॉर मेमोरियल म्यूजियम में सेना के टैंक, मिसाइल के मॉडल समेत कई हथियार भी आएंगे नजर। लेजर गन स्पोर्ट सेटअप भी लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में करीब 50 साल बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल की वापसी। लोगों ने जताई खुशी। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज घाटी में ऐतिहासिक खेल विरासत की हुई बहाली। पोलो मैच का हुआ आयोजन। गुरेज घाटी में पोलो मैच के आयोजन से इलाके में लौटी रौनक। एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ। 2 दिन चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव। रामगढ़ महोत्सव में लोक संस्कृति और पारंपरिक कला और साहित्य को मिलता है इससे बड़ा मंच। आयोजन में देशभर के कलाकार भी होते हैं शामिल। दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की दिशा में बड़ी पहल। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन। पॉलिसी के तहत अगले 4 सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान। ईवी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की प्लानिंग। 1 जुलाई 2026 से लागू ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। टीवी सेक्टर में निजी निवेश और नई परियोजनाओं को मिलेगी इससे गति। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। टीवी के इस्तेमाल से दिल्ली में प्रदूषण होगा कम, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना मकसद। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना, दिल्ली में मॉनसून पहुंचने में हो सकती है 1 हफ्ते की देरी। अगले 2 से 3 दिन में गुजरात एमपी समेत कई राज्यों में आगे बढ़ सकता है मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। महाराष्ट्र में जालना के ढोकसाल तांडा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में भरा पानी। 2 जुलाई और 3 जुलाई को महाराष्ट्र और गोवा में कुछ जगहों पर हो सकती भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब के फरीदकोट में कैदियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के लिए शानदार पहल, जेल में रेडियो स्टेशन सेंटर और आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ। कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल, जेल मंत्री ने रेडियो से कैदियों को दिया प्रेरक संदेश। जेल में रेडियो जाला के जरिए कैदी खुलकर रख सकेंगे अपनी बात, भक्ति प्रेरक और मनोरंजक कार्यक्रमों का होगा प्रसारण। रेडियो संचालन के लिए तैयार किया गया स्टूडियो, जेल के प्रत्येक बैरक और खुले क्षेत्रों में स्पीकर भी लगाए गए। जेल में मानसिक तनाव कम करने और ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबों की मदद ले सकेंगे कैदी, 1500 से ज्यादा किताबों से सजी आधुनिक लाइब्रेरी बनाई गई। हरिद्वार में अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ शहरी विकास मंत्री ने की बैठक, अर्धकुंभ को कुंभ की तरह दिव्य और भव्य बनाने पर चर्चा। वडोदरा में 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का शुभारंभ, राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देना मकसद। पटना में दरियापुर भट्टी के लोगों को सौगात, नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी यूपीएचसी का स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने शुभारंभ किया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर, पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पठानकोट पहुंचे। पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मई में देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़कर 5.1% हुई, अप्रैल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.9% थी। अब बिना रोक टोक मिलेगा पेट्रोल डीजल, 1 जुलाई से हटेंगी सारी पाबंदियां। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा था असर, ग्लोबल लेवल पर सप्लाई में सुधार होने के बाद पाबंदी हटाने का फैसला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई किया, पहली बार महिला टीम ओलंपिक में क्रिकेट इवेंट का हिस्सा बनेगी। आईसीसी के तय नियमों के मुताबिक अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के एक एक टीम को सीधे प्रवेश दिया जाना था, इस आधार पर एशिया से भारत को एंट्री मिली। मंगोलिया में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया रणकौशल, ऑपरेशनल तैयारियों के साथ खेल भावना का भी प्रदर्शन। भारतीय सेना के जवानों ने एनकाउंटर, आईईडी ऑपरेशन, टेक्टिकल कॉम्बैट, कैजुअल्टी केयर, काफिले की सुरक्षा की ड्रिल और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। शांति सैनिकों को मुश्किल मिशन वाले इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करना एक्सरसाइज का मकसद। यूएन के चैप्टर 7 फ्रेमवर्क के तहत कई देशों के साथ मिलकर एक्सरसाइज, आपसी तालमेल और सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर वज्र में अचानक हुई भारी बारिश की वजह से झरने के पास 6 युवक फंसे, वन विभाग और दमकल विभाग ने बचा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium.
7: for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
11: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
7: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
12: Williams keeps it. First down. Touchdown.
7: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या हाथ में चंद्रमा देखकर आपके मन को जाना जा सकता है? हाथ के चंद्रमा से आपके करियर पर भी कोई असर पड़ता है? हाथ का चंद्रमा आपके प्रेम के बारे में क्या बताता है? हाथों की लकीरों से चंद्र का क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि आपके हाथों की रेखाओं से चंद्रमा के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका हाथ देखकर, हाथों की रेखा देखकर चंद्रमा को कैसे जान सकते हैं। तो आपके हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली के सबसे छोटी उंगली के थोड़ा नीचे का स्थान चंद्रमा का स्थान है। ये छोटी उंगली है, इससे थोड़ा नीचे आइए, ये जो हिस्सा है ये चंद्र का पर्वत है। चंद्रमा के स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा का स्थान आपके हथेलियों में, आपके हाथों में जितना साफ होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा के स्थान का रंग अगर गुलाबी हो तो इसका अर्थ ये है कि आपका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा के स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थिति देखी जाती है। आपके हाथ के चंद्रमा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, आपके जीवन में रिश्तों का और प्रेम का हाल क्या है, आप जीवन में कितनी यात्राएं करेंगे और जीवन में किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का मन कैसा रहता है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, वो उसकी हथेलियों के चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के स्थान पर बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करता है। व्यक्ति हमेशा चिंता में ग्रस्त रहता है। चंद्रमा के स्थान पर अगर हथेलियों में दाग धब्बे हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण बिना वजह के चिंताएं करता है। व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होती हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल आ जाए तो इसके दो मतलब हैं। पहला ये है कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकता है या व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा भी हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत का साफ सुथरा होना और गुलाबी होना अच्छा है, ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत है। इस स्थान पर, चंद्र के पर्वत पर अगर तिल हो, अगर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को नदी में जाने से और नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए।
देखिए चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में और आपके विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए, यानी यहां से निकल करके भाग्य रेखा ऊपर की तरफ आए, नीचे से झुकती हुई सीधे हो जाती है, चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा आए तो विवाह के बाद बड़ी उन्नति होती है, भाग्योदय विवाह के बाद होता है। और ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है, वो बहुत समझदार और बहुत सपोर्टिव यानी सहायक होता है। चंद्र पर्वत अगर मजबूत है तो अभिनय के क्षेत्र में, जल में जैसे नेवी के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में करियर बनाने पर बड़ी सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी अगर रेखाएं हों तो वो बताती हैं कि आप यात्राएं करेंगे और जीवन में लव रिलेशंस प्रेम संबंध रहेंगे। बहुत ज्यादा रेखाएं होंगी तब तो टेंशन की बात है, ये तनाव देंगी, लेकिन थोड़ी रेखाएं हो छोटी छोटी तो ये यात्राएं करवाएंगी और आपके जीवन में लव रिलेशंस डेवलप करेंगी। चंद्रमा के पर्वत से अगर सीधी रेखा निकले और भाग्य रेखा में जुड़ जाए या जीवन रेखा में जुड़ जाए तो ऐसे लोग लंबे समय तक विदेश में रहते हैं। और अगर शनि का पर्वत भी अच्छा है तो इनका सेटलमेंट विदेश में होता है। यानी चंद्रमा का पर्वत ये भी बताता है कि आपके विदेश में सेटल होने की क्या संभावना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी हथेलियों में चंद्रमा का पर्वत अच्छा ना हो, चंद्रमा पर खराब चिन्ह बने हुए हों,

एक हर सिंगार का या रात रानी का पौधा लगाइएगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए गले में एक तुलसी की माला पहनने से भी आपको लाभ होगा। एक बात आप ये समझ लीजिए कुंडली के हिसाब से कि भगवान शिव और माता पार्वती यानी माता गौरी, अगर इनकी संयुक्त पूजा की जाए, अगर इनकी नियमित पूजा की जाए, तो चंद्रमा से संबंधित बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। देखिए, दो तरह की जानकारियां आपको चंद्रमा से, आपके हाथ के चंद्रमा से आपके करियर के बारे में मिल सकती हैं। पहली जानकारी, अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्म में, मीडिया में, क्रिएटिव सेक्टर में या जल से संबंधित क्षेत्रों में, तो हाथ में चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ होगा और गुलाबीपन लिए हुए रहेगा। अगर आपकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी छूटने वाली है या नौकरी में, करियर में कोई संकट आने वाला है, तो चंद्रमा के इस पर्वत पर बहुत सारी लकीरें बन जाएंगी एकदम से, और या इस पर तिल आ जाएगा या कोई स्पॉट आ जाएगा। वो ये बताता है कि नौकरी में इस समय बाधा आ सकती है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में, संगीत में या जहां बहुत सोचना होता है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जो बीच वाली रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुक जाती है। बहुत ज्यादा झुकेगी तब तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो आपको कल्पना की या चिंता की बीमारी हो जाएगी, लेकिन हल्का सा झुकती है अगर, तो ये बताता है कि आप क्रिएटिव फील्ड के आदमी हैं, आप बहुत अच्छा कला में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं या कला संगीत में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा अक्सर क्रिएटर्स के हाथ में आपको दिखेगा कि जो बीच वाली मस्तिष्क रेखा है वो हल्का सा चंद्र की तरफ झुकी होती है, और अगर ये ज्यादा झुकी है तो ये मानसिक पागलपन की निशानी हो सकती है, और अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद आप उन्नति ज्यादा करेंगे। चंद्रमा पर कोई चिन्ह ना हो, चंद्रमा का पर्वत साफ सुथरा हो, बहुत ज्यादा लकीरें ना हो, तो ये बताता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मानसिक ताकत काफी ज्यादा है। अगर आपका मन उदास हो या बहुत ज्यादा आपके मन में तनाव हो, तो उदास मन से या टेंशन वाले मन से खाना मत बनाइए। खराब मन से बनाया हुआ खाना आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि मन बैठे बैठे एकदम से अशांत हो जाता, अचानक से मन में कोई बात आ गई, मन एकदम अशांत हो गया, क्या करना चाहिए? जब भी मन अशांत हो, मन का बड़ा गहरा संबंध आपके सांसों से है, ब्रीदिंग से है, तो आप इत्मीनान से बैठकर गहरी गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस थोड़े एक मिनट दो मिनट लीजिएगा। इसके बाद एक गिलास शीतल जल पीजिएगा और मन ही मन में शिव शिव शिव शिव शिव नाम एक मिनट दो मिनट तक बोलिएगा, चिंताएं एकदम से छूमंतर हो जाएंगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जुटने लगी भक्तों की भीड़, भोले के जयकारों की गूंज, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव, 5000 दीपों से की गई महाआरती, मधुर भक्ति सुरों से गूंजा सरयू तट। सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत, भगवान के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम त्रिशूल का उद्घाटन, दिखाई जाएगी तीनों सेनाओं के पराक्रम की झांकी, नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश। सेना की पहल पर गुरेज घाटी में 50 साल बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल की वापसी, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज भारत के 31वें सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल।
2: प्रेजेंटेड बाय
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश
5: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्कार।
5: चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आज पंडित जी से हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी से हम चर्चा करने वाले हैं कि हाथों की लकीरों को देखकर किस तरह से पता चल सकता है कि चंद्रमा अशुभ है या फिर शुभ है। पंडित जी विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और अगर आपके हाथों की लकीरों को देखकर ये जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा अशुभ है, अशुभ प्रभाव आपके जीवन में दे रहा है, तो उसको दूर करने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे, आपके सवाल भी लेंगे आगे जाकर। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
7: अगर आपका मन उदास हो या बहुत ज्यादा आपके मन में तनाव हो तो उदास मन से या टेंशन वाले मन से खाना मत बनाइए। खराब मन से बनाया हुआ खाना आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर देगा।
5: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 30 जून 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
7: दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 3:00 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में आपको हमने बताया कि हाथों की लकीरों को देखकर चंद्रमा की स्थिति क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है और इसकी सामान्य बातें क्या है, सबसे पहले तो पंडित जी आपसे यही जानेंगे।
7: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका हाथ देखकर, हाथों की रेखा देखकर चंद्रमा को कैसे जान सकते हैं। तो आपके हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली के सबसे छोटी उंगली के थोड़ा नीचे का स्थान चंद्रमा का स्थान है। ये छोटी उंगली है, इससे थोड़ा नीचे आइए, ये जो हिस्सा है ये चंद्र का पर्वत है। चंद्रमा के स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा का स्थान आपके हथेलियों में, आपके हाथों में जितना साफ होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा के स्थान का रंग अगर गुलाबी हो तो इसका अर्थ ये है कि आपका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा के स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थिति देखी जाती है। आपके हाथ के चंद्रमा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, आपके जीवन में रिश्तों का और प्रेम का हाल क्या है, आप जीवन में कितनी यात्राएं करेंगे और जीवन में किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं।
5: चलिए, बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से पूछने हैं, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अब आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। पहली तीन राशियां हैं मेष, वृष और मिथुन।
7: मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि हथेलियों के चंद्रमा से मानसिक स्थिति को कैसे जान सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि मानसिक स्थिति आपकी इसकी वजह से प्रभावित हो रही है?
7: किसी व्यक्ति का मन कैसा रहता है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, वो उसकी हथेलियों के चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के स्थान पर बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करता है। व्यक्ति हमेशा चिंता में ग्रस्त रहता है। चंद्रमा के स्थान पर अगर हथेलियों में दाग धब्बे हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण बिना वजह के चिंताएं करता है। व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होती हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल आ जाए तो इसके दो मतलब हैं। पहला ये है कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकता है या व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा भी हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत का साफ सुथरा होना और गुलाबी होना अच्छा है। ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत है। इस स्थान पर, चंद्र के पर्वत पर अगर तिल हो, अगर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को नदी में जाने से और नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए।
5: चलिए, इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हुए अगली तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। पंडित जी आपको बताएंगे कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
7: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: योग हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम बहुत रहेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए और भी प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन अब बारी आती है आप दर्शकों के सवाल लेने के। और सबसे पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, उससे पहले आपको एक बार फिर से सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई भी प्रश्न इस शो में पूछना चाहते हैं, पंडित जी के पास अपनी क्वेरी भेजना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल आप इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, जानते हैं पहला प्रश्न कौन सा है।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अनामिका जी ने हमें लिखा है, और अनामिका जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1994। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। और साथ में इन्होंने एक लड़के का विवरण भी भेजा है, और ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा इनके साथ विवाह करना उचित होगा, और अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अनामिका जी, जो आपकी कुंडली और इस बालक की कुंडली है, उसकी कंपैटिबिलिटी आपस में ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप विवाह कर सकती हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपका फायर वाला पार्ट ज्यादा है, मंगल वाला पार्ट ज्यादा है, तो थोड़ा क्रोध पर और एग्रेशन पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आपको विवाह चलाने के लिए थोड़े धैर्य और शांति की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा अगर मैच मेकिंग देखें तो मैच मेकिंग कुल मिला जुला के ठीक है। आपको कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता इस विवाह के लिए नहीं है, अपने मन के लिए, अपने स्वभाव के लिए आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की, और पंडित जी ही हमें जानकारी देंगे कि कौन से दर्शक का है अगला सवाल।
0: जी, अगला प्रश्न कृष्ण दयाल जी ने हमें लिखा है, और कृष्ण दयाल जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1965। जन्म का समय रात में 11:00। जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। कृष्ण दयाल जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ गई हैं अचानक से, कुछ पैसों का नुकसान हो गया है, तो क्या भविष्य में मैं इस नुकसान से बाहर निकल पाऊंगा। और क्या भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी? कृष्ण दयाल जी, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए। अक्टूबर 2026 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर हैं और यहां से आप आर्थिक रूप से लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। 2027 के मध्य के बाद से आपका जीवन लगातार बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा कर पहनिए, लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ और आज का विषय जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, अगला प्रश्न इसी से जोड़ते हुए पंडित जी से पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि चंद्रमा के पर्वत से पंडित जी ये बताइए कि करियर और विवाह के बारे में जानकारी भी मिल सकती है क्या?
0: देखिए, चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में और आपके विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए, यानी यहां से निकल करके भाग्य रेखा ऊपर की तरफ आए, नीचे से झुकती हुई सीधे हो जाती है, चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा आए तो विवाह के बाद बड़ी उन्नति होती है, भाग्योदय विवाह के बाद होता है। और ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है, वो बहुत समझदार और बहुत सपोर्टिव यानी सहायक होता है। चंद्र पर्वत अगर मजबूत है तो अभिनय के क्षेत्र में, जल में जैसे नेवी के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में करियर बनाने पर बड़ी सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी अगर रेखाएं हों तो वो बताती हैं कि आप यात्राएं करेंगे और जीवन में लव रिलेशंस, प्रेम संबंध रहेंगे। बहुत ज्यादा रेखाएं होंगी तब तो टेंशन की बात है, ये तनाव देंगी, लेकिन थोड़ी रेखाएं हों, छोटी छोटी, तो ये यात्राएं करवाएंगी और आपके जीवन में लव रिलेशंस डेवलप करेंगी। चंद्रमा के पर्वत से अगर सीधी रेखा निकले और भाग्य रेखा में जुड़ जाए या जीवन रेखा में जुड़ जाए तो ऐसे लोग लंबे समय तक विदेश में रहते हैं। और अगर शनि का पर्वत भी अच्छा है तो इनका सेटलमेंट विदेश में होता है, यानी चंद्रमा का पर्वत ये भी बताता है कि आपके विदेश में सेटल होने की क्या संभावना है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल में आज क्या लिखा है विस्तार से आपको पंडित जी जानकारी देंगे।
0: तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित जी, एक और सवाल है आपसे, वो ये कि अगर हाथ की रेखाओं में चंद्रमा समस्या दिखा रहा है, किसी प्रकार की कोई जीवन में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कौन से अचूक उपाय हैं जो आप बताएंगे?
0: अब ऐसा हो सकता है कि आपकी हथेलियों में चंद्रमा का पर्वत अच्छा ना हो, चंद्रमा पर खराब चिन्ह बने हुए हों, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो क्या उपाय करेंगे? सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिएगा। इसके बाद आप भगवान को नमस्कार करके तब दिन की शुरुआत करिएगा। अपनी सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा उंगली में एक मून स्टोन या एक मोती धारण करिएगा। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए, खास तौर से नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल डालकर नहाइए, बहुत अच्छा होगा। घर में गमले में या जमीन में एक हर सिंगार का या रात रानी का पौधा लगाइएगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए गले में एक तुलसी की माला पहनने से भी आपको लाभ होगा। एक बात आप ये समझ लीजिए कुंडली के हिसाब से कि भगवान शिव और माता पार्वती यानी माता गौरी, अगर इनकी संयुक्त पूजा की जाए, अगर इनकी नियमित पूजा की जाए, तो चंद्रमा से संबंधित बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है अंतिम तीन राशियों का हाल भी जान लेने की पंडित जी से। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में क्या है।
0: मकर राशि, परिवार में आपके समस्या हो सकती है, करियर में बाधा के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है अगले दर्शक का। पंडित जी,
0: जी। अगला प्रश्न ऋचा जी ने हमें लिखा है और ऋचा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 2002। जन्म का समय दोपहर के 1:15। जन्म स्थान है लखनऊ। ऋचा कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ऋचा, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की तैयारी करें, तो प्रशासनिक क्षेत्र में आपको राजकीय नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। अपनी तैयारी आपको जारी रखनी चाहिए। बार बार करियर में बदलाव के बारे में मत सोचिए और एकाग्रता पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक पीला पुखराज, वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि अंतिम प्रश्न यानी कौन से दर्शक का है अंतिम सवाल आज के शो के लिए।
0: जी,

0: प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है और ज्योत्सना जी हमें बिहार पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1982। जन्म का समय सुबह के 7:30। जन्म का स्थान है पटना। ये कह रही हैं कि मैं एक विद्यालय में अभी एडहॉक पर नौकरी कर रही हूं, संविदा पर। नौकरी परमानेंट होने की बात चल रही है, क्या मेरी नौकरी परमानेंट हो पाएगी और आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? ज्योत्सना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी परमानेंट होने का समय बिल्कुल सही है और अगले 4 से 5 महीनों में आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, नौकरी स्थायी हो जाएगी। आने वाले समय में आपका करियर बेहतर दिखाई दे रहा है और काम की स्थिति भी आने वाले समय में आपकी कुंडली में बढ़िया है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय एक बार जल चढ़ाने के बाद सूर्याष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: विषय से जुड़ा हुआ एक और सवाल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए कि हाथ की लकीरों को देखकर क्या करियर में कोई दिक्कत आ रही है या करियर आपका कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है?
0: जी देखिए, दो तरह की जानकारियां आपको चंद्रमा से, आपके हाथ के चंद्रमा से आपके करियर के बारे में मिल सकती हैं। पहली जानकारी, अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्म में, मीडिया में, क्रिएटिव सेक्टर में या जल से संबंधित क्षेत्रों में, तो हाथ में चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ होगा और गुलाबीपन लिए हुए रहेगा। अगर आपकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी छूटने वाली है या नौकरी में, करियर में कोई संकट आने वाला है, तो चंद्रमा के इस पर्वत पर बहुत सारी लकीरें बन जाएंगी एकदम से, और या इस पर तिल आ जाएगा या कोई स्पॉट आ जाएगा। वो ये बताता है कि नौकरी में इस समय बाधा आ सकती है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में, संगीत में या जहां बहुत सोचना होता है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जो बीच वाली रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुक जाती है। बहुत ज्यादा झुकेगी तब तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो आपको कल्पना की या चिंता की बीमारी हो जाएगी। लेकिन हल्का सा झुकती है अगर, तो ये बताता है कि आप क्रिएटिव फील्ड के आदमी हैं, आप बहुत अच्छा कला में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं या कला संगीत में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा अक्सर क्रिएटर्स के हाथ में आपको दिखेगा कि जो बीच वाली मस्तिष्क रेखा है वो हल्का सा चंद्र की तरफ झुकी होती है, और अगर ये ज्यादा झुकी है तो ये मानसिक पागलपन की निशानी हो सकती है। और अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद आप उन्नति ज्यादा करेंगे। चंद्रमा पर कोई चिन्ह ना हो, चंद्रमा का पर्वत साफ सुथरा हो, बहुत ज्यादा लकीरें ना हो, तो ये बताता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मानसिक ताकत काफी ज्यादा है।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 30 जून को जिन तमाम लोगों का हैप्पी बर्थडे है, आपका हैप्पी बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है?
0: जिन लोगों का जन्मदिन 30 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर और धन की स्थिति ठीक रहेगी। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, विवाह और संतान के मामलों में इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूर्वजों की, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी पूजा पाठ, कभी भी दान कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो पितृ पक्ष में पितरों के लिए पूजा पाठ और दान करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप उनके लिए पूजा पाठ करना चाहें, दान करना चाहें, तो अमावस्या तिथि को पितरों की आत्मा की शांति के लिए काम कर सकते हैं, पूजा पाठ और दान किया जा सकता है।
1: और चलिए पंडित जी से जानकारी लेते हैं 30 जून 2026 मंगलवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, शिक्षा और करियर की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 30 जून मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों की विशेषता क्या है। आज की गुडलक राशि है मिथुन, जेमिनाई। इनको एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके कंफ्यूज होने के, गड़बड़ होने के चांस बहुत होते हैं। निर्णयों में हमेशा सावधानी बनाए रखनी चाहिए।
1: चलिए, आज के शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, उपायों के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की, यानी खास उपाय के बारे में आपको ज्ञान देने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी, अक्सर ऐसा होता है कि मन बैठे बैठे एकदम से अशांत हो जाता, अचानक से मन में कोई बात आ गई, मन एकदम अशांत हो गया। क्या करना चाहिए? जब भी मन अशांत हो, मन का बड़ा गहरा संबंध आपके सांसों से है, ब्रीदिंग से है, तो आप इत्मीनान से बैठकर गहरी गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस थोड़े 1-2 मिनट लीजिएगा। इसके बाद 1 गिलास शीतल जल पीजिएगा और मन ही मन में शिव शिव शिव शिव शिव नाम 1-2 मिनट तक बोलिएगा, चिंताएं एकदम से छूमंतर हो जाएंगी।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
2: How they looked after game one.
3: I mean, they were frustrated.
1: The Daily.
4: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
6: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
7: समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Hey, never.
0: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
7: और चलिए अब एक ऐसी भावुक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर जारी होते ही खूब वायरल हो गई। कुछ दिन पहले वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंप आए, उसके बाद भारत समेत दुनिया भर के देशों की तरफ से वेनेजुएला में राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान एक 9 महीने का बेबी और उसकी माँ को मलबे से निकालने वाली तस्वीरें भी जारी की गई, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई। ये तस्वीर बेशक इंसानी हौसले और उम्मीद की जीत की कहानी है।

0: बच्चे दोनों को मामूली चोटें ही आई। इस पल का गवाह बने हर रेस्क्यू कर्मी की आंखें नम थी। आपदा के बीच घिरे वेनेजुएला से आ रही ये ऐसी तस्वीरें काफी सुकून देने वाली हैं। तबाही के इस मंजर में इस बात का सबूत है कि जब तक सांस बाकी है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो वो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन इनमें ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत पर कुछ ऐसे बदल देते हैं कि उनकी कहानी चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी हम आपको दिखाते हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की। लेकिन जरा ठहरिए, ये युवती कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है जो वियतनाम से दुबई आई और यहीं उनको हुनर की सही कीमत मिल रही है।
2: हुनर और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी ने वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है। लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत में यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
3: फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा, फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की, बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है। शायद बहुत कम सास है जो ये कहती पाई जाती है कि मेरी बहू सी कोई नहीं, या बहू हो तो मेरी जैसी। लेकिन इन तस्वीरों को देख सास और बहू दोनों की सोच बदल सकती है। इस बहू की सास की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले उनकी ब्रज परिक्रमा हो जाए। बहू ने न सिर्फ सास की इच्छा को सिर माथे पर लगाया, बल्कि सास को ही माथे पर उठाकर निकल गई ब्रज परिक्रमा करने और अपनी सासू माँ की इच्छा पूरी कर दी। अब यूजर्स इस बहू की तारीफ खूब कर रहे हैं और बुजुर्ग इसे खूब दुआएं दे रहे हैं। चीन के पारंपरिक बोट रेस को यूं ही ड्रैगन बोट रेस नहीं कहा जाता। इस रेस में हर कोई भाग नहीं ले सकता, लेकिन इसके लिए दमखम, सूझबूझ, संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी है।

0: होता है। इन तस्वीरों को देख ये बात आप समझ जाएंगे। देखिए इस ड्रैगन बोट रेस के दौरान ये प्रतिभागी रफ्तार से आते हुए जब मुड़ते हैं तो कैसे एक बैरियर पर लटक कर बोट को मोड़ते हैं। इन तस्वीरों को देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। चीन में पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस के दौरान प्रतिभागी किस तरह तेजी से मुड़ते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में ये दो बच्चे साइकिल पर उल्टा होकर ऐसा गजब का बैलेंस दिखा रहे हैं जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी हैरान रह जाएं। ये करतब केवल ताकत का नहीं बल्कि लंबे अभ्यास, आत्मविश्वास और बेहतरीन संतुलन का नतीजा है। और अब इन दोनों की ये करामात देख यूजर्स भी हैरान है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
3: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
4: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
3: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
4: Remember, around here, we use the F Word.
3: Never the S Word.
2: The S Word, available now on TuneIn, wherever you get your podcasts, and on the S Word YouTube channel.
1: खबरें तो आ रहा है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा BLO घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, दोनों राज्यों के बीच MOU साइन। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज भारत के 31वें सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जुटने लगी भक्तों की भारी भीड़, भोले के जयकारों की गूंज, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत, भगवान के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम त्रिशूल का उद्घाटन, दिखाई जाएगी तीनों सेनाओं के पराक्रम की झांकी, नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: उम्मीदों में दोपहर की खुशोभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पन, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: अब खत्म होने वाला है इंतजार, जल्द होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जम्मू में रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, गजब की भीड़ है मगर भक्तों का जोश आया है, ये सब हम आगे आपको दिखाएंगे।
4: वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात तक भव्य तैयारी है, सूरत में मुंबई से रथ मंगाया गया है और वृंदावन से श्री जगन्नाथ के लिए डिजाइनर पोशाक आया है, क्या खास है इस पोशाक में और कितनी है इसकी कीमत, ये आगे जानेंगे।
3: तो आपको यूरोप भी लेकर चलेंगे जहां लोगों का गर्मी से बुरा हाल है, यूरोप के देश ठंडे मौसम के लिए फेमस है मगर इस बार उन्हें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेलनी पड़ रही है, ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लोग अपना रहे हैं, इसकी झलक भी आगे होगी आपके सामने।
4: तो वहीं कश्मीर की गुरेज घाटी में हॉर्स पोलो की वापसी हुई है, सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया, अपनी खोई हुई संस्कृति से रूबरू हो सके, 50 साल बाद ये खेल घाटी में लौटा है, क्या है इसका इतिहास और कैसे इससे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और बूस्ट मिलेगा, इसकी करेंगे आगे बात।
3: तो इमरान हाशमी की आवारापन 2 के साथ फैंस के बीच दस्तक देने वाले हैं और इनमें इमरान के अलावा दिशा पाटनी भी आपको नजर आएंगी, क्या आवारापन 2 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, अब होगी ये फिल्म रिलीज, ये सब हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौगढ़ न्यूज का।
4: तो अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल बेस कैंप से बड़ी और पवित्र तस्वीरें आई सामने, बर्फीली वादियों में बम बम भोले के जयकारों ने माहौल को शक्तिमय कर दिया, वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में स्वागत द्वार बनाए गए, यात्रा शुरू होने से पहले देश विदेश से श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी।
3: सूरत में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, इस पावन अवसर पर वृंदावन से भगवान जगन्नाथ के लिए मंगाई गई 3 लाख मूल्य की विशेष पोशाक शहर पहुंच चुकी है, भगवान को धारण कराने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पोशाक वृंदावन से लाई गई है जिसकी कीमत लगभग 3 लाख है, इसे 15 कारीगरों ने मिलकर 1.5 महीने में तैयार किया है।
4: रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती के पावन अवसर पर भव्य समारोह और महाआरती का आयोजन किया गया। राम की पैड़ी के सहस्त्र धारा घाट पर 5,151 दीपों की मनमोहक आरती के साथ 5 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतेंद्र देव सिंह भी शामिल हुए।
3: जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अंतर्गत आने वाली गुरेज घाटी में लगभग 5 दशकों बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो का आयोजन किया गया। नियंत्रण रेखा एलओसी के पास स्थित बकटूर गांव में भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस प्राचीन खेल का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक पुनर्द्वार को लेकर स्थानीय लोगों और बुजुर्गों ने भारी खुशी जताई।
4: वहीं पंजाब के फरीदकोट में कैदियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के लिए शानदार पहल की गई। जेल में लाइब्रेरी और रेडियो उजाला आंतरिक चैनल का शुभारंभ किया गया। कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये पहल की गई है। वहीं जेल में रेडियो उजाला के जरिए कैदी खुलकर अपनी बात रख सकेंगे। जेल मंत्री ने रेडियो से कैदियों को प्रेरक संदेश दिया।
3: ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारतीय सेना की मेडिकल टास्क फोर्स ने वेनेजुएला में एक पूरी तरह से कार्यशील फील्ड अस्पताल स्थापित कर दिया, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत और महत्वपूर्ण मेडिकल सहायता देने के लिए तैयार है। फिलहाल अस्पताल में 20 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर 50 बिस्तरों तक बढ़ाया जा सकता है। अस्पताल ने काम शुरू भी कर दिया है।
4: मंगोलिया के उलानबातर स्थित फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना के जवानों ने उच्च स्तरीय युद्ध कौशल और मानवीय सहायता अभियानों का शानदार प्रदर्शन किया। 40 सदस्यीय इस भारतीय टुकड़ी में मुख्य रूप से जाट रेजिमेंट के जाबाज शामिल हुए।
3: चीन के नेंजिंग में मौजूद साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में आई लाइट शो से ग्रेजुएट्स को शानदार फेयरवेल दी गई। ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के इस अनोखे विदाई समारोह में ये ब्राइटेस्ट स्टार शो आकर्षण का केंद्र रहा। एआई प्रोजेक्शन से यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस जगमग हो गया। इस शो में इमारतों को डिजिटल कैनवस के रूप में इस्तेमाल किया गया।
4: इमरान हाशमी स्टार फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज हो गया है। विशेष फिल्म्स के आधिकारिक रूप से जारी इस टीजर में इमरान हाशमी जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। टीजर में शबाना आजमी की झलक भी दिखाई गई है। आवारापन 2 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, जिसमें इमरान शिवम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
5: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं
6: तो फिर

तो शुभ समाचार की शुरुआत बम बम भोले के जयकारों के साथ। जी हां, जय घोष के साथ अब बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ पूरे देश में श्रद्धा, उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। परंपरा के अनुसार प्रथम पूजा के साथ यात्रा का धार्मिक शुभारंभ हो चुका है। वहीं बाबा के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। देश के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ धाम की ओर बढ़ने को तैयार हैं। यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर हाईटेक सर्विलांस, मेडिकल सुविधाएं, लंगर, ठहरने की व्यवस्था और यात्रा मार्ग की निगरानी तक हर मोर्चे पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मकसद यही है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ये महापर्व सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

0: शारदांगे।
1: आस्था की सबसे अद्भुत यात्रा का ये पहला अध्याय है। प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का एक तरह से शंखनाद हो चुका है। अब बारी बाबा के भक्तों की है। 3 जुलाई से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने वाला मार्ग बम बम भोले के जयकारों से गूंजेगा। बाबा बर्फानी की झलक पाने की भक्तों की कामना पूर्ण होगी और भक्त शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे जिसे वो शिवत्व का सबसे अद्भुत रूप मानते हैं। कहते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा अमरनाथ यात्रा के सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना भर नहीं है, बल्कि ये हर एक श्रद्धालु के लिए भगवान से मांगा आशीर्वाद है। अब प्रतीक्षा उस पल की है जब बाबा के दर्शनों के लिए जत्थे रवाना होंगे और बेस कैंप से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक पूरा रास्ता शिवमय नजर आएगा।
2: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है।
1: बाबा के भक्तों के स्वागत की तैयारी पूरी है। ये बालटाल है जहाँ हर बार की तरह इस बार भी बेस कैंप में श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। तैयारियों को बार बार परखा जा रहा है। खाने पीने से लेकर रुकने और ठहरने जैसे इंतजामों को दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा सकुशल संपन्न हो और किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए तैयारी पुख्ता है। यात्रा के रास्ते पर प्रशासन ड्राई रन कर रहा है। इस ड्राई रन का मकसद यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट तमाम डिपार्टमेंट में तालमेल को परखना है।
3: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजीपी जम्मू, आईजीपी सीआरपीएफ, आईजीपी ट्रैफिक और आईजीपी सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके पानीहाल लांबर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया जिसमें काफले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया। उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, पानीहाल लांबर ग्राउंड भी देखा गया। मकसद यही है कि जो आने वाले 3 जुलाई से जो श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
1: अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान पुलिस का एक्शन और उसके बाद तमाम एजेंसियों का रिएक्शन साफ नजर आया। आतंकी हमले जैसी परिस्थितियों में जवानों ने रियल टाइम अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये संदेश दिया गया कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। इस साल अमरनाथ यात्रा को ज्यादा सुविधा संपन्न बनाने के लिए खास बदलाव किए गए हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है और यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं।
4: इस सुरक्षा के घेरे में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ साथ भारतीय सेना भी शामिल हो गई, लेकिन उनके साथ साथ अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर ड्रोनों से भी निगरानी होगी और अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों को सीसीटीवी कैमरों से भी लेस कर दिया गया है ताकि अमरनाथ यात्रियों की हर एक चहल पहल और उनकी यात्रा पर हर समय और हर जगह नजर बनी रहे। अशरफानी, श्रीनगर।
5: तो ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो सिर्फ भीड़ की नहीं थी बल्कि अटूट आस्था की भी थी। बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए श्रद्धालु का सैलाब रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर उमड़ पड़ा है। कहीं पर लंबी कतारें हैं तो कहीं हाथों में यात्रा पर्ची और आंखों में बाबा के दर्शन की उम्मीद है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। कोई परिवार के साथ पहुंचा है तो कोई दोस्तों के संग, लेकिन हर किसी की मंजिल एक ही है, पवित्र अमरनाथ धाम। यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालु का उत्साह अपने चरम पर है और हर चेहरा बाबा बर्फानी के दर्शन की बेताबी बयां कर रहा है।
6: तीसरी बार जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से और पिछले 2 बार लगातार होके आए हैं हम। इस बार भी हम भोलेनाथ की कृपा से आज पहले जत्थे के साथ जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
7: सब व्यवस्था अच्छे से हो रहा है,
0: पहले जत्थे में दर्शन होगा, बाबा की कृपा से जय हो।
7: झांसी से आए हुए हम लोग, झांसी से तीसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं, बालटाल से करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।
8: बढ़िया व्यवस्था है, सब लोग आते हैं, हर साल आ रहे हैं। इस साल 11वीं साल है हमारी और तो बाकी लोगों की 21 साल है, 25 साल।
9: कितनी खुशी है पहले जत्थे में जाने?
8: बहुत खुश हूँ भाई, भोलेनाथ की कृपा है कि जब तक सांसे रहेंगी तब तक आते रहेंगे। बोल महादेव बाबा की।
10: बहुत खुश है, नसीब ही अच्छा है कि हम जा रहे हैं इस जगह।
5: तो उधर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इधर यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त तैनाती की गई है, जबकि यात्रा से पहले लगातार मॉक ड्रिल और सुरक्षा अभ्यास के जरिए हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी परखी जा रही है। सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ये पक्का किया जा रहा है कि श्रद्धालु पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। इस बार यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का घेरा पहले से कहीं अधिक मजबूत और हाईटेक नजर आ रहा है।

0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा से जुड़ी। दरअसल महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत अब हो चुकी है। अब इंतजार रथ यात्रा का है। सूरत में भी इसकी भव्य तैयारी है। मुंबई से रथ मंगाया गया है और वृंदावन से 3 लाख का डिजाइनर पोशाक आया है, जिसे रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाया जाएगा। इसे वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है।
1: धाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है। इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
2: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है, वो है हमारे नया रथ जो बॉम्बे से बन के तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है, इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
1: रथ ही नहीं, इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे, वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
2: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं, और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क पर जरी का काम किया गया है।
1: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में कल शाम हुई बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी, जिससे दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि ये प्री मानसून बारिश है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में अभी भी मानसून का बेसब्री से इंतजार है।
1: रोजाना जब सूरज की तपश झेलनी पड़ रही हो, जून की चिलचिलाती गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही हो, और ऐसे में अचानक मौसम मेहरबान हो जाए और झमाझम बारिश तन मन को तरबतर कर दे, तो सुकून का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सोमवार शाम को राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में कुछ ऐसी ही तब्दीली हुई। अचानक हुई प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को दिन भर की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
3: राहत लेकर आई है जिस तरह की गर्मी का सामना 2 दिन से दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे थे। 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली NCR के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
1: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले ही संभावना जताई थी, जो कि सच साबित हुई। हालांकि दिल्ली में सूरज जिस तरह दिन भर तेवर दिखा रहा था, उससे बारिश की संभावना न के बराबर हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली NCR में राहत भरा मौसम रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
4: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकते हैं।
1: हालांकि राहत की ये बारिश प्री मानसून है। दिल्ली में मानसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। वैसे सामान्य तौर पर मानसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून करीब 1 हफ्ते देरी से पहुंच रहा है। जून के महीने में मानसूनी हवाएं काफी कमजोर रहीं। 8 से 15 जून के बीच मानसून पर ब्रेक लग गया था। उत्तर से आने वाले शुष्क हवाओं ने कमजोर मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस साल अलनीनो भी एक्टिव है, जो भारतीय मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में मानसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
4: तो मानसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्र को कवर कर सकता है।
1: तो मानसून आने में देर भले ही हो रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मानसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मानसून पूरे देश को करीब 1 हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ की खूबसूरत वादियों की झलक दिखाते हैं। यहाँ के बानी और सरथल इलाके में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ देवदार के जंगल और कुदरती नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इन खूबसूरत वादियों का रुख कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए इमरान हाशमी का आवारापन।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या हाथ में चंद्रमा का पर्वत आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल देता है? क्या हाथ में चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में कोई जानकारी मिलती है? हाथ में चंद्रमा का क्या है स्थान और क्या है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: जो बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथिनीकुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, दोनों राज्यों के बीच MOU साइन। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज भारत के 31वें सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जुटने लगी भक्तों की भारी भीड़, भोले के जयकारों की गूंज, तभी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत, भगवान के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम त्रिशूल का उद्घाटन, दिखाई जाएगी तीनों सेनाओं के पराक्रम की झांकी, नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बॉलीवुड से जुड़ी दो बड़ी खबरें फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। एक तरफ लंबे इंतजार के बाद इमरान हाशमी की चर्चित फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज हो गया, इसने एक बार फिर से फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर सलमान खान अपने नए आशियाने को लेकर सुर्खियों में है। खबर है कि सुपरस्टार का नया घर तैयार किया जा रहा है, उनके नए आशियाने से जुड़े अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। यानी एक तरफ बड़े पर्दे पर वापसी की हलचल है, तो दूसरी तरफ सलमान के नए घर की चर्चा ने फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी है।
3: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं।
2: तो बात करें इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 की, तो इसका टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर में इमरान हाशमी जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। इमरान के अपोजिट इसमें दिशा पाटनी है, जबकि शबाना आजमी विलेन के रोल में है। आवारापन 2 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीक्वल है, जिसमें इमरान हाशमी शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे। आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
3: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।
4: करीब 19 साल बाद शिवम पंडित लौट आया है, पहले से भी कहीं घातक और खतरनाक, लंबे बाल, आंखों में गुस्सा और पुराना दर्द, जो 2007 की याद दिलाता है जब इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन रिलीज हुई थी। अब इसके सीक्वल आवारापन 2 के साथ इमरान दमदार कमबैक करने के लिए तैयार है। आवारापन 2 के टीजर से साफ है कि इस बार कहानी में केवल दर्द नहीं बल्कि सस्पेंस और एक्शन का डबल डोज मिलने वाला है। टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवारापन की तरह ही आवारापन 2 में भी इमरान किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार नजर आएंगे।
3: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं।
4: जिसकी झलक टीजर में इमरान की गन फाइट और क्लोज कॉम्बैट के रूप में दिखाई दे रही है। आवारापन 2 का टीजर नॉस्टैल्जिया, दमदार म्यूजिक, रहस्यमयी कहानी और डायलॉग बाजी से इस तरह सजाया गया है कि शिवम पंडित को पर्दे पर देखने की दर्शकों की तमन्ना जाग गई है। YouTube और Twitter पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई इमरान के लुक की तारीफ कर रहा है, तो कोई बैकग्राउंड में बज रहे तो फिर आओ गाने के नॉस्टैल्जिया में डूबा हुआ है। फैंस का कहना है कि इमरान हाशमी को इस अवतार में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। एक यूजर ने लिखा, पूरे 19 साल बाद शिवम पंडित लौट आया है वहीं पर जहां से सब शुरू हुआ था। दूसरे ने लिखा, वाह, लंबे इंतजार के बाद क्या धमाकेदार कमबैक किया है, गजब का साउंड ट्रैक। किसी तीसरे ने लिखा, बता नहीं सकता क्या फील हो रहा है इस वक्त पर। वापस बचपन में चला गया हूँ, बस आंखों में आंसू है और चेहरे पर मुस्कान।
3: दर्द से पुराना रिश्ता है।
4: आवारापन 2 का सबसे बड़ा सरप्राइज कही जा सकती है मंझी हुई एक्ट्रेस शबाना आजमी। टीजर में शबाना बेहद खतरनाक विलेन के रोल में दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी एक ही झलक दिखाई गई है, लेकिन प्रभाव छोड़ने के लिए काफी है। आवारापन में आलिया शिवम की प्रेमिका थी, जिसका किरदार श्रिया सरन ने निभाया था। फिल्म में उसकी मौत हो जाती है। इस बार हीरोइन का रोल दिशा पाटनी ने प्ले किया है। टीजर में दिशा की बस कैलो बजाती हुई एक झलक ही दिखी है। 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म का बजट 18 करोड़ था, लेकिन इसने करीब 12 करोड़ ही बॉक्स ऑफिस पर हासिल किए थे। आवारापन बेशक अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके सुपरहिट गाने और दिल छू लेने वाली कहानी बाद में दर्शकों के दिल में घर कर गई। समय के साथ आवारापन हिंदी सिनेमा के क्लासिक कल्ट में शामिल हो गई और अब इसका क्रेज आवारापन 2 को लेकर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो फिर
2: फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच मैदान के साथ साथ भारत में भी दिख रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में मुख्यमंत्री फुटबॉल फैन पार्क का उद्घाटन किया गया। यहां बड़ी एलईडी स्क्रीन पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। खेल प्रेमियों के लिए ये फैन पार्क फुटबॉल के जश्न का नया ठिकाना बन गया है। चलिए अब जीत के जश्न की शानदार तस्वीर आपको दिखाते हैं। पराग्विक ने सोमवार को जर्मनी के साथ मैच 1-1 से ड्रॉ होने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल की और जर्मनी को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। जूलियो एनसीसो ने 42वें मिनट में पराग्वे को बढ़त दिलाई, लेकिन 54वें मिनट में हज ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम और फिर पेनल्टी शूटआउट में चला गया। जाहिर है कि ये जीत पराग्वे की वर्ल्ड कप की एक अहम जीतों में से एक है, जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। फैंस ने असुनसियोन शहर में इस जीत का शानदार जश्न भी मनाया। जीत के बाद पराग्वे के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अगले दिन छुट्टी की घोषणा भी की है। और जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके। 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था, लेकिन वक्त के साथ ये खेल खत्म हो चुका था। अब इसकी वापसी के साथ घाटी में एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
5: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
6: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में, जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया, ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है, उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
5: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
7: जहाँ पे ये खेल यहाँ पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी, ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में दे, तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
5: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
8: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को। इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे। इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
5: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि सरकार की इस नई पॉलिसी से न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी।

0: 1 जुलाई से दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू होने जा रही है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को इसे मंजूरी दे दी। सरकार के मुताबिक इससे दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
1: N1 ट्रक्स जो है, ग्रामीण सेवा, इन सबको इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी।
0: दिल्ली सरकार ने जिस नई ईवी पॉलिसी का ऐलान किया है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी BS4 कार को स्क्रैप कराता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 1,00,000 रुपए तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं नई पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा ईवी खरीदने वालों को मिलेगा। इन गाड़ियों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगा। यानी अगर कोई शख्स नई कार खरीदता है तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे कार खरीदना पहले की तुलना में ज्यादा किफायती हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात ये कि अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में केवल ई ऑटो का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी इस तारीख के बाद नए CNG या पेट्रोल ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके अलावा 2-व्हीलर्स को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले 2-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की योजना है। हालांकि पहले से खरीदे गए 2-व्हीलर्स अपने नियमों के मुताबिक चलते रहेंगे। नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कारों के लिए टैक्स छूट के अलावा अलग अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए सरकार ने परचेज इंसेंटिव यानी सब्सिडी की भी घोषणा की है। इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर खरीदारों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर खरीदारों को पहले साल 50,000, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक ट्रक्स, लाइट कमर्शियल मालवाहक वाहनों के खरीदारों को 1,00,000 तक का खरीद इंसेंटिव मिलेगा। नई ईवी पॉलिसी को फिलहाल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के पास भेजा गया है। इसे 1 जुलाई से लागू करने की योजना है। ये पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक के लिए बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और यूरोप इन दिनों तेज गर्मी का सामना कर रहा है। कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई कूलिंग सेंटर का सहारा ले रहा है तो कोई फवारों, स्विमिंग पूल और ठंडी जगहों पर राहत तलाश रहा है। लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फवारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं
3: पड़ी।
0: ये पोलैंड है जहाँ के सोपोट शहर में सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ सूरज की तपश दोपहर जैसी महसूस हो रही है। बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और इसके साथ लाइफ गार्ड जोआना की 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जोआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसे यहां गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
3: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब बात उस जेल की कर लेते हैं जहां सजा के साथ अब सुधार की भी नई शुरुआत हो रही है। पंजाब के फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल में उजाला रेडियो की शुरुआत हुई है। इस रेडियो का मकसद साफ है, कैदी अपनी सोच बदले, मन की बात कहें और नई राह चुने। तो देखिए कैसे एक रेडियो ने जेल की सलाखों के पीछे उम्मीद की नई किरण जगाई है।
4: सलाखों के पीछे अक्सर सन्नाटा बोलता है, लेकिन पंजाब के फरीदकोट केंद्रीय मॉडर्न जेल में अब उम्मीद की आवाज सुनाई दे रही है। पहली नजर में ये जगह आपको एफएम रेडियो स्टेशन जैसी लग सकती है, लेकिन ये फरीदकोट मॉडर्न सेंट्रल जेल का रेडियो उजाला है। इस रेडियो उजाला को कैदी सुनेंगे भी और अपनी सुना भी सकेंगे। इस रेडियो स्टेशन से सिर्फ गाने ही नहीं बजेंगे, बल्कि हौसला, कानूनी जानकारी, स्वास्थ्य सलाह, प्रेरक कहानियां और कैदियों की अपनी आवाज गूंजेगी, ताकि सलाखों के पीछे भी उम्मीद जिंदा रहे।
5: करीब 5 लाख रुपए का बजट हमें इसके लिए दिया गया, जिससे हमने हर बैरिक में स्पीकर्स इंस्टॉल करवाए गए, जेल में सारी जेल के अंदर वायरिंग की गई, प्रॉपर एक रूम तैयार किया गया रेडियो जॉकी के लिए, और इसमें जो हमारे प्रिजनर्स हैं वही आरजे का रेडियो जॉकी का काम करेंगे। तो इससे प्रिजनर्स का मनोरंजन होगा, वो अपनी फरमाइश के अनुसार कोई सॉन्ग सुनना चाहें सॉन्ग सुन सकते हैं। सुबह और शाम के समय पे हम उनको गुरबानी का प्रसारण करेंगे।
4: करीब 5 लाख रुपए की लागत से बने इस रेडियो स्टूडियो की धमक हर बैरक तक पहुंचेगी। रेडियो से गूंजने वाली आवाज से हर कैदी आपस में जुड़ेगा, कुछ नया सीखेगा और जेल से बाहर जाकर एक बेहतर इंसान बन सकेगा। इस जेल में केवल रेडियो उजाला की आवाज नहीं, बल्कि किताबें भी कैदियों की जिंदगी के पन्ने पलटेंगी। यहाँ बनी नई लाइब्रेरी में 1500 से ज्यादा किताबें लाई गई हैं, ताकि सजा के साथ साथ कैदियों की सोच भी बदल सके।
5: हमारी जेल में एक करीब 1000 के करीब हमें बुक्स पंजाबी साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली से डोनेशन करवाई। इसके अलावा और भी हमें सपोर्ट की, और वो विशेष तौर पे यहाँ पे पधारे, उन्होंने आके यहाँ पे खुद अपने हाथों से जिस दिन मिनिस्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था हमारे रेडियो उजाला का, उसी दिन श्री कुलतार सिंह संधवा जी माननीय स्पीकर पंजाब विधानसभा विशेष तौर पे आए और उन्हें लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।
4: जाहिर है कभी जेल की पहचान सिर्फ सजा से होती थी, लेकिन फरीदकोट मॉडर्न जेल अब सुधार और नई शुरुआत की मिसाल बन रही है। यहाँ रेडियो उजाला जहाँ कैदियों की आवाज को पहचान दे रहा है, तो वहीं लाइब्रेरी उनकी सोच को नई दिशा दे रही है। प्रेम कुमार, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इंस्टा स्टोरी में वो आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए अली असगर की फनी इंस्टा स्टोरी।
6: हेलो, कैसे हो आप?
7: मैं ठीक हूँ।
8: अजी सुनती हो, ये क्या बनाया तुमने?
6: इतना अच्छा बनाया, और लाओ।
8: ये नहीं, मर के ऊपर जाऊंगा, पूछेंगे क्या खा के मरा था, पता तो होना चाहिए।
6: बोलना मरता बैंगन खाया था मैंने।
8: मरता क्या ना करता।
2: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
12: दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत। 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथिनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी।

300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आज भारत के 31वें सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि आपके हाथों की रेखाओं से चंद्रमा के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जून 2026, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपका हाथ देखकर, हाथों की रेखा देखकर चंद्रमा को कैसे जान सकते हैं। तो आपके हाथों में चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठा अंगुली के सबसे छोटी उंगली के थोड़ा नीचे का स्थान चंद्रमा का स्थान है। ये छोटी उंगली है, इससे थोड़ा नीचे आइए, ये जो हिस्सा है ये चंद्र का पर्वत है। चंद्रमा के स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा का स्थान आपके हथेलियों में, आपके हाथों में जितना साफ होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा के स्थान का रंग अगर गुलाबी हो तो इसका अर्थ ये है कि आपका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा के स्थान से विदेश यात्राएं, मानसिक स्थिति और रोगों की स्थिति देखी जाती है। आपके हाथ के चंद्रमा को देखकर हम ये जान सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, आपके जीवन में रिश्तों का और प्रेम का हाल क्या है, आप जीवन में कितनी यात्राएं करेंगे और जीवन में किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है। परिवार में व्यस्तता रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। किसी व्यक्ति का मन कैसा रहता है, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, वो उसकी हथेलियों के चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के स्थान पर बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करता है। व्यक्ति हमेशा चिंता में ग्रस्त रहता है। चंद्रमा के स्थान पर अगर हथेलियों में दाग धब्बे हैं तो व्यक्ति काल्पनिक और अकारण बिना वजह के चिंताएं करता है। व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं होती हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल आ जाए तो इसके दो मतलब हैं। पहला ये है कि व्यक्ति को गंभीर मानसिक रोग हो सकता है, या व्यक्ति को जल में डूबने का खतरा भी हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत का साफ सुथरा होना और गुलाबी होना अच्छा है। ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत है। इस स्थान पर, चंद्र के पर्वत पर अगर तिल हो, अगर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को नदी में जाने से और नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम बहुत रहेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए चंद्रमा के पर्वत से आपके करियर के बारे में और आपके विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आए, यानी यहां से निकल करके भाग्य रेखा ऊपर की तरफ आए, नीचे से झुकती हुई सीधे हो जाती है, चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा आए तो विवाह के बाद बड़ी उन्नति होती है, भाग्योदय विवाह के बाद होता है। और ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है, वो बहुत समझदार और बहुत सपोर्टिव यानी सहायक होता है। चंद्र पर्वत अगर मजबूत है तो अभिनय के क्षेत्र में, जल में जैसे नेवी के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में करियर बनाने पर बड़ी सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी अगर रेखाएं हों तो वो बताती हैं कि आप यात्राएं करेंगे और जीवन में लव रिलेशंस प्रेम संबंध रहेंगे। बहुत ज्यादा रेखाएं होंगी तब तो टेंशन की बात है, ये तनाव देंगी, लेकिन थोड़ी रेखाएं हों छोटी छोटी तो ये यात्राएं करवाएंगी और आपके जीवन में लव रिलेशंस डेवलप करेंगी। चंद्रमा के पर्वत से अगर सीधी रेखा निकले और भाग्य रेखा में जुड़ जाए या जीवन रेखा में जुड़ जाए तो ऐसे लोग लंबे समय तक विदेश में रहते हैं। और अगर शनि का पर्वत भी अच्छा है तो इनका सेटलमेंट विदेश में होता है, यानी चंद्रमा का पर्वत ये भी बताता है कि आपके विदेश में सेटल होने की क्या संभावना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी हथेलियों में चंद्रमा का पर्वत अच्छा ना हो, चंद्रमा पर खराब चिन्ह बने हुए हों जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो क्या उपाय करेंगे? सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिएगा। इसके बाद आप भगवान को नमस्कार करके तब दिन की शुरुआत करिएगा। अपनी सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा अंगुली में एक मून स्टोन या एक मोती धारण करिएगा। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए, खास तौर से नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल डालकर नहाइए, बहुत अच्छा होगा। घर में गमले में या जमीन में एक हर सिंगार का या रात रानी का पौधा लगाइएगा। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए गले में एक तुलसी की माला पहनने से भी आपको लाभ होगा। एक बात आप ये समझ लीजिए कुंडली के हिसाब से कि भगवान शिव और माता पार्वती यानी माता गौरी, अगर इनकी संयुक्त पूजा की जाए, अगर इनकी नियमित पूजा की जाए तो चंद्रमा से संबंधित बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में आपके समस्या हो सकती है, करियर में बाधा के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, दो तरह की जानकारियां आपको चंद्रमा से, आपके हाथ के चंद्रमा से आपके करियर के बारे में मिल सकती हैं। पहली जानकारी, अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिल्म में, मीडिया में, क्रिएटिव सेक्टर में या जल से संबंधित क्षेत्रों में, तो हाथ में चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ होगा और गुलाबीपन लिए हुए रहेगा। अगर आपकी नौकरी जाने वाली है, नौकरी छूटने वाली है या नौकरी में, करियर में कोई संकट आने वाला है, तो चंद्रमा के इस पर्वत पर बहुत सारी लकीरें बन जाएंगी एकदम से, और या इस पर तिल आ जाएगा या कोई स्पॉट आ जाएगा। वो ये बताता है कि नौकरी में इस समय बाधा आ सकती है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में, संगीत में या जहां बहुत सोचना होता है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जो बीच वाली रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुक जाती है। बहुत ज्यादा झुकेगी तब तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो आपको कल्पना की या चिंता की बीमारी हो जाएगी। लेकिन हल्का सा झुकती है अगर, तो ये बताता है कि आप क्रिएटिव फील्ड के आदमी हैं, आप बहुत अच्छा कला में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं या कला संगीत में क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा अक्सर क्रिएटर्स के हाथ में आपको दिखेगा कि जो बीच वाली मस्तिष्क रेखा है वो हल्का सा चंद्र की तरफ झुकी होती है, और अगर ये ज़्यादा झुकी है तो ये मानसिक पागलपन की निशानी हो सकती है। और अगर भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद आप उन्नति ज़्यादा करेंगे। चंद्रमा पर कोई चिन्ह ना हो, चंद्रमा का पर्वत साफ सुथरा हो, बहुत ज़्यादा लकीरें ना हो, तो ये बताता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मानसिक ताकत काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका मन उदास हो या बहुत ज़्यादा आपके मन में तनाव हो, तो उदास मन से या टेंशन वाले मन से खाना मत बनाइए। खराब मन से बनाया हुआ खाना आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा कर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि मन बैठे बैठे एकदम से अशांत हो जाता, अचानक से मन में कोई बात आ गई, मन एकदम अशांत हो गया। क्या करना चाहिए? जब भी मन अशांत हो, मन का बड़ा गहरा संबंध आपके सांसों से है, ब्रीदिंग से है, तो आप इत्मीनान से बैठकर गहरी गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस थोड़े एक मिनट दो मिनट लीजिएगा। इसके बाद एक गिलास शीतल जल पीजिएगा और मन ही मन में शिव शिव शिव शिव शिव नाम एक मिनट दो मिनट तक बोलिएगा, चिंताएं एकदम से छूमंतर हो जाएंगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.

0: और मेरे पागल, भक्त के तीन लक्षण है हमारी, हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के तीन लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना, सूत्र है। आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर तीन गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्मा भाई जैसा, कर्मा भाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्मा भाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती, क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी, बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी, शर्म नहीं आती, पाप पड़ेगा पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने जा कर्मा भाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगा जल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी, भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा, क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्मा बाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला, इधर जल्दी आने की जल्द थी जिद थी तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्मा भाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया करना। हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्मा भाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो तीन दिन तो हमने भी नहीं नहाया, महाराज जी को यह बात पता है। और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाता है। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, तीन दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। तीन दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को, छू लिया मतलब हमने नहा लिया। और स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत 3 दिन ठोके। राम भगवान बता भी दिया। वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है, अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और कोई और ये करते थे यहां? हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए। अच्छा जा रहे बाबा? इशारे, बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। और बोलते भी कब थे? कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा कर, कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम है भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। और भरोसा कैसा हो, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाएं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदम्ब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो, ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले ने ही उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन, बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेपिजुली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेपिजुली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे हूं। ना ना ना जाओ जाओ, और सुनो छू ना लेना, पाप पड़ेगा पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाएं नहीं उलझाई। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता, ध्यान से सुनना मेरे पागलो, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए। और बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी, बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए दारी के, छूना लेना। क्यों? बेपिजुली की बातें बतावे, हम जानते हैं। का जानते हो? तू अकेलो नहीं ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना, हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है बहाने बनाने। हम ना मानेंगे, हम कैसे माने कि तू ठाकुर है, हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया है? भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएगा, कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाए और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी। ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाई रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। बाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा किशोरी जू जल्दी चलो, नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते, अब वो कह रहे हो तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे हैं जब तक तो किशोरी जी ना आएंगी राधा जी, तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तुम हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठाकुरानी बोली गजब है। अब ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है, तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले ले बाबा इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा यही ठाकुर जी है। बाबा मस्ती में झूम गए, ठाकुर जी ने एक एक जटाएं लता से सुलझाई, और जब सुलझाई दोनों के चरणों में डूब गए। उनका नाम महात्मा कदम खंडी हुआ। मेरे पागलो, कलयुग में भी ठाकुर उलझे जीवन को सुलझाने आ सकता, बस भरोसा ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा इतना दृढ़ भरोसा होगा, तुम इतनी दृढ़ता के साथ हमारे ठाकुर जी पर भरोसा करोगे तो भगवान आएगा, भगवान सुलझाएगा। और भगवान तो उलझे हुए लोगों को ही सुलझाते हैं, भगवान का काम। और मेरे पागलों, हम लोग तो उलझे ही हैं, वो तो सुलझाने का काम। तो भक्त के तीन लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा, और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो? बच्चों की तरह, बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। नामदेव जी के घर पर भगवान स्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते। नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कर बना करके, रोटियां बना करके रखते, और बाहर जाते,
1: जल लेने के लिए जलाशय जाते, तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विट्ठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले। घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा। सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी। दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई। जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए। कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट, ऐसा भोलापन। स्वान में भी भगवान देख, ऐसा भोलापन। भक्त के तीन लक्षण, भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो गए तो मेरे पागल, तुम भगवान के भगत हो गए।
2: एक बात बोले, वृंदावन की महिमा ही अलग है। वृंदावन में तीन रानी हैं। कितनी रानी, कौन कौन? रज रानी, यमुना पट रानी और हमारी राधा रानी। तीन रानी, तीनों का महत्व है। जैसे ही ब्रज जाओ तो रज को माथे में लगाओ, फिर यमुना जी में डुबकी लगाओ और फिर राधे राधे गाओ। ब्रज को माथे में लगाओगे तो क्या होगा, तन शुद्ध हो जाएगा। और रज की तो महिमा है ही है।

रज की महिमा क्यों है? क्योंकि उसी रज में वो ब्रह्म खेले हैं, डोले हैं। जिस रज के ऊपर हमारे कन्हैया डोले हैं, उस रज का एक कण शरीर पे लग जाए तो जय जय हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो रज से, रज लगाने से तन शुद्ध। पर यमुना जी कौन है? यमुना जी में स्नान करने से क्या फायदा? बोले दो फायदा। एक, यमुना एक तो पटरानी है, और किसी भी तीर्थ में जाओ तो स्नान की महिमा है। तो ब्रज एक धाम है, भगवान का घर है, तो यमुना जी में स्नान की महिमा। और दूसरी बात, यमुना जी यम की बहन है। किसकी बहन है? यमराज की बहन है। तो यदि काले काले कोट वाले जो यमराज जो भैंसा पे बैठता है उससे बचना है तो यमुना मैया की शरण लेनी चाहिए। हाँ, यमुना जी उससे बचाती हैं। बोलो सीताराम। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से पूछो। एक बार यमुना जी अपने भाई यम से यम द्वितीया पर टीका लगाने गई। यमराज जी तो ऑफिस में थे नहीं, ड्यूटी में थे, कहां नरक में। कर क्या रहे थे? सुटाई पिटाई कर रहे थे। किसकी? पापियों की। खूब सुटाई पिटाई चल रही थी, किसी को उल्टा लटकाए थे, कोई कड़ाई में खोल रहा था, कोई कांटों में भाग रहा था, दबा के सुटाई पिटाई चल रही थी। जैसे ही यमुना जी ने देखा सो डर गई। हे भगवान, भैया ये क्या है? यमराज बोले तुम इधर क्या कर रही बहन? यमुना जी बोले हम तो टीका लगाने आए, पर तुम काम क्या करते हो? यमराज बोला यही तो करते हैं जो हो रहा। अरे भैया ये तो बड़ा लफड़ा है, तुम तो लोगों को मारते पीटते हो, यातनाएं देते हो, आज के बाद ये काम बंद करो वरना हम आना बंद कर दें। यमराज बोला बहन आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, भगवान का आदेश है, और ये इसलिए नहीं हम इनको मारते पीटते कि ये खराब है, इसलिए मारते पीटते कि ये बड़े उपद्रवी हैं, पाप करते हैं, तो समझाना भी तो पड़ता है भाई, भगवान के लिए तो सब समान है। बाल्यकाल में जब स्कूल में बच्चा पढ़ता नहीं है तो माताजी पिताजी क्या कहते? मार साहब अच्छे लगो, दबा के मारो, सुटाई करो। और कई, अब आज के जमाने में तो मारना पीटना बंद हो गया, हमारे जमाने में ऐसी सुटाई पिटाई होती थी कि 3 दिन तक सिकाई चलती थी। आओ आओ आओ, आजकल तो छूलो तो आफत हो जाती। आप लोग तो बैठे बूढ़े बूढ़े, आपके जमाने में भी सुटाई पिटाई, और यदि स्कूल ना जाओ तो मार साहब 6 लड़का लेके घर ही आ जाते थे और टांग ले जाते थे, और टांगते थे सो तो ठीक है, रगड़ के बाप के ही सामने दे पटा। अब पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, क्यों? अब आज के जमाने में तो छू दो तो जेल हो जाती, उस जमाने में पिताजी के ही सामने बेलन बना दी जाती थी, अब पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, क्यों? अरे अपने ही तो लड़का है, मार घलेगी, पढ़ेगा तभी तो सुधरेगा। पिताजी भी कहते हाँ लगो लगो, दिन भर सोता रहता लगो थपाड़ा, एक हमारी तरफ से मार साहब मारो। हाँ पिटाई होती थी, तो भाई पिटाई किस लिए होती थी? मारपीट के लिए, सुधार के लिए। वैसे ही यमराज ने कहा बहन इन्हें सुधार के लिए पिटाई की जा रही, जो ये पाप कर रहे हैं, ताकि अगला इन्हें जन्म मिले तो पाप ना करें। बोलो सीताराम। यमुना जी बोली भैया बड़ी खतरनाक सुटाई पिटाई है, हम तो डर गए। बोले भैया और दिन मार पीट करो सो करो, कम से कम एक दिन तो छोड़ दो, आज का दिन तो छोड़ दो, आज तो सुटाई पिटाई मत करो। हमको यही टीका के बदले में, बहन को कुछ दिया जाता ना तिलक करने के बदले में, तो कुछ दो। यमराज बोला बहन ऐसी बात है तो हम वचन दे रहे, आज यम द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन तुम्हारी शरण में आकर यमुना जी में डुबकी लगाएगा उसे कभी भी हमारी सुटाई पिटाई नहीं लगेगी।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
9: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द कमर दर्द कंधे का दर्द तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है
10: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ फौजी 360 इसका नाम है फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है अब घुटने में भी दर्द नहीं है कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता
11: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है अब मैं जिम करती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ
9: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
8: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
9: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
9: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
14: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
9: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
15: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
15: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूँ हॉस्पिटल में।
9: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
9: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
9: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
18: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
19: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
20: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
9: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
21: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
9: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है, और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
22: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी

0: किट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
6: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप

0: अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियस की दुनिया में टूटेगा दुखों का पहाड़। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में

0: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: हैदराबाद पर छाया फीफा का खुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर, कटआउट और विशाल पोस्टरों से पटी शहर की गलियां और दीवारें। कोटा में बच्चों की संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्र छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य है। काशी में भक्ति के रंग में रंगे नजर आए अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल, बेटियां और बेटे भी रहे साथ। दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथनीकुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जुटने लगी भक्तों की भीड़, भोले के जयकारों की गूंज, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: देवी अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, बम बम भोले के जयकारों की गूंज। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में बनाए गए स्वागत द्वार, यात्रा शुरू होने से पहले देश विदेश से श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में शिव भक्तों को दिव्य स्वागत, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। तवी नदी के तट पर महाआरती के दौरान काशी और हरिद्वार की गंगा आरती जैसा भव्य नजारा नजर आया, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जम्मू की पहचान बनाने की तैयारी। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार हुई महाआरती में बड़ी तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु, ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का भी किया गया आयोजन। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे जम्मू। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लगी लंबी कतारें, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्थाओं को जवानों ने परखा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर इलाके में चलाया गया सर्च अभियान, सभी जगहों पर मुस्तैद दिखे जवान। अमरनाथ यात्रा होगी आसान, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी टनल तैयार। रामबन के डिगडोल पंती हाल के बीच 3.5 किलोमीटर लंबी टनल के साथ साथ रामसू मगरकोट फ्लाईओवर का भी काम पूरा। नई परियोजनाओं के शुरू होने से रामबन और बनिहाल के बीच यात्रा अधिक होगी सुरक्षित, सफर का समय और दूरी भी होगा कम। श्रद्धालु के सुरक्षित और आसान सफर के लिए पहलगाम और बालटाल रूट पर ट्रैक को किया गया चौड़ा, खूनी नाला और पंथियाल जैसे सबसे जोखिम भरे इलाकों में अब यात्रियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त, सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था। सूरत में भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुभारंभ, रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाने के लिए वृंदावन से मंगवाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की विशेष पोशाक, प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए विशेष तैयारी। रथ यात्रा के लिए पहली बार मुंबई से आया विशेष रथ। 16 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। सूरत में 17 किलोमीटर रूट पर निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में जुटते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। सावन में होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी। सीसीटीवी कैमरे ड्रोन से होगी मेले की निगरानी। सावन में बाबा विश्वनाथ मंदिर की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और ETS की होगी यहां पर तैनाती। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव। सरयू तट पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। सरयू तट पर 5151 दीपों

0: मां सरयू का दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना सजाई गई भव्य झांकी। सरयू जयंती महोत्सव में सरयू तट पर दिव्य नजारा, देश विदेश के सुगंधित पुष्पों से की गई मनोहारी सजावट। मां सरयू का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ दुग्धाभिषेक, बड़ी संख्या में साधु संत श्रद्धालु इसमें शामिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: खबरें तो आ रहा है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: हैदराबाद पर छाया फीफा का खुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर, कटआउट और विशाल पोस्टरों से पटी शहर की गलियां और दीवारें। कोटा में बच्चों के संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्र छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य। काशी में भक्ति के रंग में रंगी नजर आई सांसद डिंपल यादव, बेटियां और बेटा भी साथ रहा मौजूद, देश और परिवार की शांति के लिए मांगी दुआ। दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। बत्तीस साल बाद राजस्थान को हथिनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, दोनों राज्यों के बीच MOU साइन। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जुटने लगी भक्तों की भीड़, भोले के जयकारों की गूंज, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में बात आस्था के उस उत्सव की करेंगे जिसे आज जगन्नाथ पुरी समेत कई शहरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, पुरी में भगवान जगन्नाथ का स्नान पर्व मनाया जा रहा है। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जब जगत के साथ दिव्य स्नान कहते हैं इसे। रथ यात्रा की तरह ही पुरी में भगवान की भव्य स्नान यात्रा का आयोजन होता है। देखिए, मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और अगले 14 दिनों तक वो किसी को दर्शन नहीं देते हैं। 14 दिनों के उपचार के बाद ठीक होने पर सज धज कर पूरे ठाट से रथ यात्रा कर वो मौसी के घर जाते हैं और आखिर जगत के पालनहार स्वयं बीमार कैसे पड़ जाते हैं, फिर 14 दिन तक भगवान का उपचार कौन करता है और इस दौरान भगवान कहाँ रहते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में।
1: हर साल अहमदाबाद में इसी तरह स्नान पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया जाता है। जल यात्रा और भगवान के शुभ स्नान से पहले सारा शहर इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनता है। उधर गुजरात से मीलों दूर भोलेनाथ की काशी में भी जगन्नाथ की भक्ति का रंग नजर आया। स्नान पूर्णिमा पर काशी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का भक्तों ने जलाभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ और भगवान जगन्नाथ दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। काशी के विश्वेश्वर खंड में विराजमान पुराधिपति विश्वनाथ का प्रतिदिन जलाभिषेक होता है, लेकिन काशी के ही केदार खंड में आसन जमाए भगवान जगन्नाथ का अभिषेक वर्ष में एक ही बार यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा को होता है। आज भी भक्तों ने मिट्टी के घड़ों में गंगा जल भरकर भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद भगवान नयनाभिराम श्रृंगार हुआ, फिर सभी भक्त भगवान जगन्नाथ की आरती में शामिल हुए।
2: भक्तों को यह सुविधा नहीं कि वो आकर के प्रतिदिन भगवान को स्नान करा सके। आज के दिन विशेष रूप से यह पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भक्त आते हैं, स्नान कराते हैं और सब भक्तों से के पूजन स्वरूप भगवान स्नान स्वीकार करते हैं।
3: ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान स्नान करते हैं, गर्मी से इतना तप जाते हैं कि आज स्नान करते हैं और भक्तों के स्नान से इतना ज़्यादा वो ठंडा जाते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिन उनको काढ़े का भोग लगता है और वो विश्राम करते हैं, फिर 15 दिन बाद यात्रा पर निकलते हैं नगर देखने के लिए अपना।
1: देव स्नान पूर्णिमा का उत्साह एमपी के नर्मदापुरम में भी दिखा। नर्मदापुरम में 21 पवित्र विधियों से भगवान का महास्नान संपन्न करवाया गया। खास बात यह है कि नर्मदापुरम में भी भगवान के दिव्य स्नान के बाद उनके बीमार होने और फिर उनके उपचार की सारी परंपराएं पूरी की तरह ही बेहद श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। 15 दिनों तक यहां भगवान जगन्नाथ विश्राम करते हैं, इस दौरान उनके मुकुट की पूजा होती है। इन दिनों भगवान के उपचार में चढ़े काढ़े का भोग प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांटा जाता है। 15 दिनों के बाद ठीक होने पर भगवान शहर भ्रमण पर निकलते हैं। हर साल देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का उत्सव होता है। इसके साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर कोलकाता, काशी, दिल्ली, अहमदाबाद और नर्मदापुरम समेत देश के कई शहरों में रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ भी हो जाता है। फिलहाल शहर शहर जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं और अब भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी 16 जुलाई का बेसब्री के साथ इंतजार है, जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों को उनके आराध्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलेगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, वाराणसी से रोशन जायसवाल और नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: ये कुआं जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में ही देवी शीतला और उनके वाहन सिंह की मूर्ति की ठीक बीच में बना है। ये 4 से 5 फीट चौड़ाई वाला वर्गाकार कुआं है। बताया जाता है कि इस कुएं में नीचे की तरफ दीवारों पर पांडे राजा इंद्रद्युम्न ने सोने की ईंटें लगवाई थी। जब भी कुआं खोलते हैं, इसमें स्वर्ण ईंटें नजर आ जाती है। ढक्कन में एक छेद है जिससे श्रद्धालु सोने की वस्तुएं इसमें डाल देते हैं। कुएं का ऊपरी भाग और ढक्कन सीमेंट और लोहे से बना है। इसका ढक्कन करीब 1.5 से 2 टन बजती है, जिसे 12 से 15 सेवक मिलकर हटाते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस कुएं में कई तीर्थों का जल है। स्नान यात्रा के लिए भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। मंदिर प्रांगण में मंच तैयार होता है, जिसे स्नान मंडप कहते हैं। इसी मंडप में भगवान को विराजित किया जाता है। स्नान के लिए सोने के 108 घड़ों में पानी भरा जाता है। इसमें कस्तूरी, केसर, चंदन और कई तरह की औषधियाँ मिलाई जाती है। स्नान मंडप में 3 बड़ी चौकियों पर भगवान अपने भाई और बहन के साथ विराजते हैं। भगवान पर कई तरह के सूती कपड़े लपेटते हैं, ताकि उनकी काष्ठ काया पानी से बची रहे। फिर भगवान जगन्नाथ को 35, बलभद्र जी को 33 और सुभद्रा जी को 22 घड़ों से नहलाया जाता है। बचे हुए 18 घड़े सुदर्शन चक्र पर चढ़ाए जाते हैं। स्नान के बाद भगवान गज वेश में दर्शन देते हैं।
5: कुप था, वो कुप 1 साल तक खुला नहीं हुआ। आज सुबह सुबह वो कुप खोल सकता है। इसी को इसका सेवक जो गोराबड़ू सेवक है, वो जो जिसी को गोराबड़ू सेवक कहलाता है, वो गोराबड़ू सेवक वो कुप का जल लेकर 108 गोरा का जल लेकर इसको अभिमंत्रण करती है। पुरुष सूक्त में और स्त्री सूक्त में और देव सूक्त में, पुरुष सूक्त में जो अभिमंत्रित हुआ था वो महाप्रभु जगन्नाथ जीव के लिए, जो श्री सूक्त में हुआ था वो बलभद्र जी का जी के लिए, जो देव सूक्त में हुआ था वो सुभद्रा मैया के लिए और सुदर्शन महाराज के लिए। वो 3 सूक्त में गोराबड़ू सेवक सेवक सेवक का मंत्र से वो अभिमंत्रित होकर स्नान करता था।
4: यूं तो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान को रोज स्नान कराया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसमें भगवान की मूर्ति के सामने बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं। फिर उन शीशों में जो भगवान की तस्वीर दिखती है, उस पर धीरे धीरे पानी डालते हैं। इस तरह स्नान करवाने की 2 वजह है। पहली, भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है और उस पर पवित्र रंगों से आकृति उकेरी गई है। इस पर रोज पानी लगेगा तो प्रतिमा बिगड़ सकती है। तो वही दूसरी वजह के पीछे मान्यता है कि भगवान बहुत कोमल है और उन्हें हर दिन नहलाने से वो बीमार पड़ सकते हैं, और स्नान पूर्णिमा वाले दिन ठीक यही होता है। परंपरा के मुताबिक देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और 15 दिन तक वो किसी को दर्शन नहीं देते। यानी आज स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 14 जुलाई तक किसी को श्री मंदिर में दर्शन नहीं देंगे। बीमार होने पर भगवान को मुख्य सिंहासन पर ना बैठाकर मंदिर में ही बांस की लकड़ी से बने कक्ष में विराजित किया जाएगा, जिसे अनासार घर कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होती। इन 14 दिनों में दैतापति सेवक तीनों देवी देवताओं की सेवा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल की जाती है। 14 दिनों तक 56 भोग की जगह औषधियों से युक्त सामग्री, दूध और शहद जैसी चीजों का भोग लगता है। इसे भगवान का अनवसर काल कहा जाता है। इस काल को भगवान का विश्राम काल भी माना जाता है, जब वो सांसारिक गतिविधियों से विराम लेकर आत्मिक ऊर्जा संचय करते हैं। जब 14 दिन तक तीनों देवी देवता अपने भक्तों को श्री मंदिर में दर्शन नहीं देते, उस दौरान उन्हें पुरी के श्री मंदिर से लगभग
1: 30 किलोमीटर दूर अलारनाथ मंदिर में पूजा जाता है। भगवान विष्णु का ये प्रसिद्ध मंदिर पुरी जिले के ब्रह्मगिरी में मौजूद है, जिसे अलारनाथ मंदिर कहा जाता है।
6: जगन्नाथ जी जो बुखार होते हैं, बुखार होने के बाद जैसे क्वारंटाइन हमको अभी चल रहा है, मतलब क्वारंटाइन चल रहा है, जो कोविड चल रहा है, जो बोलता है किसी किसी को स्पर्श नहीं करेगा, सब अपने अपना घर में रहेगा, किसी किसी का पास नहीं जाएगा, क्योंकि बुखार ढेर उसके पास चला जाता है। तो इसीलिए भगवान जी का ये क्वारंटाइन पहले से चल रहा है, हजार हजार साल से चल रहा है। तो जगन्नाथ जी यहाँ पर 15 दिन में गुप्त रूप में रहते हैं।
7: वो
6: जब तक जगन्नाथ जी पुरी का मंदिर अभी है, उसी दिन से ही भगवान जी यहाँ पर आते थे। वो स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जो 108 कलश में भगवान जी स्नान करते हैं, वो स्नान करने बाद भगवान को देर से बुखार लग जाता है, तभी वो उनका दरवाजा बंद हो जाता है, तो जगन्नाथ जी यहाँ चले आते हैं।
1: हरियाली और नारियल के पेड़ों से घिरे इस शांत स्थान पर भगवान अलारनाथ की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है और ये 5 एकड़ में फैला हुआ है। मान्यता है भक्तों को जगन्नाथ मंदिर में साल के बाकी 350 दिन दर्शन करने पर जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य इस मंदिर में केवल 15 दिन के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है।
6: आप देखेंगे जगन्नाथ भगवान जी को 350 दिन आप दर्शन करेंगे, भगवान जी को सेवा करेंगे, जो पुण्य आपको मिलेगा ये एक बार अलारनाथ जी के अनवसर समय में आप एक दिन दर्शन करेंगे, वो वर्ष का समान पुण्य प्राप्ति होता है। उसका उदाहरण है, उसका प्रमाण है,
7: वही 15 दिन के अंदर
6: जी उसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 5 साल पे 1510 ख्रीष्टाब्द में आए थे, उनको जगन्नाथ जी स्वयं उनको दर्शन पुरी में नहीं देते, उनको बुखार हुआ था, तो वो जान देने के चले गए समुद्र में। जगन्नाथ जी उनको बुला लिए थे, मैं अलारनाथ के रूप में हूँ, तो महाप्रभु पूछे थे मेरे को यहाँ आने का फल क्या है, महिमा क्या है। स्वयं जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को बताए थे ये लीला के बारे में कि मुझको 350 दिन रत्न सिंहासन में दर्शन करोगे जितना फल मिलेगा, एक बार अनुभव के समय एक बार मेरे को ये शिला ब्रह्म के रूप में दर्शन करोगे, वर्षा का समान पुण्य मिलेगा।
1: बता दें कि अगले 14 दिन तक भगवान जब भक्तों को अलारनाथ मंदिर में दर्शन देंगे और उस दौरान श्री मंदिर में उनका विधिवत उपचार चलेगा। भगवान के उपचार की प्रक्रियाओं को अनवसर अनुष्ठान कहा जाता है। अनवसर अनुष्ठान के तहत सबसे पहले 5 जुलाई को अनवसर पंचमी का दिन अहम होगा। इस दिन भगवान के अंगों पर विशेष आयुर्वेदिक तेल की मालिश होगी, उसे फुलूरी तेल कहते हैं। माना जाता है कि ये तेल लगाने के बाद भगवान को धीरे धीरे बुखार से राहत मिलने लगती है। फिर 10 जुलाई को अनवसर दशमी रहेगी, इस दिन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 11 जुलाई को भगवान के शरीर पर विशेष औषधियां लगेंगी, उसको खली लागी कहते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को भगवान का नेत्रोत्सव होगा और भगवान का नव यौवन श्रृंगार किया जाएगा। इस दिन भगवान नए रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि इसी दिन रथ यात्रा के लिए भगवान से आज्ञा ली जाती है। इसके बाद 16 जुलाई की सुबह भगवान जगन्नाथ बेहद धूमधाम से लाखों भक्तों के बीच भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ दिव्य रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद ही पुरी धाम में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। पुरी से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार रथ यात्रा का है। सूरत में भी इसकी भव्य तैयारी है। मुंबई से रथ मंगवाया गया है और वृंदावन से 3 लाख का डिजाइनर पोशाक आया है, जिसे रथ यात्रा के दिन भगवान को खास तौर पर पहनाया जाएगा। इसे वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद खास तौर पर भगवान के लिए तैयार किया है।
8: धाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है, इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
9: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ जो बॉम्बे से बनके तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
8: रथ ही नहीं इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
9: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
8: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में टूटेगा दुखों का पहाड़। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
4: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
5: क्यों जानी ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको भावुक कर देंगे, कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे भी।
6: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस चुटकू को देखिए जरा। फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की, बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है। शायद बहुत कम सास हैं जो ये कहती पाई जाती हैं कि मेरी बहू सी कोई नहीं, या बहू हो तो मेरी जैसी। लेकिन इन तस्वीरों को देख सास और बहू दोनों की सोच बदल सकती है। इस बहू की सास की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले उनकी ब्रज परिक्रमा हो जाए। बहू ने न सिर्फ सास की इच्छा को सिर माथे पर लगाया, बल्कि सास को ही माथे पर उठाकर निकल गई ब्रज परिक्रमा करने और अपनी सासू माँ की इच्छा पूरी कर दी। अब यूजर्स इस बहू की तारीफ खूब कर रहे हैं और बुजुर्ग इसे खूब दुआएं दे रहे हैं। चीन की पारंपरिक बोट रेस को यूं ही ड्रैगन बोट रेस नहीं कहा जाता। इस रेस में हर कोई भाग नहीं ले सकता, लेकिन इसके लिए दमखम, सूझबूझ, संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी होता है। इन तस्वीरों को देख ये बात आप समझ जाएंगे। देखिए इस ड्रैगन बोट रेस के दौरान ये प्रतिभागी रफ्तार से आते हुए जब मुड़ते हैं तो कैसे एक बैरियर पर लटक कर बोट को मोड़ते हैं। इन तस्वीरों को देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। चीन में पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस के दौरान प्रतिभागी किस तरह तेजी से मुड़ते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में ये दो बच्चे साइकिल पर उल्टा होकर ऐसा गजब का बैलेंस दिखा रहे हैं जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी हैरान रह जाएं। ये करतब केवल ताकत का नहीं बल्कि लंबे अभ्यास, आत्मविश्वास और बेहतरीन संतुलन का नतीजा है। और अब इन दोनों की ये करामात देख यूजर्स भी हैरान है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: Artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
3: Aur durbhagya kehta hai
4: ki bhagya kahin dur nahi.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: हैदराबाद पर छाया फीफा का खुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर, कटआउट और विशाल पोस्टरों से पटी शहर की गलियां और दीवारें। कोटा में बच्चों की संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्र छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य। काशी में भक्ति के रंग में रंगी नजर आई सांसद डिंपल यादव, बेटियां और बेटा भी रहे साथ, देश और परिवार की शांति के लिए मांगी दुआ। दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। 32 साल बाद राजस्थान को हथिनी कुंड से मिलेगा अपने हिस्से का पानी, 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी, दोनों राज्यों के बीच एमओयू साइन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
2: दिव्य अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, बम बम भोले के जयकारों की गूंज। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में बनाए गए स्वागत द्वार, यात्रा शुरू होने से पहले देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में शिव भक्तों को दिव्य स्वागत, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे जम्मू। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को जवानों ने परखा।
3: सूरत में भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों के औपचारिक शुरुआत हुई। रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाने के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की है विशेष पोशाक, प्योर सिल्क के कपड़े डे पर जरी का काम हुआ है। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव, सरयू तट पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ।
2: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन, दिखेगी देश के वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और गौरवशाली इतिहास की झलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का लोकार्पण, 1947 से लेकर करगिल युद्ध और पुलवामा तक के सैन्य अभियानों की वीरगाथा दिखाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के गुरेश घाटी में करीब 50 साल बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल की वापसी, लोगों ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का हुआ शुभारंभ, 2 दिन तक चलेगा सांस्कृतिक महोत्सव। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन।

0: देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए 8,120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर डिब्रूगढ़ पहुंची राष्ट्रीय साइकिलिस्ट आशा मालवीय, महिला सशक्तिकरण को लेकर दिया संदेश। केरल के कोट्टायम में नशे के खिलाफ अभियान तूफान का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हुए शामिल। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बायोसेलर मीट का आयोजन, सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। रायपुर में कबीर जयंती महोत्सव का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने महोत्सव में लिया हिस्सा।
1: इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज, फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ, महिला बाइकर्स ने किया स्वागत। अल्फा को सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी, फिल्म को मिला यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट, 3 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का हुआ ऐलान, फिल्म का पोस्टर जारी, एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा शिव के पुत्र पार्वती के गौरव। सूर्या ने होम बेल फिल्म्स के नए प्रोजेक्ट के लिए टीजे ज्ञानवेल के साथ हाथ मिलाया, आगामी फिल्म में कयादू लोहार मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
0: सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हुई, भगवान के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक।
1: मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम त्रिशूल का उद्घाटन, दिखाई जाएगी तीनों सेनाओं के पराक्रम की झांकी, नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश।
0: सेना की पहल पर गुरेज घाटी में 50 साल बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल की वापसी, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद।
1: दिल्ली में आज से एसआईआर की हुई शुरुआत, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।
0: सनी देओल और अक्षय खन्ना की मोस्ट अवेटेड फिल्म इक्का का ट्रेलर रिलीज हुआ, 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक।
1: तो चलिए कार्यक्रम के यहाँ पे शुरुआत करते हैं, और यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स में एक और एंट्री फिल्म अल्फा के जरिए होने वाली है, जिसमें धाकड़ गर्ल्स आलिया और शर्वरी स्पाई अवतार में नजर आने वाली है। देखिए फिल्म तो 3 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले जयपुर पहुंची आलिया और शर्वरी को एक ऐसा सरप्राइज मिला कि वो खुद भी हैरान रह गई।
3: बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल्स यानी आलिया भट्ट और शर्वरी जब अपनी फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए पिंक सिटी जयपुर पहुंची, तो उनका ग्रैंड वेलकम कुछ इस तरह हुआ। एयरपोर्ट से लेकर मिराज सिनेमा तक दोनों हसीदाओं को एस्कॉर्ट किया जयपुर की धाकड़ वुमेन बाइकर्स गैंग ने। आंखों पर काला चश्मा, गजब का एटीट्यूड और बाइकर्स के साथ सेल्फी, बॉलीवुड की स्पाई गर्ल्स ने जयपुर में कुछ इस अंदाज में जलवे बिखेरे। आलिया और शर्वरी ने अपनी इन फीमेल बाइकर्स के साथ जमकर सेल्फी भी ली। दोनों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्हें जयपुर का ये सरप्राइज कितना पसंद आया। जयपुर की सड़कों पर उतरी स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल एजेंट्स को देखने के लिए फैंस की भीड़ जुट गई। मिराज सिनेमा में फैंस का क्रेज देखने लायक था।
4: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत गई है ओवर मेनी मेनी इयर्स ये दिन देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू टू द ऑडियंसेस कि आप लोगों ने जो भी मैंने किया है उसे इतना प्यार दिया, इतना सराहा है, तो थैंक यू फॉर द फर्स्ट थिंग इज थैंक यू। अब अल्फा की बात करूं तो मैं अपने किरदार के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि एक सरप्राइज है, एक अंडर द रैप्स रखा गया है फॉर अ रीजन. तो अगर मैं रिवील कर दूंगी तो आपका मजा चला जाएगा, तो आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई प्रॉमिस कि बहुत मस्ती मजा और एंटरटेनिंग कैरेक्टर है. एंड या दैट्स इट, ज्यादा नहीं बोलूंगी.
3: अल्फा 3 जुलाई को रिलीज होने जा रही है और फिल्म के प्रमोशन के लिए सिटी टूर की शुरुआत जयपुर से कुछ अलग अंदाज में की गई. जाहिर है फिल्म को लेकर दर्शकों में क्रेज अभी से दिख रहा है. बाइकर्स के साथ फिल्म प्रमोशन का ये तरीका फैंस के साथ ही आलिया और शर्वरी के लिए भी बेहद खास रहा. लड़कियों को यूं बाइक्स पर देखकर आलिया और शर्वरी भी काफी उत्साहित दिखी. अब जब फिल्म का प्रमोशन इतना जोरदार है तो जरा सोचिए फिल्म कितनी मजेदार होगी. लेकिन उसके लिए आपको 3 जुलाई तक का इंतजार करना होगा. जयपुर से रिदन जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे.
0: आपको याद होगा लगभग 33 साल पहले फिल्म दमिनी में सनी देओल ने एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव का आइकॉनिक किरदार निभाया था और आज भी उस फिल्म की तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ जैसे सदाबहार डायलॉग्स पसंद किए जाते हैं.
1: लेकिन एक बार फिर सनी देओल काला कोट पहनकर कोर्ट रूम में जुरह करते हुए नजर आने वाले हैं. देखिए सनी देओल की फिल्म इक्का का जो ट्रेलर है वो सामने आ गया है. मच अवेटेड ट्रेलर ये था जिसमें वो और अक्षय खन्ना एक साथ नजर आने वाले हैं.
5: मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया.
6: अनबीटेबल लॉयर इन द सिटी मिस्टर अर्जुन मेहरा.
7: हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं.
8: मुझे डिफेंड कर केस जीत हीरो बन, लाइफ के बदले लाइफ. डील?
9: पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलोर्ड.
10: ऑब्जेक्शन योर ऑनर.
11: सनी देओल और अक्षय खन्ना की मोस्ट अवेटेड फिल्म इक्का का ट्रेलर रिलीज हो गया
12: जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज.
8: मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं.
11: इस कोर्ट रूम थ्रिलर को लेकर दर्शकों के बीच काफी समय से एक्साइटमेंट थी. अब फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों के उत्साह को और बढ़ा दिया है.
8: और मुझे रावण.
11: फिल्म बॉर्डर के रिलीज होने के 3 दशक बाद सनी अक्षय दोबारा एक साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक्का की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही. ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सनी ने अपनी दमदार आवाज में एक्का का डायलॉग भी सुनाया.
7: हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं.
11: फिल्म से सनी देओल ओटीटी की दुनिया में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. सनी अक्षय के अलावा इस फिल्म में तिलोत्तमा शो में दिया मिर्जा, संजीदा शेख और आकांक्षा रंजन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.
8: इंसान कुछ चाहता है, होता कुछ और है.
5: मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे
11: फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी लगभग 33 साल बाद वकील की भूमिका में नजर आएंगे. आपको बता दें कि इससे पहले 1993 में रिलीज हुई फिल्म दामिनी में बतौर वकील सनी देओल ने दमदार भूमिका अदा की थी.
5: प्रोसिक्यूशन से लड़ने वाली मधुरा बैनर्जी क्या शोभा के केस को हैंडल कर पाएंगी?
13: अर्जुन मेरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का अगर केस लेता तो हारता नहीं.
11: फिल्म इक्का एक वकील की कहानी है जिसे एक मशहूर बिजनेसमैन के बेटे को एक मर्डर केस में बेगुनाह साबित कराना है. फिल्म का ट्रेलर देखने में काफी दिलचस्प है. इसमें अक्षय और सनी के बीच कई सारे इंटेंस मोमेंट्स को डाला गया है जिसे देखने के लिए उनके फैंस एक्साइटेड होंगे.
13: तुम कभी बदल नहीं सकते.
8: बदलते वो लोग हैं जो सच नहीं बोल पाते.
13: If there is a crime, there is evidence.
7: तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की?
14: पुलिस मैटर हो जाता ना.
9: पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलोर्ड.
13: ऑब्जेक्शन योर
12: ऑनर. क्यों मिस्टर मेहरा, आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज.
11: इवेंट में सनी देओल ने अपने को स्टार अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम की जमकर तारीफ की. बहरहाल ट्रेलर रिलीज होने के बाद पूरी फिल्म का मजा लेने के लिए दर्शकों को 10 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड
8: न्यूज़.
13: असली बात अगर बाहर आ गई तो
8: गलती कर सकता हूँ.
1: तो देखिए इक्का का जो ट्रेलर है वो तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है पूजा, और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म अवारापन 2 की। तो इसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। अगर बात इस टीजर की करें तो टीजर में इमरान हाशमी जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
0: इमरान के अपोजिट इसमें दिशा पाटनी है, जबकि शबाना आजमी विलेन के रोल में नजर आ रही है। अवारापन 2 2007 में आई फिल्म अवारापन का सीक्वल है, जिसमें इमरान हाशमी शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे। तो अवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
10: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।
15: करीब 19 साल बाद शिवम पंडित लौट आया है, पहले से भी कहीं घातक और खतरनाक। लंबे बाल, आंखों में गुस्सा और पुराना दर्द, जो 2007 की याद दिलाता है जब इमरान हाशमी की फिल्म अवारापन रिलीज हुई थी। अब इसके सीक्वल अवारापन 2 के साथ इमरान दमदार कमबैक करने के लिए तैयार है। अवारापन 2 के टीजर से साफ है कि इस बार कहानी में केवल दर्द नहीं बल्कि सस्पेंस और एक्शन का डबल डोज मिलने वाला है। टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवारापन की तरह ही अवारापन 2 में भी इमरान किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार नजर आएंगे।
10: इस बार या तो यह अवारापन खत्म होगा या मैं।
15: जिसकी झलक टीजर में इमरान की गन फाइट और क्लोज कॉम्बैट के रूप में दिखाई दे रही है। अवारापन 2 का टीजर नॉस्टैल्जिया, दमदार म्यूजिक, रहस्यमय कहानी और डायलॉग बाजी से इस तरह सजाया गया है कि शिवम पंडित को पर्दे पर देखने की दर्शकों की तमन्ना जाग गई है। यूट्यूब और ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कोई इमरान के लुक की तारीफ कर रहा है तो कोई बैकग्राउंड में बज रहे तो फिर आओ गाने के नॉस्टैल्जिया में डूबा हुआ है। फैंस का कहना है कि इमरान हाशमी को इस अवतार में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। एक यूजर ने लिखा, पूरे 19 साल बाद शिवम पंडित लौट आया है, वहीं पर जहां से सब शुरू हुआ था। दूसरे ने लिखा, वाह, लंबे इंतजार के बाद क्या धमाकेदार कमबैक किया है, गजब का साउंडट्रैक। किसी तीसरे ने लिखा, पता नहीं सकता क्या फील हो रहा है इस वक्त पर, वापस बचपन में चला गया हूं, बस आंखों में आंसू है और चेहरे पर मुस्कान। अवारापन 2 का सबसे बड़ा सरप्राइज कही जा सकती है मंजी हुई एक्ट्रेस शबाना आजमी। टीजर में शबाना बेहद खतरनाक विलेन के रोल में दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी एक ही झलक दिखाई गई है लेकिन प्रभाव छोड़ने के लिए काफी है। अवारापन में आलिया शिवम की प्रेमिका थी, जिसका किरदार श्रिया सरन ने निभाया था। फिल्म में उसकी मौत हो जाती है। इस बार हीरोइन का रोल दिशा पाटनी ने प्ले किया है। टीजर में दिशा की बस कैलो बजाती हुई एक झलक ही दिखी है। 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म अवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म का बजट 18 करोड़ था लेकिन इसने करीब 12 करोड़ ही बॉक्स ऑफिस पर हासिल किए थे। अवारापन बेशक अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई थी लेकिन इसके सुपरहिट गाने और दिल छू लेने वाली कहानी बाद में दर्शकों के दिल में घर कर गई। समय के साथ अवारापन हिंदी सिनेमा के क्लासिक कल्ट में शामिल हो गई और अब इसका क्रेज अवारापन 2 को लेकर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: तो फिर
0: चलिए अब रणवीर सिंह की बात कर लेते हैं। धुरंधर में धमाल मचाने के बाद एक बार फिर से उनको अपने नए प्रोजेक्ट में हिस्सा मिल गया है, मौका मिल गया है। दरअसल रिपोर्ट्स है कि रणवीर सिंह की अगली फिल्म प्रलय हो सकती है, जिसे कि हंसल मेहता के बेटे जय मेहता डायरेक्ट करेंगे।
1: बिल्कुल पूजा, और खबरें तो देखिए ये भी है कि फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी और इसके लिए सितंबर में रणवीर विदेश रवाना हो जाएंगे।
16: धुरंधर की सुपर सक्सेस के बाद बॉलीवुड के एनर्जी किंग यानी रणवीर सिंह ने अब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कमर कस ली है। फिल्म धुरंधर की शानदार कामयाबी के बाद अब रणवीर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। बहुत समय से उनकी आने वाली नई फिल्म प्रलय की चर्चा हो रही थी और अब इस पर एक ऐसा अपडेट आया है जो रणवीर के फैंस को हैरान कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में रणवीर का सामना देश के दुश्मनों से नहीं बल्कि खतरनाक ज़ॉम्बीज़ से होने वाला है। फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रलय की शूटिंग इसी साल सितंबर में शुरू होने जा रही है। इसके लिए रणवीर बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाले हैं। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में ही शूट किया जाएगा। फिल्म में साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन अपना बॉलीवुड डेब्यू कर सकती हैं। डायरेक्टर जय मेहता का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसका बजट लगभग 300 करोड़ बताया जा रहा है। रणवीर की प्रलय मुंबई बेस्ड फिल्म होगी, जिसमें रणवीर और कल्याणी पति पत्नी के रोल में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह ने फिल्म के लिए अपनी डेट्स भी फाइनल कर दी हैं और अब रणवीर अपना पूरा फोकस प्रलय पर ही रखने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो प्रलय का पहला शेड्यूल ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, जहां बड़े लेवल पर आउटडोर सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। मेकर्स ने फिल्म की कहानी के हिसाब से कई इंटरनेशनल लोकेशंस को फाइनल किया है, लेकिन फिल्म की असली पहचान इसके VFX में होगी, जिससे आपको स्क्रीन पर एक असली और डरावनी दुनिया देखने को मिले। इसके लिए मेकर्स हॉलीवुड लेवल के VFX का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए कई इंटरनेशनल टेक्नीशियंस को फिल्म की क्रू के साथ जोड़ा गया है। खबर तो ये भी है कि इस फिल्म के लिए एक बार फिर रणवीर ने अपनी ट्रेनिंग और लुक्स पर जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। यानी हो सकता है कि धुरंधर वाले हमजा प्रलय में एक नए और फ्रेश लुक में जॉम्बीज लड़ते हुए आपको दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए, ये तो बात हो गई एंटरटेनमेंट की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बात कुछ और खबरों की। त्रिपुरा के विश्व प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के मकसद से नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 27 से 29 जून तक चले इस 3 दिवसीय महोत्सव को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा के किसानों और उद्यमियों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना और क्वीन पाइनएप्पल की मांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना था। इस महोत्सव में GI टैग वाले अनानास के साथ ही सूबे के पारंपरिक कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस दौरान खरीदार और विक्रेता के सम्मेलन के साथ ही राज्य की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम भी खास तौर पर आयोजित किए गए। त्रिपुरा में बांस से बने प्रोडक्ट्स की देश और दुनिया में बहुत मांग रहती है। प्रदर्शनी में बांस से बने सामानों के बेशुमार रेंज भी शामिल थे।
17: त्रिपुरा में बांस भी अच्छी मात्रा में पैदा होता है और यही वजह है कि इस पाइनएप्पल फेस्टिवल में दिल्ली में तमाम सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो त्रिपुरा में रहते हैं, लेकिन वहां के बांस का इस्तेमाल करके तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाकर अब उसे वो देश विदेश तक सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी पेंटिंग दिखा रहा हूँ जो कि दीवार पर लोग टांगते हैं, लेकिन कैसे इसे देखिए आप, कितनी हल्की है। ये पूरी तरह से बांस पर बनाई गई है और इसमें भोलेनाथ बने हुए हैं, शिव शंकर बने हुए हैं। ऐसे ही अगर आप दूसरी पेंटिंग देखें तो किसी में जो है राम मंदिर बना हुआ है, किसी में आपको गणेश जी दिखाई पड़ रहे हैं, किसी में कुछ और। साथ ही साथ यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इन सब में त्रिपुरा की जो लोकल ज्वेलरी डिजाइंस है उसको भी यहाँ पर डाला गया है, जो कि दिल्ली में रेयर है, यहाँ पर नहीं मिलती है। अमूमन हर तरह की चीज़ें दिल्ली में मिल जाती हैं, लेकिन जब आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो इन डिज़ाइंस को बाँस के पत्तों में या बाँस की छाल में इस तरह से उतारना थोड़ा मुश्किल काम है, जो कि त्रिपुरा के लोग कर रहे हैं।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली NCR में कल शाम हुई बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
18: दरअसल दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी, जिससे दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि ये प्री मॉनसून बारिश थी। दिल्ली NCR, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।
19: रोजाना जब सूरज की तपश झेलनी पड़ रही हो, जून की चिलचिलाती गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही हो और ऐसे में अचानक मौसम मेहरबान हो जाए और झमाझम बारिश तन मन को तरबतर कर दे, तो सुकून का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सोमवार शाम को राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में कुछ ऐसी ही तब्दीली हुई। अचानक हुई प्री मॉनसून बारिश और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को दिन भर की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
17: राहत लेकर आई है जिस तरह की गर्मी का सामना दो दिन से दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे थे। 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
19: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले ही संभावना जताई थी, जो कि सच साबित हुई। हालांकि दिल्ली में सूरज जिस तरह दिन भर तेवर दिखा रहा था, उससे बारिश की संभावना न के बराबर हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में राहत भरा मौसम रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
20: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
19: हालांकि राहत की ये बारिश प्री मानसून है। दिल्ली में मानसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। वैसे सामान्य तौर पर मानसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून करीब एक हफ्ते देरी से पहुंच रहा है। जून के महीने में मानसूनी हवाएं काफी कमजोर रहीं। 8 से 15 जून के बीच मानसून पर ब्रेक लग गया था। उत्तर से आने वाले शुष्क हवाओं ने कमजोर मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस साल अलनीनो भी एक्टिव है, जो भारतीय मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
20: तो मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकता है।
19: तो मानसून आने में देर भले ही हो रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मानसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मानसून पूरे देश को करीब एक हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
18: चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ की खूबसूरत वादियों की झलक दिखाते हैं। यहाँ के बानी और सरथल इलाके में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देवदार के जंगल और कुदरती नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ती हुई गर्मी के कारण राहत पाने के लिए लोग उन खूबसूरत वादियों का रुख कर रहे हैं।

0: जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके इसकी कोशिश की। देखिये, 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था, लेकिन वक्त के साथ ये खेल खत्म सा हो गया और अब इसकी वापसी के साथ घाटी में एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
1: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
2: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में, जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया, ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है, उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
1: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
3: जहां पे ये खेल यहां पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी, तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में गए। तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
1: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
4: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को। इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे। इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
1: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए अमरनाथ यात्रा की तैयारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में टूटेगा दुखों का पहाड़। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: बेंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समंदर में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान, रेस्क्यू का वीडियो किया जारी।
4: संस्कार में अब पर्यटकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट, टॉयलेट और नई सड़क का होगा निर्माण।
3: हैदराबाद पर छाया फीफा का कुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर कटआउट और विशाल पोस्टरों से पटरी शहर की गलियां और दीवारें।
4: कोटा में बच्चों की संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्र छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य।
3: दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बम बम भोले के जय घोष के साथ अब बाबा बर्फानी के दर्शन का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भक्तों में काफी उत्साह इसे लेकर है। इसी के साथ पूरे देश में श्रद्धा, उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। परंपरा के अनुसार प्रथम पूजा के साथ यात्रा का धार्मिक शुभारंभ हो चुका है।
4: वहीं बाबा के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ धाम की ओर बढ़ने को तैयार है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगभग अब पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर हाईटेक सर्विलांस, मेडिकल सुविधाएं, लंगर, ठहरने की व्यवस्था और यात्रा मार्ग की निगरानी तक हर मोर्चे पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
3: बिल्कुल, मकसद यही कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ये महापर्व सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
4: देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बस 3 दिन शेष है। यात्रा को लेकर जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक तैयारियां अब अंतिम चरण में है। बेस कैंप पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाई गई हैं।
3: जबकि जम्मू में देशभर से पहुंचे शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर किसी की निगाहें 3 जुलाई की सुबह पर टिकी है, जब बम बम भोले के जयकारों के साथ ही पहला जत्था रवाना होगा।

0: आस्था की सबसे अद्भुत यात्रा का ये पहला अध्याय है। प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का एक तरह से शंखनाद हो चुका है। अब बारी बाबा के भक्तों की है। 3 जुलाई से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने वाला मार्ग बम बम भोले के जयकारों से गूंजेगा। बाबा बर्फाने की झलक पाने की भक्तों की कामना पूर्ण होगी और भक्त शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे जिसे वो शिवत्व का सबसे अद्भुत रूप मानते हैं। कहते हैं बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा अमरनाथ यात्रा के सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना भर नहीं है, बल्कि ये हर एक श्रद्धालु के लिए भगवान से मांगा आशीर्वाद है। अब प्रतीक्षा उस पल की है जब बाबा के दर्शनों के लिए जत्थे रवाना होंगे और बेस कैंप से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक पूरा रास्ता शोभमय नजर आएगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। ये श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग भागों से आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में खासा उत्साह देखा जा सकता है।
0: बाबा के भक्तों के स्वागत की तैयारी पूरी है। ये बालटाल है जहाँ हर बार की तरह इस बार भी बेस कैंप में श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। तैयारियों को बार बार परखा जा रहा है। खाने पीने से लेकर रुकने और ठहरने जैसे इंतजामों को दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा सकुशल संपन्न हो और किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए तैयारी पुख्ता है। यात्रा के रास्ते पर प्रशासन ड्राई रन कर रहा है। इस ड्राई रन का मकसद यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट तमाम डिपार्टमेंट में तालमेल को परखना है।
2: 3 जुलाई 2026 से जो है अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए जो आज ड्राई रन किया गया जिसकी सरबराही जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजीपी जम्मू, आईजीपी सीआरपीएफ, आईजीपी ट्रैफिक और आईजीपी सिक्योरिटी सभी ने जो जम्मू से ले भगवती नगर से लेके बानिहाल लांबर ग्राउंड तक का जो है ड्राई रन किया, जिसमें काफिले की सूरत में ये लोग आए और इस हर लंगर साइड को देखा गया, उसके बाद चंद्रकोट साइड को भी देखा गया, बानिहाल लांबर ग्राउंड भी देखा गया। मकसद यही है कि जो आने वाले 3 जुलाई से जो श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
0: अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान पुलिस का एक्शन और उसके बाद तमाम एजेंसियों का रिएक्शन साफ नजर आया। आतंकी हमले जैसी परिस्थितियों में जवानों ने रियल टाइम अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये संदेश दिया गया कि यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। इस साल अमरनाथ यात्रा को ज्यादा सुविधा संपन्न बनाने के लिए खास बदलाव किए गए हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है और यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं।
3: इस सुरक्षा के घेरे में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ साथ भारतीय सेना भी शामिल हो गई, लेकिन उनके साथ साथ अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर ड्रोनों से भी निगरानी होगी और अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों को सीसीटीवी कैमरों से भी लेस कर दिया गया है ताकि अमरनाथ यात्रियों की हर एक चहल पहल और उनकी यात्रा पर हर समय और हर जगह नजर बनी रहे। अशरफानी, श्रीनगर।
4: बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए श्रद्धालु का सैलाब रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर उमड़ पड़ा है। कहीं पर लंबी कतारें हैं तो कहीं हाथों में यात्रा पर्ची और आंखों में बाबा के दर्शन की उम्मीद। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। कोई परिवार के साथ पहुंचा तो कोई दोस्तों के साथ, लेकिन हर किसी की मंजिल एक ही है, पवित्र अमरनाथ धाम।
5: यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है और हर चेहरा बाबा बर्फानी के दर्शन की बेताबी बयां कर रहा है।
6: तीसरी बार जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से और पिछले 2 बार लगातार होके आए हैं हम। इस बार भी हम भोलेनाथ की कृपा से आज पहले जत्थे के साथ जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
7: सब व्यवस्था अच्छे से हो रहा है, पहले जत्थे में दर्शन होगा बाबा की कृपा से। जय हो।
8: झांसी से आए हुए हम लोग, झांसी से तीसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं, बालटाल से करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।
9: बढ़िया व्यवस्था है, सब लोग आते हैं, हर साल आ रहे हैं। इस साल 11वीं साल है हमारी, और तो बाकी लोगों की 21 साल है, 25 साल।
10: कितनी खुशी है पहले जत्थे में जो?
9: बहुत खुश हूँ भाई, भोलेनाथ की कृपा है, जब तक सांसे रहेंगी तब तक आते रहेंगे। बोल महादेव बाबा की।
11: बहुत खुश है, नसीब ही अच्छा है कि हम जा रहे हैं इसकी जगह।
5: देखिए उधर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, तो इधर यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जबकि यात्रा से पहले लगातार मॉक ड्रिल और सुरक्षा अभ्यास के जरिए हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी भी परखी जा रही है।
4: सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ये पक्का किया जा रहा है कि श्रद्धालु पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। इस बार यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का घेरा पहले से कहीं अधिक मजबूत और हाईटेक नजर आ रहा है।
5: भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए इंतजार रथ यात्रा का है, सूरत में भी इसकी भव्य तैयारी है। मुंबई से रथ मंगवाया गया है और वृंदावन से 3 लाख का डिजाइनर पोशाक भी आया है खास तौर पर, जिसे रथ यात्रा के दिन भगवान को खास तौर पर पहनाया जाएगा।
4: इसे वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। देखिए कैसी है तैयारी।
0: धाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है, इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
12: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ, जो बॉम्बे से बन के तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
0: रथ ही नहीं, इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
12: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं, और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
0: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर

0: फिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: लंच टाइम में आप वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में टूटेगा दुखों का पहाड़। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
4: Call 1-800-FURNACE.
5: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a second of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
11: तो देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच मैदान के साथ साथ भारत में भी देखने को मिल रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में मुख्यमंत्री फुटबॉल फैन पार्क का उद्घाटन किया गया है। यहाँ बड़ी एलईडी स्क्रीन पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचों का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। खेल प्रेमियों के लिए ये फैन पार्क फुटबॉल के जश्न का नया ठिकाना बन गया है। चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जीत के जश्न की जो कि पराग्वे से सामने आई है। दरअसल वहां पर सोमवार को जर्मनी के साथ मैच 1-1 से ड्रॉ होने के

0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना है।
1: बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
4: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
5: से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
11: गुड न्यूज टुडे
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर

0: डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: अम्बाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 4 साल की मासूम का रेस्क्यू जारी, पुलिस प्रशासन, NDRF और अन्य रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। मंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समंदर में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान, रेस्क्यू का वीडियो किया जारी। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत पहली बार 40 ग्रामीण महिलाओं ने घूमा शहर, बाबा विश्वनाथ सहित कई मंदिरों में की पूजा, चेहरे पर दिखी खुशी। सरिस्का में अब पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट, टॉयलेट और नई सड़क का होगा निर्माण। हैदराबाद पर छाया फीफा का खुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर, कटआउट और विशाल पोस्टर से पटी शहर की गलियां और दीवारें। दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: दिव्य अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, बम बम भोले के जयकारों की गूंज। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में बनाया गया स्वागत द्वार, यात्रा शुरू होने से पहले देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में विश्व भक्तों का दिव्य तरीके से स्वागत, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। तवी नदी के तट पर महाआरती के दौरान काशी और हरिद्वार की गंगा आरती जैसा भव्य नजारा, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जम्मू की पहचान बनाने की तैयारी। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार हुई महाआरती में बड़ी तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु, ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का भी किया गया आयोजन। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जम्मू पहुंचे। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लगी लंबी कतार, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर लगाए गए हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को जवानों ने परखा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर इलाकों में चलाया गया सर्च अभियान, सभी जगहों पर मुस्तैद दिखे जवान। अमरनाथ यात्रा होगी आसान, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी टनल तैयार। रामबन के डिगडोल पंतीहाल के बीच 3.5 किलोमीटर लंबी टनल के साथ साथ रामसू मगरकोट फ्लाईओवर का भी काम पूरा। नई परियोजनाओं के शुरू होने से रामबन और बनिहाल के बीच यात्रा अधिक होगी सुरक्षित, सफर का समय और दूरी भी होगी कम। श्रद्धालुओं के सुरक्षित और आसान सफर के लिए पहलगाम और बालटाल रूट पर ट्रैक को किया गया चौड़ा, खूनी नाला और पंथियाल जैसे सबसे जोखिम भरे इलाकों से अब यात्रियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त, सभी चौक चौराहों पर भी पाबंदी। सूरत में भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुभारंभ, रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाने के लिए वृंदावन से मंगाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की विशेष पोशाक, प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई, रथ यात्रा के लिए पहली बार मुंबई से आया विशेष रथ। 16 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ। सूरत में 17 किलोमीटर रूट पर निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में जुटते हैं श्रद्धालु। अलवर में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान हुए बीमार, 15 दिनों तक जड़ी बूटियों और काढ़े का करेंगे सेवन। अब 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में रहेंगे विराजमान, काढ़ा व औषधि से किया जाएगा इलाज। खाने में दलिया, खिचड़ी, फल, ड्राई फ्रूट्स और बीमार मरीज को दी जाने वाली खाद्य सामग्री भगवान जगन्नाथ को भोग में की जाएगी अर्पित। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने ईवी बाइक से जगन्नाथ रथ यात्रा के रूट का किया निरीक्षण, कई इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई गश्त। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। सावन में होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से होगी मेले की निगरानी। सावन में बाबा विश्वनाथ मंदिर की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और एटीएस की होगी तैनाती। रामनगरी अयोध्या में सरयू जयंती पर आस्था का महाउत्सव, सरयू तट पर भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। सरयू तट पर 5151 दीपों से की गई भव्य महाआरती, मधुर भक्ति सुरों से गूंजा सरयू तट। मां सरयू का दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना, सजाई गई भव्य झांकी। सरयू जयंती महोत्सव में सरयू तट पर दिव्य नजारा, देश विदेश के सुगंधित पुष्पों से की गई मनोहारी सजावट। मां सरयू का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ दुग्धाभिषेक, बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु हुए शामिल। भक्ति के रंग में रंगी नजर आई अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल, बेटा और बेटी के साथ किए काल भैरव के दर्शन। सांसद प्रिया सरोज के साथ डिंपल की बेटी टीना और अदिति ने विधि विधान से की मां गंगा की आरती, मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक। रामेश्वरम में गांव के मंदिरों के पुजारियों के लिए 56वें मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर का आगाज, बड़ी संख्या में पुजारियों ने लिया हिस्सा। शिविर में पुजारियों को मंत्रोच्चार, अभिषेक, सजावट, विधियों और थेवरम, तिरुवासकम और दिव्य प्रबंधम जैसे पवित्र भजनों के पाठ का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कोटा में बच्चों की संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्र छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वॉर मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन, दिखेगी देश के वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और गौरवशाली इतिहास की झलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का लोकार्पण, 1947 से लेकर कारगिल युद्ध और पुलवामा तक के सैन्य अभियानों की वीर गाथा दिखाई जाएगी। वॉर मेमोरियल म्यूजियम में डिजिटल स्क्रीन, लाइट साउंड शो और इंटरैक्टिव पैनल से सैन्य अभियानों का होगा प्रदर्शन, नई पीढ़ी को दिया जाएगा देशभक्ति का संदेश। मुरादाबाद में 11 महीने में तैयार हुए त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय, तीनों सेनाओं की उपलब्धियों के बारे में दी जाएगी जानकारी। वॉर मेमोरियल म्यूजियम में सेना के टैंक, मिसाइल्स के मॉडल समेत कई हथियार भी आएंगे नजर, लेजर गन सपोर्ट सेटअप भी लगाया गया। सिकंदराबाद में छाया फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, सड़कों पर खिलाड़ियों के लगे कटआउट्स। सिकंदराबाद के सड़कें रंग बिरंगे फैन जोन में बदली, सड़कों को ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी जैसे फुटबॉल खेलने वाले देशों के रंगों से सजाया गया। सजावट ने लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, सजी धजी कॉलोनीज के वीडियो हो रहे हैं वायरल। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट का लोगों ने जमकर मनाया जश्न, अपनी अपनी पसंदीदा टीम के लगाए नारे। शिलांग में फुटबॉल फैन पार्क में फीफा वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग का शुभारंभ, सीएम कॉनराड के संगमा हुए शामिल। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में करीब 50 साल बाद पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल की वापसी, लोगों ने जताई खुशी। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज घाटी में ऐतिहासिक खेल विरासत की हुई बहाली, पोलो मैच का हुआ आयोजन। गुरेज घाटी में पोलो मैच के आयोजन से इलाके में लौटी रौनक, एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की इससे उम्मीद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ, दो दिन चलेगा इस सांस्कृतिक महोत्सव। रामगढ़ महोत्सव में लोक संस्कृति और पारंपरिक कला और साहित्य को मिलता है इससे बड़ा मंच, आयोजन में देशभर के कलाकार भी होते हैं शामिल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। मैदानों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं सैलानी, बड़ी संख्या में कठुआ पहुंचे पर्यटक। सरथल में सैलानियों ने प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक नजारों का आनंद लिया, अब तक लाखों पर्यटकों ने सुंदरता का किया दीदार। मध्य प्रदेश के नीमच में सीएम मोहन यादव ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी दी सौगात। देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए 8120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर डिब्रूगढ़ पहुंची राष्ट्रीय साइक्लिस्ट आशा मालवीय, महिला सशक्तिकरण को लेकर दिया संदेश। केरल के कोटायम में नशे के खिलाफ अभियान तूफान का आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हुए शामिल। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बायर सेला मीट का आयोजन, सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। चंपावत में एमआरआई मशीन सेवा का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। रायपुर में कबीर जयंत महोत्सव का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय ने महोत्सव में हिस्सा लिया। रामपुर को सीएम योगी ने 690 करोड़ की लागत से 102 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा डबल इंजन की सरकार ने केवल विकास का काम किया। बोधगया में विश्व का अनोखा शांति स्तूप, असलहों के अवशेषों से बना है ये स्तूप, श्रीलंका से लाया गया भारत। पीतल की परत से ढका स्तूप विश्व को शांति का दे रहा है संदेश, 33 सालों तक श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच स्तूप के लिए हुआ था गृह युद्ध। झोपड़ी से निकलकर आईआईटी पहुंचा टैक्सी ड्राइवर का बेटा आदेश बिश्नोई, जेई एडवांस में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 1783। मां मनरेगा में करती है मजदूरी का काम, बेटे को जेईई में मिली सफलता। पंजाब के फरीदकोट में कैदियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव के लिए शानदार पहल, जेल में रेडियो स्टेशन सेंटर और आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ। कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल, जेल मंत्री ने रेडियो से कैदियों को दिया प्रेरक संदेश। जेल में रेडियो उजाला के जरिए कैदी खुलकर रख सकेंगे अपने दिल की बात, भक्ति प्रेरक और मनोरंजक कार्यक्रमों का भी होगा प्रसारण। रेडियो संचालन के लिए तैयार किया गया है स्टूडियो, जेल के प्रत्येक बैरक और खुले क्षेत्रों में स्पीकर भी लगाए गए। जेल में मानसिक तनाव कम करने और ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबों की मदद ले सकेंगे कैदी, 1500 से ज्यादा किताबों से सजी आधुनिक लाइब्रेरी बनाई गई। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अगले 2 से 3 दिन में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना, दिल्ली में मानसून पहुंचने में हो सकती है 1 हफ्ते की देरी। अगले 2 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आगे बढ़ सकता है मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। महाराष्ट्र में जालना के ढोकसाल तांडा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में भरा पानी। 2 जुलाई और 3 जुलाई को महाराष्ट्र गोवा में कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पालघर में रेड अलर्ट। नवी मुंबई में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जमा हुआ कई फीट पानी। भारी बारिश से एपीएमसी मार्केट में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़कें भी पानी में डूबी। सिक्किम के सिंगथम में जबरदस्त भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा, कई सड़कें बंद। मलबे में फंसे पर्यटकों की गाड़ियां, सैलानियों की भी बड़ी परेशानी। सिंगथम में भारी बारिश के बाढ़ जैसे हालात हुए, कई नदियों का बड़ा जलस्तर। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज, फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में टूटेगा दुखों का पहाड़। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
3: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
4: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो वो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसी युवती की कहानी हम आपको दिखाते हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की। लेकिन जरा ठहरिए, ये युवती कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है जो वियतनाम से दुबई आई और यही उनको हुनर की सही कीमत मिल रही है।
2: और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी दे वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने फुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है। लेकिन कामयाबी की राह फुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत पे यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुला को युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। अब आगे चलकर फुला अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। उनकी कोशिश दुबई के साथ अबू धाबी, फुजेरा और अमीरात में भी अपना सैलून खोलने की है। फुला ने साबित कर दिया है कि अगर अपने हुनर पर भरोसा हो तो मेहनत और लगन से कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 4 साल की मासूम का रेस्क्यू जारी, पुलिस प्रशासन, NDRF और अन्य रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। मंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समंदर में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान, रेस्क्यू का वीडियो किया जारी। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत पहली बार 40 ग्रामीण महिलाओं ने घूमा शहर, बाबा विश्वनाथ सहित कई मंदिरों में की पूजा, चेहरे पर दिखी खुशी। सरिस्का में पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट, टॉयलेट और नई सड़क का होगा निर्माण। हैदराबाद पर छाया फीफा का खुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर, कटआउट और विशाल पोस्टर से पटी शहर की गलियां और दीवारें। दिल्ली में आज से SIR की शुरुआत, 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन, 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नमस्कार, मैं हूँ पारुल चौधरी, आप देख रहे हैं सास बहू अर्पेटिया। आज तो है सोशल मीडिया डे। वैसे सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म आजकल तो फैंस और सितारों को जोड़ने का एक खूबसूरत सा रिश्ता बन गया है। चाहे सेल्फीज हो, चाहे वायरल पोस्ट हो, BTS मोमेंट्स हो, या फिर हो कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज, कुछ ना कुछ नया सोशल मीडिया पर रोजाना देखने को मिलता है। और आजकल तो सोशल मीडिया हमारी अवेयरनेस भी बढ़ाता है, क्योंकि कई ऐसे चैनल्स हैं जो लेकर आते हैं हमारे लिए ढेर सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया डे, उसी के साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने शो सास बहू और बेटिया में एंटरटेनमेंट को। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, ईशान के कॉन्सर्ट में शामिल होगी नयनिका, दिखेगा नयनिका का रॉकस्टार वाला अंदाज। तेजू करेगी सुसाइड ड्रामा, घर में शुरू होगा नया तमाशा।

0: सुहानी और रूही और जूही के बर्थडे के मौके पर करीब आएंगे सुहानी और नाहर। और एक्टर रजत वर्मा संग करेंगे बीच वाला डे आउट, होगी मस्ती अनलिमिटेड, देखेंगे ये नजारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। अगला से की
1: गुरु और रूहानी के रोमांटिक मोमेंट्स भी अक्सर सोशल मीडिया पर हो जाते हैं वायरल। वैसे क्या कमाल की है ना इनकी ये जोड़ी, लेकिन अब इनके बीच आ गई है तेजू। लेकिन तेजू के कांड भी हो जाएंगे सोशल मीडिया पर वायरल, क्यों देखिए कैसी कैसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं कि कर दें इन्हें एक दूसरे से दूर। वैसे कहानी होती जा रही है काफी कॉम्प्लिकेटेड, तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह सुलझेंगे इस कहानी के ये ट्विस्ट। लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनौनी के सेट पर।

0: एपल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर सभी के सामने गुरु और रूहानी ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लिया है और ये बात तेजस्वी को हजम नहीं हुई। तभी तो देखिए कैसे उसने सुसाइड करने का फैसला किया। हाथ में चाकू लेकर उसने अपनी नस काट ली, लेकिन सही समय पर वहां पहुंच गए तेजू के भाई गौतम, जो अपनी बहन को इस हालत में देखकर घबरा गए हैं।
1: जिस चीज पे तेजस्वी सिंह ने हाथ रख दिया वो किसी और की कभी नहीं हो सकती, चाहे वो इंसान हो या इनाम। गुरु तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे।
2: तेजू, तेजू,
0: तेजू ने रूहानी के साथ जो कुछ भी किया हो उसके बावजूद भी एक डॉक्टर होने का फर्ज रूहानी निभा रही है और देखिए कैसे पहुंच गई है वो तेजू की जान बचाने। लेकिन तेजू के भाई गौतम ने रूहानी को दूर कर दिया।
3: भैया हॉस्पिटल में कॉल कीजिए ना, नर्स को बोले कि ऑपरेशन का सामान लेकर आए जल्दी से।
2: हटो, हटो। कोई हमारी तेजू को हमारे सिवा हाथ नहीं लगाएगा। मिश्रा, पूरे का पूरा अस्पताल यही रह गया। डॉक्टर तेजू को ख्याल है, डॉक्टर तेजू को संभालेगा और हम इन सबको। जल्दी कर, देख क्या रहे हो, कनपट्टी पे बंदूक रखो सबकी, नजर बंद करो सबको।
4: हम पर ही बंदूक तानोगे, वो कौन बे तुम? अपन सिकंदर।
0: लेकिन रूहानी अपने डॉक्टर होने का पूरा फर्ज निभा रही है और देखिए कैसे वो गौतम से कहती है कि इस वक्त तेजू को इलाज की जरूरत है। ऐसे में गौतम मान तो जाता है, लेकिन वो दे रहा है गुरु को धमकी। और गुरु भी कम नहीं, वो भी गौतम को जवाब देने को तैयार है बंदूक हाथ में लेकर।
3: अभी कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, मुझसे काम चलाना पड़ेगा। इन्हें पीछे उठाइए और कमरे में लेकर चलिए।
2: ध्यान रहे, कोई भी यहाँ से भागना नहीं चाहिए।
4: डर के भागने वालों में से नहीं, डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। अब ना तो हम यहाँ से जाएंगे ना तो।
0: रूहानी तो तेजू का इलाज कर रही है और यहाँ गौतम पहुँच गया है गुरु से सवाल जवाब करने के लिए। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान रखी है और बंदूक ताने हुए ही दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं।
4: इन्हें भी दिखाया जाए, शेर के सामने घुराने वाली लोमड़ी का काहल किया जाता है।
2: उसकी शादी मेरी बहन तेजस्वी से हो रही है, उसकी पत्नी कहाँ से आ
4: रही? तो तुम तेजस्वी के बड़े भाई गौतम सिंह। चलो तुम्हारे सवाल का भी उत्तर दे ही देते, हमारी पत्नी शुरू से ही थी, तुम्हारी बहन बीच में आके टपकी है।
0: इससे पहले कि गोली चलती आ गए गुरु के पापा, जिन्होंने इन दोनों को लड़ने से रोक दिया।
4: एक बाप की आवाज ऊंची हुई है तो इस गुरु चौधरी की बंदूक नीची हुई है। अगली बार ये अपना ताव दिखाया ना गौतम सिंह, तो हम भी अपना तेवर दिखा देंगे तुमको।
0: भाई ये तमाशा चल ही रहा होता है कि रूहानी भी आ जाती है, उसने तेजू का इलाज कर दिया है और अब तेजू खतरे से बाहर है। ऐसे में यहाँ देखिए कैसे रूहानी भी गौतम को जवाब दे रही है।
2: तो तुम रूहानी हो?
3: नहीं, डॉक्टर रूहानी, डॉक्टर रूहानी गुरु चौधरी। और आप?
5: ओ या जादूगरनी हो, हमरे जाने से पहले तुम दोनों अलग अलग थे। ऐसा क्या खेल खेला कि हमरा गुरु फिर से तुम्हारी मुंह में पड़ गया?
3: हमारी शादी चाहे जिन हालातों में हुई, चाहे जैसे भी हुई, लेकिन शादी तो है ना, रिश्ता तो है, इस नाते हम दोनों पति पत्नी हैं। और अंकल जी, आप और दादी के नाम मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? जिस अग्नि के सामने हमारा रिश्ता जुड़ा था और आज अग्नि के सामने गुरु और रूहानी का दिल।
0: भाई ये सब तमाशा चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पहुँच जाती है तेजू, जो देखिए कैसे रूहानी को धक्का दे रही है।
2: तेजू, तू बाहर क्यों आई? मुझे बता दे, मैं आ जाना अंदर।
6: कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें भी आराम की जरूरत है।
0: भाई इन सब तमाशों के बाद गुरु ने फैसला ले लिया है कि वो सबके सामने ऐलान कर देगा अपने प्यार का, और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। देखिए कैसे उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और सबके सामने अपने दिल की बात कह दी, साथ ही तेजू से अपनी शादी भी तोड़ दी, और अब गुरु और रूहानी साथ साथ रहेंगे।
4: हम आज आप सबके सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि हमने हमारी कंपाउंडर के अलावा ना कभी किसी को चाहा है और ना कभी चाहेंगे। रूहानी चौधरी हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। उम्मीद करते हैं गौतम सिंह अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करवाएगा जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसलिए आप तेजस्वी और हमारी शादी नहीं होगी।
0: भाई तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस ड्रामे के बाद शुरू हो गया नया ड्रामा, जहां तेजस्वी अपने भाई को लेकर फिर एक बार गुरु के पास पहुंच गई है, और ये जिद लेकर कि गुरु को तेजू से शादी करनी ही होगी। असल में गुरु के पापा को नेता का टिकट चाहिए, ऐसे में उसने पैसे देने का वादा किया है गौतम को। लेकिन यहां गोलमाल शुरू हो गया है, क्योंकि गुरु पैसे तो लाया था लेकिन यहां पैसों की जगह कागज निकले, जिसके बाद गौतम ने कर दी मांग कि गुरु को करनी होगी तेजू से शादी। इस बात के लिए गुरु के पापा भी गुरु को काफी फोर्स कर रहे हैं।
2: वादे के मुताबिक गुरु 100 करोड़ इकट्ठा करते हैं। भूखा हुआ हमारे साथ, हमें ऐसा लगता है हमारे साथ ये फरेब इस गौतम सिंह के हाथों हुआ है। रो सौदे के बच्चे अपनी बेटी को बेच देंगे। बेच नहीं रहे हैं, 20 करोड़ तो गौतम सिंह को वापस कर देंगे। लेकिन बात हमने जवाब किया है, और हम कह चुके हैं ये वापिस समझाइए ना पापा को, अपने गांव में अपने बेटे का ही सौदा करने चले।
0: इन सब तमाशों के बाद गुरु ने फैसला किया कि वो रूहानी के साथ ये घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन गुरु के पापा ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए कैसे नागेश्वर ने गुरु पर बंदूक तान दी और उसे कर रहा है फोर्स शादी करने के लिए।
7: एक्चुअली अमाउंट की बात तो बहुत पहले से चल रही है, 20 करोड़ का अमाउंट है जो हमने बोला है गुरु को इंतजाम करने के लिए, क्योंकि वो हमें गौतम सिंह को देना है क्योंकि हमें बनना है नेता। तो 100 करोड़ देना है, 20 करोड़ कम है, तो 20 करोड़ का इंतज़ाम गुरु कर रहे हैं, किया भी है, लेकिन जैसे वो लेके आते हैं तो सरप्राइज, देयर इज नो मनी। तो मनी कहाँ गई, कौन ले गया, किसी को नहीं पता। तो हम चिल्लाते हैं गुरु पर कि व्हाट इज दिस। तो यही कुछ कहानी चल रही है। अब पैसा नहीं है तो नेता का टिकट कैसे मिलेगा। बस समाओ गौतम सिंह कुछ ना कुछ कहते कि नहीं चलो कोई बात नहीं, तो पर वो पूरा प्रेशर वो डालते हैं कि हम शादी करवाएं, जो हम शादी करवाएं तेजस्वी की गुरु के साथ।
0: ऐसे में तेजू ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया है जहां वो गुरु के साथ है, जिस बात पर गौतम भी भड़क जाता है। लेकिन अब गुरु और रूहानी मिलकर कैसे सच का खुलासा करेंगे और तेजू का पर्दाफाश, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: वन अति सुंदर की एक कहानी, और इस कहानी के कलाकारों की रील्स सोशल मीडिया पर काफी प्यार बटोर रही हैं। तो क्या कुछ हो रहा है राधे और प्रथम की जिंदगी में आज? क्या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट, या फिर आ रही है कहानी से हमारे लिए कोई गुड न्यूज? वेल, कहानी का लेखक इसमें भी लेकर आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, जिससे हम बंधे रहते हैं और हमें भी बेसब्री से रहता है इसके हर नए एपिसोड का इंतजार। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
0: राध्या और प्रथम की नई परेशानी।
5: मतलब एक सिंपल सी रेसिपी के लिए इनको अपनी माँ की किताब का सहारा लेना पड़ता। अरे वो प्रतियोगिता में जाके किताब देख के खाना बनाओगी?
0: दादी ने फिर उड़ाया राध्या का मजाक।
9: दादी, सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है।
0: प्रथम ने फिर दिया राध्या का साथ। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या और प्रथम की जिंदगी में नई परेशानी आ गई है। असल में उनके घर में किसी ने पत्थर फेंक के मारा है और साथ में भेजा है एक लेटर भी, जिसे पढ़कर प्रथम के पापा हो रहे हैं हैरान और तो और वो प्रथम पर नाराज भी हो रहे हैं। लेकिन तभी सभी की नजर पड़ती है प्रथम और राध्या के घावों पर। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि प्रथम और राध्या पर किसी ने हमला किया है। बस फिर क्या, प्रथम के पापा प्रथम से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में प्रथम अपने पापा के गले लगकर रोने लगता है और सारा किस्सा बयां करता है।
10: प्रथम, हमें अब सच में बहुत घबराहट हो रही है। सच सच बताओ कि ये सब हो क्या रहा है? हाँ, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? क्या क्या ये जिन्होंने ये पत्थर फेंका है, उन्होंने तुम्हें और राजा को चोट पहुंचाई थी क्या?
11: I'm sorry पापा, I'm sorry, माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आपको कुछ गर्व हो रहा था, लेकिन मैंने आज सारी गड़बड़ कर दी पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने।
12: साफ साफ बताओ बात क्या है?
10: इसमें प्रथम सर की कोई गलती नहीं, वो जो क्लाइंट है उन्होंने धोखा दे दिया,
11: इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ।
13: अभी ये जो हम सीन शूट कर रहे हैं इसके बारे में बताती हूँ कि हमने इससे पहले बड़ी खुशियाँ मनाई कि प्रथम को एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऐसे, और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई इस बारे में। सडनली प्रथम को एक फ़ोन आता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब अभी होता है कि प्रथम, वो लोग प्रथम को जो है पैसे मांग रहे हैं कि इतना करोड़ रुपया, कुछ करोड़ रुपया है जो मांग रहे हैं, तो इतना करोड़ रुपया जो है हमारे अकाउंट सीज हो गया है, मतलब अकाउंट फ्रीज कर दिया गया हमारा, तो यह बहुत टेंशन चल रहा है।
0: इसी टेंशन के बीच पहुंच जाती है दादी भी, जो प्रथम के हाथ के घाव देखकर परेशान होती है और तो और वो सारा इल्जाम फिर से राधा के ऊपर मढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी घर वालों को एक और झटका लगता है।
5: चोट लगी है तो ठीक तो है ना?
11: लेकिन राधा को चोट लगी,
0: भाई ये सुनकर तो सभी घर वाले हैरान हो रहे हैं और अब इनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर राध्या ने हल ढूंढ लिया है क्योंकि उसे मिल गया है एक पैम्पलेट कुकिंग कंपटीशन का। ऐसे में दादी वो पैम्पलेट पढ़कर सभी घर वालों को बताती है और तो और प्रथम पर नाराज भी होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्रथम बावर्ची का काम करे। इसीलिए उन्होंने सभी घर वालों के सामने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। ऐसे में राध्या सामने आती है लेकिन दादी उसे भी नहीं बख्शती।
5: ये मूंग और मसूर की दाल, कभी अपना चेहरा देखा है आईने में ध्यान से? हैं? जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए नहीं घर की रोटियां सेकते हुए, खुद को बावर्ची समझने लगी। प्रतियोगिता में भागने की 50 लाख की प्रतियोगिता में, देखो अपनी कदकाठी से पहले ही हमारे सामान में बहुत बेइज्जती करा चुकी हो, अब सामान में और नाक मत कटवाओ भाई। अच्छा राज का तरीके से बताओ,
13: तो बस वही चल रहा है कि 50 लाख का पुरस्कार है, तो मैं अपोज करती हूँ एज यूजुअल कि हम इतने बड़े लोग हैं, मतलब ऐसे क्या प्रथम को कहते हैं कि पैसों के लिए मतलब दुखिया ये जाकर के बाहर खाना बनाएगा, बावर्ची बनेगा क्या? तो कहती है सब बकवास है, इसको फाड़ के फेंक दो सब। तो प्रथम कहते हैं लेकिन हमारा तो हलवाई का तो काम है हमारा मिठाइयाँ बनाने का। तो ये कहते बिजनेस है लेकिन इसका मतलब है थोड़ी कि जाके दूसरी जगह खाना बनाओ, तो इसको मत करो ये मत करो। तो राध्या कहती है कि नहीं हम कुछ मदद करें, तो मेरे नज़र में तो राध्या बिल्कुल निष्क्रिय कुछ है ही नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि तुम क्या बनाओगी, तुम तो और बेइज्जती करा के आ जाओगी, पहले ही अपनी कदकाठी से बेइज्जती कराई हुई है, अब और भी ज़्यादा बेइज्जती कराओगी, नहीं कुछ नहीं होगा ये। लेकिन फाइनली ये लोग डिसीजन लेते हैं, ये दोनों आपस में कहते हैं, प्रथम कहते हैं मैं मदद करूंगा उसकी, और ये कहते हैं कि राधिया जब इतनी हिम्मत करिए तो जाने दो उसको। तो दिस इज द सीन विच वी आर शूटिंग नाउ।
0: जैसे ही राध्या ने अपनी माँ की किताब का नाम लिया, दादी ने सभी के सामने ताली बजाते हुए राध्या की खिली उड़ानी शुरू कर दी, और ये बात प्रथम से बर्दाश्त नहीं हुई, और देखिए कैसे वो दादी के सामने पहुंच गया राध्या की ढाल बनकर।
9: दादी, सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर
5: रही है। ये क्या तेरी मदद करेगी? प्रथम अगर इसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उल्टे इसको तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अपनी जगह सही कर रहा है, इसको भेज के कुछ नहीं होने वाला, इससे जाएगी शक्ल दिखाएगी वापस आ जाएगी, बता रहे हैं। मित्तल खानदान हंसी का पात्र बन जाएगा बस।
13: हाँ ये तो शुरू से प्रॉब्लम है दादी को, मतलब पसंद तो है ही नहीं एनीवेज राध्या, किसी भी हाल में पसंद नहीं है, और प्रथम उसको सपोर्ट करता है तो पसंद नहीं आता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी शी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज तो नाउ तो दे आर मैरिड ना, तो फाइनली तो शी कैन नॉट डू एनीथिंग। पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन क्या करे, पति ने बोला है कि मैं करूँगा तो करूँगा, और पैसे की ज़रूरत तो है ही है दरअसल।
0: खैर प्रथम और राध्या का ये साथ देखकर तो दादी खुद हैरान है, और अब तो प्रथम ने ठान ली है कि वो राध्या के साथ इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा। देखना होगा कि दादी अब कौन सी नई मुसीबतें लाएगी राध्या के लिए। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: अब नाहर और रूही हो गए हैं दूसरे से जुदा, ये खबर भी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पर, और फैंस आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या करें कि इन्हें वापस एक साथ लेकर आए। देखिए फिलहाल है मिसअंडरस्टैंडिंग, ढेर सारे कन्फ्यूजन्स, ये भी एक एक करके दूर हो ही जाएंगे और आ जाएंगे ये फॉर एवर एक दूसरे के पास। लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
0: नाहर के घर जश्न बहारा, जूही और सुहाने के जन्मदिन की पार्टी, पार्टी में मिल रहे हैं दो दिल, दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज नाहा के घर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, और हो भी क्यों ना, उसकी रूही वापस जो आ गई है। फिलहाल तो रूही को पता नहीं है अपने अतीत के बारे में, लेकिन नाहर उसे पूरी तरह से याद दिलाना चाहता है। ऐसे में देखिए कैसे उसने जूही और सुहानी दोनों के जन्मदिन की पार्टी रखी है, जहां पर जूही के साथ सुहानी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है, पूरे परिवार के साथ मिलकर केक काट रही है, और तो और खेल रही है पासिंग द पार्सल का खेल भी। जरा देखिए कैसे नाहर और रूहान दोनों ही जुटे हुए हैं सुहानी को उसकी बीती याद दिलाने के लिए। ऐसे में किस्मत भी इनका साथ दे रही है, तभी तो देखिए कैसे पासिंग द पार्सल के खेल में अचानक दादी उठकर सामने आ जाती हैं, जिसके चलते मिष्टी के हाथ में जो आया पिल्लो है वो जाकर सुहानी के हाथ में गिर जाता है। हालांकि सभी घरवाले दादी और मिष्टी को उठाकर उनकी हाल खबर पूछते हैं, और जब सब ठीक होता है तो शुरू हो जाता है खेल का दूसरा राउंड, जिस पर सुहानी को वही करना होगा जो उसके परिवार कहेंगे। ऐसे में सुहानी की बेटी अपनी माँ से गुजारिश करती है डांस करने की, और तो और जूही भी अपनी बहन का हाथ थामे पहुँच जाती है डांस का तड़का लगाने, और देखिए कैसे पूरा परिवार जूही और सुहानी के साथ इस डांस में शामिल हो जाता है और बांटने लगता है खुशियाँ।

0: बेटा आज हम जूही और सुहानी मतलब रूही उन दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेसिकली ये मेरा प्लान है, जो मेरे दोनों बच्चे हैं सुहानी रुचिता और दूसरा क्या नाम है रूहान, रूहान दोनों के साथ मिलकर मैंने एक प्लान बनाया है कैसे उसको पुरानी बातें याद दिलाऊं, कैसे ट्रिगर करूं। लेकिन एकदम से ट्रिगर नहीं कर सकते क्योंकि वो पैनिक हो जाती है, एंग्जाइटी अटैक आता है तो वो बेहोश हो जाती है रूही। तो धीरे धीरे सॉफ्टली बहुत प्यार से मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो घर में एक पार्टी रखी है मैंने और दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और जो रूहान है, वैसे एक रूहान यहाँ पे भी है, सबसे पहला रूहान जो है हमारा बड़ा हो गया, आज मुझसे मिलने आया सेट पर। सो बेसिकली रूहान एक बार डर गया था, काली परी जब बनी थी रूही, मतलब परी बन के आई थी, अग्नि ने कुछ प्लान किया था उसके ऊपर, कलर गिरा दिया था ब्लैक वाला, तो काली परी वो डर गया था रूहान। तो आज वही मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ वही सीन, ताकि वो ट्रिगर हो, वो कैसे रूहान के लिए वो पैनिक हो गई थी अपने बेटे के लिए, तो वो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ वही सेम सिनेरियो। लेट्स सी उस क्या असर पड़ता है रूही पर, उसको याद आता है कि नहीं।
1: भाई वाकई सुहानी तो ये परिवार पाकर बहुत खुश है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किस्मत रूही और नाहर दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती है और दोनों के बीच बन जाता है रोमांटिक समा। ऐसे में नाहर ये मौका नहीं छोड़ता सुहानी को ये याद दिलाने के लिए कि वो नाहर से कितना प्यार करती है।

0: बहुत खुशनुमा माहौल है घर में, पूरा परिवार खुश है और मैं खासकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा परिवार जो है कंप्लीट है और मेरे आंखों के सामने है। 5 सालों बाद मेरी बेटी भी है, मेरी बीवी भी है, रोहन तो मेरे साथ था ही, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है एंड पूरा परिवार झूम रहा है, नाच रहा है। सो आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, तीन तीन डांस सिक्वेंस है और मज़ेदार डांस सिक्वेंस है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत फ्री स्टाइल डांस कर, जिसको जैसा मन कर रहा है डांस कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। हमेशा क्या होता है, कोरियोग्राफ्ड होता है डांस सॉन्ग जो भी होता है, इस बार सर ने छूट दिया है कि जैसा मन है वैसा करो। तो इट वॉज ब्यूटिफुल, बच्चे भी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, पापा नाच रहे हैं। सो टू मच फन।
1: फिलहाल तो यहाँ परिवार की खुशियाँ भी है, जोड़ी का रोमांस भी है और साथ ही है एक ट्विस्ट भी जो नाहर लेकर आएगा। अब देखना होगा क्या नाहर सुहानी को उसकी यादें याद दिलाने में कामयाब हो पाएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब तो हमारी ये सोशल मीडिया पोस्ट भी हो जाएगी वायरल, क्योंकि हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी इतनी सी खुशी के विराट खन्ना यानी रजत वर्मा से। आज हमारी टीम कर रही है इनके साथ बीच पर ढेर सारी मस्ती और फिर हमने किया है सेट पर जाकर इनका मेकओवर। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको रजत के पास और इन्हें भी जानते हैं अप क्लोज एंड पर्सनल।

0: வீடு சிபாலி குளத்து நார ஆரியா பார.
1: मिलिए रजत वर्मा से, जिन्हें आपने देखा है इतनी सी खुशी में एज विराट, और इससे पहले बेहद में भी। भाई उन्होंने वेब सीरीज किए हैं, सीरियल्स किए हैं, दिल से हैं ये दिल्ली वाले लड़के, लेकिन अब बन गए मुंबई वाले। मुंबई का समुंदर इन्हें इंस्पायर

0: और अभी अपने खाली टाइम में मुंबई की वाइब्स को फील कर रहे हैं। सास बहू और बेटिया आज एक मुंबई वाला फन डे आउट कर रहा है अभिनेता रजत वर्मा के साथ। हाल ही में इनका शो इतनी सी खुशी ऑफ एयर हुआ है और आजकल ये अपने एक नए शो की तैयारी कर रहे हैं और उसके बीच में से वक्त निकालकर आज ये सास बहू और बेटिया को अपने अंदाज में मुंबई घुमाएंगे। मुंबई का समुंदर हो और साथ में हो उन सभी लाखों कलाकारों के सपने जो मुंबई में आते हैं कुछ बनने। रजत भी ऐसे ही दिल्ली से मुंबई आए और यहाँ पर उन्होंने थिएटर किया, वेब सीरीज की और टीवी शोज किए और अपना नाम बनाया। तो सीधा चलते हैं रजत के घर पर, जो कर रहे हैं हमारा इंतजार और उनके साथ घूमेंगे मुंबई एक नए अंदाज में।
1: So I am Rajat Verma and आपका thank you for having me here in this segment. और आप देख रहे हैं आज तक सास बहू और बेटियाँ। तो आज आप मेरे साथ देखेंगे कि मैं कैसे अपनी लाइफ बिताता हूँ और मैं कहाँ, जब मैं मुंबई आया तो मेरी क्या फेवरेट प्लेसेस हैं और मैं क्या, मुझे खाना पसंद है मुंबई में, क्या क्या लाइफ जीता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को आज मिलेगी। तो लेट्स गो।
0: रजत के साथ हो जाते हैं गाड़ी में सवार और चलते हैं उनकी पहली मंजिल की ओर। हमारी पहली मंजिल है मुंबई का वर्सोवा इलाका, जहां पर ढेर सारे कास्टिंग स्टूडियो है और हाँ है यहां पर मुंबई का वर्सोवा बीच। और इस वर्सोवा के साथ रजत की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं।
1: सो गाइज, ये अभी हम लोग जा रहे हैं वर्सोवा बीच की तरफ और ये रास्ते में आराम नगर पड़ा। आराम नगर जो है वो एक्टर्स की कर्म भूमि है। यहाँ आके एक्टर्स ऑडिशंस देते हैं और यहाँ आके उनको रिजल्ट पता चलता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ के सपने जो हैं हकीकत में बदलते हैं रियल में। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो सारे एक्टर्स यहाँ पर आते हैं और फिर जो भी मुंबई आया है सारे एक्टर यहाँ पहले आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स का ऑफिस है, मुकेश छाबरा, श्रुति महाजन, शानू शर्मा का नहीं है यहाँ पर ऑफिस और बाकी बहुत लोगों का ऑफिस है यहाँ पर। तो जो भी एक्टर बनना चाहते हैं वो ऑब्वियसली यहाँ इसके बारे में सबको पता होगा। तो अब हम जा रहे हैं वर्सोवा बीच की तरफ कि जो एक्टर्स यहाँ पर दिन भर मेहनत करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, उसके बाद जहाँ पर शाम को जाके चल मारते हैं और थोड़ा अच्छा फील करते हैं, तो वो उस जगह पर हम जा रहे हैं। जब मैं भी आया था तो मैं भी यहाँ पर चक्कर मारता था दिन भर और फिर उसके बाद यहाँ वर्सोवा बीच पर आके बैठता था। वेरी पीसफुल आउट देयर, तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे।
0: हर कोई जब भी मुंबई आता है तो यहाँ का बीच जरूर देखता है और ऐसा ही एक खूबसूरत बीच है मुंबई का वर्सोवा बीच। और देखिए रजत गाड़ी से उतरे और किसी बच्चे की तरह आज वो हमें वर्सोवा बीच दिखा रहे हैं।
1: समंदर की फील देखो, इसमें मतलब एंट्री करते ही एक फील सी आती है, मतलब कि समंदर की तरह खुला हुआ, तो वो फील आती है यहाँ पर पहुँचते ही और हवा चलने लगती है प्यारी प्यारी समंदर वाली। मतलब कि मुंबई में सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से समंदर ही है कि जो सारे एक्टर्स इन्जॉय करते हैं इसको और सब लोग जो यहाँ के सिटीजन्स भी हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो लोग भी बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। तो बीच ऐसी जगह है कि थक हार के बंदा आता है और शाम को यहाँ पर बैठता है, शांति महसूस करता है और कभी खुद से भी बातें करता है और दोस्तों से भी बातें करता है, चिल मारने आ जाते हैं लोग, बाकी हम लोग भी आज चिल मारते हैं, लेट्स गो।
0: मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर जिंदगी को दर्शाता है समुंदर। और आज रजत पहुंचे इस समुंदर में और देखिए समुंदर के साथ कैसे वो कबड्डी खेल रहे हैं। वैसे गर्मी और मानसून के मौसम के बीच में यहाँ थोड़ी उमस है लेकिन फिर भी लेकिन वाइब्स ऐसी कि सब यहाँ रिफ्रेश हो जाते हैं जैसे रजत हो गए।
2: कुछ कुछ मन थोड़ा खुश मुझे कर दे मेरी जान की दुश्मन।
1: सो ये वो प्लेस है जहाँ पर मैं जब मुंबई आया था तो सबसे पहले शाम को मैंने, मतलब कि आते ही मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ बैग रखा और शाम को मैं बीच पे आया यहाँ पर बैठने के लिए, इस फील को लेने के लिए जो ये हवा है और ये समंदर है, मतलब आपको जीने के लिए मजबूर करती है, आप कुछ करो लाइफ में उसके लिए मजबूर करती है, खुल के जियो ये सिखाती है ये समंदर।
0: वैसे जब भी कोई कलाकार मुंबई आता है तो समुंदर पर सबसे पहले एक्टिंग क्लासेस लेता है और इसीलिए आज रजत ने कुछ अपने डांस मूव्स और अपना स्वैग दिखाया।

0: पे आया प्यार।
1: अभी थोड़ा सा गंदा हो रखा है वर्सोवा बीच, क्योंकि कुछ ज्यादा ही मतलब लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं समंदर को, और बस लेकिन हमें लेना चाहिए एज इन सोसाइटी ऑल्सो कि यू अपने प्लानट के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी देख रहे हो आप प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें, बहुत कूड़ा फैला रखा है लोगों ने, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबकी प्रॉपर्टी है, इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, सब आपके बच्चों के लिए है, तो वो वहाँ के खेलते हैं, तो गंदगी में कैसे खेलेंगे वो, तो उसके लिए भी है ये, तो बस

0: वैसे रजत हमेशा कुछ तूफानी करते हैं और आज देखिए उन्होंने इस बीच पर कुछ स्टंट ट्राई किए। जी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको स्टंट करना सिखाते हैं और देखिए कैसा है रजत का ये स्टंट समुद्र किनारे।
1: तो वर्सोवा बीच में बहुत कुछ होता है, यहाँ लोग आके बैठते भी हैं और लोग यहाँ पर खाते कूदते भी हैं, लेकिन वो शाम को खाते हैं तो यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा ऐसा खाने वाला। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि फ्लिप्स और स्टंट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं भी कल से आने वाला हूँ, इनसे बात कर ली है मैंने, तो अब फ्लिप्स भी सीखूंगा मैं, स्टंट्स करना सीखूंगा। तो अभी लेट्स प्रैक्टिस की एक चीज़ तो आज सीख के जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो अभी मेरे को कुछ फ्लिप्स सिखाओ ना जो अभी बेसिक कर सकता हूँ मैं। फ्रंट फ्लिप हाथ वाला कर सकता हूँ शायद, लेट्स सी। हो या अब मेरे थोड़ा सा पोस्चर थोड़ा सा गलत है ना।

0: तो गाइज ये फ्लिप्स फ्लिप्स तो बहुत मतलब कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसन मुझे फिट रहना बहुत मतलब कि फिट रहना चाहिए एक इंसान को, तो उस हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल बनाते हैं, तो जो खाते हो आप या जो पीते हो उस हिसाब से, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी लोग चीज़ें वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैं वैसे नेचुरली कर सकूँ विदाउट बॉडी लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग, तो उसके बिना जो मैं कर सकूँ, तो मैं स्टंट्स करता हूँ और मैं रनिंग करता हूँ, जो मैं नेचुरली कर सकता हूँ काइंड ऑफ, जो मैं पब्लिक प्लेसेस पे कर सकता हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बाकी खाने पीने पे बिलीव करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस मैं बूटी भी बहुत तगड़ा वाला हूँ, लेकिन मैं कॉम्पनसेट कर ले जाता हूँ वर्कआउट करके, ऐसे ये सारे चीज़ें करके। तो एंड आई एम ऑल्सो लकी कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो मैं जो भी खाता हूँ वो पच जाता है। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें खाने वाले हैं, तो वो भी दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना बड़ा फूडी हूँ। एंड सो लेट्स गो नेक्स्ट स्पॉट के लिए।
1: रजत वर्मा के इस मुंबई डे आउट का अगला स्पॉट है ये शांत कोना। जी हाँ, मुंबई का समुंदर आपको शांति दिखलाता है। कानों में हेडफोन लगाए रजत अपना फेवरेट गाना सुन रहे हैं और ये उन्हें देता है बहुत सुकून। लहरों का साउंड, उसके साथ आपका फेवरेट म्यूजिक आपको देता है एक अलग टाइप का मेडिटेशन, और रजत वर्मा वही मेडिटेशन आज फील कर रहे हैं।

0: तो गाइस यहाँ पर जब फ्री टाइम होता है तब मैं यहाँ पर आके बैठता हूँ एंड फिर उसके बाद मेरे कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं, जैसे प्रतीक कुहड़ का कोल्ड में से, जो कि बराक ओबामा का भी फेवरेट सॉन्ग है. सो मैं वो यहाँ के सुनता हूँ और मतलब कि ऐसे ही कुछ सॉन्ग्स सुनता हूँ यहाँ पर आके. इंडी सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ ज़्यादा, तो वो सुनता हूँ और यहाँ पर आके फील करता हूँ इस चीज़ को, इस हवा को, इस ब्रीज को एंड समंदर को. तो दिस इज़ माई फेवरेट मोमेंट.
1: रजत शर्मा के साथ मुंबई डे आउट का अगला पड़ाव है पेट पूजा. तो चलिए एक्सप्लोर करें रजत के साथ.
0: अब चलते हैं कुछ खाने के लिए. मुंबई की स्पेशल चीज क्या है? यस, वो खाएंगे हम. लेट्स गो.
1: तो सवार हो जाते हैं रजत के साथ गाड़ी में और घूमते हैं मुंबई उनके अंदाज में. वैसे रजत का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग था. वो पेशे से एक इंजीनियर है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो मुंबई में एक्टर बनने आए. तो उन्होंने मुंबई में ये सारी जगह अपने स्ट्रगल के दौरान जानी थी और समझी थी, जो आज वो हमें शेयर कर रहे हैं. तो सुनते हैं इतनी सी खुशी और बेहद के रजत वर्मा से उनका ये सफर.
0: मैंने नोएडा से स्कूलिंग करी है, मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं. और फिर उसके बाद मैं 9th से लेकर 12th तक मैं लखनऊ चला गया था स्कूलिंग करने के लिए. एंड आफ्टर दैट मैं कॉलेज करने आया. तो बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, तो मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर वाले भी, मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरे दादा इंजीनियर हैं, तो मैं भी इंजीनियरिंग में जाऊंगा. तो ये चीज़ था. ये तो फिर वो स्ट्रगल रहा फैमिली के साथ, तो उनको कन्विंस करने में बहुत टाइम लग गया. तो पापा ने मुझे बीटेक में डाल दिया कि बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है बेटे को. तो मैं करने लगा. तो एक साल कहीं से बीटेक किया मैंने, फिर एक साल कहीं से बीटेक किया मैंने. तो मेरे पापा का बस ये कहना था, और वो मेरे ख्याल से सब फैमिली वाले सोचते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं. वो चाहते हैं कि वो सिक्योर हो जाए, एक डिसिप्लिन लाइफ, काइंड ऑफ एक मतलब कि नॉर्मल लाइफ वो जी सके, तो उसके लिए चाहते थे. बट मैं अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा ही चाहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. मुझे लाइफ में अपना एक्साइटमेंट चाहिए था, लाइफ में रफ्तार चाहिए थी, तो उस चीज़ के लिए मैं कर रहा था. तो मेरे पापा ने बस ये बोला था कि तू ग्रेजुएशन कर ले एटलीस्ट, एंड देन आफ्टर दैट तू जो चाहे वो कर सकता है, और इंजीनियरिंग कर ले कि एटलीस्ट तेरे पास सेकेंड प्लान रहेगा. बट मेरा मोटो ये था कि मुझे सेकेंड प्लान नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा सा एक सेकेंड थॉट आ जाता है मेरे दिमाग में कि हाँ मेरे पास ये है तो लेट्स उसमें चला जाता हूँ, मैं मूव कर जाता हूँ. बट मैं कोई थॉट भी नहीं रखना चाहता था, मैं कुछ नहीं रखना चाहता था, मैं बस एक्टिंग को सब कुछ देना चाहता था. सो दैट इज़ वाई मैं फिर मास कम्युनिकेशन करने गया, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन करनी थी. आफ्टर दैट मैं थिएटर करने लगा. तो मैंने 3 से 4 साल थिएटर किया है, और फिर उसके साथ ही मैंने मैं एक यूट्यूबर के तौर पर भी हूँ. नज़र बट्टू प्रोडक्शंस चैनल के साथ मैं अर्बन कॉन्टेंट बनाता था, तो उनके साथ बहुत मस्ती करी. वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे हर्ष बेनीवाल एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, और अमित भडाना, ये सब लोग सारे फ्रेंड्स हैं. तो हम लोग कंटेंट्स बनाते थे और फिर मज़ा आता था बहुत. वो भी इंटरेस्टिंग लाइफ थी. बट धीरे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे एक्सप्लोर करना था अपनी नई पॉसिबिलिटीज, अपने आर्ट को एक्सप्लोर करना था. सो दैट इज़ वाई मैंने प्लान किया कि लेट्स शिफ्ट टू मुंबई टू एक्सप्लोर माई आर्ट एंड जो भी न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए. सो मैं 15 मई को मैं शिफ्ट हुआ मुंबई. उस टाइम बारिश हो रही थी मुंबई में बहुत सारी, तो मैंने बारिश को एंजॉय किया, क्योंकि मैं पहली बार घर से निकला था बाहर कहीं अपने दम पे. तो मैं उस चीज़ को भी फेस करना चाहता था, उस स्ट्रगल को फेस करना चाहता था, क्योंकि स्ट्रगल भी आपको बहुत, स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको लाइफ में कैसे आपको बहुत ग्रूम करती है. सो उस चीज़ को मैं फेस करना चाहता था. तो मैं घर से निकला, मम्मी पापा को वो कम्फर्ट जोन छोड़ के मैं मुंबई शिफ्ट हुआ. एंड देन यहाँ पर बहुत मुश्किल हुई मुझे कि घर नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें, मैं फ्रेंड से घर पर रुक रहा हूँ, कभी एक फ्रेंड के यहाँ, कभी दूसरे फ्रेंड के यहाँ, कभी कहीं पे. तो फिर कुछ फ्रेंड्स मेरे दिल्ली से मूव हुए यहाँ पर, तो हमने साथ में सोचा कि लेट्स टेक अ फ्लैट. तो वहां पर अब अपना डेरा डालते हैं एंड फिर निकल गया बस ऑडिशन देने के लिए. तो बस ऑडिशन कुछ दिन दिया, बारिश वारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन एक दिन मेरा बर्थडे के दिन 5th अक्टूबर, तो उस दिन आई गॉट अ कॉल कि वी आर ऑडिशनिंग फॉर दिस बेहद. तो उस दिन बस वो हुआ एंड देन आई गॉट द शो. तो ऐसे ही ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड यहाँ पर आके तो रियली आई एम ओवरवेल्म्ड कि जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई. तो यस, इट वॉज अमेजिंग जर्नी.
1: रजत संग मुंबई उनके अंदाज में घूमने का अगला स्पॉट है स्ट्रीट फूड. जी हाँ, मुंबई में स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, फिर चाहे वो वड़ा पाव हो या फिर हो मिसल पाव. तो आज हमें रजत लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ वो अपने बैचलर डेज में खाया करते थे.
0: हम आ चुके हैं बहुत ही अच्छी स्पॉट पे पेट पूजा करने के लिए। तो ये एक स्पॉट है जहाँ पर मिसल पाव मिलता है, वड़ा पाव भी मिलता है और यहाँ से मैं खाता हूँ और बहुत यम्मी होता है। देखो कितनी भीड़ है, आपको पता चल जाएगा कितना फेमस है ये। सो लेट्स गो।
1: मुंबई में ज्यादातर लोग वड़ा पाव खाते हैं, वैसे एक और चीज है जो उतनी ही फेमस है, वो है मिसल पाव, जो रजत को काफी पसंद है और आज वो ट्राई करेंगे।
0: तो मुंबई का बहुत फेमस ये मिसल पाव यहाँ पर मिलता है और मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, जहाँ स्ट्रीट फूड जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मैं ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, तो जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ का लोकल फूड तो खाना खाना बनता ही है। और मुंबई का मिसल पाव नहीं खाया तो बस कुछ नहीं खाया। खाओ, ट्राई करो। क्या बनाते हो? क्या बात है? मम्मी देखेंगे बहुत मारेंगे मेरे को कि बाहर का इतना सब कुछ खा रहा हो ना। अच्छा, मम्मी को वीडियो कॉल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये सब खाया है। मम्मी खाने की बहुत याद आती है, दिल्ली के खाने की बहुत याद आती है, क्योंकि तो दिल्ली का वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये हर जगह की अलग बात होती है, तो मुंबई की ये चीज़ है, स्पेशलिटी है, तो ये भी ट्राई करते हैं।
1: रजत तो मुंबई में रहते हैं लेकिन के पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, तो लगाते हैं उनकी मम्मी को एक वीडियो कॉल और रजत आज उन्हें दिखा रहे हैं कि वो स्ट्रीट फूड तो खा रहे हैं लेकिन ये वन ऑफ द थिंग है। तो चलिए लगाते हैं मम्मी को टेलीफोन।
0: अब मम्मी को वीडियो कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या खाया आज हमने और किसके साथ है आवाज। मम्मी फोन नहीं उठा रही है, मम्मी इग्नोर मार रही है अपने बेटे को। मम्मी फोन उठाओ। लेट्स वेट। मॉम है, थोड़े नखरे तो झेलने पड़ेंगे मॉम के, लड़कियों के झेल सकते हैं तो बॉस मम्मी के तो झेलने पड़ेंगे। नेटवर्क का थोड़ा इशू है और कॉल इज कनेक्टिंग। हेलो मॉम, कैसी हो? तो अभी हम लोग साथ में हैं सब लोग, तो अभी हम लोग खा रहे हैं मिसल पाव, बाहर का स्ट्रीट फूड खाने आए हैं। दिल्ली में तो अच्छा नहीं मिलता मम्मी, है ना, तो यहाँ का खा रहे हैं, लेकिन ठीक है, जाके घर पे कुछ अच्छा खा लूँगा, कॉम्पनसेट कर लूँगा। ओके, सो गाइस अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे मॉम से, मॉम अभी कैलकटा में है मेरी, तो उनसे थोड़ा थोड़ा बात हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है नेटवर्क में। लेकिन मम्मी अभी अच्छे मूड में है, उनको दिख गया है कि आप लोग से बात कर रहा हूँ मैं, सो अच्छी अच्छी बातें कर रही है, नहीं तो घर पहुँचते ही बहुत कुछ सुनाती मुझे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है यार कि अपने मतलब कि वर्किंग शेड्यूल में, अपने बिजी स्केड में अपने घर वालों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उनको कभी कभी आप स्पेशल फील कराएं, उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए और आपके आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल के बस घर वालों से बात करिए, उनसे अच्छे से बात करिए, उनसे पूछिए कि वो कैसे हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, आपके साथ फैमिली भी है, तो जस्ट थोड़ा सा सेल्फिशनेस कम करके अपने घर वालों से पूछे कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है और आज क्या क्या किया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें मैं बात करता हूँ अपने मम्मी से।
1: रजत का शो इतनी सी खुशी हाल ही में ऑफ एयर हुआ है और इन्हें फैंस मैसेज कर रहे हैं कि वो कब वापसी करेंगे। भाई जल्दी वो वापसी तो करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके फैंस उन्हें किस कदर प्यार करते हैं।
0: इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आप भेजते हो, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ इस टाइम पे जब मैं जा रहा होता हूँ, तो काइंड ऑफ कार में टाइम मिलता है कि, और या तो रात को मैं बैठ के देख रहा होता हूँ कि आप लोग क्या भेजते हो मेरे लिए, तो बहुत स्वीट मैसेजेस भेजते हो, तो थैंक यू सो मच कि आपको बहुत पसंद आ रहा है, ऋषि को इतना प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। एंड तो एक मैसेज है जो मुझे अभी मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे, कि किसी ने फोटो एडिट करी है, तो ये है, करता हूँ मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ फैन से, क्योंकि मुझे आपसे ही सीखने को मिलता है और आपसे ही पता चलता है, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है और क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, तो इसलिए मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ फैन से अपने। सो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दिल्ली के इस इंजीनियर ने मुंबई में काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन इनके टीवी शोज ने इनको दी है नई पहचान, तो जाते जाते यूथ को दी उन्होंने एक सलाह ताकि वो भी उनकी तरह अपने सपनों को पूरा कर सके।
0: जो आप करना चाहते हो, अगर आपको सच में लगता है, अंदर से लगता है कि यस ये आपका पैशन है और आप इसको फॉलो करना चाहते हो, तो जस्ट गो फॉर इट. और उसके आसपास की चीज़ें सोच लो, बस एक प्लान कर लो. बस आप ऐसा नहीं कर सकते कि आंख बंद करके कि मुझे एक्टर बनना है तो बस निकल गए. उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता कर लो कि आप एज एन एक्टर निकले हो तो फिर आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपको यहाँ आके क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इमोशनली आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है. तो वो सारी चीज़ें आप सोच समझ के प्लान करिए और बस कर दीजिए फिर उसके बाद. क्योंकि अगर आप रुक गए तो फिर आप रुक जाओगे. तो जस्ट कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन ग्राइंडिंग योर सेल्फ, और बस आप अचीव कर ले जाएंगे जो आपको चाहिए. तो बस अभी भी हमारी जर्नी वही है, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में और बहुत कुछ चाहिए लाइफ से. तो बस मेरा एक मोटो और था, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि जब मैं मुंबई शिफ्ट होने वाला था तब उसने मुझसे बोला था कि अगर स्ट्रगल करेंगे तो राजा की तरह स्ट्रगल करेंगे. तो लेकिन इससे ये मतलब नहीं है इसका कि लग्जरी वो चीज़, लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर मतलब कि विल लिव एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ. ओके, तो इसका मतलब ये है. तो बस अपने एक हर मोमेंट को आप जियो और हर टाइम मस्ती के मूड में रहो, अच्छा खुश फील करो एंड पॉजिटिव रखो यार. पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को. हैप्पीनेस फैलाओ और बस just keep on grinding yourself, keep on hustling. एक दिन तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी. So all the best.
1: तो ये थे रजत वर्मा और उनके फैंस को इंतजार है कि कब करेंगे कमबैक. फिलहाल सास बहू बिटिया के साथ उन्होंने एक मुंबई का अनोखा टूर हमें कराया. तो ऑल द बेस्ट रजत को उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
2: जब भी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कुछ रॉकिंग पोस्ट या फिर कोई शॉकिंग पोस्ट, तो हम भी रिएक्ट किए बिना रह नहीं पाते हैं. और बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग. जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज. पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. जगधात्री और शिवाय की जल्दी शादी होने वाली है और देखिए कैसे शुरू हो चुकी है शादी की रस्में, जिसमें माया झूमकर नाच रही है. देख लीजिए सेट से ये बिहाइंड द सीन नज़ारे, जहां माया डांस करती नजर आई.

0: और ढिल्लो ने शेयर किए हैं उड़ने की आशा के सेट से ये बिहाइंड द सीन तस्वीरें, जहां वो टीम संग खिंचवा रहे हैं ढेर सारी फोटोज।
1: विहान, अब आएगा मजा।
0: नजर डाल लीजिए डॉक्टर आरंभी के नए प्रोमो पर, जहां पर अवंतिका नई चाल चलती है। ऐसे में खतरे में पड़ गई है विहान और आरंभी की जान। ध्रुव बनेगा आरंभी का रक्षक।
2: आरंभी
3: और डॉक्टर विश्वास, यहाँ से सर्जरी से बचा के रखो। किसी भी स्कूल में सिखाया नहीं होगा कि अपनी बीवी पर हाथ उठाए।
4: सीखना तो आपको भी चाहिए, पति पत्नी के बीच दखल न देने की तमीज।
3: अपनी बीवी से भी तमीज से बचाओ।
0: बॉर्डर पर साथ साथ डांस करती नजर आई नेहा हरसोरा और हिमांशी पराशर। देख लीजिए इन दोनों का पंजाबी अंदाज।
5: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।
0: वाली है इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 और सामने आया है इस फिल्म का टीजर।
5: मौत भी अजीब है, उसने मुझे छुआ

0: राधिका की शादी में हर ओर छाया जश्न का माहौल, लेकिन
1: ये शादी के लिए हमारी एक शर्त है, 10 तोला सोना, एक गाड़ी और एक घर।
2: देख लीजिए लक्ष्मी निवास का नया प्रोमो, जहाँ वीर और राधिका की शादी में आ गया है नया ट्विस्ट।
1: ऐसा खानदान चाहिए ना, ऐसे नहीं मिल जाता।
3: दादी दादी दादी, हमका कोई वस्तु है, बिकाऊ है, जो हमारा मोल भाव कर रहे हैं आप लोग?
4: हमें हमारी शादी में हमारी पत्नी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जे शादी हो के नहीं, बिना दहेज के, बिना दहेज के।
5: बेटा है ना तेरे जमील मामू, फिक्र मत कर, बच्चा है तू मेरा बेटा।
2: लाफ्टर शेफ्स में खास मेहमान बनकर आने वाले हैं राकेश बेदी। देखिए कैसे हुई इनकी धमाकेदार एंट्री और शुरू हो गया नया फन।
6: आपको स्प्लिट्स मिला के होस्टिंग करते देखना चाहती।
7: मैं सनी लियोनी हूँ।
6: लियोनी का नाम सुन के लियारी भूल गए।
2: और प्रोड्यूसर मोहित कपूर का बर्थडे है और इस खास मौके पर उन्होंने थ्रो की बर्थडे पार्टी, जिसमें शामिल हुए कई सारे सितारे। भाई यहाँ पर हो गया रियूनियन बिग बॉस गर्ल्स का। भाई खास मेहमान बनकर आई की नीलम गिरी, चाहत पांडे, यामिनी मल्होत्रा। इसके अलावा इस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए कई सारे सितारे, जैसे कि शरद मल्होत्रा, विशाल कोठियान, उर्वशी परदेशी, रूप दुर्गपाल, आशीष मेहरोत्रा, कांची सिंह, सागर पारेख और कई और सितारे जो यहाँ पहुँचे बर्थडे पार्टी में रंग भरने। बीती शाम हुआ फिल्म इक्का का ट्रेलर लॉन्च, जिसमें नजर आए सनी देओल, दिया मिर्जा, तिलोत्तमा, डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और मोनिका शेरगिल। सभी ने देखी स्टेज पर चार चांद लगा दिए। इसी के साथ नजर डाल लीजिए इक्का के ट्रेलर पर।
8: वाह इक्का, ये सब करने के बाद दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण।

0: Hi guys, so I'm so sorry I haven't been able to respond to all your lovely messages and posts.
1: Jasmine Basir ne aspatal se diya apna health update. Dekh lijiye kya kehna hai Jasmine ka.
0: End up how we expected. Life is very unexpected, but I'm much better and should be back soon. But I'm grateful to all your love for my birthday and all your best wishes for my speedy recovery.
1: टीवी पर जल्द आने वाला है कैसी तेरी दिल लगी और खबरों की माने तो इसकी कास्ट को ज्वाइन किया है पूजा नौटियाल ने.
2: नहीं यार मुझे आपके साथ बात करनी.
3: कर ली ना बात सैबी.
1: अलायंस का नया प्रोमो देख लीजिए जहां पर मिनी माथुर और सैबी में शुरू हो गई है लड़ाई.
2: पर सब मुंह पे क्यों नहीं बोलते.
3: वी कैन इरिटेटिंग.
2: मैं इरिटेट कर रही हूं आपको.
3: आई एम डन टॉकिंग. ब्रिंग इट ऑन.
1: अक्षरा सिंह अपनी मम्मी और दलजीत कौर संग पहुंची वेलकम टू द जंगल देखने के लिए.

0: कितनी प्यारी है ना ईशान और नयनिका की ये जोड़ी। देखिए इमीडिएटली हो गए हैं ये भी सोशल मीडिया पर वायरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये कहानी, क्योंकि देखिए ये एज गैप के साथ जब लव स्टोरीज आती है ना तो ये लगती हैं बहुत ही खूबसूरत। आपको तो याद ही होगा बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए फिलहाल लेकर चलते हैं आप सबको इस शो के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में। आज लेकर चलते हैं आपको सैराब के सेट पर।
1: गिटार हाथ में थामे ईशान के कॉन्सर्ट में नयनिका

स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आज हो रहा है ईशान का खास कॉन्सर्ट, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशली रखा गया है, और इसमें शामिल है नयनिका भी। लेकिन आज तो देखिए कैसे नयनिका स्टेज पर ही आ गई है, गिटार हाथ में लेकर खिंचा रही है तस्वीरें, कर रही है डांस, और दिख रहा है इनका खुशी वाला अंदाज। भाई देखिए कैसे हाथ में गिटार आते ही नयनिका के रंग ढंग ही बदल गए हैं। स्टेज पर वो झूम रही है और कर रही है मस्ती, सब कुछ भुलाकर। भाई कभी गिटार हाथ में लेकर रॉकस्टार वाले पोज देती

तो कभी सभी टीम के साथ तस्वीरें खिंचाती। भाई आज तो नायनिका ने ईशान के साथ भी ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। आज इन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये तो है बिहाइंड द सीन नजारे। अब बात करें सीन की, तो यहाँ पर नायनिका पहुँच गई है ईशान के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए, जो कि खास कैंसर पेशेंट्स के लिए रखा गया है। ऐसे में छिड़ गए ईशान के सुर, देखिए कैसे दिखा इनका अलग ही अंदाज। और आज भी ईशान ने अपने सुरों से सबका दिल जीत लिया। हालांकि इस कॉन्सर्ट के दौरान नायनिका के चेहरे पर थोड़ी उदासी है, लेकिन ईशान बार बार नायनिका की तरफ देखकर ही गाना गा रहे हैं और कर रहे हैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश।

0: असल में हुआ यूँ था कि कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले यहाँ एक लड़की आई थी जिसने नौनिका को ईशान के खिलाफ खूब भड़काया है। उसने ईशान को कैसेनोवा बताया है, जिस बात से नौनिका हो गई है थोड़ी सी परेशान। भाई ये प्लान किसी और का नहीं, ईशान की गर्लफ्रेंड ईना का है, जो नहीं चाहती कि ईशान और नौनिका एक हो जाए, इसीलिए उसने इस लड़की को नौनिका को बहकाने के लिए भेजा है।
1: मेरे और शांत के बीच में कोई समझ भी नहीं, और ईशान से काफी चिंतित हूँ। ये तो अच्छा से सोच भी नहीं सकता, दोबारा मुझसे ऐसे।
0: तो भाई फिलहाल तो नौनिका लगता है इस लड़की की बातों में आ गई है, लेकिन देखना होगा कि ईशान ये गलतफहमी कैसे दूर करता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अरे पति ब्रह्मचारी की ये कहानी तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। कोई भी सीन अपलोड करो, कोई भी इमोशन अपलोड करो, ईशा और सूरज का कोई भी BTS अपलोड करो, फैंस तो क्रेजी हैं इस कहानी के लिए। अरे जब भी सास बहू और बेटा की टीम अपलोड करती है पति ब्रह्मचारी का कोई भी वीडियो YouTube पर, वो इमीडिएटली वायरल हो जाता है, इतनी पॉपुलर है ये कहानी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सूरज और ईशा के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज।

सूरज की बहन काव्या पर टूटा पहाड़। फना हुआ आरव। सच से बेखबर ईशा।

0: केबल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में महा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर काव्या देखिए टूट सी गई है क्योंकि उसका पति आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा है। असल में सूरज के पापा और आरव का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सूरज के पापा कोमा में चले गए हैं और आरव की मौत हो चुकी है और ये सब षड्यंत्र किसी ने रचा है। ऐसे में काव्या अपने भाई सूरज से इंसाफ मांग रही है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और घर में मातम छाया हुआ है। ऐसे में सूरज ने ठान लिया है कि वो आरव को इंसाफ दिला कर ही रहेगा।
1: एक्चुअली ईशा जी अपनी ट्रेनिंग में हैं और यहाँ पे सब मतलब तूफान सा मच गया है, बिकॉज जिस लैंड पे पापा स्कूल बनाना चाहते थे उस पे किसी बिल्डर का मतलब कब्जा हो गया है। तो सूरज पूरी तरह से कोशिश किया अपने एंड से उसे सॉर्ट करने की, बट इसमें पॉलिटिशियन कॉन्टैक्ट होने की वजह से मंत्री जी एंड ऑल सब लोग इन्वॉल्व है, मतलब पूरा सिस्टम उल्टा है। सूरज सिस्टम के आगे मतलब पराजित हो जाता है, हार जाता है, एंड उसी के साथ साथ जो आरव हैं एंड पापा को चोट लगती है, आरव को भी चोट लगती है एंड आरव को पापा को कोमा में चले जाते हैं एंड आरव मतलब जिंदगी छोड़ देते हैं। इन शॉर्ट आरव मर चुका है एंड काव्या जो मेरी बहन है वो विधवा हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और वो बार बार यही बोल रही है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाइए भैया कुछ भी करके। और सूरज मतलब कि पूरी तरह से बेहताशा सा हो गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या करना चाहिए।
2: भैया मुझे सच बताओ ना भैया, आरव और आप मिलकर मुझसे मजाक कर रहे हो ना।
0: इन सब बातों से ईशा अनजान है भाई, वो तो आईपीएस की ट्रेनिंग में जुटी है। ऐसे में जब ईशा वहाँ से सूरज को फोन भी करती है तब भी सूरज उसे कुछ नहीं बताता, बस ये कह के टाल देता है कि आरव और सूरज के पापा का हल्का सा एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें हल्की चोटें आई हैं। ऐसे में ईशा को कहीं ना कहीं बातें खटक जरूर रही हैं, लेकिन सूरज उससे ये प्रॉमिस लेता है कि वो अब लौटेगी तो आईपीएस ऑफिसर बनकर ही।
3: सूरज तुम काम करो, फोन क्यों उठा रहे हो ना तुम, ना काव्या ना कोई और, काम करो तुम सब। तुम सब ठीक हो ना, क्या हुआ है कल से? कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, वरना तो एक कॉल पे फोन उठा लेते हो। बोलो
1: जी को ये भी समझा रहा है उसी में, जब ये हॉस्पिटल में था, जब ये बात पता चल गई थी कि आरव गुजर गया है, पापा कोमा में है, तो वो ईशा जी को बोल रहा था कुछ भी हो जाए छुट्टियों में भी आप नहीं आएंगी, प्रॉमिस कीजिए जब तक आप आईपीएस की वर्दी नहीं पहन लेती मेरे सामने नहीं आएंगी। तो यही सब समझाता है, ईशा जी को मोटिवेट करता है, क्योंकि ईशा जी को थोड़ा सा भी अगर खबर पहुंचा कि आरव मर चुका है, उनका भाई गुजर चुका है, तो वो तो पूरी तरह से टूट जाएंगे, वो तो सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे ट्रेनिंग।
0: भाई अब सूरज ने ठाना है कि वो आरव और काव्या को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। ऐसे में उसने फैसला कर लिया है कि वो आईएएस ऑफिसर बनकर नहीं बल्कि अपने पहले रूप में आकर इंसाफ दिलाएगा, इसीलिए उसने अपने आईएएस ऑफिसर की पदवी से रिजाइन कर दिया है।
4: उस सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकता जहां सच का साथ देने वाले को

0: सूरज ने रिजाइन कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ईशा पहुंच गई ये दो नेम प्लेट्स लेकर, जिसमें एक पर सूरज आईएएस ऑफिसर का नाम है तो दूसरी प्लेट पर है ईशा आईपीएस ऑफिसर का नाम। ईशा काफी खुश है और उनकी खुशी सूरज तोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए अब भी सूरज ने ईशा को सच नहीं बताया है।
1: हमारा सपना यही चाहते थे ना कि हम दोनों साथ साथ ऑफिसर्स पर हर किसी के हक के लिए लड़ेंगे और हफ्ते भर काम करेंगे और हफ्ते भर दिल लगा कर काम करेंगे और संडे छुट्टी, उस छुट्टी वाले दिन हम पूरी फैमिली पिकनिक पर जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे और सारी खुशियां अपनी झोली में भर लेंगे, है ना।
0: भाई ईशा को देख सूरज आंसू जरूर बहा रहे हैं, लेकिन ईशा को लग रहा है कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन सूरज ही जानता है कि उसके दिल में कितना दर्द है क्योंकि उसने अपना सपना जला दिया है। जी हाँ, ईशा के जाने के बाद देखिए कैसे अपने ही हाथों से सूरज अपनी नेम प्लेट जला रहा है और जला दिए हैं उसने अपने सारे सपने भी। अब सूरज का बदला बदला रूप देखने को मिलेगा, तो भाई अब देखना होगा कि कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है।
2: जिंदगी में वापस नहीं लौटेगा, पुराने जिंदगी से कई गुना ज्यादा अलग तरीके से आगे आएगा, बिकॉज अब ये पुराना गुंडा वाला सूरज नहीं है, बिकॉज जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। एक आईएएस भी है, आईएएस रहने के बाद आईएएस की पदवी से जब ये खुद रिजाइन देता है तो वो एक अलग सूरज निकल के आएगा, बिकॉज वो सूरज अभी क्या बनेगा ये तो मैं खुद नहीं जानता, बिकॉज वो तो जिस हिसाब से हमारे क्रिएटिव चेंजेस बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस हिसाब से होगा। बट इतना डेफिनेटली बताना चाहता हूँ जो आगे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाली है स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जहाँ पे सूरज पहले एक गुंडा था अब वो मतलब कि नेक्स्ट लेवल का गुंडा बनेगा। गुंडा नहीं बोल सकते, मतलब सारी चीज़ों को जो सही है वो सही तरीके से, मतलब काम सही करता है लेकिन गलत तरीके से। सो यही है, मतलब कि लोगों को न्याय भी दिलाता है गलत तरीके से।
0: मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर बस इतना याद रखिए कि जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। सकारात्मक बातें ही सोशल मीडिया पर शेयर करें, ऐसी पोस्ट शेयर करें जो सबको इंस्पायर करते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बढ़ावा देते हैं। उसके साथ साथ हम लेकर हाजिर हैं अब आपके लिए ये अगली खबर जिसे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी गरमा गरम। कैसे? ऐसे।
0: आ गई जूही लेकर अपनी नटखट अदाएं।
4: मुझे प्यार से सब लोग जूही मई बोलते हैं, गुस्से से क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो जो पता नहीं है वो मैं आपको कैसे बताऊं।
0: हुआ शो का ग्रैंड लॉन्च।

संजू ही एक ऑटिज्म है और ऐसे में उसे दुनिया से सामना करने में शोर शराबे में मुश्किल होती है, इसलिए तो डरी डरी सहमी और घबराई रहती है। लेकिन बात करें दिमाग की तो वो है काफी तेज और जीनियस। तो आइए देखते हैं जूही मुई के ये लॉन्च के नज़ारे, जहां है डांस, मस्ती, केक कटिंग और बहुत कुछ। तो भाई जूही की एंट्री हुई है इस डांस के साथ।

0: हेलो, मैं वो चूही। इतने सारे नए चेहरे देखकर थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ, सो प्लीज बी अ लिटिल काइंड। तो मुझे प्यार से सब लोग जूही मुही बोलते हैं। गुस्से से क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो जो पता नहीं है वो मैं आपको कैसे बताऊं। ये ऐसा सिस्टम फेलियर मेरे साथ कभी कभी होता रहता है। क्यों होता है, कैसे होता है वो नहीं पता, इसलिए जो समझ नहीं आता वो कैसे समझाऊं आप लोगों को। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है मेरा रूटीन। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
1: जूही का भाई है करण, जो हर कदम पर जूही का साथ देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, और आज भी वो पहुंच गया है जूही के बर्थडे के मौके पर। जी हाँ, आज है जूही का बर्थडे, और ऐसे में उसके भाई ने सरप्राइज प्लान किया है और साथ ही डांस कर जूही को खुश कर रहा है।

0: दी, आखिर ये दिन आ ही गया जहां मैं यानी कि करण आपसे कह पाऊंगा हैप्पी बर्थडे जुई मुई।
1: थैंक यू करण।
0: जुई मुई, आप इतनी गिफ्टेड हो ना, इसलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। अरे दी जोकिंग, मैं लाया हूं आपके लिए गिफ्ट। आपका स्पेशल एंड वेरी स्पेशल गिफ्ट।
1: कहाँ है करण गिफ्ट?
0: गिफ्ट बस आ ही रहा है जुई मुई।
2: इसके बाद हुई एंट्री टीवी के नए सिंघम यानी कि संयम की, जिसका किरदार विजेंद्र कुमेरिया निभा रहे हैं।

0: भाई धमाकेदार डांस के साथ संयम ने एंट्री तो ले ली, लेकिन आज स्टेज पर फिर एक बार जूही के साथ इनकी नोकझोंक शुरू हो गई है।
1: आते ही सर आपको क्या बोला मैंने, जन्मदिन की मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गिफ्ट ही हुआ ना?
2: आपको बोलना चाहिए था हैप्पी बर्थडे टू यू जूही, ये तुम्हारा गिफ्ट है। सिंपल
1: सिंपल तो यो होगा कि यो गमला लो और मेरे सर पे फोड़ दो।
2: भारतीय न्याय संहिता 115 सेक्शन लग जाएगा मुझ पे, मेरे को जेल नहीं जाना, नहीं जाना जेल।
1: रे समझा ले अपनी बहन ने।
3: देखिए चिल पिल गाइस, क्या हमेशा लड़ते रहते हो? दी टुडे इज जूही'स बिग डे, सेलिब्रेट करते हैं ना। अब मम्मा मम्मा जल्दी आ जाओ।
0: तो भाई करण ने नोकझोंक पर ब्रेक तो लगा दिया, अब बारी जूही का बर्थडे मनाने की। और यहाँ पूरा परिवार एकजुट हुआ है, काट रहा है केक और साथ ही मना रहे हैं ये सभी खुशियाँ।

0: बर्थडे प्रेजेंट बनता है। हैप्पी बर्थडे। क्या बनाएं ये बर्थडे गिफ्ट? मैं कबूल करता
1: हूँ। तो आइए जानते हैं जूही मुई और उनकी पूरी कास्ट से कि क्या है इस सीरियल में खास।
2: दिस इज माई होम एंड नाउ आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड जूही मुई। एंड जूही, मैं सोच रही थी खड़े होके कि यार जूही इज नॉट जस्ट अनदर कैरेक्टर फॉर मी, जस्ट नॉट अनदर प्रोजेक्ट। यू हैव नो आइडिया कि मेरे दिल के कितना करीब है। हर शो होता है लेकिन दिस वन होल्ड्स अ वेरी वेरी स्पेशल रूम। एंड आई थिंक टिल द टाइम आई डाई आई विल बी ऑलवेज सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी हियर ऑन स्टेज, एवरीबडी हु इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, स्पेशली समीर सर, गोल्डी सर, कलर्स टीम, एवरीबडी। यू गाइज आर, आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल।
3: वैसे तो सब कुछ बोल दिया है सबने, समीर सर ने, गोल्डी सर ने, ऑल आर एक्टर्स, ईशा, तो आप सब समझ ही गए होंगे कि कितना एक बढ़िया शो आने वाला है जो आपको देखने को मिलेगा। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी शोज किए हैं लेकिन ये शो बहुत पसंद आया मुझे, इसकी सिंप्लिसिटी के लिए भी, और जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, अगर वो हम ऑडियंस तक पहुँचा पाए तो हमारी जीत होगी।
1: जाइए तैयार जूही की अनोखी कहानी देखने के लिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: तुम हो ना, ये रियलिटी शो ऐसा है जिसमें आम लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सोशल मीडिया पर भी हम सबका दिल जीत रही हैं। जब भी आता है ना शो का कोई ना कोई नया प्रोमो, हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। हाल ही में देखा था मैंने अपने शो भाग्य लक्ष्मी की स्मिता बंसल, हाँ नीलम भाभी को, जिन्होंने भी किया है इस शो में एक खास प्रेजेंस। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको तुम हो ना के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है शो में आज।
1: अक्सर जो महिलाएं होती है उनके 16 श्रृंगार के बारे में हमने सबने सुना है और कई सदियों से सुनते आ रहे हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में। लेकिन इनका यह मानना है कि महिला की असली शख्सियत सामने आती है 17वें श्रृंगार। चित्तौड़गढ़ से आई हमारी सुपरस्टार किरण भारती के लिए जोरदार तालियां।
2: 17वां श्रृंगार होता है आजादी। बहुत कम उम्र में मेरी शादी हुई थी, 2-4 साल मेरी शादी के बहुत बहुत नाजों से पली पड़ी। एक बेटी राजस्थानी कल्चर में चली गई और ऐसा सब कुछ झेला, तो उन सब माहौल को देख के ऐसा लगा कि बस अब इनफ हो गया है, अब आगे बढ़ना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए जीना है और आज़ादी चाहिए। ज़्यादातर घर आज भी ऐसे हैं, इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है, फिर भी आज भी राजस्थान में घूंघट प्रथा बंद नहीं गई। मैं भी निकालती हूँ घूंघट और मैं चाहती हूँ कि ये घूंघट प्रथा बंद होनी चाहिए। शर्म आँखों में होती है, घूंघट में नहीं। वेरी नाइस। पर सबसे ज्यादा जो मुझे सपोर्ट किया है वो मेरे हस्बैंड ने।
3: उस समय में कोई प्रथा नहीं थी कि मतलब कोई बहू या किसी की बहू काम करे, बेटियों को भी परमिशन नहीं थी, तो बहू तो बहुत दूर की बात है। फिर समय पर मुझे भी लगा कि मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो कौन खड़ा होगा, तो ये समझ के मैं हर तरीके से इनको सपोर्ट किया। आज यहाँ खड़े हैं हम तो इनकी बदौलत है। एक गाना वायरल हुआ था, उससे भी मुझे भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि मेरे भाई फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे बधाई दी। इनसे ज्यादा मुझे ज्यादा बधाई मिली चित्तौड़ में कि यार पाजी जी का गाना वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज इस मंच के द्वारा मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि महिला नहीं अपने घर का बेटा समझ कर सपोर्ट करना चाहिए, जैसे आज हमें सपोर्ट करते हैं हमारे माता पिता।
2: मुझे इनको फैमिली को देख के लगा नहीं था कि मैं इनकी सोच को कभी बदल पाऊंगी, बहुत टफ था मेरे लिए, पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली जो मैंने सोचा था वो 5-6 सालों में कर दिया, सोच बदल दी मैंने।
1: भारतीय महिलाएं एक और श्रृंगार भी करती हैं, खुद को सजने संवरने में एक और चीज भी लगाती हैं और वो है मेहंदी। लेकिन ये हमारे जो सुपरस्टार हैं इन्होंने मेहंदी का रंग सिर्फ भारत में नहीं फैलाया, इन्होंने उसे वर्ल्ड फेमस भी किया। जोरदार तालियां मुंबई से हमारी सुपरस्टार वीना नागराज जी के लिए।
4: मेहंदी चीज को ऐसे पहले जमाने में तो ऐसे कुछ मानते ही नहीं थे, मेहंदी वाली है, मेरे को भी ऐसे बोला जाता था मेहंदी लगाती है, इट्स ओके। पर मेरी लाइफ, मेरी ये बड़ी बहन है, उसने चेंज की, क्योंकि घर से बाहर निकलना ही नहीं था।
5: मैं उसको बचपन से देख रही थी कि वो कुछ ना कुछ करते ही रहती थी, तो मुझे ऐसा मन में ख्याल आया कि हम लोग कितना दिन तक ये सब काम करते रहेंगे, अगर इसको इतना अच्छा आर्ट है तो इसको क्यों ना अपन आगे भेजे।
4: और वो मैं पहला दिन बाहर निकली, वो दिन भगवान का शुक्रिया अदा करूं क्या बोलूं, पूनम ढिल्लो जी वहां आए और वो आके बैठे, मेरे को मेहंदी लगाना है तो मैंने एक हाथ में लगाया और उन्होंने बोला बहुत खूबसूरत है आपकी मेहंदी, बहुत खूबसूरत। बस वहां बैठ बैठ के ही मैंने सोच लिया कि मैं मेहंदी करूंगी, मुझे अंबानी की यहाँ का ऑर्डर आया था, तो मैं छोटी थी तभी, तो आजू बाजू वाले सब अंबानी के घर पे ये लेना वो लेना ये करना वो करना। और रही मेरी माँ की बात, उसने बोला तेरा जितना चार्ज है उतना तुझे लेना है और तू अंबानी के घर पे जा रही है तू भगवान का शुक्रिया अदा कर कि तू उनके घर पे जा रही है। कोकिला बहन अंबानी ने तभी मुझे पूछा आपके घर पे फोन नहीं है, आपका कार्ड नहीं है, तब मुझे पता चला, उन्होंने सलाह भी दी कि बिजनेस ऐसे होता है।
1: आपको कितना गर्व महसूस होता है?
5: हमारे फैमिली में कुछ भी नहीं था, सबका नाम इसके वजह से गुजर गया।
0: आज तो सोशल मीडिया पे ही चर्चा करेंगे हम कहानी में आए हुए इस नए ट्विस्ट और जानेंगे आप सबका ओपिनियन। कोई तो होगा इस ट्विस्ट के साथ और कोई होगा इस ट्विस्ट के अगेंस्ट। मजा आएगा ना, क्योंकि हो जाएगा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पोल। देखिए सोशल मीडिया ना कमाल की चीज़ है, वैसे कमाल के ट्विस्ट आते हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में और जितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं उनमें आए हुए ट्विस्ट। तो लेट्स ट्विस्ट।
6: एक्ट्रेस के सीरियल अनुपमा में जाने अनजाने प्रेम दे रहा है अनुपमा का साथ। जरा देखिए कैसे जब प्रेम राही के साथ घर की ओर निकलता है तो उसकी नजर पड़ जाती है उस लड़की पर जिसने अंश के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। ऐसे में बस फिर क्या, वो उस लड़की और उसके साथ खड़े लड़के के बारे में सच जानना चाहता है और तो और उन्हें पकड़ना भी चाहता है। इसलिए देखिए कैसे वो कार से बाहर निकलने लगता है। हालांकि राही उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रेम को सिर्फ सच सबके सामने लाना है, इसीलिए वो जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। प्रेम और राही के हाथ से वो लड़का लड़की छूट जाते हैं तो वहाँ अनुपमा भी दिग्विजय के साथ निकल चुकी है अंश के लिए सबूत इकट्ठा करने, ताकि अंश को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जा सके और उसमें उसे कामयाबी भी मिलेगी।
7: मतलब इसका घर या तो इसका ऑफिस यहाँ पास ही में होगा।
8: टिया ने ये वीडियो उसने मुझे फॉरवर्ड किया था, शायद आपकी कोई हेल्प हो जाए।
9: अंश को लेके आओ।

0: महादेव एंड सन्स।
1: आशीष जी हमारी बात सुने, आशीष जी।
2: कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में आज मोगरा का सच सभी घरवालों के सामने आ गया है। इससे पहले कि उसका सच महादेव और विद्या के सामने आए, मोगरा ने सुसाइड ड्रामा शुरू कर दिया। रास्ते में पड़ी हुई टूटी बॉटल हाथ में लेकर अपने आप को मारने की जिद करने लगी। ऐसे में मोगरा का पति उसे रोकने की कोशिश कर रहा है,

0: मोगरा हम बात करते हैं, कांच फेंको नीचे।
1: हम वहाँ रहेंगे तो हमें चोर चक्कर बोला जाएगा, हमें धुतकारा जाएगा। इससे अच्छा यही है कि हम मर जाते हैं।
2: नहीं, नहीं बेटा।
0: तो मोगरा कांच फेंको, पागलपन मत करो, हम बात करते हैं ना।
1: पागलपन नहीं है ये। प्यारे आशीष जी, हम आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार को हम यकीन में बदल के रहेंगे।
0: मोगरा कांच फेंको,
1: पहले आप हमें और हमारे परिवार को माफ करिए, वरना आज हम खून से अपना नाम साफ करेंगे।
0: मोगरा, मोगरा कुछ हो जाएगा, छोड़ो मोगरा, मोगरा छोड़ो, हम बात करते हैं। मोगरा, मोगरा छोड़ो,
1: हमें नहीं जीना है। अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम मर जाएंगे।
0: मोगरा, मोगरा छोड़ो, हम बात करते हैं। मोगरा
3: भाई, मोगरा के पति का दिल तो पिघल गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मोगरा से प्यार करता है। लेकिन रज्जी, उसे पता है कि मोगरा नाटक कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि मोगरा का सच माँ और पापा को पता चल जाए। ऐसे में रज्जी और नर्मदा घर पहुँच गई हैं और विद्या माँ के सामने मोगरा का सच लाने की कोशिश करती हैं कि तभी धीरज नर्मदा को टोक देता है।
4: माँ, दरअसल बात ये है कि
5: ये सारी बात माँ को हम बता देंगे, क्योंकि दादा का बार बार फोन आ रहा है। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, जब हम हॉस्पिटल में थे वो बैक टू बैक कॉल कर रहे थे पूछने के लिए माँ कि वो राजमंगल की तबीयत ठीक है या फिर नहीं। तो इसीलिए आप एक बार उनको फोन करो, उनको बता दो कि राजू अंगल की तबीयत एकदम ठीक है और वो परेशान ना हो। आशु दादा, ये लीजिए, ये सामान संभालिए। आइए माँ, आप चल के आराम कीजिए, सोइए। आइए आइए आइए।
3: भाई, आज तो धीरज ने मोगरा को बचा लिया, लेकिन मोगरा अपने षड्यंत्रों में बाज नहीं आएगी। वो फिर से कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगी और ये बात रज्जी और नर्मदा दोनों को बखूबी पता है।
1: धीरज, हमारी एक बात ध्यान से सुनो और समझो। आज ये बातें छुपा के तुम आशु दादा की फीलिंग्स नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम मोगरा के हाथों में वो ईंधन दे रहे हो जिससे वो इस घर को बर्बाद कर देगी, वो कभी नहीं सुधरेगी। ये बात लिख कर ले लो हमसे। इलाज करना है तो रज्जी और नर्मदा का, फिर उसके बाद हमें इस घर में राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा।

0: आज के वर्ल्ड सोशल मीडिया स्पेशल डे पर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सोशल मीडिया से जुड़ी ये खबरें आप सबको पसंद आई हो। आप बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए सास बहू और बेटियां। अब तो वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। वेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
9: केदारनाथ में भक्तों ने दर्शन कर बनाया नया रिकॉर्ड, दो महीने आठ दिन में रिकॉर्ड 13,61,000 से अधिक यात्री पहुंचे, हर रोज 7,000 से 8,000 यात्री पहुंच रहे हैं बाबा के धाम। अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 4 साल की मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ और अन्य रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। मेंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समंदर में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान, रेस्क्यू का वीडियो किया जारी। यूपी में मिशन शक्ति के तहत पहली बार 40 ग्रामीण महिलाओं ने घूमा शहर, बाबा विश्वनाथ सहित कई मंदिरों में की पूजा, चेहरे पर दिखी खुशी। सरिस्का में अब पर्यटकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट, टॉयलेट और नई सड़क का होगा निर्माण। हैदराबाद पर छाया फीफा का कुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर कटआउट और विशाल पोस्टरों से पटी शहर की गलियां और दीवारें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना, दिल्ली में मॉनसून पहुंचने में हो सकती है 1 हफ्ते की देरी। अगले 2 दिन में गुजरात, एमपी समेत कई राज्यों में आगे बढ़ सकता है मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। महाराष्ट्र में जालना के ढोकसाल तांडा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में भरा पानी। दो जुलाई और 3 जुलाई को महाराष्ट्र और गोवा में कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पालघर में रेड अलर्ट। नवी मुंबई में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जमा हुआ कई फीट पानी। भारी बारिश से एपीएमसी मार्केट में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। अकोला में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में बारिश के बाद बढ़ा कई नदियों का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर, कई घाट पानी में डूबे। सूरत में मानसून की धमाकेदार एंट्री, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों में भी भरा पानी। सिक्किम के सिंगथम में जबरदस्त भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा, कई सड़कें बंद। मलबे में फंसे पर्यटकों की गाड़ियां, सैलानियों की बड़ी परेशानी। सिंगथम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई नदियों का बड़ा जलस्तर। दिव्य अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बड़ी तादाद में जुटने लगे श्रद्धालु, बम बम भोले के जयकारों की गूंज। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू में बनाया गया स्वागत द्वार। यात्रा शुरू होने से पहले देश विदेश से श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू में शिव भक्तों को दिव्य सौगात, तवी रिवर फ्रंट पर भव्य महाआरती का शुभारंभ। तवी नदी के तट पर महाआरती के दौरान काशी और हरिद्वार की गंगा आरती जैसा भव्य नजारा, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जम्मू की पहचान बनाने की तैयारी। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार हुई महाआरती में बड़ी तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु, ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का भी किया गया आयोजन। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की हुई शुरुआत, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे जम्मू। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लगी लंबी कतारें, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को जवानों ने परखा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर इलाकों में चलाया गया सर्च अभियान, सभी जगहों पर मुस्तैद दिखे जवान। अमरनाथ यात्रा होगी आसान, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे 3.5 किलोमीटर लंबी टनल तैयार। रामबन के डिगडोल पंतेहाल के बीच 3.5 किलोमीटर लंबी टनल के साथ साथ रामसू मगरकोट फ्लाईओवर का भी काम पूरा। नई परियोजनाओं के शुरू होने से रामबन और बनिहाल के बीच यात्रा अधिक होगी सुरक्षित, सफर का समय और दूरी भी होगी कम। श्रद्धालु के सुरक्षित और आसान सफर के लिए पहलगाम और बालटाल रूट पर ट्रैक को किया गया चौड़ा, खूनी नाला और पंथियाल जैसे सबसे जोखिम भरे इलाकों में अब यात्रियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त, सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था। सूरत में भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत। रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाने के लिए वृंदावन से मंगवाई गई 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार की है ये विशेष पोशाक, प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां, रथ यात्रा के लिए पहली बार मुंबई से आया विशेष रथ। 16 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। सूरत में 17 किलोमीटर रूट पर निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में जुटते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। अलवर में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान हुए बीमार, 15 दिनों तक जड़ी बूटी और काढ़े का करेंगे सेवन। अब 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में रहेंगे विराजमान, काढ़ा और औषधि से किया जाएगा उनका इलाज। खाने में दलिया, खिचड़ी, फल, ड्राई फ्रूट्स और बीमार मरीज को दी जाने वाली खाद्य सामग्री भगवान जगन्नाथ को भोग में दी जाएगी। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने ईवी बाइक से जगन्नाथ यात्रा के रूट का किया निरीक्षण, कई इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई गश्त। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। सावन में होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी, सीसीटीवी कैमरे ड्रोन से होगी मेले की निगरानी। सावन में बाबा विश्वनाथ मंदिर की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और एटीएस की होगी तैनाती। भक्ति के रंग में रंगी नजर आई अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल, बेटा और बेटी के साथ की काल भैरव के दर्शन। सांसद प्रिया सरोज के साथ डिंपल की बेटी टीना और अदिति ने विधि विधान से की मां गंगा की आरती, मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक। Yeah. रामेश्वरम में गांव के मंदिरों के पुजारियों के लिए 56वें मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर का आगाज, बड़ी संख्या में पुजारियों ने लिया इसमें हिस्सा। शिविर में पुजारियों को मंत्रोच्चार, अभिषेक, सजावट विधियों और थेवरम, तिरुवास्कम और दिव्य प्रबंधम जैसे पवित्र भजनों के पाठ का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कोटा में बच्चों के संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्र छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य। अलवर के सरिस्का में पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधा, बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क, टॉयलेट और गेटों का होगा कायाकल्प, कई सुविधाएं होंगी और भी बेहतर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। ये है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: No.
1: Oh, no?
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
4: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody hoo.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
6: है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: केदारनाथ में भक्तों ने दर्शन कर बनाया नया रिकॉर्ड। 2 महीने 8 दिन में रिकॉर्ड 13,61,000 से अधिक यात्री पहुंचे। हर रोज 7,000 से 8,000 यात्री पहुंच रहे बाबा के धाम। अम्बाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 4 साल की मासूम का रेस्क्यू जारी। पुलिस प्रशासन, NDRF और अन्य रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। बेंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समंदर में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान, रेस्क्यू का वीडियो किया जारी। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत पहली बार 40 ग्रामीण महिलाओं ने घूमा शहर। बाबा विश्वनाथ सहित कई मंदिरों में की पूजा, चेहरे पर दिखी खुशी। सरिस्का में अब पर्यटकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। बबुर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट, टॉयलेट और नई सड़क का होगा निर्माण। हैदराबाद पर छाया फीफा का खुमार, फुटबॉल थीम वाले बैनर, कटआउट और विशाल पोस्टरों से पटी शहर की गलियां और दीवारें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, हिंदू कैलेंडर का सबसे खास महीना है आषाढ़, जो भगवत उपासना का महीना भी कहा जाता है। आषाढ़ माह से चतुर्मास भी लग जाता है, जब 4 माह के लिए देवों का शयन होने से सारे शुभ संस्कारों पर भी विराम लग जाता है। तो क्या है आषाढ़ माह की महिमा, ऐसे कौन से छोटे छोटे प्रयोग करके आप आषाढ़ मास में ईश्वर की महाकृपा पा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं।

भगवत भक्ति का माँ है आशा। जप तप ध्यान और साधना का माँ है आशार। तो साथ ही कामना पूर्ति का महीना भी है आशार।

0: माना जाता है कि इस महीने में की गई भगवत उपासना से आपको हर दोष और पाप से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ऋतु परिवर्तन के साथ ही इस माह का आगाज होता है, जिसमें व्रत त्योहारों की भरमार होती है। इसलिए आषाढ़ के महीने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। ये संधि काल का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने से रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस बार आषाढ़ मास 30 जून से 29 जुलाई तक रहेगा।
1: आषाढ़ का महीना मुख्य रूप से भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, माता दुर्गा और भगवान शिव और गुरुदेव महर्षि वेदव्यास के विशेष पूजन के लिए जाना जाता है। आषाढ़ का नाम है पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस महीने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ और जप तप का दुगना फल आपको मिलता है। इस महीने में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी प्रारंभ होती है, इसलिए इस महीने का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
0: चलिए पहले आपको बताते हैं आषाढ़ माह में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिनों तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की गुप्त पूजा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होने की मान्यता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री हरि 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। वे क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से चतुर्मास की शुरुआत होती है और शुभ मंगल कार्यों पर विराम लग जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। शिष्य अपने गुरुओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है, जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ये व्रत शुरू होता है, जिसमें अखंड सौभाग्य और अच्छे वर की कामना की जाती है। इसके लिए माता पार्वती की पूजा की जाती है। आषाढ़ अमावस्या पितरों की शांति, तर्पण और दान पुण्य के लिए जानी जाती है।
1: इस समय को ऋषि मुनियों ने भी आत्मचिंतन के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है, क्योंकि इस महीने में वर्षा ऋतु का भी आगमन होता है और प्रकृति में भी ऊर्जा बनी रहती है। इस महीने में कई लोग पूजा पाठ या अपने धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं और ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ महीना के दौरान सूर्य और मंगल देव की पूजा का अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी मानी जाती है।
0: और भी कई परम फलकारी तिथियां इस महीने में आती हैं। आषाढ़ का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र माना गया है। इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। इस महीने को ज्योतिष में भी बहुत खास माना गया है। जानकारों की अगर माने तो आषाढ़ के महीने में की गई उपासना कभी निष्फल नहीं होती।
1: आषाढ़ के महीने में हर गुरुवार को कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित करें। शाम को तुलसी के पास घी का एक दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी पैसों की कोई कमी नहीं होती। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह लाल कपड़े पर श्री यंत्र स्थापित करें, इसे गंगा जल और दूध से शुद्ध करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और आषाढ़ मास के शुक्रवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर अभिषेक करें।
0: चलिए आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करने से आपका कल्याण हो सकता है। देखिए ईश्वर की उपासना से जुड़े महाप्रयोग। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना गुरु की होती है। आषाढ़ में देवी की उपासना शुभ फल देने वाली होती है। श्री हरि विष्णु की उपासना से भी संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। आषाढ़ में जलदेव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। मंगल और सूर्य की उपासना आषाढ़ में अवश्य करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे।
1: पूरे महीने प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें लाल चंदन, लाल फूल और थोड़े से अक्षत डाल दें। सूर्य देव को अर्घ देते समय ओम कृणे सूर्याय नमः का जाप करें। अर्घ देने के बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी या चंदन की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इसे 108 बार करें। ऐसा करने से कुंडली के कई दोष शांत होते हैं और अटके हुए काम बनते हैं।
0: तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरे आषाढ़ महीने का स्वागत कीजिए। वैसे तो पूजा उपासना और देव आराधना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन किसी खास तिथि और मुहूर्त पर की गई उपासना सर्वदा कल्याणकारी होती है। आगे हम आपको बताएंगे आषाढ़ महीने में खान पान के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही जानेंगे इस महीने में धन प्राप्ति से जुड़े महाप्रयोग कौन से हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आषाढ़ यानी बारिश का महीना माना जाता है कि इस माह में श्री हरि के साथ ही सूर्य देव, माँ भगवती और हनुमान जी की उपासना करने से भक्तों का मंगल होता है। माना यह भी जाता है कि भगवान वरुण की उपासना से आपकी धन संबंधी कामना पूर्ण हो सकती है। माना तो ये भी जाता है कि आषाढ़ के महीने में अगर नियम संयम और खान पान ध्यान रखा जाए तो ये ना सिर्फ आपको सेहतमंद रखेगा बल्कि आपको इस माह से एक नई दिशा भी मिल जाएगी।

0: मंगलकारी और फलकारी है आषाढ़ के महाप्रयोग। जानिए आषाढ़ में कैसे बनेंगे धन प्राप्ति के योग। विधि विधान से की गई उपासना करेगी कल्याण। मनोकामना पूर्ति के महा आषाढ़ में मिलेगा वरदान। आषाढ़ में सेहत को लेकर रहना होगा सावधान। सुधारना होगा अपना रहन सहन और खान पान। आषाढ़ को वरुण और इंद्र का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। चलिए आपको ज्योतिष में बताया एक महाप्रयोग बताते हैं, जिससे आपके जीवन से भी धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे कोई उगा हुआ छोटा पौधा जड़ सहित निकाल कर अपने घर में स्थापित करें। नियमित रूप से उसे जल देकर पूजा करें। जैसे जैसे वो छोटा पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे, पैसा आने लगेगा।
1: आषाढ़ की किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ का एक साफ पत्ता लाएं, इसे गंगा जल से धोकर इस पर हल्दी गोरे चंद से स्वास्तिक बनाएं। इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर इत्र छिड़के और अपने तिजोरी या पूजा स्थान पर रख ले। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। एक ही गमले या पास पास तीन पौधे लगाए, पीपल, नीम और बरगद, इसे त्रवटी कहा जाता है। जैसे जैसे पेड़ बड़े होते हैं, वैसे वैसे घर की दरिद्रता दूर होती है और बेहिसाब धन का आगमन होता है।
2: हरि ओम नमो नारायण।
0: माना जाता है कि आषाढ़ में श्री हरि की साधना अमोघ है, साथ ही ज्योतिषी महाप्रयोग से ये साधना फलकारी बन जाती है। माना जाता है कि इस महीने में कामना पूर्ति के कई छोटे छोटे महा उपाय आपके जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकते हैं।
1: भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दूध, दही, चावल या खीर का भोजन कराएं। हर शाम को तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि देवशयन एकादशी के बाद चातुर्मास मास शुरू हो जाता है, इसलिए इस दौरान नियमित तुलसी पूजा भाग्य उदय करती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण या पाठ करें और गरीबों को प्रसाद बांटें। इससे भी परिवार में सुख और शांति बनी रहती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भले ही श्री हरि इस महीने से अपने चतुर्मास के प्रवास पर निकलते हैं, भले ही मंगल कार्यों की वेला पर विराम लग जाता हो, लेकिन कामना पूर्ति के ये छोटे छोटे महाप्रयोग आपके रोजगार और कारोबार में तरक्की के द्वार खोल सकते हैं।
1: इस महीने में किए गए विशेष ज्योतिषीय उपाय और साधनाएं जीवन से आर्थिक तंगी, कर्ज और दरिद्रता को दूर करती है। आषाढ़ में जल देवता मतलब वरुण देव की उपासना करने से धन प्राप्ति के लिए नए मार्ग खुलते हैं। रोजाना सुबह तांबे के पत्र में जल लेकर उसमें काले तिल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को मजबूत करें, जिससे व्यापार और नौकरी में धन लाभ होता है।
0: धर्माचार्य बताते हैं कि किसी भी पूजा उपासना में नियम और सावधानियों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। माना जाता है कि आपकी प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब ईश्वर को पूर्ण सात्विकता और हृदय से पुकारा जाए। ऐसे में अब सवाल ये है कि आषाढ़ में किन सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने वातावरण में बहुत से बदलाव होते हैं, तो बदले मौसम के लिए तैयार होने में कौन सी सावधानियां जरूरी हैं? आइए समझते हैं। आषाढ़ मास में बेल बिल्कुल भी ना खाएं। इस महीने में जल युक्त फल ही खाने चाहिए। जहां तक संभव हो तेल वाली चीजें खाने से बचें। इस महीने सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग लाभकारी होता है।
1: आषाढ़ का महीना गर्मी और बारिश का संधिकाल होता है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और संक्रमण मतलब इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इस दौरान हल्का सुपाच्य और ताजा भोजन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और ज्यादा तेल मसालेदार खाना खाने से बचें। इस महीने में सत्तू और खस का सेवन पेट को ठंडक देता है, इसलिए सत्तू और खस को सेवन आप लोग करें। हींग और सौंफ का इस्तेमाल करें। ये चीजें पाचन शक्ति को मजबूत करती हैं। आप नींबू और नारियल पानी भी पी सकते हैं।
0: तो ज्योतिष में बताए इन विशेष उपायों का आप भी प्रयोग कीजिए और अपने जीवन से संकटों की छाया को दूर कर दीजिए, क्योंकि ये माँ है देवी देवताओं से विशेष अनुकंपा पाने का।
3: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: तो यूरोप इन दिनों तेज गर्मी का सामना कर रहा है, कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई कूलिंग सेंटर का सहारा ले रहा है, तो कोई फव्वारे, स्विमिंग पूल और ठंडी जगहों पर राहत तलाश रहा है। लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है।
0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फव्वारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है, वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहां पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुंच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहां पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी।
9: Még a drága nagymamám, ő törülgette 28 fok. Ez volt a nyár. Hát ez most nem tudom mi. És jól nézünk ki, mi vár ránk ezek után.
0: Ye Poland hai, jahan ke Sopot shahar mein subah ke sirf 9 baje hain. Lekin yahan suraj ki tapash dopahar jaisi mehsoos ho rahi hai. Beach par logon ki bhari bheed umad chuki hai aur iske saath lifeguard Joanna ki 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जुआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसे यहां गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
10: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अब ऐसी भावुक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जारी होते ही खूब वायरल है। देखिए, कुछ दिनों पहले वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंप आए, उसके बाद भारत समेत दुनिया भर के देशों की तरफ से वेनेजुएला में राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इसी दौरान एक 9 महीने का बेबी और उसकी मां को मलबे से निकालने वाली तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई हैं। ये तस्वीर बेशक इंसानी हौसले और उम्मीद की जीत की कहानी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर काफी भावुक हो रहे हैं।
11: ये तस्वीरें हैं वेनेजुएला में आए भूकंप और घने अंधेरे के बीच रोशनी की कहानी की। ये तस्वीर है हाथ से हाथ को मिलाकर जिंदगी बचाने की। भूकंप के बाद मलबे के नीचे दबी जिंदगी हर गुजरते पल के साथ उम्मीद भी दम तोड़ रही थी, पर हौसले बुलंद थे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी। मलबे से एक 9 महीने के मासूम और उसकी मां को जिंदा बाहर निकाला गया। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि इंसानी हौसले और उम्मीद की जीत की कहानी है। रेस्क्यू के दृश्य हर किसी को भावुक करने वाले थे। मलबे से बाहर आते ही मासूम को सावधानी के साथ रेस्क्यू टीम ने बाहों में भर लिया और मेडिकल टीम के हवाले किया। रेस्क्यू मिशन में राहत की बात ये रही कि माँ और बच्चे दोनों को मामूली चोटें ही आईं। इस पल का गवाह बने हर रेस्क्यू कर्मी की आंखें नम थी। आपदा के बीच घिरे वेनेजुएला से आ रही ये ऐसी तस्वीरें काफी सुकून देने वाली हैं। तबाही के इस मंजर में इस बात का सबूत है कि जब तक सांस बाकी है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, अगर किसी के पास हुनर है, मौका है, तो वो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन इनमें ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत कुछ ऐसे बदलते हैं कि उनकी कहानी ही चर्चा बन जाती है। आज एक ऐसे युवती की कहानी हम आपको दिखाते हैं जिसने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने की अनोखी मिसाल पेश की। लेकिन जरा ठहरिए, ये युवती कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई MNC ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक नेल आर्टिस्ट है जो वियतनाम से दुबई आई और यही उनको हुनर की सही कीमत मिल रही है।
12: और अपनी कला में गहरी दिलचस्पी ने वियतनाम की फुला को मशहूर कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने के लिए फुला करीब 6 साल पहले वियतनाम से दुबई पहुंची थी। उस वक्त उनके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही अनजान शहर में कोई जान पहचान, लेकिन फुला को अपने नेल आर्ट के हुनर पर पूरा भरोसा था। फुला पिछले 12 साल से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही है। अपने इसी हुनर को जब उन्होंने अपना पेशा बनाया और देखते ही देखते वो दुबई की सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शुमार हो गई। इसी महीने पुला ने दुबई जुबेरा विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय पुला नाम से एक अपना सैलून भी शुरू किया है, लेकिन कामयाबी की राह पुला के लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने एक छोटे से सैलून में 2 साल ब्यूटिशियन का काम किया, बाद में उन्होंने सिर्फ नेल आर्ट में अपना काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ काम बढ़ा तो आमदनी भी बढ़ी और फुला की महीने की कमाई 10 लाख रुपए तक पहुंच गई। फुला नेल आर्ट के अपने डिजाइन पर खूब एक्सपेरिमेंट करती है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम

0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको हैरान भी कर देंगे।
1: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा, फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
2: इसके ऊपर
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: केदारनाथ में भक्तों ने दर्शन कर बनाया नया रिकॉर्ड, 2 महीने 8 दिन में रिकॉर्ड 13,061 लाख से अधिक यात्री पहुंचे। हर रोज 7,000 से 8,000 यात्री पहुंच रहे बाबा के धाम। मंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समंदर में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान, रेस्क्यू का वीडियो जारी। यूपी में मिशन शक्ति के तहत पहली बार 40 ग्रामीण महिलाओं ने घुमा शहर, बाबा विश्वनाथ सहित कई मंदिरों में की पूजा अर्चना, चेहरे पर दिखी खुशी।

सरिस्का में अब पर्यटकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट। टॉयलेट और नई सड़क का होगा निर्माण। कल से बदल जाएंगे वित्तीय नियम। आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा। कई अन्य नियमों में भी होगा बदलाव।

0: डीयू में मिशन एडमिशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो उम्मीदों की उड़ान, सपनों की नई शुरुआत, करियर को नई दिशा देने का सबसे अहम पड़ाव और देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दाखिले की दौड़ और इसकी शुरुआत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक हजारों छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार करने की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। किसी की चाहत देश के नामी कॉलेज में पढ़ने की है, तो कोई अपने पसंदीदा कोर्स के जरिए बेहतर भविष्य और मजबूत करियर की नींव रखना चाहता है। और यही वजह है कि हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की जबरदस्त होड़ देखने को मिलती है। और इस बार भी सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजों के बाद अब एडमिशन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले चरण में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ सबकी नजरें आगे के प्रोसेस पर हैं। कॉलेज का चुनाव सबसे अहम, पसंदीदा कोर्स मिल जाए क्या बात है, मेरिट सीट अलॉटमेंट और सबसे बड़ी बात कि यही से होगी नई शुरुआत। हर कदम छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मिशन एडमिशन में छोटी से छोटी जानकारी बहुत अहम होती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। कहीं जरा सी त्रुटि हुई नहीं कि आपको आगे जाकर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, हो सकता है आपको अपना पसंदीदा कॉलेज ना मिले। इसलिए बारीकी से हमारे इस शो को देखिए, क्योंकि हम एक एक पॉइंट पर डिस्कशन आगे करने वाले हैं। आज एडमिशन से जुड़े तमाम पहलुओं पर, तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अगले एक घंटे में। हम डीयू में एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया की डिटेल जानकारी आपको आगे देंगे। तो हम अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ तफसील से चर्चा करेंगे। डीयू में दाखिले का पूरा फॉर्मूला क्या है ये भी आपको समझाएंगे। आपको कैसे पता करना है कि किस कॉलेज, किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, पहले राउंड में किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिशन एडमिशन से जुड़े हर पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम उन तमाम बड़ी बातों का ब्यौरा आपको बता देते हैं जिन्हें मिशन एडमिशन के जरिए जानना जरूरी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भले ही दिल्ली में है, लेकिन देश भर से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। देश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में इनका नाम आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साल 2026-27 के सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की करीब 71,000 सीटों पर एडमिशन होना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 67 कॉलेजेस में चलने वाले 73 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, 100 से ज्यादा बीए प्रोग्राम में दाखिला होगा। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर जाकर छात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीयूईटी यूजी 2026 के स्कोर के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। लिहाजा जिन उम्मीदवारों ने इस साल सीयूईटी यूजी परीक्षा दी है, वो सीएससीएस पोर्टल पर जाकर admissions.uod.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहां यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि एडमिशन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले चरण में रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से उस फॉर्म को भरना है। दूसरा चरण ये होता है कि आपको कोर्स और कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करना है, ये भी आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से चुनिएगा। और जो तीसरा चरण है उसमें सीट अलॉटमेंट और एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होता है। यानी एक बार अगर आपको किसी कॉलेज से में आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। लेकिन ये थर्ड फेज आता है, सबसे लास्ट वाला। हालांकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन से पहले छात्र अंडरग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ ले। इसलिए बार बार, हर बार ये बात कही जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, वहां के जो एडमिशन स्टाफ है उनकी तरफ से भी, और जितने भी करियर काउंसलर है वो ये बताते हैं कि जब भी आप अपना फॉर्म भरने लगे, सबसे पहले डूज एंड डोंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। क्योंकि इस पूरे फॉर्म में एक एक जानकारी आपको वहां पर देनी है, और वो जानकारी पूरी ऑथेंटिक होनी चाहिए। आगे के स्केड्यूल और जानकारी के लिए एडमिशन पोर्टल लगातार चेक आपको करते रहना होगा। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि दूसरा चरण अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर शिखा दरबारी हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन से एजुकेशनिस्ट भी हैं। जतिन चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करियर काउंसलर हैं। सार्थक शर्मा हमारे साथ हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं। सार्थक, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। इस बार कुछ बदलाव, पहले तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बता दीजिए, इस बार कोई नया रूल, कोई पुराना रूल बदल गया हो, इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं जिसका बहुत खास ख्याल रखना है इस वक्त आज की डेट में, बच्चे जब अपना पोर्टल पर पूरा फॉर्म भरने जा रहे हैं सीएसीएस पोर्टल पर।
1: नमस्ते सभी को, और इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय का जो यूजी का सीएसएस पोर्टल है वो लाइव हो चुका है, और विद्यार्थियों से प्रोसीजर लगभग उसके अंदर हमें अपना रजिस्ट्रेशन जो बेसिक डिटेल्स हैं, अभी फर्स्ट फेज में बेसिक डिटेल्स हमारी नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड या फिर जो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, साथ ही साथ क्लास 12th के जो मार्क्स आए हैं हमारे क्लास 10th, इस प्रकार की डिटेल्स अभी फर्स्ट फेज में मांगी गई है। साथ ही साथ जो सीयूटी में हमारा स्कोर है वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है। विशेषकर जो छात्रों से आग्रह है वो ये है कि बहुत से छात्रों की जो अभी हमें ऑन ग्राउंड समस्या देखने में आ रही है कि जो ओबीसी एनसीएल का विद्यार्थी होता है, जो नॉन क्रीमी लेयर लिस्ट का विद्यार्थी होता है, उनके पास कई बार सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो उन विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि वो अपना केंद्र सरकार वाला ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करें, साथ ही साथ वो सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का होना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, उनका भी 31 मार्च के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रवेश प्रक्रिया अभी शुरू हुई है तो बहुत सारे प्रश्न भी हम लोगों के कोर्स को लेके, कैंपस को लेके विद्यार्थियों के मन में है। तो मेरा यही आग्रह है कि आप लोग अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, और अगर आपका स्कोर 750 से अबव है और अच्छा है तो कैंपस भी आपको मिलेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। जो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस बड़े हब हैं एजुकेशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उसमें भी आपकी तरफ से।
0: चलिए, मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर सतीन कुमार भी जुड़ चुके हैं। सर, आपके पास यही सवाल लेकर आऊं क्योंकि आप खुद केरोड़ीमल कॉलेज से हैं और डीयू एडमिशन की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से आप देखते भी हैं, पिछले साल भी आपने स्टूडेंट्स को काफी गाइड किया था, हर साल करते हैं। सर, इस बार कुछ बदलाव, और दूसरी बात, जब स्टूडेंट पोर्टल पर अपना फॉर्म भरने जा रहा है, किन किन अहम बातों का खास ख्याल उनको रखना होगा? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सार्थक एक बात समझा रहे थे कि ओबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट नहीं होता लेकिन वो भर देते हैं और फिर उसके बाद कंफ्यूजन भी शुरू होता है। सर, ये सारी चीजें जो इस वक्त गुड न्यूज टुडे पर स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए जरा बता दीजिए, फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स कौन से हैं?
2: सबसे पहले तो मैं आज तक के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, उन्होंने सीयूटी कर लिया है, उसके स्कोर कार्ड उनको मिल चुके हैं। तो उसके बाद अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, जो भी आपने इंट्रो में बताया कि उस पोर्टल पे जाकर के एडमिशन पोर्टल पे उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स होते हैं, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सब उनको देना होता है। उसके बाद होता है कि उनको फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होता है। लेकिन सबसे अहम चीज, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, अभी किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन कमिटी में हूँ, अभी 2 फेज का एडमिशन पीजी का हो चुका है, उसमें भी मैं था, तो उसमें बच्चों का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, डिग्री का सर्टिफिकेट है, वो अपडेटेड होना चाहिए, वो 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। और उसमें कई सारे कास्ट में इतना होता है कि कोई भी कास्ट जो है वो अपने स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में, सेंट्रल में वो यूआर में है, तो ये सब का ध्यान रखना होता है कि जो सेंट्रल डोमिसाइल में उनके कास्ट का कैटेगरी है उसका अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बार होता है कि वो और एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो उनके लिए ईयर नहीं होता, किसी भी साल का, 5 साल 10 साल पहले का भी उनका बना हो तो वो चलता है, पर ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अपडेटेड होना चाहिए, तो उनको वो देख लेना चाहिए, नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना चाहिए। नहीं भी गलती है तो प्रोसेस कर देना चाहिए। अगर हमें नोटिस में आता है कि किसी बच्चे का जो पास सर्टिफिकेट है वो अब देखिए कई हम उनको टाइम भी देते हैं, हम जब एडमिशन के पोर्टल पे जब हम खुद एक्सेस करते हैं तो उनको मैसेज हम करते हैं कि आपका ये है इतने समय तक आप इतने बजे दे दो तो हम कर देते हैं एडमिशन। ज्यादा प्रॉब्लम वही होती है। फिर दूसरे फेज में उसके बाद होता है कि लिस्ट आती है, यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालेगी कॉलेज को, बच्चे को अपने कोर्स का चॉइस बहुत केयरफुल होकर करना चाहिए क्योंकि जिस कोर्स को आप पढ़ना चाहते हो तो दो ऑप्शन होते हैं कि आपको कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन, आपको मान लो कि करोड़ी मलहंसराज या हिंदू कॉलेज में एडमिशन आपको फिलोसफी में मिल रहा है, बंगला में मिल रहा है, उर्दू ऑनर्स में, लेकिन आपके चॉइस का नहीं है वो, और कोई ऑफ कैंपस कॉलेज जो है उसमें आपके मन का कोर्स का मिल रहा है, तो उन्हें देखना होगा, बच्चे को देखना होगा। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि आप उसको प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि पुरुष ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन सिलेबस है, फैकल्टी लगभग बराबर ही मेरिट पे है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप उसमें केयरफुल होकर कॉलेज का सिलेक्शन करिए, कोर्स का सिलेक्शन करिए और टाइमली चेक करते रहिए DU एडमिशन पोर्टल को, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखते रहिए। लिस्ट आजकल जो आ रहा है रात में शाम में शुरू होता है या रात में आता है एडमिशन, हम उसके बाद तुरंत शुरू कर देते हैं, तो एकदम केयरफुल रहिए। अब जो पेपर हमें चाहिए होता है अगर आपने नहीं जमा किया तो समय पे जमा करिए, नहीं तो हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे।
0: बिल्कुल, यानी कि आज के शो, ये शो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है DU में एडमिशन क्योंकि हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन प्रक्रिया तक की तमाम टेक्निकलिटीज आपको बता रहे हैं। दो और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शिखा दरबारी एजुकेशनिस्ट भी हैं, हमारे साथ जतिन चावला भी हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से कौन से कोर्स में सिलेक्शन आपका हो सकता है, कैसे उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मन में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हम अच्छे कॉलेज में जाएं या फिर हमें अच्छा कोर्स चुनना है। इस पर डॉक्टर जतिन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिखा दरबारी आपके पास आते हुए, जो प्रेशर होता है वो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा होता है। अब आप लगाइए 9th से शुरुआत हो जाती है प्लानिंग की, घर वाले भी प्लानिंग उस हिसाब से करने लग जाते हैं, नीट में जाएंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर कोई और कोर्स लेंगे या जो यही करेंगे, ये सब प्रेशर पेरेंट्स का भी रहता है। और यहाँ पर भी मैंने देखा है जब कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी या इस तरह की यूनिवर्सिटीज में जाता है उसके बाद भी पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि आप फला सब्जेक्ट लीजिए, उसकी ज्यादा वैल्यू है, फला सब्जेक्ट लीजिए। यहाँ पर आप गाइड पेरेंट्स को क्या कहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे?
3: मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को गाइड करूंगी कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, इट शुड बी योर ओन चॉइस, क्योंकि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो आपको फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। पर लेकिन ये भी बात सही है कि किसी कॉलेज का एक बहुत अच्छा वो होता है कि हर आदमी से रेपुटेशन होता है कि सेंट स्टीफन्स में जाना चाहता है या इसमें जाना चाहता है, तो उसमें यह है कि हाँ अगर आपकी कट ऑफ उतनी नहीं है तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल सकता। ऐसे में मेरी गाइडेंस बच्चों के लिए यही रहेगी कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, आप हमेशा उसको ऑप्ट करिए चाहे उसको फिर कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा हो। और पेरेंट्स को भी अननेसेसरी प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि 9th से लेके हम लोग अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही करते हैं कि 9th से शुरू हो जाता है कि अच्छा अभी तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और फिर बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि अच्छा आप 12th तक तुम कुछ नहीं कर, क्योंकि अगर आप BA और BSc देखिए तो जो बच्चे नीट में नहीं निकल पाए या इंजीनियरिंग में नहीं निकल पाए वो जाके वहाँ पे BSc में जाते हैं। तो उनके लिए एक मेरी गाइडेंस ये मैं कहूँगी कि आपको दोबारा नीट देना है या दोबारा इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है तो बी केयरफुल कि आप वहाँ पे फिर ऐसा सब्जेक्ट लो कि एक साल जो आपको फर्दर कंपटीशन की कोई पढ़ाई करनी है वो सब्जेक्ट आपको उस पढ़ाई में हेल्प कर पाए। उससे क्या है ना कि आपकी जो एक पूरा साल है वो आपका एक बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, आपको एक नया जो आपके लिए यूजफुल है सब्जेक्ट आप वही पढ़ेंगे। जैसे इंजीनियरिंग करना है तो आप BSc में एडमिशन ले लीजिए जहाँ पे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स बेस्ड आपका नीट क्वेश्चन आता है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए बहुत एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि आप अच्छे से अपना कैरियर पाथ अच्छे से ले पाएंगे।
0: चलिए जितिन जी अब आपके पास आते हैं, अब पूरा दारोमदार आप पर है, इस बार क्या गाइड करेंगे, कौन सा हिट कोर्स जा रहा है, चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं और भाई 12th कर लिया है, इस बार तो सेंट स्टीफन, इस बार तो KMC, इस बार तो LSR, हर किसी की चॉइस होती है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज देख के ही अपना फॉर्म भरते हैं, आप क्या गाइड करेंगे, कॉलेज या कोर्स किस तरीके से बैलेंस इसमें बनाया जाए? जितिन जी ऑडियो म्यूट है शायद आपका,
4: आप सुन पा रहे हैं आज?
0: जी जी जी सुन पा रहे हैं जी।
4: जी तो 2022 में अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क आया, अगर देखना चाहे तो eu.ac.in पे देख सकते हैं, तो एनईपी के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सो उसमें क्या हुआ कि आपका फोर्थ ईयर में
0: जितिन जी रोकना चाहूंगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है ऑडियो में, हम उसको करेक्ट कराते हैं, लेकिन यही सवाल मैं आपके पास लौटती हूँ जितिन जी, इसी सवाल का जवाब अगर सार्थक मैं आपसे पूछूं तो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के प्रायोरिटी वाइज कॉलेज सबके रहते हैं कि कौन कौन से, साउथ कैंपस को लेकर भी कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, तो आप क्या गाइड करेंगे?
1: बेसिकली मैम कैंपस प्रायोरिटी होना भी चाहिए कई चीजों को लेके, जब आपको लगता है कि आपको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे हम बेसिक कह देते हैं कि SRCC वाले थोड़ा UPSC में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या उधर से जनरली ज्यादा टॉपर्स दिखते हैं हमें, साल दर साल एक या दो उधर से होते ही होते हैं दो तीन। लेकिन जो बड़े कोर्सेज हैं, सपोज आपको इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है, तो वहां क्या है कि कंपटीशन बहुत हाई है कैंपस के कॉलेजेस में, तो आपको अगर अपने कोर्स वो ही पढ़ना है तो फिर आपको अपना कोर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस सभी कॉलेजेस का सेम है, सिलेबस में कहीं कोई चेंज नहीं है, सिलेबस पूरा आपको वही पढ़ाया जाता है, पूरी फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकदम अप टू द मार्क है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरा मत तो ये है कि अगर आपका बहुत अच्छा हाई स्कोर है तो बिल्कुल डेफिनेटली और कैंपस की ओर जाना चाहिए, नहीं तो अपने कोर्स को प्रायोरिटाइज हमें करना चाहिए।
0: कैंपस इज इम्पोर्टेंट, जाहिर सी बात है कि वो एक मन में रहते हैं कि हम नॉर्थ कैंपस में पढ़े और साउथ में, या चॉइसेस रहती है। जितिन जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, बिकॉज मैं चाहूंगी इस पर आपसे बेहतर क्लैरिटी कोई और दे नहीं सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप गाइड करते हैं, यही सवाल सर दोबारा, ऑडियो म्यूट है, वापस से सर अपनी पूरी बात रखिए, स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करेंगे आप?
4: पहले ठीक है
0: जी,
4: तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जैसे आया था उससे हमारी चॉइसेस इंपैक्ट होती हैं। एनईपी के अंडर ये चालू हुआ था 2022 में, आज की डेट में बीए प्रोग्राम ऑप्शन वीक ऑप्शन नहीं है, और काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं भाई हमें अगर अच्छा कॉलेज चाहिए क्या हम मिल सकता है, आप स्ट्रेटेजाइज करो। जैसे LSR में बीए प्रोग्राम में साइकोलॉजी भी है और सोशियोलॉजी भी है, 874 पे मिला है लास्ट टाइम, हंसराज में बीए कॉमर्स भी है, इको भी है, वेंकी में हिस्ट्री या पॉल साइंस है, ऐसे कुछ जगह मैंने अभी देखा JMC में एक प्रोग्राम है जिसमें स्पेनिश है और एडवर्टाइजिंग है, जो कि काफ़ी कम नंबरों पे मिला है। तो आप ना इस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, क्योंकि फोर्थ ईयर में फिर आप उस पर मेजर कर सकते हो। तो एक ये कि बीए प्रोग्राम बहुत 20 साल पहले एक वीक ऑप्शन माना जाता था और बच्चे जो सबसे कम नंबर आए उनको मिलता था, तो उस तरह से सोचते थे, आज की डेट में वैसा नहीं है, और मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम करके आप फोर्थ ईयर में ऑनर्स डिग्री में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, फोर्थ ईयर में आप मेजर कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, ड्रीम प्रेफरेंस जो बनाए तो आप मतलब एक लंबी लिस्ट बनाओ, खाली ये नहीं कि 5 कॉलेज भर दिए 10 कॉलेज भेज दिए, उसके भी बियॉन्ड बनाओ, कॉलेज कोर्स की जो आपको लिस्ट सबमिट करनी है तो एक लंबी लिस्ट बनाओ, जिससे कि क्योंकि आपने जो भरा हुआ होगा उसी के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, उससे उसके उस पर नहीं होगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। तीसरी चीज़ है, मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को करियर्स के हिसाब से चूज़ नहीं करते। अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, DO में कई अच्छे ऑप्शन हैं जैसे पॉलीमर साइंस, या तो ये मैंने कम से कम नहीं तो स्कूलों में पूछा, मैं CBSE के साथ भी ऑनलाइन प्रोग्राम करता हूँ, तो मैंने प्रिंसिपल से भी पूछा ये क्वेश्चन कि भाई बताओ पॉलीमर साइंस किस कॉलेज में है, तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हाँ BSc पॉलीमर साइंस का कोर्स है। DO में फूड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा कोर्स है, भास्कराचार्य कॉलेज में है, राजगुरु कॉलेज में है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में है, तो कुछ नए कोर्सेज हैं ऐसे। CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सो CIC में BA सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, सो CIC का भी बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट CIC में उतना ज़्यादा है ही नहीं, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, और बहुत अच्छा नॉर्थ कैंपस में है, लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अशोका में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन CIC में भी आप 6 महीने में अपना कोर्स और कॉलेज चेंज कर सकते हैं, इट वॉज डेवलप्ड अंडर द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अपने अप्रोप्रिएट कोटाज, क्या हम ECA कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी एक कोटा है, हर कॉलेज में आपको एक एक पर कॉलेज पर कोर्स एक सीट आपको रिजर्व मिलेगी सिंगल गर्ल चेक कोटा के लिए, तो उसको भी अपन देख सकते हैं। तो इस तरह कोटाज को भी अंडरस्टैंड करके फिर हमें पूरा अपना स्ट्रैटेजी बनानी होगी। इट इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग रादर देन ओनली जस्ट फिलिंग अप प्रेफरेंसेस। ऑल्सो मिक्स देख लीजिए कि भाई जरूरी नहीं कि आप इकोनॉमर्स, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इकोनॉमर्स अच्छा कोर्स है आप उसमें फिलअप करेंगे, हो सकता है आप इको और कॉमर्स का चीज कोर्स फिलअप कर रहे हैं। ऑल्सो इको के लिए भाई मैथ्स अच्छा चाहिए, मैथ्स अच्छा नहीं है तो इको प्लीज मत करना। दूसरी बात, हमने साइंस लिया तो जरूरी नहीं कि साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं, यू कैन डू एनीथिंग। तो यू हैव टेकन साइंस बट नाउ यू वांट टू टेक अप इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, आप ऐसे अलग अलग चीज करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से सोच के और फिलअप करो। अगर एक ऑनर्स में आपको लगता है नहीं मिल रहा तो बीए प्रोग्राम सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप मिक्स लो और फोर्थ ईयर में स्पेशलाइज करके उसी में मेजर ले लो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म अपने करियर पे पिच करना है, नॉट कि मेरे को कोई भी डिग्री करके किसी भी कॉलेज से निकलना है।
0: बिल्कुल, ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये तो आपने बीए प्रोग्रामिंग की बात की, लेकिन आगे इसको लेकर चर्चा करेंगे कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या फिर कोई नॉन मेडिकल का है या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर सत्येंद्र, आपके पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि इंतजार जाहिर सी बात है कि पहली कट ऑफ का रहेगा, वहां तक पहुंचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अगर पहली कट ऑफ में उनका नाम आ गया, क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पहली अलॉटमेंट लिस्ट में, सीट को स्वीकार करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी दीजिए।
2: जी मैडम, स्टूडेंट को अगर अपने चॉइस का कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता है फर्स्ट लिस्ट में तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। सेकेंड लिस्ट आते हैं, थर्ड लिस्ट आते हैं, कई सारे सब्सिक्वेंट लिस्ट आते हैं, उनको उनकी प्रायोरिटी क्या है। हर एक बच्चे का प्रायोरिटी होता है कि मुझे इसी कॉलेज में चाहिए, मुझे नॉर्थ कैंपस भी चाहिए। तो अगर उनका नॉर्थ कैंपस में शुरू में नहीं हो रहा है, उनके कोई ऑफ कैंपस कॉलेज में हो रहा है, तो उनको ये प्रायोरिटाइज तो खुद ही करना होगा कि मैं पहले एडमिशन ले लूँ। एडमिशन लेने के बाद फिर उनके चांसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो अगले लिस्ट में आपके दाखिले के चांसेस होते हैं। तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, पर एक वाइज डिसीजन ये होता है कि आपका जहाँ एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ ले लो और आगे के लिस्ट का ट्राई करो, अगर सीट खाली होगी तो मिलेगी आपको। लेकिन सेकेंड लिस्ट में उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो जिनका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है, जिन्होंने एडमिशन लेके छोड़ा है तो फिर उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है।
0: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर एक्सेप्ट कर ले तो क्या अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं आगे, क्या उसमें ऑप्शन बनती है कोई? प्रोफेसर सतीन,
2: एक बार एडमिशन ले लेने के बाद,
0: जी
2: एडमिशन ले लेने के बाद
0: आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपका नाम आ गया और आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
2: जी नहीं उसके बाद एप्लीकेशन, आपने एक्सेप्ट किया तो आप एडमिशन दीजिए, और एडमिशन अगर आप नहीं लेते हैं तो वो फिर वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि एडमिशन एक्सेप्टेंस तो एक प्रक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया तो पोर्टल पे हम एडमिशन कमिटी में सब उसको प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन तभी कम्प्लीट माना जाएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्विजिट चाहिए वो आपने अपलोड किया, नहीं किया तो आपने सबमिट किया कॉलेज को एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान और फीस जमा किया, अगर फीस तभी वो एडमिशन पूरी मानी जाएगी। मेयरली एक्सेप्टेंस इज नॉट गारंटिंग एडमिशन।
0: सार्थक, एक कॉमन मिस्टेक जो हर बार स्टूडेंट्स करते हैं जिसको आप यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहेंगे एक बार उनको बताते हुए।
1: एक कॉमन प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि हमारा कई बार ध्यान नहीं होता और वो अनचाहा कोर्स या फिर जिसे हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं वो गलती से ऊपर सेलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद उसमें जब अलॉटमेंट होती है तो वो प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पे होती है, तो वो कोर्स हमें मिल जाता है, फिर हम ऐसी स्थिति में रहते हैं कि हम चेंज भी नहीं कर पाते उसको, क्योंकि वो हमारे टॉप में या टॉप 5 में या 6 में होता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट को भरते समय बहुत सावधानी पूर्वक उसे भरना चाहिए, ये मेरी सभी स्टूडेंट्स का एडवाइस है।
0: अच्छा, एक चीज और, क्या एक बार प्रेफरेंस लिस्ट भर दी क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, क्योंकि एक बार विंडो शायद खुलती अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
1: हाँ, रेफरेंस लिस्ट भर दी उसके बाद हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं जब तक विंडो बंद नहीं होती, फिर एक करेक्शन विंडो भी आता है 2 दिन का। लेकिन अब भी बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये जो हमें 2-3 साल से देखने में आ रहा है,
0: ठीक है,
1: तो उसको कभी अवॉइड करें तो ठीक रहेगा।
0: ठीक है, इसी से जुड़ा एक सवाल जल्दी से, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। प्रोफेसर सत्येंद्र, आप ही से, क्या हर लिस्ट के बाद अगर पहली कट ऑफ आ गई क्या उसके बाद प्रेफरेंस विंडो चेंज होती है या दूसरी तीसरी कट ऑफ के बाद कोई ऑप्शन देता है डीयू?
2: वो दे सकता है, नहीं दे सकता है मैम, लेकिन जो प्रेफरेंस दिन का जो टाइम होता है
0: ठीक
2: अगर
0: है
2: आप इसमें कर दे तो अच्छा है, आगे मैसेज की मर्जी है, वो दे सकते नहीं दे सकते। आपने जो सार्थक जी से सवाल पूछा उसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ। स्टूडेंट को बहुत ही केयरफुल होकर के सब्जेक्ट मैपिंग करनी चाहिए। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, आपने साइंस की आर्ट्स की पढ़ाई की है तो मैथमेटिक्स का उसमें बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप अपनी देखो कि जिस कोर्स के लिए ऑनर्स के लिए या बीए प्रोग्राम के लिए या आर्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। खास करके कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें उसका कुछ बैकग्राउंड चाहिए। तो वो सब्जेक्ट मैपिंग का जो जो जो, जो एडमिशन का पोर्टल है उसमें सारी डिटेल्स है। आप सब्जेक्ट मैपिंग जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रीफरेंस भर रहे होते हैं कोर्सेज का, तो आपको केयरफुल होकर देखना चाहिए कि आप एलिजिबल भी हो भी या नहीं हो। आपने अप्लाई कर दिया और आप सब्जेक्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी नहीं तो आपका तो एडमिशन नहीं दे पाएंगे।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप अपना पहली बात तो जब भी आप अपना कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, भर रहे हैं, कॉलेज हो या कोर्स हो, ये क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको तय करना है। हालांकि हर बार ये कहा गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आप हमेशा कोर्स को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना प्लान बी भी तैयार रखना होगा। और वो प्लान बी क्या है इसी पर हम चर्चा इस ब्रेक की बात करेंगे। रहिए हमारे साथ।

0: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा आज की इसलिए भी अहम है क्योंकि दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जो आपको टेक्निकली बताएंगे कि कहां किस तरह की गलतियां आप करते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है जब आप अपना पोर्टल भर रहे हैं, जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरे दो ऐसे खास मेहमान हमारे साथ करियर काउंसलर्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना भविष्य बना सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपकी सोच है कि आप एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करेंगे, लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन वही ऑप्शन आप कहां किस कॉलेज में ले सकते हैं या किन किन कोर्सेज के साथ आप उस सेम तरह का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय स्टूडेंट्स का प्लान बी रेडी होना चाहिए। जितेंद्र जी, आप ही के पास आना चाहूंगी इन तमाम सवालों का जवाब, क्योंकि हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जिस कॉलेज में जिस कोर्स में चाहें वहां एडमिशन मिल जाए। चलिए यहां पर हम कोर्स को भी प्रायोरिटी कर देते हैं, हमारा प्रायोरिटी एक कोर्स है, फर्ज कीजिए कि हमें नहीं मिलता है उसमें एडमिशन, तो हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए?
1: तो प्लान बी में मैंने पहले ही बताया, जैसे सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसे इकोनॉमिक्स में चाहिए, मेरे को इको करना है, अब मुझे समझ में आया कि इको में तो मुझे नहीं मिल रहा एडमिशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं बीए प्रोग्राम करूँगा जिसमें कि इको इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और फोर्थ ईयर में फिर मेजर कर लूँगा। ऐसे ही मेरा अगर मन है कि भाई मुझे साइकोलॉजी करना है या पॉल साइंस करना है, तो वेंकी में जैसे बीए करूँ उसमें हिस्ट्री और पॉल साइंस कर लूँगा बीए प्रोग्राम में, और बाद में मैं पॉल साइंस में उसे आगे बढ़ा दूंगा, मतलब उसका फाइनल वो कर लूँगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चे एक तो खाली फेमस कॉलेजेस फिलअप करते हैं, उनका उन्होंने सुने नहीं होते कोई कॉलेज, जबकि वो अच्छा कॉलेज होता है। जैसे साइंस के लिए भास्कराचार्य काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने, कई बार टीचर्स ने भी नहीं सुना है, तो दैट्स अ चैलेंज। मतलब इट वॉज सेटअप एज अ कॉलेज विच इज़ मोर ऑफ एन अप्लाइड साइंसेज कॉलेज। ऐसे ही काफ़ी बार सोचते हैं कि कोई भी बीए प्रोग्राम इक्वल है, नहीं, अरे बैठ के रिसर्च तो करो यार, बैठ के थोड़ा उसको रिसर्च करो, देखो कैसे है। और कई बार अनएक्सेप्टेबल चॉइस ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे फिलोसफी ऑनर्स लेते हैं बिना सोचे हुए कि उसके आगे क्या करेंगे, मतलब आप क्यों ले रहे हो, संस्कृत ऑनर्स है तो संस्कृत ऑनर्स आपको सबसे वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ मिलेगा, लेकिन आगे आप क्यों लेना चाहते हो, आप उसको कैसे यूज करोगे ये भी तो सोचो। खाली कॉलेज में हमें 3 साल या 4 साल पढ़ना ही नहीं है, उसके आगे करियर का क्या प्लान है वो भी आप सोचो। दूसरी बात, कई बार हम एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते अपनी, भाई क्या एलिजिबिलिटी है हमारी, किस तरह से करने वाले हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे और DU.AC.IN पे बहुत सारे चॉइसेस हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स DC.AC में अवेलेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स रामानुजन कॉलेज में अवेलेबल है, जीएस एंड मेरी कॉलेज में एडवर्टाइजिंग काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग के लिए गए हैं तो GMC में जाते हैं क्योंकि GMC का वो अच्छा माना जाता है। कमला नेहरू कॉलेज में भी एडवर्टाइजिंग का कोर्स भी है, कुछ कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के साथ भी है उनके पास। इसी तरह से सत्यवती कॉलेज देखेंगे तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ इकोनॉमिक्स का है। तो ये बीए प्रोग्राम के हैं जो कि ईजिली एक्सेसिबल हैं। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं देखूंगा क्या मैं बिल्कुल स्पेशलाइज कोर्स करूँ, जैसे फूड टेक्नोलॉजी। हमारा प्रोसेस फूड का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि 225,000 करोड़ से ज़्यादा की इंडस्ट्री है, तो BSc फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप खाली BSc फिजिकल साइंसेज भर रहे हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक आप लाइफ साइंसेज भर रहे हो, लेकिन क्या आप ये सोच भी रहे हो कि फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? इसी तरीके से क्या मैं साइंसेज में कुछ कॉम्बिनेशन देखूं जिससे आगे के करियर, तो आगे का क्या करियर प्लान है वो आपको सोच के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे ही चूज करके और मतलब बाद में टाइम वेस्ट करोगे या सोचोगे अब मैं क्या करूं, और बाद में बहुत सारे लोग ऐसे ही MBA के लिए बैठने लग जाते हैं। उस टाइम पर भी ये कि भाई क्या प्लान है, आपने कैसी इंटर्नशिप करी, किस साइड में जा रहे हैं, हो सकता है पब्लिक पॉलिसी करके सेम कंसल्टिंग कंपनी में चले जाओ जो एक बहुत अच्छा MBA IIM अहमदाबाद या IIM बैंगलोर का जाता है। हो सकता है आप पॉल साइंस करके पॉलिटिकल कंसल्टिंग में चले जाओ, जैसे IPAC कंपनी है, पॉल स्ट्रैट, सी वोटर, ऐसी काफी कंपनीज हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल कंसल्टिंग। पॉल साइंस करके IR में जाते हैं। तो अगेन आपका इंटरेस्ट एक चीज है कि मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आगे ये 5 करियर्स खुलते हैं, उनमें से ये 3 में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ये रोड मैप चाहिए, उसके हिसाब से इंटर्नशिप्स करनी है। मुझे थोड़ा लोअर कॉलेज में मिला कोई बात नहीं, आप अच्छी इंटर्नशिप करेंगे, आप ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे कोर्सेरा से, यूडेसिटी से, अच्छी अच्छी जगहों से, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर कोई साइंस का बच्चा है तो गवर्नमेंट ने पोर्टल्स बनाए हुए हैं यहाँ पर इंडिया में, जिससे आप IIT के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स अटेंड करके और वो कोर्सेज कर सकते हैं। आप बाहर से टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जैसे ड्यूकैट जैसी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ से कर सकते हैं, या गीक्स फॉर गीक्स एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स। तो आप चाहे मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, साथ में इस तरह के वेबसाइट से आप ऑनलाइन जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जैसे AI की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग करनी है, तो ये चीज़ें साथ साथ करेंगे तो बिल्डअप हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मेरा बहुत सबको कॉलेज में टॉप के 5-6 कॉलेज सबको तो मिलेंगे नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसमें कॉलेज मिला, 12वां मिला, आप सोचो उसके साथ क्या करके मैं आगे कैसे सक्सेसफुल करियर बनाऊं।
0: बिल्कुल, यानी ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपना पूरा फ्रेमवर्क रेडी करना होगा। मैम आपसे जानना चाहूंगी प्लान बी के बारे में, क्या बताएंगे आप?
2: मैं बिल्कुल यही जो नितिन जी कह रहे थे, जतिन जी कि ये बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म में अपना देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और फिर जब जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें फिर क्या होता है ना कि आप बहुत आराम से अपना एक ब्लूप्रिंट और अपना एक रोड मैप बना पाते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को लेके आगे कहाँ जाना चाहता हूँ। अब देखिए, नॉट ओनली आपको साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको BSc ऑनर्स ही करना है या कुछ करना है, आपके पास हेल्थ सेक्टर के AI के कोर्सेज भी होते हैं। वी ऑल नो आजकल जो है, अगर आप AI में थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये भी जो है, ये कोर्सेज कभी भी बच्चे देखते नहीं, वो क्या होता है एक जनरल देखते रहते हैं कि अच्छा हमें ये स्पेसिफिक ये कोर्स है कि मुझे हिस्ट्री लेना है, मुझे पॉल साइंस लेना है, या मुझे इकोनॉमिक्स में जाना है। उसके बाद जो एक अप्लाइड चीज़ होती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट तक के कोर्सेज हैं यहाँ पे, आपके पास फूड जैसे बता रहे थे फूड प्रोसेसिंग के कोर्सेज हैं, पॉलीमर्स के कोर्सेज हैं, AI से रिलेटेड हेल्थ के कोर्सेज हैं, AI से रिलेटेड कैसे मशीन लर्निंग करनी होती है वो कोर्सेज हैं। तो अगर हम इस तरह के कोर्सेज को भी अपने दिमाग में रखेंगे तो आप देखिए, कॉलेजेस में तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना कि उनकी एक कट ऑफ है, तो कुछ जो स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं अगर आप उस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं तो यू हैव टू कीप योर प्लान बी रेडी। और वो प्लान बी आपको कैसे बनाना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो वो जो आपका बेसिक इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी आप अपना कैरियर जैसे कहते हैं ना कि आप उसी को अपना कैरियर बनाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जबरदस्ती कोई चीज आप मत पढ़िए, तो उसको आपको एक सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। एंड जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में सभी प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही सिलेबस है। तो इट्स लाइक दिस कि आप किसी भी कॉलेज में जाइए, अगर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आपको अच्छा सिलेबस और अच्छा टीचर हर जगह मिलेगा। नाउ यू हैव टू जस्ट मेक योर रोड मैप कि मैं प्लान बी में मेरा क्या ऑप्शन हो सकता है। तो वो जो ऑप्शन है वो आपको जब आप सारे कोर्सेज और सारे कॉलेजेस को देखेंगे, सारे कॉलेजेस इतने तरह तरह के कोर्सेज आपको दे रहे हैं जो कि अनकन्वेंशनल कोर्सेज भी हैं, तो वो जो अनकन्वेंशनल कोर्सेज में आप अपना 2-3 कोर्सेज जरूर देखिए, क्योंकि उसमें एडमिशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप एक बहुत ही आसानी से एक अच्छा कैरियर ऑप्शन अपने लिए चूज कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। एक चीज और, एक क्वेरी एक स्टूडेंट नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है, प्रोफेसर सत्येंद्र आपके पास आना चाहूंगी कि अगर किसी एप्लीकेंट का गैप ईयर है तो क्या एडमिशन में दिक्कत आती है, अगर हाँ तो उसके लिए बताइए, और अगर नहीं तो क्या उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए या फिर उनके लिए क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं?
3: एडमिशन गैप में रहने से कोई दिक्कत नहीं आती, उनको एक अंडरटेकिंग देना होता है और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तो एलिजिबल होते हैं, उनके ना कोई परसेंटाइल काटे जाते हैं, वो अगर उन्होंने कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया है, CUET किया हुआ है, तो उसी के बेसिस पे हो जाएगा, उनका एक अंडरटेकिंग दे देंगे अपने पासिंग ईयर का,
0: जी
3: कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: एक और सवाल सर, स्पॉट एडमिशन क्या होता है?
3: स्पॉट एडमिशन मैम वो तब होता है जब जो कट ऑफ 3-5 कट ऑफ जो आते हैं उसमें सीट फुल नहीं हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कई सालों से हो रहा है जिसमें कि 71,000 सीट है पर वो फुल नहीं हो पाते। जनरली जो कोर्सेज उतने पॉपुलर नहीं होते, जैसे उर्दू ऑनर्स है, फिलोसफी ऑनर्स है, बंगला ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, बहुत सारे ऑफबीट कोर्सेज हैं, या बहुत सारे कोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं पर बच्चों की जानकारी है, बच्चे ने अप्लाई ही ज्यादा नहीं किया है, तो वो फिर ऑन स्पॉट एडमिशन होता है कि आप उसके लिए भी विंडो खोलता है, ऐसा नहीं कि आप कॉलेज जाओ आपको एडमिशन हम दे देंगे, आपको भी उसी पोर्टल के थ्रू आना होगा, ऑन स्पॉट एडमिशन राउंड में अप्लाई करना होगा, प्रेफरेंस देना होगा और उसके हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी आपको आपके चॉइस के हिसाब से कॉलेज अलाउड करेगी, कोर्स अलाउड करेगी और फिर कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा जहां भी होता है।
0: बिल्कुल। एक और सवाल सर आपसे, ईसी और स्पोर्ट्स कोटा के तहत अगर कोई जा रहा है एडमिशन के लिए तो किन बातों का ख्याल उनको रखना है?
3: अगर ईसी और स्पोर्ट्स कोटा में है तो सबसे पहले उसका सर्टिफिकेट उनको रेडी रखना चाहिए, अलग अलग अप्लाई करना होता है। मान लीजिए कि ईसी कोटा है, बहुत सारे 30-35 तरह के ज्यादा उसमें आइटम्स हैं, कोई ड्रामेटिक्स में है, कोई म्यूजिक में है, कोई डांस में है, तो वो दो तीन कोर्सेज में आप दो तीन ईसीए कोटा में आप कर सकते हो। उसके अलग अलग आपको फीस देने होंगे और उसका ट्रायल होता है, उसका एडमिशन बाद में होता है। वैसे बच्चे जो ज्यादा स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, ईसीए में ड्रामेटिक्स में म्यूजिक में या जो ईसीए से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो उनको बीए प्रोग्राम या वैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए जिसमें क्लासेज वो कम भी करें तो काम चल जाए, क्योंकि अगर ऑनर्स वाले कोर्सेज होते हैं तो बहुत ही रिग्रेस होता है वो, वैसे तो सारे ही रिग्रेस होते हैं। तो कई सारे बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में आते हैं, जनरली वो कोर्सेज बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम कुछ वैसे हल्के कोर्सेज में ले लेते हैं और ज्यादा फोकस वो अपने जो उनकी एक्सपर्टीज स्पोर्ट्स में इसलिए में उसमें करते हैं, तो उसका भी ध्यान प्रैक्टिकली रखना चाहिए। थियोरेटिकली है तो आप अप्लाई करो, क्लासेज का जितना अटेंडेंस चाहिए वो सबके लिए होता है। जो ईसीए कोटा के बच्चे उनको 33% अटेंडेंस का रिबेट दिया जाता है, मतलब वो 33% कम क्लासेज भी करेंगे तो उनका उनको मार्क्स मिल जाएंगे अटेंडेंस।
0: ठीक है।
3: और एक बात और मैडम, एक बात और मैडम, यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत सारे जैसे कॉलेज है, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो अगर वोकेशनल की पढ़ाई करनी है तो कॉलेज है वोकेशनल स्टडी जो शेख सराय में बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उनको साइंस की पढ़ाई करनी है तो साइंस में भास्कर आचार्य कॉलेज द्वारका में, वो बहुत अच्छा कॉलेज है। अब मिरांडा हाउस का वैसे तो बहुत नाम है लेकिन वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, तो कॉमर्स की पढ़ाई के लिए अब बच्चे होता है कि मुझे मिरांडा में लेना है, उनको कॉमर्स पढ़ना है तो उनको कॉमर्स तो मिल नहीं पाएगा। तो आप और एक लेडी इरविन कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, वो विमेन्स कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फूड टेक्नोलॉजी से, तो उसका भी ध्यान रखें। बहुत सारे कोर्सेज फेमस, आप कोर्सेज देखना चाहिए बच्चों को।
0: बिल्कुल सर, इतनी बड़ी डिस्कशन है ना, मुझे लगता है कि इसके लिए एक घंटा कम पड़ जाता है, इसको लेकर हमें रेगुलर डिस्कशन करनी होगी जब तक एटलीस्ट बच्चों की कंफ्यूजन हम दूर ना कर दे, क्योंकि मेरे पास सही मायने में बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। लेकिन चलते चलते जितिन जी आपसे जानना चाहूंगी, वोकेशनल कोर्सेज की ही बात की, आजकल प्रायोरिटी बच्चों की यही रहती है कि हम कुछ इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स कर लें या वोकेशनल कोर्स कर लें और हमारा 3 साल में हमारी डिग्री भी पूरी हो जाए और साथ ही साथ हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी मिल जाए, उसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं?
1: जैसे CBS शेख सराय है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी इसीलिए बनाया गया कि साथ साथ बच्चे वोकेशनल कोर्सेज कर लें, तो उसमें सेल्स प्रोसेस के ऊपर है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के ऊपर है, अकाउंटिंग फाइनेंस के साइड में कोर्सेज है, एक HR का भी कोर्स आता है। तो लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि वो कोर्स केवल वो कोर्स सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ आपको बाहर से भी करना पड़ेगा और साथ साथ इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि सब बच्चों को इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रेंटिसशिप की स्कीम निकाली है, तो वो भी इसीलिए कि बच्चों को प्रैक्टिकल, जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तुम्हें जॉब मिलना मुश्किल है। जब तक जाके हाथ एक तरह से डिप करके काम नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं और आप चूज नहीं करोगे मुझे इस साइड में करना है या कुछ और करना चाहिए। उसी तरीके से कुछ और जैसे एडवर्टाइजिंग का मैंने पहले भी बताया, JMC में, कमला नेहरू में, ऐसे कई जगह अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग के कोर्स, एक तरह से स्पेशलाइजेशन है। और अगर मुझे जैसे पूरा नहीं है कि मेरे को ये वाला चीज़ करना है, तो आप छुट्टियों में उस चीज़ में काम कर सकते हैं जिससे कि आपको उसका एक्सपोजर मिले और फिर आप आगे कई लोग काम करना चाहते हैं, ये सब इसके कोर्सेज भी।
0: बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स के पास, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़िए, डूज एंड डोंट्स के बारे में जान लीजिए। अगर आप किसी कोटा के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो वो तमाम सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। कोर्स जरूरी है या कॉलेज जरूरी है, इसकी क्लैरिटी मन में रख के चलिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका पसंदीदा कॉलेज न मिले, तो उसका प्लान बी भी आपका रेडी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जी हाँ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: इन दिनों तेज गर्मी का सामना कर रहा है कई देशों में, तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, कोई कूलिंग सेंटर का सहारा ले रहा है, तो कोई फव्वारों स्विमिंग पूल और ठंडी जगहों पर राहत की तलाश कर रहा है। लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है।
9: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है, तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है, हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फव्वारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस, यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं, लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं, सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए, राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं
10: पड़ी। Hát ez most nem tudom mi. Jól nézünk ki, mi vár ránk. ezek után.
9: ये पोलैंड है जहाँ के सोपोट शहर में सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ सूरज की तपश दोपहर जैसी महसूस हो रही है। बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और इसके साथ लाइफ गार्ड जोआना की 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जोआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसे यहां गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
6: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
9: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं।
11: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा, फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की, बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है। शायद बहुत कम सास हैं जो ये कहती पाई जाती है कि मेरी बहू सी कोई नहीं, या बहू हो तो मेरी जैसी। लेकिन इन तस्वीरों को देख सास और बहू दोनों की सोच बदल सकती है। इस बहू की सास की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले उनकी ब्रज परिक्रमा हो जाए। बहू ने न सिर्फ सास की इच्छा को सिर माथे पर लगाया, बल्कि सास को ही माथे पर उठाकर निकल गई ब्रज परिक्रमा करने और अपनी सासू माँ की इच्छा पूरी कर दी। अब यूजर्स इस बहू की तारीफ खूब कर रहे हैं और बुजुर्ग इसे खूब दुआएं दे रहे हैं। चीन की पारंपरिक बोट रेस को यूं ही ड्रैगन बोट रेस नहीं कहा जाता। इस रेस में हर कोई भाग नहीं ले सकता, लेकिन इसके लिए दमखम, सूझबूझ, संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी होता है। इन तस्वीरों को देख ये बात आप समझ जाएंगे। देखिए इस ड्रैगन बोट रेस के दौरान ये प्रतिभागी रफ्तार से आते हुए जब मुड़ते हैं तो कैसे एक बैरियर पर लटक कर बोट को मोड़ते हैं। इन तस्वीरों को देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। चीन में पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस के दौरान प्रतिभागी किस तरह तेजी से मुड़ते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में ये दो बच्चे साइकिल पर उल्टा होकर ऐसा गजब का बैलेंस दिखा रहे हैं जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी हैरान रह जाएं। ये करतब केवल ताकत का नहीं बल्कि लंबे अभ्यास, आत्मविश्वास और बेहतरीन संतुलन का नतीजा है। और अब इन दोनों की ये करामात देख यूजर्स भी हैरान है।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
0: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
12: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
0: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
13: You're listening to MSNBC.
0: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
7: इसके ऊपर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
8: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज की चाय में बहुत सारी खबरें हैं, तो आगाज करेंगे रणवीर सिंह के नए प्रोजेक्ट प्रलय के साथ, जिस पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन खबर ये है कि इस फिल्म में वो देश के दुश्मनों से नहीं बल्कि ज़ॉम्बी से भिड़ने वाले हैं। वहीं 33 साल बाद फिल्मी पर्दे पर एक बार फिर से काले कोट में नजर आएंगे सनी देओल। इक्का का ट्रेलर रिलीज हुआ है और सनी के साथ अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे।
9: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, खबरें बॉलीवुड की तो होंगी ही, पिक्चर की होगी, लेकिन साथ ही साथ आस्था और भक्ति की भी होंगी। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो रहा है, लेकिन उससे पहले पूरी यात्रा अपडेट के साथ सूर्यपुत्री माँ तवी की पहली बार हुई भव्य संध्या आरती की शुभ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।
10: तो आस्था और भक्ति की तस्वीरें होंगी, एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव, और साथ ही बात होगी मौसम की, क्योंकि कई राज्यों में प्री मॉनसून शावर के बीच गुड न्यूज ये है कि 1 जुलाई तक मॉनसून दिल्ली NCR पहुंच सकता है। तो देश में मौसम के मिजाज की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: Sage University, transforming your passion into profession.
13: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व। जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी, टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेगी ज्यादा सुविधा। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया सबसे बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। केदारनाथ में भक्तों ने दर्शन कर बनाया नया रिकॉर्ड, 2 महीने में 8 दिन में रिकॉर्ड 13,61,000 से अधिक यात्री पहुंचे। हर रोज 7,000 से 8,000 यात्री पहुंच रहे बाबा के धाम। कल से बदल जाएंगे वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में भी बदलाव।
9: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे

0: पहले बात कर लेते हैं धुरंधर की। भाई धुरंधर मूवी की बात नहीं करते हैं क्योंकि हमने महीनों ऑलरेडी उस पर चर्चा कर ली है। जब धुरंधर 1 आई थी यानी कि पहली बार, तब भी हमने महीनों बात की थी, और उसके बाद रिवेंज जो दूसरी आई उस पर भी हमने चर्चा की। अब फाइनली भाई आपने देखी कि नहीं देखी रिवेंज?
1: डोंट आस्क
0: मी, बताओ। मतलब ये तो मतलब हम उसमें जो विलन था ना, उसने जो गुनाह किया था रिवेंज, हाँ, तो वो मुझे लगता है यहाँ भी रिवेंज लेना पड़ेगा कि अभी तक धुरंधर 2 भी नहीं देखी गई है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: बोलती डीडीएल जे देख लो, मैं 10 बार देख लेती धुरंधर के लिए ना, मुझे मन बनाना पड़ेगा।
0: डीडीएल जे आपने ऐसे बोला, हम तो पूरे खानदान के साथ 50 बार देख ले, जितनी बार बोले उतनी बार देख ले। लेकिन हाँ, कुछ फिल्में होती हैं जो आपको हर हाल में देखनी बनती है कई मायने में, तो खैर वो आप पर बाद में आएंगे। हाँ, आप पर बाद में आएंगे क्योंकि वो देखना तो खैर अपराध है जो आपने किया है नहीं देखकर। लेकिन आपको बता दें कि धुरंधर में आपने देखा, और रणवीर सिंह का जादू जो उसमें चला है भाई, उस पर क्या ही हम चर्चा करें। लेकिन अब आपको बता दें, हमजा के बाद एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं रणवीर सिंह, और इस बार बताया जा रहा है दुश्मनों में जो दुश्मन उनके सामने खतरनाक दुश्मन आ रहे हैं जिनसे उनका सामना होगा, वो ज़ॉम्बीज होंगे।
2: आपको पता अच्छी बात क्या है कि रणवीर इज फाइनली एक्सपेरिमेंटिंग विद द काइंड ऑफ मूवीज दैट ही वाज डूइंग, यानी वो कुछ नया करना चाहते हैं। अब धुरंधर में उन्होंने ना सबके बीच एक एक्सपेक्टेशन का लेवल सेट कर दिया, अब उसे पार करना है।
1: नहीं वैसे मैं बताऊं, रणवीर की आप पहले कोई भी फिल्में देख लीजिए, वो हर फिल्म में एक लेवल सेट करते हैं। कोई भी फिल्म आप उनकी पुरानी उठा के देख लीजिए, हर बार आपको एक नया रणवीर देखने को मिलेगा।
2: सही बात है, बट मुझे लगता है अब आपने धुरंधर तो देखी नहीं, तो आप प्रलय देख
1: नहीं। मैंने धुरंधर 1 तो देखी है, एटलीस्ट मैंने धुरंधर 2 का लास्ट सीन देखा है जब वो अपनी मदर के पास जा रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा, वो उनके फेस एक्सप्रेशन ही देख लीजिए।
0: लेकिन ये बात सही है कि भाई हर मूवी अगर रणवीर की हम देखें तो हर में आपको एक अलग किरदार में वो नजर आएंगे। 90s में अगर हम देखें, ज्यादातर जो एक्टर्स थे उसमें तो हम शाहरुख का नाम लेंगे, सलमान का नाम लेंगे, तो अक्सर उनकी जो मूवीज आती थी लगभग एक ही तरह का उनका किरदार होता था। एज अ हीरो हम देखते थे, रोमांटिक हीरो देखते थे और समथिंग ऐसा।
2: लेकिन ये प्लीज कम्प्लीट कीजिए,
0: बिल्कुल बताइए ना।
2: मेरे मन में बस एक ही चीज थी कि कहते हैं ना ऊंचाई से गिरते हैं तो ज्यादा लगती है, उससे पहले ना वो धुरंधर वाली स्टेज पर पहुंचे ही नहीं थे। अब रणवीर सिंह नहीं है, वो धुरंधर है।
0: Exactly.
2: तो वहां से नीचे नहीं गिर सकते। तो 300 करोड़ रुपए अगर आप पे लगाए जा रहे हैं ना प्रलय,
0: चलिए मुझे लगता है कि इसमें भी बड़ा हाथ रहा है डॉन जो उन्होंने छोड़ी है ना, इसलिए बहुत सोच समझ कर उन्होंने छोड़ी है। लेकिन देखिए अब क्या कुछ वो खास होने वाला है, प्रलय आने वाली है उनकी, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है इसके, इसकी चर्चा बहुत हो रही है। देखिए
3: धुरंधर की सुपर सक्सेस के बाद बॉलीवुड के एनर्जी किंग यानी रणवीर सिंह ने अब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कमर कस ली है। फिल्म धुरंधर की शानदार कामयाबी के बाद अब रणवीर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। बहुत समय से उनकी आने वाली नई फिल्म प्रलय की चर्चा हो रही थी, और अब इस पर एक ऐसा अपडेट आया है जो रणवीर के फैंस को हैरान कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में रणवीर का सामना देश के दुश्मनों से नहीं बल्कि खतरनाक ज़ॉम्बीज से होने वाला है। फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रलय की शूटिंग इसी साल सितंबर में शुरू होने जा रही है। इसके लिए रणवीर बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाले हैं। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में ही शूट किया जाएगा। फिल्म में साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन अपना बॉलीवुड डेब्यू कर सकती हैं। डायरेक्टर जय मेहता का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसका बजट लगभग 300 करोड़ बताया जा रहा है। रणवीर की प्रलय मुंबई बेस्ड फिल्म होगी, जिसमें रणवीर और कल्याणी पति पत्नी के रोल में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह ने फिल्म के लिए अपनी डेट्स भी फाइनल कर दी हैं, और अब रणवीर अपना पूरा फोकस प्रलय पर ही रखने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो प्रलय का पहला शेड्यूल ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, जहां बड़े लेवल पर आउटडोर सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। मेकर्स ने फिल्म की कहानी के हिसाब से कई इंटरनेशनल लोकेशंस को फाइनल किया है, लेकिन फिल्म की असली पहचान इसके VFX में होगी, जिससे आपको स्क्रीन पर एक असली और डरावनी दुनिया देखने को मिले। इसके लिए मेकर्स हॉलीवुड लेवल के VFX का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए कई इंटरनेशनल टेक्नीशियंस को फिल्म की क्रू के साथ जोड़ा गया है। खबर तो ये भी है कि इस फिल्म के लिए एक बार फिर रणवीर ने अपनी ट्रेनिंग और लुक्स पर जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है, यानी हो सकता है कि धुरंधर वाले हमजा प्रलय में एक नए और फ्रेश लुक में जॉम्बीज लड़ते हुए आपको दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो धुरंधर वाले रणवीर के बाद अब बॉलीवुड के तारा सिंह की बात कर लेते हैं। सनी देओल का जिक्र यहाँ पर हम करेंगे, जो काले कोट में एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। आपको दामिनी फिल्म तो याद होगी,
2: बिल्कुल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
1: तारीख पे तारीख, क्या एक्टिंग थी।
0: मीनाक्षी सिसादरी जो है वो ऑपोजिट थी, एंड जबरदस्त कोर्टरूम सीन जो था ना, वो हर किसी को याद होगा, वो ढाई किलो का हाथ और तारीख पे तारीख।
1: एग्जैक्टली और इस बार सनी देओल काले कोट में ही है लेकिन उनके साथ अक्षय खन्ना। आप देखिए यहाँ पे उम्मीदें और ज्यादा है।
0: एग्जैक्टली
1: क्योंकि वही धुरंधर वाली बात आ जाती है, वहां पे भी हमने अक्षय को देखा है और अब यहाँ पे उम्मीदें और ज्यादा।
2: अक्षय खन्ना के लिए धुरंधर रिवाइवल था तो 2.0 वर्जन उनका इक्का में नजर आने वाला है। जैसे गदर, मुझे लगता है कि गदर जो थी सनी देओल के लिए रिवाइवल फिल्म थी, तो ऐसे में भी
0: कि देखिए ये भी एक और इसमें एक बात है कि बॉर्डर में दोनों ने साथ काम किया था, सनी देओल और अक्षय खन्ना ने, और अब इतने सालों बाद फिर एक साथ दोनों नजर आने वाले हैं सिल्वर स्क्रीन पर, तो वो भी देखना कमाल का होगा।
1: तो यहाँ पर एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव का आइकॉनिक किरदार वो निभाया था उन्होंने, और आज भी उस फिल्म के तारीख पे तारीख और ढाई किलो का हाथ जैसे सदाबहार डायलॉग सब लोग पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल, आपको बता दें कि लेकिन 33 साल बाद सनी एक बार फिर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला इंद्रजीत चड्ढा से नहीं होने वाला है बल्कि फिल्म में अक्षय खन्ना से होने वाला है, जो कि इस फिल्म में सनी के साथ एक दमदार रोल में नजर आएंगे। दोनों सितारे फिल्म इक्का में नजर आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर सामने आ चुका है।
4: मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया।
5: अनबीटेबल लॉयर इन द सिटी मिस्टर अर्जुन मेहरा।
6: हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं।
7: मुझे डिफेंड कर केस जीत हीरो बन, लाइफ के बदले लाइफ, डील?
8: पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गए मिलोर्ड।
9: ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
10: सनी देओल और अक्षय खन्ना की मोस्ट अवेटेड फिल्म इक्का का ट्रेलर रिलीज हो गया,
11: जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज।
7: मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं।
10: इस कोर्ट रूम थ्रिलर को लेकर दर्शकों के बीच काफी समय से एक्साइटमेंट थी, अब फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों के उत्साह को और बढ़ा दिया है।
7: और मुझे रावण।
10: फिल्म बॉर्डर के रिलीज होने के 3 दशक बाद सनी अक्षय दोबारा एक साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इक्का की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सनी ने अपनी दमदार आवाज में इक्का का डायलॉग भी सुनाया।
6: हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं।
10: फिल्म से सनी देओल ओटीटी की दुनिया में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। सनी अक्षय के अलावा इस फिल्म में तिलोत्मा शो में दिया मिर्जा, संजीदा शेख और आकांक्षा रंजन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
7: इंसान कुछ चाहता है, होता कुछ और है।
4: मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे
10: फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी लगभग 33 साल बाद वकील की भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 1993 में रिलीज हुई फिल्म दामिनी में बतौर वकील सनी देओल ने दमदार भूमिका अदा की थी।
12: प्रोसिक्यूशन से लड़ने वाली मधुरा बैनर्जी क्या शोमान के केस को हैंडल कर पाएंगी?
13: अर्जुन मेरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का का केस लेता तो हारता नहीं।
10: फिल्म इक्का एक वकील की कहानी है जिसे एक मशहूर बिजनेसमैन के बेटे को एक मर्डर केस में बेगुनाह साबित कराना है। फिल्म का ट्रेलर देखने में काफी दिलचस्प है। इसमें अक्षय और सनी के बीच कई सारे इंटेंस मोमेंट्स को डाला गया है, जिसे देखने के लिए उनके फैंस एक्साइटेड होंगे।
13: तुम कभी बदल नहीं सकते।
7: बदलते वो लोग हैं जो सच नहीं बोल पाते।
13: If there is a crime, there is evidence.
6: तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की?
14: पुलिस मैटर हो जाता ना।
8: पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलोर्ड।
13: Objection, Your Honor.
11: क्यों मिस्टर मेहरा, आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज।
10: इवेंट में सनी देओल ने अपने को स्टार अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा, तिलोत्मा शोम की जमकर तारीफ की। बहरहाल ट्रेलर रिलीज होने के बाद पूरी फिल्म का मजा लेने के लिए दर्शकों को 10 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड टुडे।
7: एन एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस।
13: असली बात अगर बाहर आ गई तो
7: मैं गलती कर सकता हूँ।
0: चलिए एक्शन फिल्में, एक्शन हीरो सबकी बात हो गई, अब रोमांटिक हीरो की बात हो जाए. और यहाँ पर डायलॉग वो बड़ा सूट करता है जो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में आया था, आपने देखा होगा जब इमरान हाशमी आते हैं उसमें, तो उनके लिए एक डायलॉग था कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. तो बाकी अगर ऐसे आप लोगों से पूछा जाए तो इमरान हाशमी की मूवीज आप लोगों को कैसी लगी है?
2: मुझे वो अंडररेटेड एक्टर लगते हैं. मुझे लगता है कि ही डिजर्व्स मोर, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग जॉनर की फिल्में की हैं और उन्होंने प्रूव किया है कि वो बहुत अच्छे एक्टर है. और मुझे ये भी लगता है कि समय के साथ ना बाकी डायरेक्टर्स ने भी महसूस किया. और बात क्योंकि यहाँ पर आवारापन के सीक्वल की हो रही है, तो मैं कह दूं कि जब ये फिल्म आई थी तो फ्लॉप हुई थी और जितना इसका बजट था रिकवर नहीं कर
0: बिल्कुल. लेकिन भाई आप फ्लॉप से याद करते हैं, मैं तो गानों से याद करती हूं,
2: पर कल्ट क्लासिक बन गई इसीलिए याद करते हैं कि कुछ फिल्में होती है उस वक्त लोग नहीं समझ पाते, बाद में समझ आता है काम कितना बेहतरीन था.
0: लेकिन भाई आपको क्या लगता है?
1: मैं सॉन्ग्स वाली बात पे अग्री करती हूँ, गाने वाकई उनके बहुत अच्छे, फिल्म चाहे जैसी भी. लेकिन मैं आपकी बात से भी अग्री करती हूँ, बाय द टाइम उन्होंने खुद को बहुत बहुत आज की तारीख में अगर आप कहें तो ही इज अ वेरी फाइन.
0: लेकिन ये जो देखना होगा कि भई आपको मिलता कैसा काम है, ये अगेन एक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता, कई बार डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भई आपको काम कौन दे रहा है.
1: कि इन्होंने कहा कि धुरंधर में अक्षय खन्ना का एक तरीके से रिवाइवल था. अब आप देखिए धुरंधर में एक एक किरदार पर कितना काम किया गया कि उनके अंदर के एक्टर को बहुत ही नॉर्मल से एक्टर है शायद जिनको हमने पहली बार देखा हो या दूसरी तीसरी बार देखा.
0: राकेश बेदी को टेलीविजन पे मुझे जहां तक याद है कि हमने टेलीविजन पे उनको देखा था और अब जो वो निकल कर आए वो तो कुछ और
1: वो ही है. ये सब डायरेक्टर का भी कमाल होता है. मुझे लगता है कि इसमें भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि डायरेक्टर का ही कमाल हो सकता है. हालांकि खुद और आपने भी कहा कि अंडररेटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन गाने वाकई कमाल के.
0: तो आवारापन जब मुझे लगता है अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आवारापन के गाने एक से एक थे और आवारापन टू अब आ रही है. और ये भी बताया गया कि उसकी ज्यादातर शूटिंग जो है मसूरी में ही हुई है, हमारे पास में ही हुई है आसपास. तो हाँ
2: मतलब आप हो एक्साइटेड, मुझे लग रहा है.
0: हाँ एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब वो भी तो कुछ अलग देखने को, अभी तो ट्रेलर बाहर आया है, सामने आया है, उसमें मुझे शबाना आजमी थोड़ा सा शेडी कैरेक्टर में दिख रही है, यू नो कुछ कुछ ब्लैक उन्होंने ऐसे डाल रखा है और बहुत ही बहुत अमेजिंग है. तो देखना देखिए बड़ा दिलचस्प होगा. तो इंतजार हर किसी को है इस रोमांटिक हीरो के आवारापन टू का. टीजर जैसा कि हमने आपको बताया सामने आ चुका है.
2: बिल्कुल देखिए उम्मीद से हटकर इमरान जो है इस बार जैसे आपने कहा कि रोमांस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस फिल्म में अब एक्शन मोड में भी वो नजर आने वाले हैं. साथ ही में शबाना आजमी जो कि नेगेटिव किरदार निभाती हुई नजर आएंगे और उनके साथ दिशा पाटनी नजर आने वाली है. क्या कुछ खास होने वाला है आवारापन के सीक्वल में, लेट्स हैव अ लुक.
9: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है.
14: करीब 19 साल बाद शिवम पंडित लौट आया है, पहले से भी कहीं घातक और खतरनाक. लंबे बाल, आंखों में गुस्सा और पुराना दर्द जो 2007 की याद दिलाता है जब इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन रिलीज हुई थी. अब इसके सीक्वल आवारापन 2 के साथ इमरान दमदार कमबैक करने के लिए तैयार है. आवारापन 2 के टीजर से साफ है कि इस बार कहानी में केवल दर्द नहीं बल्कि सस्पेंस और एक्शन का डबल डोज मिलने वाला है. टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवारापन की तरह ही आवारापन 2 में भी इमरान किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार नजर आएंगे.
9: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं.
14: जिसकी झलक टीजर में इमरान की गन फाइट और क्लोज कॉम्बैट के रूप में दिखाई दे रही है. आवारापन 2 का टीजर नॉस्टैल्जिया, दमदार म्यूजिक, रहस्यमय कहानी और डायलॉग बाजी से इस तरह सजाया गया है कि शिवम पंडित को पर्दे पर देखने की दर्शकों की तमन्ना जाग गई है. यूट्यूब और ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई इमरान के लुक की तारीफ कर रहा है तो कोई बैकग्राउंड में बज रहे तो फिर आओ गाने के नॉस्टैल्जिया में डूबा हुआ है. फैंस का कहना है कि इमरान हाशमी को इस अवतार में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है. एक यूजर ने लिखा, पूरे 19 साल बाद शिवम पंडित लौट आया है वहीं पर जहां से सब शुरू हुआ था. दूसरे ने लिखा, वाह लंबे इंतजार के बाद क्या धमाकेदार कमबैक किया है, गजब का साउंडट्रैक. किसी तीसरे ने लिखा, पता नहीं सकता क्या फील हो रहा है इस वक्त पर, वापस बचपन में चला गया हूं, बस आंखों में आंसू है और चेहरे पर मुस्कान.
9: दर्द से पुराना रिश्ता है.
14: आवारापन 2 का सबसे बड़ा सरप्राइज कही जा सकती है मंजी हुई एक्ट्रेस शबाना आजमी. टीजर में शबाना बेहद खतरनाक विलेन के रोल में दिखाई दे रही है. हालांकि उनकी एक ही झलक दिखाई गई है, लेकिन प्रभाव छोड़ने के लिए तो काफी है। आवारापन में आलिया शिवम की प्रेमिका थी, जिसका किरदार श्रिया सरन ने निभाया था। फिल्म में उसकी मौत हो जाती है। इस बार हीरोइन का रोल दिशा पाटनी ने प्ले किया है। टीजर में दिशा की बस कैलो बजाती हुई एक झलक ही दिखी है। 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म का बजट 18 करोड़ था, लेकिन इसने करीब 12 करोड़ ही बॉक्स ऑफिस पर हासिल किए थे। आवारापन बेशक अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके सुपरहिट गाने और दिल छू लेने वाली कहानी बाद में दर्शकों के दिल में घर कर गई। समय के साथ आवारापन हिंदी सिनेमा के क्लासिक कल्ट में शामिल हो गई और अब इसका क्रेज आवारापन 2 को लेकर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: तो फिर
1: वेलकम टू द जंगल देखी आपने?
2: वेलकम टू द जंगल मैंने देखी नहीं है, और मतलब मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था उसका ट्रेलर, लेकिन आप मानोगे नहीं कि फिल्म जो कमाई कर रही है, कमाई के आंकड़े ऐसे हैं कि 4 दिन हुए नहीं ऐसे रिलीज हुए और फिल्म अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना कर चुकी है कि जितने पैसे लगे थे ना इसके बनाने में रिकवर करने वाली है।
0: देखिए भाई, जो हमने खबर पढ़ी है उसमें तो हालांकि मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन जितनी खबरें पढ़ी उसमें ये कि एक साथ इसमें बहुत सारे लाइक 32 या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं जो कि काफी फेमस है बॉलीवुड के, वो तमाम लोग इसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है जो एक साथ काम कर रही है, प्लस सारे जाने पहचाने चेहरे, और जो आपने भी कहा कि भाई अपने कलेक्शन जो है मतलब जितना उन्होंने फिल्म में लगाया है वो 4 दिन में वसूलने वाली है, तो चल तो जबरदस्त रही है, यानी कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
2: अच्छा, ऐसी फिल्में ना होती भी ऐसी है कि आप दिमाग अपने घर पर रख कर आओ और मस्त कॉमेडी को एंजॉय करो, और मुझे लगता है इसीलिए फिल्म इतनी कमाई कर भी रही है।
1: तो चलिए आपको दिखाते हैं कितनी कमाई हो गई है फिल्म की।
10: हॉरर कॉमेडी भूत बंगला की कामयाबी को लेकर सुर्खियों में रहे अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस मल्टी स्टारर फिल्म का वीकेंड पर जबरदस्त प्रदर्शन रहा। 26 जून को थिएटर्स में आई वेलकम टू द जंगल को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। दमदार शुरुआत के बाद इसने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत ओपनिंग वीकेंड पर खूब कमाई की। ऐसे में सभी की निगाहें इसके मंडे कलेक्शन पर टिकी थी, जिसका मंडे टेस्ट रिजल्ट भी आ गया है। भले ही सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट तो आई, लेकिन फिर भी करोड़ों में कलेक्शन किया। सेक्निल के आंकड़े बता रहे हैं कि सोमवार को अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8,50,00,000 का कलेक्शन किया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत डबल डिजिट में थी और शुरुआती 3 दिन इसने 15 करोड़, दूसरे दिन 20 करोड़ और तीसरे दिन 24,75,00,000 रुपए की कमाई की। वहीं पेड प्रीव्यू कलेक्शन मिलाकर 3 दिनों में कमाई का 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अब चौथे दिन की कमाई मिलाकर ये कुल 72,25,00,000 का कलेक्शन कर चुकी है। वेलकम टू द जंगल फिल्म को रिलीज हुए 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन ये बजट वसूलने के नजदीक पहुंची हुई है। फिल्म ने 4 दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 106 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जहां वेलकम टू द जंगल 72,25,00,000 रुपए कमा चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 106 करोड़ के पार, जबकि फिल्म का बजट है 125 करोड़। यानी 4 ही दिनों में अक्षय कुमार की फिल्म अपना बजट वसूल करने के काफी नजदीक पहुंची हुई है। फिल्म के कमाई की स्पीड देखने के बाद लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये अपना बजट भी वसूल कर लेगी। हालांकि इस मल्टी स्टारर एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म की कमाई में मंडे को बेशक 50% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, बावजूद इसके इसने आसानी से भूत बंगला, ओ रोमियो और कॉकटेल 2 के फर्स्ट मंडे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल साल 2026 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फर्स्ट मंडे कमाई वाली फिल्मों में धुरंधर 2 सबसे आगे है, जिसने 66,01,00,000 रुपए का कारोबार किया था। वहीं बॉर्डर 2 ने 63,59,00,000 की कमाई की, तो वेलकम टू द जंगल ने फर्स्ट मंडे 8,50,00,000 का कारोबार किया। इसके अलावा भूत बंगला 8,01,00,000 रुपए, कॉकटेल 6,90,00,000 रुपए, तो ओ रोमियो ने फर्स्ट मंडे 5,10,00,000 रुपए का कारोबार किया। इसी के साथ वेलकम टू द जंगल ने बॉलीवुड की साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी फर्स्ट मंडे कमाई का रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस की एक बड़ी वजह इसका फैमिली एंटरटेनिंग होना भी बताया जा रहा है, जिस वजह से इसको दर्शक खूब मिल रहे हैं। इसी के साथ ये हर दिन करोड़ों कमा रही है। वहीं वेलकम टू द जंगल ने पेड प्रीव्यू में ही 3,75,00,000 रुपए कमा लिए थे। इस तूफानी आगाज ने ही उस वक्त फिल्म की सफलता के इशारे कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात अजय देवगन की फिल्म चौहान की कर लेते हैं, जिसको लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। अब कंट्रोवर्सी क्या है, देखिए फिल्म के नाम चौहान और टीजर में दिखाए गए कुछ सीन्स को लेकर एतराज जताया जा रहा है।
15: क्षत्रिय परिषद का आरोप है कि फिल्म में राजपूत पहचान और इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया और इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। चौहान 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
16: चौराहे पर 300 लड़के थे मेजर, घर सिर्फ 270 पहुंचे, 30 लड़के कम है।
10: बड़े पर्दे पर एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार है अजय देवगन।
17: ईंट का जवाब पत्थर से, पर सामने वाला सीधा पत्थर ही उठा ले तो जवाब क्या।
10: लेकिन रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है अजय देवगन की चौहान।
17: मास्क ऑनलाइन बिकते हैं, पैलेट गन्स, लिमिटेड डैमेज, वाटर कैनन, टेम्पररी सॉल्यूशंस।
10: अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान का ऐलान होते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की पहली झलक भी सामने आ चुकी है, लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों में घिर गई।
17: इन्वेस्टमेंट, उसके बाद भी पत्थर का जवाब नहीं।
10: फिल्म के नाम चौहान और टीजर में दिखाए गए कुछ सीन्स पर क्षत्रिय परिषद ने एतराज जताया है। संगठन का कहना है कि चौहान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि राजपूतों का गौरवशाली इतिहास है। ऐसे में इसका इस्तेमाल किसी राजनीतिक या विवादित कहानी के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

0: क्षत्रिय परिषद का कहना है कि फिल्म में राजपूत पहचान और इतिहास को गलत तरीके से दर्शाया गया है। उनका कहना है कि इतिहास को राजनीति से जोड़ना सही नहीं है और इससे लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है।
1: पठानों से कहना, चौहान आ रहा।

0: संगठन के मुताबिक राजपूत समाज ने इस तरह की किसी सोच या कहानी का समर्थन नहीं किया है। उनका मानना है कि भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, इसलिए उसे आसान या एक तरफा तरीके से दिखाया नहीं जाना चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चौहान विवादों में आई हो। इससे पहले फिल्म के टीजर को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई थी। कुछ लोगों ने कश्मीर से जुड़े डायलॉग और सीन पर सवाल उठाए थे। खासकर एक डायलॉग जिसपे पैलेट गन से होने वाले नुकसान को कम बताया गया था, उस पर लोगों ने नाराजगी जताई।
1: वाला सीधा पत्थर ही उठा ले तो जवाब क्या? टियर गैस, मास्क ऑनलाइन बिकते हैं, पैलेट गन्स लिमिटेड डैमेज, वाटर कैनन टेम्पररी सॉल्यूशंस।
0: नीरज यादव के निर्देशन में बनी चौहान 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मेकर्स इस विवाद पर क्या फैसला लेते हैं और क्या इसका असर फिल्म के रिलीज पर पड़ता है।
1: उसके बाद भी पत्थर का जवाब नहीं।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पचहत्तर साल बाद जवाब आ रहा है। पठानों से कहना, चौहान आ रहा है।
2: चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे आपको मंत्रों की गूंज और दियों की चमक के बीच मां तवी की आरती का अलौकिक नजारा दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: AI is changing the rules in tech, and staying relevant takes more than just keeping up. At WGU, our online technology master's programs give you the skills to keep pace with what's next. Learn more at wgu.edu.
5: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
6: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर जारी किया, लाइव टीवी पर दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेगी ज्यादा सुविधा। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया सबसे बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। केदारनाथ में भक्तों ने दर्शन कर बनाया नया रिकॉर्ड, 2 महीने में 8 दिन में रिकॉर्ड 13,61,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे, हर रोज 7,000 से 8,000 यात्री पहुंच रहे बाबा के धाम। कल से बदल जाएंगे वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना फ्री होगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में भी बदलाव।
2: चलिए अब बात कर लेते हैं आस्था और भक्ति से जुड़ी हुई। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और जम्मू शहर शिव भक्तों के जयकारों से गूंजने लगा है,
7: लेकिन इस बार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई और सौगात भी इंतजार कर रही है। देखिए, वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर जम्मू में पहली बार सूर्यपुत्री मां तवी की भव्य संध्या आरती शुरू की गई, जिसने माहौल को अलौकिक बना दिया।

0: दीपो की जगमगाहट और भक्ति का ये अलौकिक नजारा। तस्वीरें काशी या हरिद्वार की नहीं बल्कि जम्मू के तवी रिवर फ्रंट की हैं, जहां पवित्र अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले यात्री निवास के पास पहली बार सूर्यपुत्री मां तवी की इस भव्य संध्या आरती का शुभारंभ किया गया। इस दिव्य महाआरती की भव्यता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ये एक अद्भुत आध्यात्मिक सौगात है। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु अब बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस महाआरती में शामिल हो सकते हैं।
1: परंपरा के मुताबिक जो है वो यहाँ पर ये तवी की आरती जो है वो की जा रही है। आज यहाँ पर सुबह भूमि पूजन भी हुआ था और भूमि पूजन होने के बाद श्रद्धालुओं में जो है वो काफी उत्साह था, क्योंकि साफ तौर पर संदेश है यहाँ पर त्रिशूल की स्थापना भी की गई है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और विश्व हिंदू परिषद जितने भी हिंदू संगठन है वो यहाँ पर आरती का जो है वो आयोजन करते हैं। श्री रघुनाथ जी जो कॉरिडोर विकास है उनकी तरफ से ये आरती करवाई जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे। और आरती का मैं इस तरफ भी दिखाऊंगा कि आरती का जो सीधा प्रसारण है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये आरती आकर्षण का केंद्र बनेगी उन श्रद्धालुओं के लिए जो देश भर से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आएंगे। और ये फूलों की वर्षा जो है वो की जा रही है ताकि सूर्यपुत्री की तवी नदी की आरती करके पूरे देश भर में यानी पूरे विश्व भर में शांति की जो है वो कामना की जाएगी।
0: माँ तवी की इस पावन आरती से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच अमरनाथ यात्रा का उत्साह भी अब चरम पर है। देश भर से शिव भक्तों का जम्मू पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ ही टोकन बांटना भी शुरू कर दिया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो।
2: तीसरी बार जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से और पिछले दो बार लगातार होके आए हैं हम। इस बार भी हम भोलेनाथ की कृपा से आज पहले जत्थे के साथ जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
3: सब व्यवस्था अच्छे से हो रहा है, पहले जत्थे में दर्शन होगा बाबा की कृपा से। जय हो।
4: झांसी से आए हुए हम लोग, झांसी से तीसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं, बालटाल से करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।
5: बढ़िया व्यवस्था है, सब लोग आते हैं, हर साल आ रहे हैं। इस साल 11वीं साल है हमारी और तो बाकी लोगों की 21 साल है, 25 साल।
6: कितनी खुशी है पहले जत्थे में जाओ?
5: बहुत खुश हूँ भाई, भोलेनाथ की कृपा है, जब तक सांसें रहेंगी तब तक आते रहेंगे। बोल महादेव बाबा की।
7: बहुत खुश है, नसीब ही अच्छा है कि हम जा रहे हैं इस जगह।
0: बम बम भोले के जयकारों के साथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू बेस कैंप से रवाना किया जाएगा। तीन जुलाई से बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर मुख्य यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा, ठहरने और स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
8: देखिए, उसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम पूरे समय में एक सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो वहाँ तैनात रहे और हम लोगों का जो सिक्योरिटी अपरेटस है बाय डे एंड बाय नाइट वो जो है तैनात रहेगा। सुबह के टाइम में जो है जब यात्रीज आते हैं तो उनके कॉन्वॉयज हैं, कॉन्वॉयज मैनेजमेंट, और उनको प्रॉपर जो सिक्योर इन्वायरमेंट में अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाएं तो उसके लिए एक सिक्योरिटी ग्रिड हम लोगों ने डिप्लॉय।
0: अमरनाथ यात्रा की अलौकिक आभा ऐसी है कि देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लेकर पहुंच रहे हैं। मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शन की। माँ तवी की आरती से शुरू हुई यह आध्यात्मिक यात्रा शिव भक्तों के उत्साह को दोगुना कर दे रही है। अब बस इंतजार है बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, बस अब इंतजार रथ यात्रा का है।
10: आपको बता दें कि सूरत में भी इसकी भव्य तैयारी है। मुंबई से रथ मंगाया गया है और वृंदावन से 3 लाख का डिजाइनर पोशाक आया है, जिसे रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाया जाएगा। इसे वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है।
11: धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है। इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
12: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है, वो है हमारे नया रथ जो बॉम्बे से बन के तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है, इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
11: रथ ही नहीं, इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे, वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
12: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं, और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
11: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि लौटेंगे तो बात मॉनसून की चाल की होगी।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए अब बात मौसम के मिजाज की हो जाए तो दिल्ली एनसीआर में कल शाम हुई बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई।
2: लेकिन कल वाली बारिश के बाद ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो गई, इसको इंक्लूड करते चलिए। और सुबह जो एक तरीके से धोखा दिया ना मौसम ने, लगा ऐसा रहा था कि बारिश हो जाएगी लेकिन हुई नहीं है। प्री मानसून की बारिश ने लोगों को राहत तो दी लेकिन मानसून का इंतजार अभी जारी है। गुड न्यूज वैसे ये भी है कि 1 जुलाई को हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर मानसून की फुहारों से तरबतर हो जाए।
3: रोजाना जब सूरज की तपश झेलनी पड़ रही हो, जून की चिलचिलाती गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही हो और ऐसे में अचानक मौसम मेहरबान हो जाए और झमाझम बारिश तन मन को तरबतर कर दे तो सुकून का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सोमवार शाम को राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में कुछ ऐसी ही तब्दीली हुई। अचानक हुई प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया जिससे लोगों को दिन भर की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
4: राहत लेकर आई है जिस तरह की गर्मी का सामना 2 दिन से दिल्ली एनसीआर के लोग कर रहे थे। 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कन्फर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
3: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर हरियाणा पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले ही संभावना जताई थी जो कि सच साबित हुई। हालांकि दिल्ली में सूरज जिस तरह दिन भर तेवर दिखा रहा था उससे बारिश की संभावना न के बराबर हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में राहत भरा मौसम रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
5: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
3: हालांकि राहत की ये बारिश प्री मानसून है। दिल्ली में मानसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। वैसे सामान्य तौर पर मानसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है लेकिन इस बार मानसून करीब 1 हफ्ते देरी से पहुंच रहा है। जून के महीने में मानसूनी हवाएं काफी कमजोर रहीं। 8 से 15 जून के बीच मानसून पर ब्रेक लग गया था। उत्तर से आने वाले शुष्क हवाओं ने कमजोर मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस साल अलनीनो भी एक्टिव है जो भारतीय मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है जिसकी वजह से मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
5: तो मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है मुख्य रूप से जम्मू हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकता है।
3: तो मानसून आने में देर भले ही हो रही हो लेकिन अब पूरी संभावना है कि मानसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी लेकिन इस बार मानसून पूरे देश को करीब 1 हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ की खूबसूरत वादियों की झलक दिखाते हैं। यहाँ की बानी और सरथल इलाके में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ पर देवदार के जंगल और कुदरती नजारे पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग लगातार इन खूबसूरत वादियों का रुख कर रहे हैं।
2: ब्रेक के लिए रुकेंगे, चाय पर चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
2: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके।
2: आपको बता दें कि 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था, लेकिन वक्त के साथ ये खेल खत्म हो चुका था। अब इसकी वापसी के साथ घाटी में एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकेगा।
3: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बख्तूर गांव के बख्तूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
4: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में, जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था, जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
3: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
5: जहाँ पे ये खेल यहाँ पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में गए। तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
3: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था, तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
6: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को, इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे, इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
3: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका क्रेज भारत में भी खूब देखा जा रहा है। देखिए कुछ तस्वीरें तो ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हुए देखा जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर सिकंदराबाद से सामने आई है। यहाँ फुटबॉल प्रेमियों के बीच फीफा का फीवर इस कदर है कि उन्होंने गलियों को ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बड़े बड़े कटआउट से कवर कर दिया है।
8: आपको यहाँ पर सड़कों पर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बड़े कटआउट्स और देश के झंडे लगे नजर भी आ रहे होंगे। यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर दीवानगी केवल सिकंदराबाद में ही नहीं बल्कि याप्रल के जेजे नगर अमूगड्डा में भी दिख रही है।
1: फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच मेघालय की राजधानी शिलांग में भी खूब नजर आ रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री फुटबॉल फैन पार्क का उद्घाटन किया गया, जहां बड़ी एलईडी स्क्रीन पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचों का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। खेल प्रेमियों के लिए तो ये फैन पार्क फुटबॉल के जश्न का नया ठिकाना बन गया है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहां पर पहुंचते हैं, फुटबॉल मैच का आनंद उठाते हैं। फुटबॉल की दीवानगी यहां साफ देखी जा सकती है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप ख्याल रखिए अपना, कल फिर शाम 5 बजे चाय पर हमारे साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
11: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने साल 2027-2028 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी, टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेगा ज्यादा सुविधा। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बीच सामने आ रही उम्मीद की तस्वीरें, कारकस में 6 दिन से मलबे में फंसे बच्चे की बचाई गई जान, सर्च और रेस्क्यू टीम लोगों के बीच बनी देखती। कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में भी बदला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में बात मौसम के मिजाज की। देखिए, 4 जून को मॉनसून ने देश में दस्तक दी थी। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मॉनसून के बादलों ने कुछ खास सफर तय नहीं किया। यानी देश के कुछ हिस्सों में तो मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन वहीं देश के कुछ राज्यों में मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 शहर की ये तस्वीरें हैं और दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां दिल्ली की आंखें मॉनसून के बादलों की राह देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के इस हिस्से में मॉनसून कब दस्तक देगा और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके हुए खड़ा हुआ है।

0: बड़ी उम्मीद बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांग भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बढ़ से बदरा की दक्षिण से उत्तर पूर्व तक देश की धरती चमक उठी। जून की उंगली थाम मॉनसून के बादलों ने सफर शुरू किया तो लगा कि अब बस ये बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी निर्बाध चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी। लेकिन मानसूनी बादलों के पांव रास्ते में जाने क्यों थमते रहे। नतीजा ये हुआ कि जून की आखिरी तारीख तक मानसून के लिए दिल्ली दूर ही रही। तय कैलेंडर के हिसाब से तो मानसून को 27 से 28 जून तक दिल्ली आ जाना चाहिए था, लेकिन आधा एमपी और थोड़ा गुजरात पार कर मानसून के पांव मानो ठिठक गए। ऐसा लगा कि कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में एंट्री ली थी। यहां तक के सफर में मानसून ने देश के 22 राज्य को कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक मानसून वहीं पर स्थिर हो गया। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के चलते मॉनसून इसी तरह 8 जून के बाद से लगभग 10 दिनों तक देश के पश्चिमी तट के पास अटका रहा था। जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का फिर वही पैटर्न देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जून की भयानक गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है। लेकिन अब मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली वालों को राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मॉनसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
1: मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकते।
0: यानी मॉनसून आने में देर भले ही लग रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मॉनसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। दरअसल अब के साल मॉनसून की इस लेट लतीफी के पीछे एक बड़ी वजह है। इस सीजन उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मॉनसूनी हवाओं के रास्ते में लगातार रुकावट डाली है। साथ ही इस साल अल नीनो भी एक्टिव है जो भारतीय मॉनसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन फिलहाल तो मौसम विभाग ने राहत का ही संकेत दिया है। मौसम विभाग की माने तो 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 4 जुलाई तक के इस पूर्वानुमान पर नजर डालें तो ये बदलाव साफ नजर भी आता है। राजधानी दिल्ली में जहां 27 जून के बाद से तापमान लगातार 40 के पार चल रहा है, वहीं तापमान 1 जुलाई से लगातार नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और 4 जुलाई तक तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। यानी दिल्ली NCR और बारिश को तरसते उत्तर भारत के दूसरे राज्यों को अगले 4 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। सोमवार की शाम से राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में ये तब्दीली नजर भी आने लगी। सोमवार शाम अचानक हुई प्री मॉनसून बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को पिछले दिनों की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
2: ये जरूर राहत लेकर आई है। जिस तरह की गर्मी का सामना 2 दिन से दिल्ली NCR के लोग कर रहे थे, 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली NCR के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले से ही संभावना जताई थी, जो कि आखिरकार सच साबित हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को भी राहत भरे मौसम का पूर्वानुमान जताया था। आंशिक रूप से बादल छाने और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। हीट वेव कंडीशन से निजात का ये शुभ समाचार लोगों के लिए राहत लेकर आया है।
1: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकते।
0: भले ही रात की बारिश प्री मॉनसून है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मॉनसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। आईएमडी के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, यानी जून जैसा गुजरा वैसा गुजरा, लेकिन जुलाई में देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून मेहरबान रहेगा और जमकर बदरा बरसेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए दिल्ली के बाद अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई पर मॉनसून खूब मेहरबान है। हालांकि अब की बार मुंबई में मॉनसून ने 23 जून को दस्तक दी थी और आमतौर पर 11 से 15 जुलाई के बीच मॉनसून मुंबई पहुंच जाता है। लगभग 10 दिनों की देर जो है वो जरूर हुई है, लेकिन मुंबई में मॉनसून के बादल अब झूम कर बरस रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात भी जरूर दिला दी है। एमसीडी ने अब की बार भी मॉनसून के पहले कई इंतजाम जल जमाव को रोकने के लिए किए हैं और ये इंतजाम काफी साबित होते हैं या नहीं मॉनसून के आने वाले हफ्ते बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई में मौसम का मिजाज और उसका असर कैसा है, ये मुंबई से बता रही है हमारी सहयोगी विद्या।
4: मुंबई में मॉनसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है, उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था, वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है, उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है, वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालाँकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबके आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं। हालांकि इस वक्त हम हैं लोअर परेल इलाके में और लोअर परेल इलाके में यहाँ पे काफ़ी जल जमाव होता है। अगर आपको याद हो 2017 में बॉम्बे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर अमरापुरकर, वो अचानक से यहाँ से, बहुत ट्रैफिक जाम था, पानी जल जमाव था, तो वो अचानक से गाड़ी से निकले और पैदल चल के घर की तरफ, सोचा उन्होंने जाएंगे तो, लेकिन एक ओपन मैनहोल, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनको लगा कि मैनहोल को खोल के रख देते हैं, उससे पानी रिसाव जो है सड़क पर वो चला जाएगा, तो वो ओपन मैनहोल उनको नहीं दिखा था, उसकी वजह से वो उसमें गिर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 2017 से के बाद भी एक दो वाक्य और इस तरह के हुए थे, तो जो उस समय 2017 में ये निर्णय लिया गया था कि जितने मैनहोल्स हैं उनको जाली लगा दिया जाएगा, और यही वजह है कि तकरीबन अब बीएमसी का कहना है कि 73,000 से ज़्यादा जो जालियां हैं वो मैनहोल्स में लगा दिए गए हैं और तकरीबन 2,500 के आसपास मैनहोल्स हैं ऐसे जिन पर कोई तकनीकी दिक्कत है, जिसमें कि वो लोग वो जालियां नहीं लगा पाते, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जल जमाव की स्थिति नहीं है यहाँ मुंबई में, इसकी वजह से मुंबई वासियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई।
3: तो देखिए, कहीं इंतजार है तो कहीं मूसलाधार बारिश, लेकिन इसी के बीच मॉनसून की बारिश ने कहीं हाहाकार भी मचाया हुआ है। देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून राहत के साथ साथ आफत भी लाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश का कहर थम ही नहीं रहा है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इन सभी चीजों के बीच राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है।

0: पिछले कई दिनों से जहां देश के कई हिस्सों को मानसून के बादलों का इंतजार है, तो कई राज्यों में मानसून के इन्हीं बादलों ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं पूर्वोत्तर में आफत बनकर बरस रही बारिश ने इन कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें चार राज्यों की है। असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। पहले हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। हाईवे पर मलबा आ गया, आवाजाही ठप हो गई। अचानक आए इस सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंस गए। सोमवार को कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया से भी सामने आई थी, जहां बाढ़ के चलते अचानक मलबा मुगल रोड पर आ गया और कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ सबसे ज्यादा आफत अरुणाचल प्रदेश में बची है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की है। अरुणाचल में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर पत्थर और चट्टाने बिखरे पड़े हैं। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। रास्तों पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि इस रास्ते पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के साथ जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच फिलहाल हाईवे पूरी तरह ठप पड़ गया है। बिगड़े हालात के बीच सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, साथ ही दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है।
1: अरुणाचल की सरकार पूरी टीम तैनात है, आपका एसडीआरएफ बोलो, एनडीआरएफ बोली है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के एवोकेशन के लिए बोली है, जिन्होंने कुछ कुछ लोग वहां में फंसे हुए थे नदी के बीच में, उसको भी हेलीकॉप्टर से एवोकेट किया गया है, और जहाँ जहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, राशन जो पहुँच नहीं पा रहा, जो मेडिकल के मेडिसिन जो पहुँच नहीं पा रहा, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर पूरा तैनात किया हुआ है, और जनता को कई प्रकार का तकलीफा होने नहीं देंगे।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें।
1: पूरा अपना जवान तैनात है, और लोगों से भी, जनता से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मानसून सीजन में इस समय लोग ज्यादा यात्रा ना करें। अगर जिसका विशेष काम होने से, और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने उसी दिन कल परसों दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ वीसी में कोऑर्डिनेशन का एक मीटिंग लिया है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
0: अरुणाचल ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने असम के लिए भी चुनौतियां बढ़ा दी है। धेमाजी, जोरहाट जैसे जिलों में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई है। असम के धेमाजी इलाके में करीब 70 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धेमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहीं की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं।
2: ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं, इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से, और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद उसी की वजह से हो रही है, और जो धाराकसार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आज यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी जो भी है पार करने के लिए असुविधा हो रहा है, और यहाँ पे सामने में जितने भी गांव है, जो सामने मालबुक है, सिले है, केमी पंचायत के जो भी गांव है, पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से पानी आने जाने की असुविधा हो रही है।
0: अब असम के जोरहाट की तस्वीर देखिए, लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से धस गया है। जोरहा का शहरी इलाका भी सैलाब के बीच घिरा नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में ये मौसम के मार से राहत जल्द मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम की मनमानी के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून ने पहाड़ी राज्यों की चुनौती किस तरह बढ़ाई है, इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आई है। देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज बहाव के कारण नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 20 से 25 मीटर तक फैल गई है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल इन घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घाटों के अलावा नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की भी लोगों से अपील की है। लेकिन रुद्रप्रयाग में फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल।
3: समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी ने अपना मूल बहाव क्षेत्र छोड़ दिया है और नदी मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर बह रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जो नदी किनारे स्थित घाट हैं वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिन घाटों में कल तक देश विदेश के तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचते थे, आज उन घाटों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा दूसरे छोर के घाट भी आप देख सकते हैं, यह घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल इन घाटों पर स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है। ये आप ठीक सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को देख रहे हैं। यह प्रतिमा नदी से तकरीबन 40 मीटर दूर है और इस प्रतिमा की जो हाइट है वह लगभग 10 फीट है। लेकिन नदी के तेज बहाव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। फिलहाल इन घाटों की ओर कोई नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। जगह जगह बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं।
0: तो मॉनसून के महीनों में देश का मौसम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग दिखा रहा है, लेकिन मौसम के एक रंग यूरोप भी इन दिनों दिख रहा है। देखिए, यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसी अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। देखिए, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तापमान हम भारतीयों के लिए ही लगभग सामान्य से बात हो गई है। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, तो ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी गर्मी के बनावट से निपटने के लिए बनाया गया है और ना ही वहां के लोगों के शरीर को इतना तापमान बर्दाश्त करने की आदत है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं।

0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फवारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं
1: पड़ी। Ő törülgette 28 fok. Ez volt a nyár. Hát ez most nem tudom mi. És jól nézünk ki, mi vár ránk ezek után.
0: ये पोलैंड है, जहाँ के सोपोट शहर में सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ सूरज की तपश दोपहर जैसी महसूस हो रही है। बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और इसके साथ लाइफ गार्ड जोआना की 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जोआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसे यहां गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
2: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।

0: No.
1: Oh, no.
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
4: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody who?
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
1: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा, फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की, बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है। शायद बहुत कम सास हैं जो ये कहती पाई जाती है कि मेरी बहू सी कोई नहीं, या बहू हो तो मेरी जैसी। लेकिन इन तस्वीरों को देख सास और बहू दोनों की सोच बदल सकती है। इस बहू की सास की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले उनकी ब्रज परिक्रमा हो जाए। बहू ने न सिर्फ सास की इच्छा को सिर माथे पर लगाया, बल्कि सास को ही माथे पर उठाकर निकल गई ब्रज परिक्रमा करने और अपनी सासू माँ की इच्छा पूरी कर दी। अब यूजर्स इस बहू की तारीफ खूब कर रहे हैं और बुजुर्ग इसे खूब दुआएं दे रहे हैं। चीन की पारंपरिक बोट रेस को यूं ही ड्रैगन बोट रेस नहीं कहा जाता। इस रेस में हर कोई भाग नहीं ले सकता, लेकिन इसके लिए दमखम, सूझबूझ, संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी होता है। इन तस्वीरों को देख ये बात आप समझ जाएंगे। देखिए इस ड्रैगन बोट रेस के दौरान ये प्रतिभागी रफ्तार से आते हुए जब मुड़ते हैं तो कैसे एक बैरियर पर लटक कर बोट को मोड़ते हैं। इन तस्वीरों को देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। चीन में पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस के दौरान प्रतिभागी किस तरह तेजी से मुड़ते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में ये दो बच्चे साइकिल पर उल्टा होकर ऐसा गजब का बैलेंस दिखा रहे हैं जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी हैरान रह जाएं। ये करतब केवल ताकत का नहीं बल्कि लंबे अभ्यास, आत्मविश्वास और बेहतरीन संतुलन का नतीजा है। और अब इन दोनों की ये करामात देख यूजर्स भी हैरान है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले दो से तीन दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी, टेलीविजन पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेगी ज्यादा सुविधा।
8: आज
7: हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए किया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बीच सामने आ रही हैं उम्मीद की तस्वीरें, काराकस में 6 दिन से मलबे में फंसे बच्चे की बचाई गई जान, सर्च और रेस्क्यू टीम लोगों के लिए बन रही है देवदूत। कल से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना हो जाएगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में भी बदलाव।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे जम्मू। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से जम्मू कैंप में तीर्थयात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर लगाए जा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले जवानों का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर परखा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर इलाकों में चलाया जा रहा सर्च अभियान, सभी जगहों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं जवान। अमरनाथ यात्रा होगी आसान, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी टनल तैयार। रामन के डिगडोल पंतिहाल के बीच 3.5 किलोमीटर लंबी टनल के साथ साथ रामसू मगरकूट फ्लाईओवर का भी काम हुआ पूरा। नई परियोजनाओं को शुरू होने से रामबन और बनिहाल के बीच यात्रा अधिक हो जाएगी सुरक्षित। श्रद्धालुओं के सुरक्षित और आसान सफर करने के लिए पहलगाम और बाल्टा रूट पर ट्रैक को किया गया चौड़ा, खूनी नाला और पंथायल जैसे सबसे जोखिम भरे इलाकों में अब यात्रियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, सभी चौक चौराहों पर नजर। विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त, अभी तक 13,61,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। यात्रा शुरू होने के 2 महीने 8 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आकर भक्तों ने कायम किया रिकॉर्ड, 22 अप्रैल को खुले थे बाबा के कपाट।

0: भले ही मॉनसून सीजन शुरू हो गया हो, बावजूद इसके हर रोज 7 से 8 हजार के बीच भक्त बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया निरीक्षण। सावन में होने वाले भीड़ को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की, सीसीटीवी कैमरे ड्रोन से की जा रही है पैनी निगरानी। अलवर में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान हुए बीमार, 15 दिनों तक जड़ी बूटियों और काढ़े की बदौलत होगा सेवन। अब 15 दिनों का भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहेगा, काढ़ा और औषधि से किया जाएगा इलाज। कार में दलिया, खिचड़ी, फल, ड्राई फ्रूट्स और बीमार मरीज को दी जाने वाली खाद्य सामग्री भगवान जगन्नाथ को अर्पित की जाएगी। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने ईवी बाइक से जगन्नाथ यात्रा के रूट पर निरीक्षण किया, कई इलाकों में पुलिस बल तैनात। सूरत में भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुभारंभ। रथ यात्रा के दिन भगवान को पहनाने के लिए वृंदावन से मंगाई गई है 3 लाख रुपए की डिजाइनर पोशाक। वृंदावन के कुशल कारीगरों ने 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बदौलत तैयार की है विशेष पोशाक। सूरत के स्कॉन मंदिर में भी इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां। रथ यात्रा के लिए पहली बार मुंबई से आया विशेष रथ। 15 जुलाई को धूमधाम से निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। सूरत में 17 किलोमीटर रूट पर निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में पहुंचते हैं श्रद्धालु। वाराणसी भ्रमण पर निकली 40 ग्रामीण महिलाएं और बच्चे, बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन। इन ग्रामीण महिलाओं का यह पहला वाराणसी भ्रमण, मंदिर दर्शन के साथ मॉल्स में भी शॉपिंग। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत पुलिस के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां, 32 जुलाई को सभी 13 जनपदों में आयोजित की जाएगी मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल की तैयारियों के तहत टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारियां। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से हुए वो रिटायर, कारभार छोड़ा। इस मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, उन्होंने देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात समापन समारोह का आयोजन किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंडित राधे श्याम कथावाचक की प्रतिमा के अनावरण समारोह में पहुंचे। रामपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 690 करोड़ की लागत से 102 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया, कहा डबल इंजन की सरकार ने केवल विकास का काम किया। बोधगया में विश्व का अनोखा शांति स्तूप, असलों के अवशेषों से बना हुआ स्तूप। पीतल की परत से ढका स्तूप विश्व को शांति दे रहा है संदेश, 33 सालों तक श्रीलंका सेना और लिट्टे के बीच स्तूप के लिए हुआ था गृह युद्ध। झोपड़ी से निकलकर आईटी पहुंचा टैक्सी ड्राइवर का बेटा आदेश, बिश्नोई जेई एडवांस में हासिल की ऑल इंडिया 1783 रैंक। मां मनरेगा में करती है मजदूरी का काम, बेटे को जेई में मिली सफलता। अलवर के सरिस्का में पर्यटकों को मिली बहुत शानदार सुविधा, बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क, टॉयलेट और गेटों का होगा कायाकल्प, कई सुविधाओं से लैस होगी व्यवस्था। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बेंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समुद्र में फंसे 6 नाविकों बचाई जान। देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए 8,120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके डिब्रूगढ़ पहुंची राष्ट्रीय साइकिलिस्ट आशा मालवीय। कल से बदल जाएंगे आम आदमी के जेब और खर्चों से जुड़े 6 प्रमुख वित्तीय नियम, इनमें क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड लाउंज एक्सप्रेस समेत तमाम चीजों में होगा बदलाव। कल से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च होने की सुविधा उत्पन्न हो सकती है। सुविधा से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे अपना पीएफ। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराना हो जाएगा फ्री, पहले इस काम में लगते थे ₹75। अब पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा महंगा, कल से 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर हो जाएगी 2500, तत्काल पासपोर्ट बनाने में लगेंगे 5000। रेलवे यात्रा के नियम भी हो सकते हैं सख्त, इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगेगा सख्त जुर्माना। गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालियों के लिए राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन तक दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दमन के कई हिस्सों में पार कर चुका है मानसून। गुजरात के सूरत में मानसून की जबरदस्त एंट्री, कई इलाकों में भर गया पानी। मानसूनी बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए, सड़कों के बीच गड्ढों में फंसे लोग। उधम सिंह नगर में भी मूसलाधार बारिश, गिरा पारा लेकिन घरों और रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। नवसारी में मौसम की पहली बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत लेकिन जल जमाव से धीमी हुई रफ्तार। रांची में भी जमकर बरस रहे हैं बदरा, गर्मी के साथ चिपचिपाती उमस से मिली राहत। अकोला में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी, लोगों को गर्मी से राहत मिली। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में बारिश के बाद बढ़ा कई नदियों का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी ही पानी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर, कई घाट डूब गए। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न, सड़कों में पानी ही पानी। सिक्किम के सिंगथम में जबरदस्त भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा, कई सड़कें बंद। मलबा में फंसी पर्यटकों की गाड़ियां, सैलानियों की बड़ी परेशानी। सिंगथम में भारी बारिश से बढ़ा खतरा, बाढ़ जैसे हालात, कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आई अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल, बेटा और बेटी भी नजर आए। सांसद प्रिया सरोज के साथ डिंपल की बेटी टीना और अदिति ने विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती की। रामेश्वरम में गांव के मंदिरों के पुजारियों के लिए 56वें मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर का आगाज। शिविर में पुजारियों को मंत्रोच्चार, अभिषेक, सजावट विधियों और थेवरम की भी प्रशिक्षण दी गई। कोटा में बच्चों की संसद में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, छात्र छात्राओं का बढ़ाया हौसला, बोले युवा ही देश का भविष्य। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, सितंबर से जापान में आयोजित होगा टूर्नामेंट। एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को मिली टीम की कमान, स्मृति मंदना को बनाया गया उपकप्तान। खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर यास्तिका भाटिया को टीम से किया गया ड्रॉप। स्पिन ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में जगह। आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद। कल से इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैच की सीरीज का आगाज। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली T20 सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की नजरें। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में मौका। फुटबॉल वर्ल्ड कप में हुआ बड़ा उलटफेर, विराट ने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। सिकंदराबाद में शायद फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, सड़कों पर खिलाड़ियों के लगे कटआउट्स। सिकंदराबाद की सड़कें रंग बिरंगे फैन जोन में तब्दील हुई, सड़कों को ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल की तस्वीरों से सजाया गया। सजावट ने लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, सजी धजी कॉलोनियों के वीडियो हो रहे हैं वायरल। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट का लोगों ने जमकर मनाया जश्न, अपनी पसंदीदा टीम के लगाए नारे। शिलोंग में फुटबॉल फैन पार्क में फीफा वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग का शुभारंभ, मुख्यमंत्री कोनराड के संग में शामिल हुए। चेक रिपब्लिक में चर्चा का विषय बना अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का सबसे बड़ा फैन अर्जेंटीना के झंडे के रंग में रंगा हुआ है। अब अनेक है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के इस दीवाने का नाम। अर्जेंटीना के रंग में रंगी है अब अनेक की गाड़ी, लाइसेंस प्लेट में लिखा हुआ है माराडोना। अब अनेक के कलेक्शन में नेपाली के समय के डियागो माराडोना की ओरिजिनल साइन की हुई तस्वीर भी शामिल है। 4 साल की उम्र से अब अनेक है अर्जेंटीना टीम के फैन। इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवर अपन 2 का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देने जा रही है दस्तक। फिल्म अल्फा प्रमोशन करने के लिए जयपुर पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी। अल्फा को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है, फिल्म को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज। एनटीआर ने सोशल मीडिया पर लिखा शिव के पुत्र पार्वती के गौरव। सूर्या ने होमले फिल्म्स के नए प्रोजेक्ट के लिए टीजे ज्ञानवील के साथ हाथ मिला। सनी देओल और अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म इक्का का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम।
1: लाइफ के बदले लाइफ,
2: लोगों के पक्ष में लड़ते हैं वो डिफेंस लॉयर बनेंगे।
0: ओडिशा में 5वीं किताब में ऐश्वर्य राय का हिट गाना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है निमोड़ा निमोड़ा। फिल्म हेरा फेरी 3 को लगा सबसे बड़ा झटका, फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने छोड़ी फिल्म, बोले शायद कभी रिलीज नहीं हो। वेलकम टू द जंगल का कमाल, 4 दिन में कमा डाले 100 करोड़। पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 ने किया कमाल, जबरदस्त कलेक्शन के साथ 2 फिल्मों को पछाड़ा टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों में शुमार।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: Tune-ins how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, अब इंतजार रथ यात्रा का है।
9: धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है। इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
10: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ, जो बॉम्बे से बनके तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। चूंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
9: रथ ही नहीं, इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
10: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
9: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: आषाढ़ के महीने में देवी की पूजा क्यों की जाती है? आषाढ़ के महीने का किस नक्षत्र से संबंध है और आषाढ़ के महीने में किसकी पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है? क्या है आषाढ़ के महीने की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: A beautifully designed Squarespace website is the difference between thinking about photography school and selling your portraits online. It's the difference between giving away those cookies you just made for free and running your cookie empire. A beautifully designed Squarespace website is the difference between having a movie reviewing hobby and a movie reviewing career. Squarespace, because no matter what you're into, a website makes it real. Use offer code MAKEITREAL for 10% off your website or domain.
13: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: आषाढ़ के महीने में देवी की पूजा क्यों की जाती है? आषाढ़ के महीने का किस नक्षत्र से संबंध है? और आषाढ़ के महीने में किसकी पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है? क्या है आषाढ़ के महीने की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर। अगले दो से तीन दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी, टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेगी ज्यादा सुविधा। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मैडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट। कल से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में भी बदलाव।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, अमरनाथ यात्रा से ये जुड़ी हुई है जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। ऐसे में यात्रा से पहले जम्मू में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। तवी नदी के तट पर महाआरती की गई जिसमें बड़ी संख्या में अमरनाथ तीर्थ यात्री शामिल हुए। इस महाआरती के जरिए सफल और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रार्थना की गई। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है तवी के तट पर महाआरती। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इस साल श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार अनुभव तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अब देश भर से जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ तीर्थयात्री न केवल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे बल्कि तवी रिवर फ्रंट पर बनारस और हरिद्वार की तर्ज पर होने वाली भव्य महाआरती में भी शामिल हो सकेंगे। इसी तवी रिवर फ्रंट पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए विशेष टोकन काउंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन के अलावा पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, विश्राम स्थल, स्वच्छता और सहायता केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
8: जय भगीरथ, जय जटोरथ, नर

तैयारी भी पूरी कर ली गई है और देश भर से श्रद्धालु भी जम्मू में जुटने लगे हैं। इन श्रद्धालुओं को इस बार न सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका मिलेगा बल्कि तवी नदी के तट पर महाआरती में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। ये तस्वीर तवी रिवर फ्रंट से आई है जहां पहली बार सूर्यपुत्री माँ तवी की भव्य संध्या आरती की गई।

0: साधु संतों और पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों के साथ मातवी की आरती कराई, जिसमें बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु शामिल हुए और उन्होंने सफल और सुरक्षित यात्रा के लिए मातवी से प्रार्थना की।
1: बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो 3 जुलाई को शुरू हो रही है और इस समय आप तस्वीरें जो है वो सीधा सूर्यपुत्री तवी से देख रहे हैं, जहां पर जो श्रद्धालु देश भर से आएंगे यात्री उनके लिए यहां पर तवी आरती का आयोजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिएगा कि भारी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं और तवी आरती का यहां पर आनंद ले रहे हैं। और आज से इस तवी आरती का प्रारंभ जो है वो हो चुका है। कहाँ से आए?
2: MP जबलपुर। हम लोग 3 दिन हो गए यहाँ पे।
1: रजिस्ट्रेशन हो गया आपका?
2: नहीं करवाना है अभी।
1: अच्छा, करवाना है। कितनी उत्सुकता है बाबा के दर्शन करने की?
2: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: तो कैसा लगा आज यहाँ पे आरती में आप जो है?
2: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा लगा।
3: बहुत जो है बहुत ही आनंदमय स्थान है। धरती का अगर स्वर्ग कहीं है तो ये कश्मीर में है, बाबा बर्फानी के दरबार में है। बहुत ही मैं उत्साहित हूँ ये आरती देख कर।
0: अमरनाथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने इस बार बड़ा बदलाव किया है। श्रद्धालुओं को तत्काल पंजीकरण, टोकन और RFID कार्ड की सुविधा इस बार रेलवे स्टेशन के बजाय तवी रिवर फ्रंट पर ही मिलेगी, जहां हर रोज करीब 3500 तीर्थयात्रियों के ठहरने, वाटरप्रूफ टेंट, लंगर, सुरक्षा और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जो यात्री शहर के दूसरे हिस्सों में रुकेंगे उन्हें महाआरती में शामिल करने के लिए विशेष शटल बस सेवा भी चलाई जाएगी।
4: और ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है आरती करने के लिए। पिछले साल भी इस तरह से की थी, हमारी टोली आरती तो करती रहती है, निशुल्क आरती। तो अमरनाथ जी के यात्रियों के लिए, उन सबके लिए ये आरती जो है लगातार होती रहेगी। सवेरे प्रथम पूजन भी हुआ है, ध्वज वंदन भी हुआ है और यहाँ पर अभी त्रिशूल स्थापना भी हुई, नाग देवता ने स्वयं आकर दर्शन भी दिए हैं। और आज से ये आरती लगातार रोजाना जम्मू के लोगों के लिए पहले भी होती रही है, यात्रियों के लिए रोजाना रही।
0: यात्रा के शुरू होने में वक्त ज्यादा नहीं बचा है, ऐसे में देश भर से तीर्थ यात्री जम्मू में जुटने लगे हैं। इन तीर्थ यात्रियों के लिए तवी रिवर फ्रंट पर 10 टोकन काउंटर बनाए गए हैं, जहां से ये तीर्थ यात्री पहले यात्रा के लिए टोकन हासिल करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपना RFID कार्ड हासिल करेंगे।
5: तीसरी बार जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से और पिछले 2 बार लगातार होके आए हैं हम। इस बार भी हम भोलेनाथ की कृपा से आज पहले जत्थे के साथ जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
6: सब व्यवस्था अच्छे से हो रहा है, पहले जत्थे में दर्शन होगा बाबा की कृपा से। जय हो।
7: झांसी से आए हुए हम लोग, झांसी से तीसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं, बालटाल से करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।
8: बढ़िया व्यवस्था है, सब लोग आते हैं, हर साल आ रहे हैं। इस साल 11वीं साल है हमारी और तो बाकी लोगों की 21 साल है, 25 साल।
9: कितनी खुशी है पहले जत्थे में?
8: बहुत खुश हूँ भाई, भोलेनाथ की कृपा है, जब तक सांसें रहेंगे तब तक आते रहेंगे। बोल महादेव बाबा की।
10: बहुत खुश है, नसीब ही अच्छा है कि हम जा रहे हैं इस जगह।
0: इस साल 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए अभी तक करीब 4 लाख भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल 57 दिनों की यात्रा के दौरान पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जम्मू से राही कपूर और सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी से में स्थित उनके धाम में ही नहीं होती, बल्कि दुनिया भर में निकाली जाती है। देश और दुनिया में जहां जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां हर साल अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को श्रद्धा और उत्साह के साथ ये यात्रा निकलती है। इसी कड़ी में सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी रथ यात्रा की जबरदस्त तैयारियां चल रही है। इस बार सूरत के इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा का खास आकर्षण है मुंबई से आया हाईटेक रथ, और इसी से जुड़ी हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज है। महाप्रभु के लिए हाइड्रोलिक रथ। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के महास्नान का अनुष्ठान संपन्न होने के बाद विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मान्यता है कि महास्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की तबीयत नासाज हो जाती है, लिहाजा वे 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और विश्राम करते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पर रोक लग जाती है। हालांकि भगवान जगन्नाथ के अनन्य श्रद्धालुओं के लिए यह समय उनकी रथ यात्रा की तैयारियों का होता है, जिसके तहत सूरत में इस बार रथ यात्रा के लिए खास तैयारी की गई है।

0: ज्येष्ठ मास की पावन पूर्णिमा के दिव्य अवसर पर हुए महास्नान अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार होकर एकांतवास में चले गए हैं। पौराणिक मान्यता और सनातन परंपरा के अनुसार आषाढ़ कृष्ण प्रतिमा से 15 दिनों तक आम श्रद्धालुओं के लिए जगन्नाथ जी का दर्शन प्रतिबंधित हो जाता है। इस दौरान सिर्फ मंदिर के पुजारी और सेवायत ही भगवान की सेवा में रहते हैं और भोग प्रसाद के रूप में हल्के सुपाच्य भोजन और औषधीय काढ़ा उन्हें अर्पित करते हैं। जगन्नाथ जी को लेकर श्रद्धा और आस्था का भाव ऐसा है कि जिन 15 दिनों में भगवान आरोग्य के लिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते हैं, उसी दौरान उनके भक्त और श्रद्धालु अप्रतिम निष्ठा और प्रेम भाव के साथ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे रहते हैं। पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम के अलावा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के जगन्नाथ मंदिरों में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूरत के स्कॉन टेंपल में जगन्नाथ यात्रा को लेकर इस बार बेहद खास तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा के लिए इस बार मुंबई से हाईटेक रथ मंगाया गया है, जिसमें भक्ति के रंग के साथ तकनीक का संगम दिख रहा है। पार स्टेयरिंग और पार व्हील के साथ इस रथ में हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, ये रथ भक्त की अलग अलग धाराओं को सनातन की सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने का प्रतीक भी है, क्योंकि इस रथ पर अपने भाई और बहन के साथ सवार होंगे जगन्नाथ महाप्रभु। और रथ के एक तरफ हरे राम तो दूसरी तरफ हरे कृष्णा अंकित किया गया है।
1: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ, जो बॉम्बे से बनके तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। चूंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए है। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
0: सूरत में हाईटेक रथ पर सवार होने वाले भगवान जगन्नाथ, अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा का परिधान भी इस बार अनोखा है। 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र और सुभद्रा जो परिधान धारण करेंगे वो वृंदावन में तैयार होकर सूरत पहुंच चुका है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वृंदावन में 15 कारीगरों ने पूरी श्रद्धा और 1.5 महीने की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है।
1: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं, और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
0: स्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की देव दुर्लभ रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे निकाली जाएगी, जो सूरत रेलवे स्टेशन रिंग रोड गुजरात गैस सर्किल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। मान्यता है कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को जीवन के कष्ट क्लेश से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अगली खबर कर्नाटक के मंगलुरु से है, जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड 6 मछुआरों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक एक दिन पहले शाम करीब 4 बजे आईसीजी के जहाज सचेत को वीएचएफ रेडियो के जरिए एक मैसेज मिला था, जो मंजू माथा नाम की मछली पकड़ने वाली नाव ने भेजा था। खराब मौसम से नाव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें पानी भरने लगा था। ऐसे में नाव पर मौजूद 6 मछुआरों ने मदद मांगी, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है, मछुआरों को बचाने वाले देवदूत। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि रात का अंधेरा, उफनता समंदर और मौसम खराब। बावजूद इसके कोस्ट गार्ड की टीम ने संदेश मिलते ही अपना जहाज तुरंत मौके की ओर रवाना कर दिया और करीब 90 मिनट में जहाज संकट में फंसी नाव तक पहुंच गया, जिसके बाद शुरू हुआ 6 जिंदगियों को बचाने का ऑपरेशन, जिसके तहत समुद्र में फंसे मछुआरों तक सुरक्षित पहुंचने के लिए रिमोट से चलने वाले लाइफ बॉय का भी इस्तेमाल किया गया। ये डूबते हुए लोगों की जान बचाने वाले आधुनिक रोबोट होते हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में दक्ष होते हैं। इस रोबोट की मदद से शाम 6 बजे तक सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी भी मछुआरे को चोट नहीं आई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित जवानों के साहस ने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को पूरा किया है। और जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है। 5 दशक बाद घाटी में हॉर्स पोलो रिटर्न। जी हाँ, 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था। गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह से गायब हो गया था, मगर अब करीब 5 दशक के बाद गुरेज घाटी में फिर से हॉर्स पोलो की शुरुआत हुई है, वो भी भारतीय सेना की पहल पर। अब उम्मीद जताई जा रही है कि हॉर्स पोलो शुरू होने से गुरेज में एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
3: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
4: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में, जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
3: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
5: यहाँ पे ये खेल यहाँ पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में दे। तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
3: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
6: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को। इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे। इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
3: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अगली खबर एथलीट एनसी सोजन की है, जिन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। केरल की बेटी एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में इतिहास रचते हुए अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है एनसी सोजन की लंबी छलांग तोड़ा रिकॉर्ड। देखिए कमाल ये है कि एनसी सोजन की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद खुद अंजू बॉबी जॉर्ज ने ही उन्हें सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि केरल की ये बेटी आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेगी। एनसी सोजन ने ये कामयाबी हासिल कर अपने पिता के उस अधूरे सपने को पूरा किया जिसे उन्होंने वर्षों पहले देखा था।

0: हौसला बुलंद हो, विश्वास दृढ़ हो और जीतोड़ परिश्रम से परहेज न हो तो सुविधाओं की कमी आसमानी कामयाबी की राह का रोड़ा नहीं बन सकती। इस फलसफे को सच कर दिखाया है केरल की बेटी एनसी सोजन ने। केरल के थ्रिसूर जिले में ऑटो चलाकर जीवन निर्वाह करने वाले सोजन ईटी की 25 साल की बेटी ने सफलता की इतनी लंबी छलांग लगाई कि 22 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे दिन एनसी सोजन ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया इतिहास रच डाला। गजब का इत्तेफाक है कि ये उसी अंजू बॉबी जॉर्ज ने उनका खुद का रिकॉर्ड तोड़ने वाली एनसी सोजन को फक्र के साथ सम्मानित भी किया।
1: I'm so happy that after 22 years, NC Sojan could break my record. And now she's she did a 6.88 meters. That's a world class jump. I was actually expecting that from 2021 when Shaili got the World Junior Championship medal. But it took a little more time. I'm extremely proud to say that Shaili is also in that range. So these two athletes, I think they will take this baton further, and long jump will be again in the top spot.
0: आपको बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज ने साल 2004 में एथेंस समर ओलंपिक के दौरान 6.83 मीटर की छलांग लगाकर ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, जिसे एनसी सोजन से पहले कोई तोड़ नहीं पाया। साफ है कि एनसी सोजन अंजू बॉबी जॉर्ज से कहीं आगे निकल गई हैं। एनसी सोजन ने 6.88 मीटर की छलांग लगाई, जबकि अंजू बॉबी जॉर्ज ने 6.83 मीटर की छलांग लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। एनसी सोजन ने राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की, जबकि अंजू बॉबी जॉर्ज ने एथेंस समर ओलंपिक में ये रिकॉर्ड बनाया था। एनसी सोजन ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 2026 में रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचा, जबकि अंजू बॉबी जॉर्ज ने एथेंस में साल 2004 में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया था। आपको बता दें कि एनसी सोजन केरल के एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, हालांकि वो खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं, पर मुफरिसी की मार ने उन्हें और आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन अब अपनी हसरतों को उन्होंने अपनी बेटी के माध्यम से आखिरकार पूरा कर लिया। उम्मीद है कि आगामी एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में एनसी सोजन भारत के लिए निश्चित रूप से पदक लेकर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब बात एक ऐसे इनोवेशन की जो कि भविष्य में आग बुझाने के तरीकों को बदल सकता है। गुजरात के सूरत में एक छात्र ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट फायर फाइटिंग वाहन तैयार किया। ये वाहन आग लगने पर खुद उसकी पहचान करता है और बिना किसी इंसानी मदद के उसे बुझाने की कोशिश भी करता है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है, और वो है आग बुझाने में एआई करेगा मदद। देखिए, दावा है कि ये तकनीक आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने और नुकसान को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। फिलहाल ये एक प्रोटोटाइप है, लेकिन आने वाले समय में इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आजकल गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं जितनी तेजी से बढ़ी है, उसे देखते हुए ये स्मार्ट आग बुझाने में ये वाहन कारगर साबित हो सकता है और जान माल के नुकसान को भी कम किया जा सकता है।
3: उस गाड़ी में मैंने फ्लेम सेंसर को यूज किया है, जिसके हिसाब से उसमें जहां भी आग लगती है तो उसमें मैन पावर की जरूरत नहीं होगी, गाड़ी खुद अपने हिसाब से जाएगी, फायर सेंस करेगी और जिस हिसाब से मान लीजिए कि किसी कोने में आग ज्यादा है और किसी जगह पे कम है, तो उस हिसाब से वो अपने आप से सोचेगी, उसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकती है कि कहां से उसे आग बुझानी है। पोजीशन भी वो खुद ही लेगी, उसमें मैन पावर की कोई भी नीड नहीं है। हाँ, अभी तो ये जो प्रोटोटाइप है उसमें हमने फ्लेम सेंसर का यूज किया है, तो वो अभी तो फ्लेम डिटेक्ट करके उस हिसाब से काम कर रही है। इसे हमें प्रैक्टिकली बनाने के लिए जो एक्चुअली में जो आग है उसका टेम्परेचर मेजर करके उस हिसाब से सेंसर को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, फिर ये पॉसिबल हो सकता है।
2: जेल का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और सजा काट रहे कैदियों की तस्वीर उभरती है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ जेल जीवन को नई दिशा देने का माध्यम भी बनती जा रही है। इसी सोच के तहत पंजाब के फरीदकोट में जेल प्रशासन ने सुधारात्मक पहल करते हुए रेडियो उजाला की शुरुआत की। ये रेडियो उजाला केवल मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि ये बंदियों की आवाज बनने का प्रयास भी है। आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, जेल में कैदियों के लिए उजाला। इस रेडियो उजाला के जरिए जेल में बंद कैदी अपने मन की बात, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और जीवन से जुड़े विचार साझा कर सकेंगे। कई ऐसे कैदी होते हैं जो अपनी भावनाओं को किसी से कह नहीं पाते। ये रेडियो उन्हें एक ऐसा मंच देगा जहां वो बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकेंगे। इसके अलावा रेडियो पर भक्ति संगीत, प्रेरणादायक संदेश, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कानूनी जागरूकता, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे।

0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: TalkSport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
2: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
3: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
2: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
3: Remember, around here, we use the F Word.
2: Never the S Word.
1: The S Word, available now on TuneIn,
4: wherever you get your podcasts,
1: and on the S Word YouTube channel.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिल सकती है राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी, टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट। कल से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में बदलाव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबर अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक ऐसा कैमरा है और एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आनी शुरू होती है। लेकिन हम खबर की पड़ताल करते हैं, परत दर परत उसे खंगालते हैं और आप तक लाते हैं सही, सच्ची और सटीक खबर। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया और फिर उसे जबरन जश्न बुलवाया गया। दावे की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है, हिंदुओं को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है देखिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया, फिर उससे जबरन जश्न बुलवाया गया। क्या है सच्चाई देखिए रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवती के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग एक मुस्लिम लड़की को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कुछ लोग मुस्लिम लड़की से जबरन जय श्री राम बुलवा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने भी वीडियो को शेयर करते हुए इसी तरह का मिलता जुलता दावा किया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की दावे की सच्चाई जानने के लिए। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। वीडियो किसी दुकान के बाहर का लग रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम महिला को घेर कर खड़े हैं। वीडियो में जय श्री राम का नारा भी सुनाई दे रहा है, आप भी सुनिए। लेकिन लोगों की लिपसिंग से ये ऑडियो मैच नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसे अलग से कहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसमें होंठ और आवाज आपस में मैच कर रहे होते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर नजर आ रहा है कि महिला डरी सहमी हुई है। फैक्ट चेक टीम ने भी पाया कि वीडियो में बांग्ला सुनाई दे रही है, मतलब ये कि वायरल वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से हो सकता है। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, बता सके कि वाकई यह खबर सही है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां इससे मुद्दा भी बनाती अगर इस तरह का कोई मामला वहां पर हुआ होता, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 16 दिसंबर 2025 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक युवती को पैसे चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। युवती ने मीरपुर कॉलेज मार्केट की एक दुकान से कैश चुराने की कोशिश की थी। असली वीडियो में जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर मिला। वीडियो को 17 सितंबर 2025 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के अनुसार युवती पर कैश चुराने का आरोप लगा था। महिला का नाम अनीता था, वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन उसकी चाची सास ने उसे कहा कि उसकी सैलरी काफी कम है और चोरी करके इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में महिला ने चोरी करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में भी जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो को एडिट कर इसमें ऑडियो अलग से लगाया गया है। असली वीडियो को सुनने पर हमने पाया कि 1 मिनट 30 सेकंड पर महिला से उसके एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। फिर वो कहती है कि बारिशाल के उजीरपुर से है। सर्च करने पर हमने पाया कि उजीरपुर बांग्लादेश के बारिशाल जिले में पड़ता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम महिला से जबरन जय श्री राम बुलवाने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। असल में ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश में हुई एक घटना का है। लड़की को दुकान में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इस घटना के वीडियो को एडिट कर जय श्री राम के नारे के ऑडियो को इसमें जोड़ा गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये एक नया वीडियो है जहां हिंदुओं को पत्थर मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंक कर उस पर पत्थर और डंडा चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक युवक के पीछे भीड़ खड़ी है, तभी एक व्यक्ति युवक को लात मारता है। दो आदमी युवक को पकड़कर गंदे नाले में फेंक देते हैं, उसके बाद लोग पत्थर मारने लगते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को बांग्लादेश का बताते हुए वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबा कर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है।
2: सोशल
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंककर उस पर पत्थर और डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते दावा ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबोकर उन पर पत्थर बरसाया गया और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो सामने आया कि ये बांग्ला है। इसके अलावा वीडियो में कई लोग इस्लामिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं, मतलब ये कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। इसके अलावा वीडियो में कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं। जब हमने इसके नंबर प्लेट्स को जूम करके देखा तो साफ हुआ कि वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का ही है, क्योंकि इसमें बांग्ला नंबर प्लेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में बांग्लादेश से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें जून 2026 के एक ऐसे ही पोस्ट मिले जिसमें बांग्लादेशी यूजर्स ने इस घटना की निंदा की थी। कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों ने मिलते जुलते वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि ये घटना ढाका के जात्राबारी की है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। भीड़ के हमले से बचने के लिए युवक कथित तौर पर एक नाले में कूद गया था। 16 जून की ग्राउंड से की गई वीडियो रिपोर्टिंग में भी घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए यही बताया गया कि जात्राबारी इलाके में एक युवक मोबाइल छीनते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो में युवक को नाले से बाहर निकलने के बाद कान पकड़कर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका जिले के जात्राबारी का है। 16 जून 2026 को मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्लाते
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर बाप बेटी की एक बहुत भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुँचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ पे पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देखकर इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहा है। कहते हैं कि दोस्तों का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊदबिलाव आ होता है, जैसे कि दोस्ती। एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊदबिलाव और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहा होता है। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोस्ती काफी गहरी है। बच्ची डरने के बजाय खुश है और साही उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। साही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्ची से कह रहा हो, जहां जहां तुम जाओगी मैं पीछे पीछे आऊंगा। वीडियो में बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमें वो सिंहली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वो इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्करा रहे हैं। इस वीडियो में कोलकाता की एक ट्यूशन टीचर ने अपने छात्रों के साथ बिताए कुछ खास पल दिखाए हैं। आमतौर पर ट्यूशन क्लास में पढ़ाई, होमवर्क और रिवीजन की बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बच्चों को अपनी टीचर के प्रति प्यार और अपनापन देखने को मिलता है। वीडियो में अलग अलग घरों में पढ़ाई के दौरान बच्चे टीचर को बड़े प्यार से खाने की चीजें ऑफर करते हुए नजर आते हैं। कोई उन्हें चाउमीन देता है तो कोई इडली सांभर खिलाता है। इसके अलावा वीडियो में चाइनीज फूड, फ्रेंच फ्राइज और जूस, पॉपकॉर्न्स, पकौड़े, चीला, चाय और मूंगफली जैसी कई चीजें भी बच्चे उन्हें देते हुए नजर आते हैं। वीडियो में बच्चों और टीचर के बीच की अच्छी बॉन्डिंग साफ नजर आती है। कई जगह बच्चे उन्हें मुस्कुराकर हाय करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। यही छोटे छोटे पल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कभी कभी कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे दिल छू जाती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो बुजुर्ग दोस्त पूरे 78 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये भावुक पल देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त बचपन में साथ रहते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और दोनों अलग हो गए। कई दशक गुजर गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन दिल में दोस्ती की याद हमेशा बनी रही। करीब 78 साल बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर गले लगाकर अपनी एक बार फिर से दोस्ती को यादगार बना दिया। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। वीडियो में एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी, उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। आज के समय में भारी भरकम काम के लिए आमतौर पर मशीनों की मदद ली जाती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में मजदूरों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसा काम करके दिखाया जो इंसानों के लिए नामुमकिन था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मजदूर एक ट्रक के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रक में लोहे की लंबी और भारी सरिया भी भरी हुई है। इन्हें उतारने के लिए किसी मशीन या क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके बजाय सभी मजदूर एक कतार बनाकर खड़े हैं और एक दूसरे को तेजी से सरिया पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि कोई भी मजदूर जल्दबाजी या अफरा तफरी नहीं करता। हर व्यक्ति अपने काम को पूरी समझदारी और सही तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से भारी भरकम सरियों का भी पूरा बंडल कुछ ही पलों में खड़े ट्रक में लोड हो जाता है। मजदूरों का ये तालमेल इतना शानदार है कि देखने वाले उनके इस कारनामे को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक लड़की ने कॉकरोच को पकड़कर उसका पूरा मेकअप कर दिया। जिस कॉकरोच को देखकर घिन आती है, उसी कॉकरोच को देखकर लोग क्यूट बुलाने लगे। लड़की ने कॉकरोच को गुलाबी रंग से रंगा, नेल पेंट लगाए और उसे पिंक बैडी बना दिया। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ पे लेकर मेकअप करते हुए नजर आ रही। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करती हुई नजर आई। वो पहले उसे गुलाबी पेंट से रंगती है, फिर छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करती है। कॉकरोच शुरू में हिलता डुलता है, लेकिन लड़की उसे पकड़े रखती है। आखिरकार वो एक खूबसूरत पिंक बैडी में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी का जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया जा रहा है। हाथी के लिए एक बड़े लकड़ी के टेबल पर तरबूज, आम, पपीता, केला और कई दूसरे फलों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा माहौल किसी बर्थडे पार्टी जैसा नजर आ रहा है। आसपास मौजूद लोग इस खास पल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब हाथी को सरप्राइज देने के लिए उसे पीजे की तरफ चलते हुए बूफे तक लाया जाता है। जैसे ही वो मुड़कर सामने रखे फलों को देखता है, उसकी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। वो तुरंत अपनी सूंड बढ़ाकर फल उठाने लगता है और बड़े चाव से उन्हें खाने लगता है। हाथी भी पूरे आराम और खुशी के साथ अपनी पसंदीदा दावत का आनंद लेता है।
1: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
2: जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया। वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है। कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसी हरकतें करने लगता है मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता है। ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह से पता है कि लंगूर बहुत फुर्तीले और शरारती होते हैं। अगर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन

0: को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज आपको अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में किस तरह से आस्था का महामेला लगा है आपको दिखाएंगे। पवित्र यात्रा से पहले जीएनटी पर कीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन। दिल्ली में एसआईआर शुरू, घर घर पहुंच रहे हैं बीएलओ, करेंगे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। और इको फ्रेंडली बप्पा का बढ़ता बाजार, मिट्टी के बप्पा प्रकृति का सम्मान। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी, टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेंगी सुविधाएं। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस को बनाया अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसिन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की अनुमति मांगी, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट। कल से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में बदलाव। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अमरनाथ यात्रा की, जिससे जुड़ी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और जम्मू शहर शिव भक्तों के जयकारों से गूंजने लगा है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले मां तवी की भव्य आरती का आयोजन भी किया गया। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार सूर्यपुत्री मां तवी की इस संध्या आरती का उद्देश्य बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना और जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। इसी के साथ पवित्र गुफा तक पहुंचने और बाबा बर्फानी के दर्शन में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉग स्क्वाड से लेकर ड्रोन तक की मदद ली जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर आए ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो।

0: बाबा का बुलावा है, आ गए हम तो।
1: ये जोश तो कम होने का चीज ही नहीं है जी।
2: तीसरी बार जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से।
3: बोल सच्चे दरबार की जय।
4: तीसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं।
5: पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की तस्वीरें आस्था के समंदर में हिलोरे भर रही हैं। बाबा के भक्त उस पल को महसूस करने के लिए बेताब हैं जब वो साक्षात शिव के दर्शन करेंगे। देश भर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का जत्था जम्मू पहुंच रहा है और आस्था की टोली के साथ बम बम भोले और महादेव का जयकारा भी सड़कों से लेकर पहाड़ों तक गूंज रहा है। बम बम भोले, बम बम भोले।

0: अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू पूरी तरह भक्ति के रंग से सराबोर हो चुका है। जम्मू में हजारों भक्तों के आने से पूरा माहौल ही शिवमय हो गया है। जहां नजर आप डालेंगे वहीं शिव भक्तों का रेला नजर आ रहा है। शहर के मंदिर, धर्मशाला, पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं का डेरा है। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं का भगवती नगर स्थित यात्री निवास, तवीर रिवर फ्रंट, पुरानी मंडी राम मंदिर समेत अलग अलग लंगरों और ठहराव स्थलों पर खूब चहल पहल नजर आ रही है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले माँ तवी की भव्य आरती हुई। तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार सूर्यपुत्री माँ तवी की इस संध्या आरती का उद्देश्य बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव देना और जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से उनको जोड़ना है।
1: जम्मू मंदिरों का धरती है, कश्यप ऋषि ने इसका सृजन किया है, भगवान कृष्ण के यहाँ पांव पड़े हैं और भगवान राम के पूर्वजों ने इसको बसाया है। तो ये भक्तिमय वातावरण वाली नगरी है, भक्तिमय वातावरण वाला प्रांत है। तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी का पल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या हो सकता है।
0: वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की रोशनी के बीच साधु संतों और पुरोहितों ने विधि विधान के साथ माँ तवी की आरती संपन्न कराई। वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित इस आरती की छटा देखते ही बन रही थी।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्योर फील हो रहा है और ऐसे बहुत ब्लेस्ड लग रहा है कि हम ये लाइव देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर है और अच्छा है कि अब ये ऐसा चलता रहेगा तो बहुत, मतलब हम लोग रोज आ पाएंगे यहाँ पर, रोज ये सब आरती कर पाएंगे, बहुत अच्छी चीज है।
0: अमरनाथ यात्रा से पहले माँ तवी की भव्य आरती का उद्देश्य बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के साथ ही जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।
3: बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो 3 जुलाई को शुरू हो रही है और इस समय आप तस्वीरें जो है वो सीधा सूर्यपुत्री तवी से देख रहे हैं, जहां पर जो श्रद्धालु देश भर से आएंगे यात्री उनके लिए यहां पर तवी आरती का आयोजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिएगा कि भारी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं और तवी आरती का यहां पर आनंद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि 3 जुलाई को बाबा अमरनाथ जी का पहला जत्था जाएगा। मैं इस तरफ आपको दिखाऊंगा, ये सूर्यपुत्री तवी है और इसे सूर्यपुत्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ की आरती जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जा रही है और जम्मू प्रशासन की तरफ से, जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ से और खासतौर पर श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास कौंसिल जम्मू की तरफ से ये आरती करवाई जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन जो है वो हो रहा है। हालांकि अभी ये आरती में जो है वो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, लेकिन अपने आप में ये एक ऐतिहासिक कदम है जम्मू प्रशासन की तरफ से, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, क्योंकि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्हीं ने यहाँ पर लगाया है। तो ये आस्था का केंद्र है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है देवी देवताओं की धरती है, माता वैष्णो देवी कटरा हो या फिर इसके साथ बाबा अमरनाथ जो कि कश्मीर घाटी में विराजमान है।
0: बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में रंगा दिख रहा है। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने जत्थों के साथ मंदिरों और विश्राम स्थलों पर बाबा बर्फानी के दर्शन की प्रतीक्षा में भजन कीर्तन और शिव नाम का जप करते दिख रहे हैं।
4: ये जोश तो कम होने का चीज ही नहीं है जी, ये तो बाबा का विश्वास है ना सबके ऊपर, सबका विश्वास है,
5: कोई डर तो नहीं,
4: कोई डर नहीं है जी, बाबा का साथ हो तो डर किसका, बोलो बोलो बोल।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और इस पवित्र यात्रा को लेकर उनमें गजब का उत्साह भी दिख रहा है। बालटाल में तैयारियां जोरों पर हैं। बालटाल इस यात्रा का क्योंकि सबसे अहम पड़ाव है, जिसे यात्रा के बेस कैंप के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ हर बार की तरह एक पूरी टेंट सिटी को बसा दिया गया है, जहाँ यात्रियों के रहने और खाने की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।
6: इस बार अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतज़ाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जहां पर हर श्रद्धालु को जो है वो उनको हर तरह की सुविधा जो है अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ अमरनाथ गुफा में भी मिलेगी, जिसमें रहने और रुकने और वहां पर जो है सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि अब की बार अमरनाथ यात्रा में सफाई का स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष जो है ध्यान रखा जा रहा है और विशेष टीमें लगाई गई हैं जो अमरनाथ यात्रा के रास्तों से प्लास्टिक और दूसरा कचरा साथ साथ जमा करेंगे और उसको रिसाइकल किया जाएगा।
0: श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, वहीं यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर जवानों का कड़ा पहरा है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जबकि यात्रा से पहले लगातार मॉक ड्रिल और सुरक्षा अभ्यास के जरिए हर हालात से निपटने की तैयारियां परखी जा रही हैं। डॉग स्क्वाड से लेकर ड्रोन तक की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी के साथ ही चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ये पक्का किया जा रहा है कि श्रद्धालु पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएं। इस बार यात्रा मार्ग पर सुरक्षा का घेरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हाईटेक दिख रहा है।
5: देखिए, उसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम पूरे समय में एक सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो वहाँ तैनात रहे और हम लोगों का जो सिक्योरिटी अपरेटस है बाय डे एंड बाय नाइट वो जो है तैनात रहेगा। सुबह के टाइम में जो है जब यात्रीज आते हैं तो उनके कॉन्वॉयज हैं, कॉन्वॉयज मैनेजमेंट, और उनको प्रॉपर जो सिक्योर एनवायरनमेंट में अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाएं तो उसके लिए एक सिक्योरिटी ग्रिड हम लोगों ने डिप्लॉय।
0: अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बस 3 दिन बचे हैं। यात्रा को लेकर जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बेस कैंप्स पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाई गई हैं, जबकि जम्मू में देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। हर किसी की निगाहें 3 जुलाई की सुबह पर टिकी हैं, जब बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा। जम्मू से राही कपूर और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात दिल्ली में आज से शुरू SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की, जिसके तहत दिल्ली से जुड़ी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से अगले एक महीने यानी कि 29 जुलाई तक दिल्ली में मौजूद हर घर तक BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी पहुंचेंगे। वो सर्वे करने के साथ ही गणना या मतदान सत्यापन फॉर्म भी देंगे, जिसको भरकर देने पर ही पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची के में नाम आएगा और फिर 7 अक्टूबर को अंतिम मतदान सूची में जगह मिल पाएगी। खास बात यह है कि पहली सूची में नाम नहीं आने पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का भी मौका मिलेगा। दिल्ली के हर घर दस्तक, हर घर वोटर की पड़ताल पर हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: बिहार, बंगाल और ऐसे कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया का आगाज हो गया है। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में मतदाताओं के पते पर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर पहुंच रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारियों के कंधों पर दिल्ली की मतदाता सूची को भी पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और अपडेट करने की बड़ी जिम्मेदारी है। जाहिर है सूची में फेरबदल भी होगा, पर 2002 के मतदाता सूची में शामिल लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
1: 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR यानी मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस सिलसिले में हम देखें तो 5 राज्यों में यानी कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इसमें 30 जून से घर घर जाकर मतदाताओं के सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है। इसमें CEO नई दिल्ली के यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने घोषणा की है कि 30 जून से घर घर में गणना फॉर्म दिए जाएंगे, BLOs पहुंचेंगे। लोगों को चाहिए, उन्होंने अपील की है कि लोग जितनी जल्दी हो गणना फॉर्म भरें और साथ ही जो समुचित दस्तावेज हैं वो भी लगाएं। जिन लोगों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हैं उन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, बस इस बात की तस्दीक करा देनी चाहिए कि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम था।
0: 2002 की मतदाता सूची में शामिल होने पर व्यक्ति के पास अपने अपने माता पिता या दादा दादी से जुड़ी पुरानी जानकारी देकर नाम जुड़वाने का विकल्प होगा।
1: जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है उन्हें अपने गणना फॉर्म के साथ अपने माता पिता या उनमें से किसी एक का नाम 2002 की मतदाता सूची में हो, ऐसा उन्हें उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी यानी तस्दीक करनी पड़ेगी।
0: 30 जून से अगले एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में BLO घर घर जाकर एन्यूमेरेशन फॉर्म यानी गणना या मतदाता सत्यापन फॉर्म की 2 कॉपी देंगे। इनको भरने के बाद एक फॉर्म BLO के पास रहेगा, जबकि दूसरी बतौर रिसीविंग मतदाता को अपने पास रखनी होगी। एक बात साफ है कि इस फॉर्म के साथ कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज जमा नहीं करना है।
2: हाउस टू हाउस विजिट बाय BLO 30 जून से 29 जुलाई तक है। रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 29 जुलाई 2026 तक है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026। नोटिस फेज जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026। तो ये हमारा शेड्यूल है।
0: अगर SIR के सर्वे के दौरान मतदाता का घर बंद मिलता है तो BLO फॉर्म को घर में डालकर चले जाएंगे। इसके बाद फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद उसे इकट्ठा करने के लिए कम से कम 3 बार घर का चक्कर लगाएंगे।
2: इसके लिए जो हमारे बूथ है 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं। और BLOs को हमने इनुमरेशन फॉर्म्स डबल सेट में, क्योंकि एक एक इलेक्टर को दो दो फॉर्म जाएंगे, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो उसके लिए वेट नहीं करना है इलेक्टर्स को कि 29 जुलाई को ही वापस देना है। तो जैसे ही कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा तो वो अगर कल भर के दे सकते हैं तो कल भी जमा कर सकते हैं BLO को, और जितना एक दो दिन बाद भी देना है तो एक दो दिन बाद भी वो जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें इलेक्टर ऑनलाइन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें BLO घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। और BLO के लिए हमारे पोर्टल्स हैं BLO ऐप में, जिसमें वो फॉर्म लेंगे, उसके बाद डिजिटाइज करके पोर्टल में सबमिट करते रहेंगे। जिन जिन के फॉर्म वापस आएंगे उन्हीं का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम आएगा, जिनके फॉर्म वापस जमा नहीं हो पाएंगे उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं आ पाएगा।
0: अगर किसी मतदाता का पता बदल गया है और नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आता है तो उसके पास 5 अगस्त के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करते समय फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने का विकल्प होगा।
2: कोई मतदाता छूट जाता है, जो 29 जुलाई का हमारा टाइमलाइन है, इन केस कोई मतदाता छूट जाता है कि वो नहीं जमा करा पाता है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस में प्रोविजन है, जिसमें यह है कि जो क्लेम ऑब्जेक्शन की अवधि है उसमें वो अपना फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकता है।
0: दरअसल हाल ही में दिल्ली के कई इलाकों में चले अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण कई घर टूटे हैं, जिसकी वजह से उन पतों पर रहने वाले लोगों के लिए इस प्रक्रिया में शामिल होना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से SIR के तहत उनके लिए भी खास व्यवस्था की जा रही है।
3: इलेक्टर रोल में जिस भी एड्रेस पे कोई इलेक्टर रजिस्टर्ड है, इन्यूमरेशन फॉर्म्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेस्पेक्टिव BLO एट दैट एड्रेस, और उस एड्रेस से अगर फील्ड इन्यूमरेशन फॉर्म रिटर्न नहीं होता है तो उस इलेक्टर का ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आएगा। अगर आपने मैम जैसे होमलेस का बोला, तो होमलेस का भी कोई एड्रेस होगा कि पिलर नंबर सो एंड सो, तो उस जगह BLO जाएगा, अगर वहां मिलता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वो रिटर्न लेके आएगा।
0: भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, सटीक और पारदर्शी बनाना है। यही वजह है कि मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक में भी चुनाव आयोग की तरफ से जमीनी स्तर पर नियुक्त किए गए बूथ स्तर अधिकारी इस काम में जुटे हैं, ताकि चुनाव में वोटिंग जैसी अहम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी नागरिक शरीक हों। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए SIR को सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है।
1: ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची की घोषणा होगी, प्रकाशित होगी, और जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है, सब कुछ नियमित रूप से सुनियोजित ढंग से चलता रहा तो फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इन्होंने CEO दिल्ली ने अपील की है कि सभी मतदाता जागरूक रहें और उनके घर जब BLO आते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, तो उनसे वो मतगणना फॉर्म, यानी जो गणना फॉर्म है वो ले और जितनी जल्दी हो उसे भर कर दे दें, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम सुनिश्चित किया जा सके। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
4: और अब आता आकार ले रहे विघ्नहर्ता की। 2 महीने के अंदर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों की गूंज मुंबई में भी सुनाई देने वाली है। अपने भक्तों की राह में आने वाले हर विघ्न को हरने के लिए गौरी नंदन स्वयं प्रकट होने वाले हैं। मुंबई के परेल इलाके में मौजूद एक कार्यशाला में गणेश जी की बड़ी मूर्तियों को बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है, और इस बार घरों में भी स्थापित करने के लिए इको फ्रेंडली बप्पा की डिमांड बहुत ज्यादा है। मिट्टी के बप्पा के आगमन के साथ प्रकृति के सम्मान की सोच ज्यादातर मुंबई करों पर हावी है। मुंबई की गणेश कार्यशालाओं से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।

0: मुंबई अपने सबसे बड़े धार्मिक उत्सव के लिए तैयार हो रही है। 14 सितंबर से मुंबई का इंच इंच इलाका गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों से गूंजने लगेगा। गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर पंडाल पंडाल बप्पा विराजमान हो जाएंगे। बुद्धि समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक गणपति के जन्मोत्सव के मौके पर बप्पा की भक्ति के रस में पूरी मुंबई डूब जाएगी। गजानन की भक्ति की कोई सीमा या परिधि नहीं है। ऐसे में मुंबई में गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाली कई कार्यशालाओं में मूर्तिकार उनकी भक्ति में सराबोर हो चुके हैं। वो मिट्टी से भी गणेश जी की प्रतिमा को साकार करने में जुटे हैं। मुंबई के परेल इलाके में मौजूद एक कार्यशाला भी भगवान गणेश की भक्ति के रंग में डूबी हुई है।
1: 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर मुंबई सहित पूरा महाराष्ट्र देश गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने को तैयार है और उन कार्यशालाओं की रंगत बढ़ गई है जहां पर गणेश जी की प्रतिमाएं उनकी मूर्ति बनाई जाती है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के परेल इलाके के एक ऐसे कारखाने में जो न केवल प्रसिद्ध है बल्कि मुंबई का सबसे बड़ा कार्यशाला माना जाता है जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाएं बनती हैं। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर अपने पंडाल के लिए गणेश जी की मूर्ति की बुकिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। कार्यशालाओं में काम भी शुरू है और धीरे धीरे इस तरह से जो बड़ी प्रतिमाएं हैं गणेश जी की वो बननी शुरू हो गई है। जो लोग यहाँ देखने के लिए पहुँच रहे हैं मूर्ति में उनमें कॉलेज के बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं। इस बार जो खबर है वो ये कि ज़्यादातर मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्तियों की डिमांड है।
0: अलग अलग स्वरूपों में गौरी नंदन अपने भक्तों की राह में आने वाले विघ्न को हरने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ उनके अलग अलग स्वरूपों को मिट्टी से भी आकार दिया जाता है। सनातन धर्म में मिट्टी को पवित्र माना गया है। मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से पर्यावरण और जल स्रोतों को नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में मिट्टी से बड़ी प्रतिमाएं बनाना इतना आसान नहीं होता।
2: मिट्टी की बड़ी मूर्ति बन सकती है बट वो पॉसिबल नहीं बनाना क्योंकि जो टाइमिंग हमें मिलता है शॉर्ट पीरियड मिलता है। अभी गणपति को 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं और 2.5 से 3 महीने में मिट्टी की मूर्ति बन नहीं सकती है। इसमें पीओपी ही एक अपने लिए ऑप्शन है जो ये कम कालावधि में बड़ी से बड़ी मूर्तियां खड़ी कर सके।
0: शिव पुराण में कहा गया है कि देवी पार्वती ने पुत्र की इच्छा से मिट्टी का ही पुतला बनाया था, फिर शिव जी ने उसमें प्राण डाले, वही भगवान गणेश थे। शिव महापुराण में धातु की बजाय पार्थिव और मिट्टी की मूर्ति को ही महत्व दिया गया है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करने से कई यज्ञों का फल मिलता है, फिर भी बड़े गणेश पंडाल समितियों की तरफ से पीओपी की ही मूर्तियां ज्यादा डिमांड में रहती हैं। इस बार गणेश जी की खड़ी मुद्रा में प्रतिमाओं की ज्यादा डिमांड है। मुंबई के परेल इलाके में मौजूद इस कार्यशाला में गणेश जी की बड़ी मूर्तियों को बनाने का काम चल रहा है। उनमें परेल का राजा, चिंचपोकली के राजा, खेतवाड़ी के राजा, भाईखला के राजा, ग्रांट रोड के राजा, फोर्ट के राजा जैसे बड़े पंडालों के नाम भी शामिल है। परेल इलाके के इस विशाल कारखाने से सटकर ही एक और कार्यशाला है जहां छोटे आकार में गणेश जी की प्रतिमाएं दिख रही हैं, जो बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। एक से बढ़कर एक स्वरूप में दिख रही गणेश जी की प्रतिमाएं अपने भक्तों को खूब भा रही हैं। यहाँ घरों में विराजमान कारखानों के लिए लोगों को मिट्टी से बनी मूर्तियां ही चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी गजानन के भक्त सिर्फ अपने आराध्य की पूजा नहीं करेंगे बल्कि बप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेशों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। दरअसल भगवान गणेश के सर से लेकर सूंड और उनकी सवारी मूषक से लेकर उनके अस्त्र या शस्त्र तक में शिक्षा सीख सबक या उपदेश छिपे हैं, जो हर कार्य में सफलता मुश्किलों से लड़ने की शक्ति और मानसिक शांति की ताकत देते हैं।
1: 14 सितंबर को मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश गणेश उत्सव मनाने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो भी मूर्तियां लोग बुकिंग कर रहे हैं वो अपनी मन पसंदीदा मूर्तियां बुक कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
0: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ के महीने का आरंभ होने जा रहा है और आज हम आपको बताएंगे आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 7:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:51 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:31 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आषाढ़ के महीने की। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये संधि काल का महीना है। ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है क्योंकि मौसम बदलने से बीमारियां फैलती हैं और इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने को शास्त्रों में कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इसका नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सामान्यतः रहता है। इस बार आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये 29 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत आते हैं, पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं। आषाढ़ मास के पहले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को खड़ाऊं, छाता, नमक या आंवले का दान किया जाता है। इसी महीने में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव की पूजा होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि का पर्व भी मनाते हैं, यानी देवी की उपासना करते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र साधना के लिए और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु शयन के लिए या योग निद्रा में चले जाते हैं। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है, शुभ कार्य मना होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। तो आषाढ़ का जो महीना है, इसमें पर्व त्योहार बड़े महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ा जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी,
स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। धन की समस्या हल होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करना अच्छा होता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल देने वाली उपासना अपने गुरु की होती है। आपके जो भी गुरु हैं उनकी उपासना आषाढ़ के महीने में करिए, और अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी उपासना करिए। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की, देवी की उपासना करना भी शुभ होगा। श्री हरि विष्णु की अगर आषाढ़ के महीने में उपासना करें तो संतान प्राप्ति का वरदान आपको मिलेगा। आषाढ़ के महीने में अगर आप जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति सरल हो जाएगी। और अगर आप आषाढ़ के महीने में मंगल और सूर्य ग्रह की उपासना करते हैं तो ऊर्जा का स्तर बना रहता है। और आषाढ़ में सूर्य देव की उपासना करने से भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आषाढ़ महीने का संबंध है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा में या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उन्हें आषाढ़ के महीने में नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से देवी की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में हुआ है, धनु या मकर राशि है आपकी, तो ऐसी सिचुएशन में आप देवी के मंत्र का जप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके नक्षत्र को शक्ति मिलेगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। तो आज हमने बात की आषाढ़ मास के महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि साझेदारी चले, पार्टनरशिप चलती रहे, तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: क्या लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से सूर्य मजबूत होता है? क्या जरा सा तीखा खाने से मंगल और सूर्य पर असर पड़ता है? क्या परफ्यूम लगाने से बुध बेहतर हो जाता है? नवग्रहों को बेहतर करने के कौन से हैं छोटे छोटे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: क्या लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से सूर्य मजबूत होता है? क्या जरा सा तीखा खाने से मंगल और सूर्य पर असर पड़ता है? क्या परफ्यूम लगाने से बुध बेहतर हो जाता है? नवग्रहों को बेहतर करने के कौन से हैं छोटे छोटे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है
9: के साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।

0: डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार। मैडसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति। मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा जम्मू में बाबा बर्फानी के भक्तों के जमावड़े की भी है।
1: अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू पूरी तरह भक्ति के रंग में सराबोर हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं की भगवती नगर स्थित यात्री निवास में खूब चहल पहल नजर आ रही है। यात्री निवास के साथ स्थित तवी रिवर फ्रंट पर पहली बार सूर्यपुत्री माँ तवी की भव्य संध्या आरती का शुभारंभ हुआ। वाराणसी के गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित इस आरती की छटा देखते ही बन रही थी। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की जगमगाहट के बीच साधु संतों और पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ माँ तवी की आरती संपन्न की। इस दिव्य आरती का उद्देश्य बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव देना है और साथ ही जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और इस पवित्र यात्रा को लेकर उनमें गजब का उत्साह दिख रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए ओडिशा के पुरी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। रथ यात्रा से पहले जगह जगह सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक स्नान पर्व के बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा एकांतवास में जा चुके हैं और अब 16 जुलाई को होने वाले भव्य रथ यात्रा उत्सव को लेकर जगह जगह तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गुजरात के सूरत में स्कॉन की ओर से भी भव्य तैयारियां जारी हैं। इस दौरान भक्त पूरे भक्तिमय जोश में नजर आ रहे हैं। इस वर्ष रथ यात्रा के दौरान यहां भगवान जगन्नाथ 3 लाख रुपए की शानदार डिजाइनर पोशाक में दिखेंगे। उस शाही पोशाक को तैयार भी कर लिया गया है। रथ यात्रा के दौरान भक्ति के साथ कारीगरी का संगम भी भक्तों को देखने के लिए मिलेगा। रामनगरी अयोध्या श्रद्धालुओं से गुलजार है। बड़ी संख्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पहुंचकर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के साथ ही यहां की छठा को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। यहां ज्येष्ठ पूर्णिमा और सरयू जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं को दिव्य आरती के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। लगभग 10 संस्थाओं की ओर से यहां सरयू जयंती पूरे भक्तिभाव से मनाई गई। शाम के समय हुई सरयू महाआरती में सरयू का तट आस्था के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। सरयू जयंती महोत्सव के लिए पूरे तट की सुगंधित फूलों से सजावट की गई, जिसने घाट की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। देवदार के जंगलों और प्राकृतिक खूबसूरती से भरी ये वादी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है। यहाँ बानी और सरथल के प्राकृतिक नज़ारे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जिससे ये तेजी से उभरते पर्यटन स्थल भी बन रहे हैं। ये क्षेत्र हरे भरे जंगलों, झरनों और घास के मैदानों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ न सिर्फ खूबसूरत वादियों का दीदार होता है बल्कि इलाका बेहद शांत भी है। मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के बावजूद ये इलाका ठंडा बना रहता है, इसलिए यहाँ आकर सैलानी प्राकृतिक छटाओं को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उसे अपने कैमरे में कैद भी करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक मनोरम वादियों में पिकनिक मनाते हुए मौसम का पूरा आनंद लेते हैं। यूपी के मुरादाबाद का त्रिशूल वॉर म्यूजियम रक्षा विरासत का एक प्रमुख आकर्षण बनने जा रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल युद्ध स्मारक है। यहाँ MiG-27 फाइटर जेट, असली टैंक और INS विक्रांत के मॉडल समेत कई पुराने सैन्य उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें 1947 से लेकर कारगिल युद्ध तक के प्रमुख युद्धों को लाइट और साउंड शो, डिजिटल स्क्रीन और अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल इफेक्ट के माध्यम से दिखाया गया है। इस वॉर म्यूजियम में खाइयों और बंकरों का निर्माण भी किया गया है ताकि यहां आने वालों को वास्तविक युद्ध क्षेत्र जैसा अनुभव मिल सके। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को आम जनता और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संग्रहालय का उद्घाटन कर परिसर का जायजा लेते भी दिखे।
0: और अब बात करते हैं मॉनसून की। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली NCR के लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। दरअसल आज सुबह से ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। वही मुंबई में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है, जिससे लोगों को घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

0: मौसम के बदलते मिजाज से कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी। ऐसा लगता है कि जून की चिलचिलाती गर्मी हर वक्त इम्तिहान ले रही है, और ऐसे में अचानक मौसम मेहरबान हो जाए और झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो जाए तो लोगों के सुकून का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मायानगरी मुंबई में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की ये जोरदार बारिश एक तरफ जहां गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं जलभराव के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है।
1: मुंबई में मानसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालांकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबके आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं।
0: इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सोमवार को मौसम के मिजाज में कुछ ऐसी ही तब्दीली हुई। अचानक हुई प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को दिन भर चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिली।
2: उत्तर भारत में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल से इसकी शुरुआत हुई और अगर आज यानी 30 जून की अगर हम बात करें तो अधिकतम हिस्सों में मॉनसून जो है वो अब दस्तक दे चुका है। आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अधिकतम हिस्सों में जो है मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि दिल्ली में मॉनसूनी बारिश कब देखने को मिलेगी। तो मॉनसून की जो आहट है वो भी जल्द दिल्ली एनसीआर में जो है वो सुनाई देने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई के आसपास का हमेशा समय होता है जब मॉनसून जो है दस्तक देता है। हालांकि आज 30 जून हो गया है, आने वाले 2 से 3 दिन के बाद जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि 1 से 3 जुलाई के बीच दिल्ली में अच्छी बारिश के साथ मॉनसून जो है उसके पहुंचने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है, और इसके साथ 2 से 6 जुलाई की अगर हम बीच की बात करें तो रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी चलेगी और कहीं कहीं भारी बारिश भी जो है वो देखी जा सकती है।
0: दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी। दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन बारिश के इन फुहारों से मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया।
2: कुल मिलाकर अगर हम मॉनसून की स्थिति की बात करें तो मॉनसून तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दिल्ली में भी इसकी जो आहट है वो अब आपको सुनाई देती हुई नजर आएगी। लोग जो बाहर से आए उनसे भी बात करते हैं, कहाँ से आए आप?
3: राजस्थान से।
2: राजस्थान से आए, दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है?
3: अच्छा है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है।
2: ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब राजस्थान के लोगों को भी इंतजार है कि बारिश कब होगी, वहाँ पर भी है या यहाँ पे भी?
3: नहीं, ह्यूमिडिटी सेम है, वहाँ पे भी यही है अभी और यहाँ पे भी यही है।
2: यहाँ पर भी सेम है, लेकिन एंजॉय कर रहे हो अभी?
3: जी बिल्कुल।
2: थोड़ा मौसम शाम के टाइम थोड़ा बेहतर है?
3: नहीं, अभी ठीक है, बट आफ्टरनून में तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है।
2: सर कहाँ से आए, खुश लग रहे हो?
4: हम हैदराबाद से आए।
2: हैदराबाद से आए, वहाँ का मौसम कैसा है?
4: उधर तो ठंडा है बहुत ही, अभी इधर भी अच्छा हो रहा है ना, 2 डेज कल तो आज तो आगे थोड़ा बारिश के तो दिख रहे ना।
2: हाँ।
4: अभी थोड़ा अच्छा है मौसम, अच्छा बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं हम लोग हमारे बेटी की दोनों लेके के
2: अच्छा।
4: इधर
2: आप दिल्ली का वेदर एंजॉय कर रहे हैं?
4: एंजॉय कर रहे हैं बहुत।
3: या टुडे इट्स बेटर देन यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे।
2: राजस्थान की गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि वहाँ पर भी जो है मौसम बदलने वाला है, आंधी बांधी जो है वो देखी जा सकती है। दिल्ली कैसा लग रहा है?
3: दिल्ली अच्छा लग रहा है, लेकिन मानसून साथ नहीं दे रहा है।
2: मानसून जल्दी दस्तक देगा,
3: पर अभी तो परेशान हो रहे हैं ना गर्मी से।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले ही संभावना जताई थी, जो कि सच साबित हुई। हालांकि दिल्ली में सूरज जिस तरह दिन भर तेवर दिखा रहा था उससे बारिश की संभावना ना के बराबर हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में राहत भरा मौसम रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
5: आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
0: राहत की ये बारिश प्री मानसून की है। दिल्ली में मानसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। वैसे सामान्य तौर पर मानसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून करीब एक हफ्ते देरी से पहुंच रहा है।
6: आज और कल फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमिड रहने से थोड़ी तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन 1 तारीख में और फर्स्ट वीक में जुलाई में चेंजेस है, बारिशें हैं और फिर टेम्परेचर भी दिन के कम आ जाएंगे और ह्यूमिडिटी में रिलीफ मिलेगा। और अगर सही सिचुएशंस रही, अगर कंडीशंस रही, तो मानसून भी आ सकता है फर्स्ट वीक में।
0: जून के महीने में मानसूनी हवाएं काफी कमजोर रही। 8 से 15 जून के बीच मानसून पर ब्रेक लग गया था। उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस साल अलनीनो भी एक्टिव है, जो मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी।
6: थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो कि पश्चिम विक्षोभ से होती है जहाँ आमतौर पर समर्स में, वो उसकी गतिविधि से था, लेकिन अभी थोड़ा ईस्टर्ली विंड्स थोड़ी अप्रोच कर रही हैं, तो उससे फिर उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे मानसून जैसे वेस्ट यूपी, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर थोड़ा पंजाब, हरियाणा के भी कुछ नॉर्दर्न बेल्ट्स कवर हो सकते।
0: फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में मानसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
5: मानसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्र को कवर कर सकते हैं।
0: बता दें कि पूर्वी छोर पर अटका मॉनसून आज से रफ्तार पकड़ रहा है। एक साथ बने कई मौसमी सिस्टम ने सुस्त पड़े मॉनसून में जान फूंक दी है। अगले 3-4 दिन में देश के बचे हुए हर राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में मॉनसून अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है।
6: मॉनसून फिर से जो है थोड़ा एक्टिव हुआ है, उसमें तेजी भी आई है और अभी 2 से 3 दिनों में मॉनसून जो है पहाड़ों में आने के चांसेस हैं अभी तक की जो स्थिति है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, फिर बीच बीच में 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कुछ बदलाव आएगा, प्री मॉनसून कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिशें होंगी और अगर सिचुएशन ठीक रही तो कुछ एरियाज में मॉनसून भी जो है आ सकता है। तो अब ये है कि जो गर्मी अभी हम देख रहे थे उससे कुछ जो है रिलीफ मिलेगा क्योंकि मॉनसून का थोड़ा सा मूवमेंट्स है अब पहले से बेहतर है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी मानसून आगे बढ़ने के अनुकूल हालात बने हुए हैं। हालांकि पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मानसून के पूरे देश को कवर करने की सामान्य तिथि 8 जुलाई बताई जा रही है। बता दें कि 4 जून को केरलम में दस्तक के बाद मॉनसून काफी धीमी गति से बढ़ा है। जून में 5 तारीख को छोड़कर हर दिन सामान्य से कम बारिश हुई, यानी मॉनसून आने में देर भले ही हो रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मॉनसून दिल्ली ही नहीं बल्कि 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून पूरे देश को करीब एक हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
7: कल यानी कि 1 जुलाई से आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 मुख्य वित्तीय नियम बदल जाएंगे। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: कल यानी 1 जुलाई से आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 मुख्य वित्तीय नियम बदल जाएंगे। इनमें क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड, लाउंज एक्सेस, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी और आधार ईमेल अपडेट जैसे नियम शामिल है। कल से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस सुविधा से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा कल से 31 दिसंबर 2026 तक आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराना फ्री हो जाएगा, जबकि पहले इसके लिए 75 रुपए का शुल्क लगता था। इसके अलावा पासपोर्ट और रेलवे से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में इंडियन कोस्ट गार्ड 6 मछुआरों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। कोस्ट गार्ड के आईसीजी के जहाज सचेत को वीएचएफ रेडियो के जरिए एक मैसेज मिला, जो मंजू माथा नाम की मछली पकड़ने वाली नाव से भेजा गया था। खराब मौसम में ये नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें पानी भरने लगा था। ऐसे में नाव पर मौजूद 6 मछुआरों ने मदद मांगी, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खराब मौसम के बावजूद लाइफ बॉय जैसे आधुनिक रोबोट की मदद से सभी 6 मछुआरों को बचा लिया। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत 40 ग्रामीण महिलाएं और बच्चों को वाराणसी टूर कराया गया। ये टूर पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया। इस टूर में सभी को बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन कराए गए। इन ग्रामीण महिलाओं का यह पहला वाराणसी भ्रमण कार्यक्रम था। महिलाओं ने मंदिर दर्शन के साथ मॉल्स में शॉपिंग की और खाने का लुत्फ भी उठाया। दरअसल पुलिस उप महानिरीक्षक के चंदौली के पंडे गाँव में हुए दौरे के दौरान इन महिलाओं ने काशी भ्रमण की इच्छा जताई थी। सावन का महीना लगने वाला है और काशी विश्वनाथ की नगरी में सावन मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए यहां पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। साथ ही सावन में होने वाली भीड़ को लेकर होने वाली तैयारी को लेकर निर्देश दिए। सावन मेले के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सावन मेले में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में गांव के मंदिरों में पुजारियों के लिए 56वें मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुजारियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में पुजारियों को मंत्रोच्चार, अभिषेक, सजावट विधियों और थेवरम, तिरुवास्कम और दिव्य प्रबंधम जैसे पवित्र भजनों का पाठ कैसे किया जाता है, उनके सही उच्चारण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
7: न्यूज पथ में अब बात एक ऐसी पहल की जो कैदियों के सुधार की कोशिशों से जुड़ी है। जेलों को अब सिर्फ सजा देने का स्थान नहीं, बल्कि वहां कैदियों के जीवन को नई दिशा देने की कोशिशें भी हो रही है। पंजाब के फरीदकोट के सेंट्रल जेल में ऐसी ही एक खास पहल की गई है, ताकि यहां बंद कैदियों की सोच में बदलाव हो सके और वो सकारात्मक सोच के साथ एक नई शुरुआत कर सके।
8: हाँ जी बंदी वीरों की हाल चाल, मैं सुजीत रेडियो चलाता हूँ, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत ही प्यारा जो सॉन्ग देशभक्ति का। हाँ जी।

0: ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ?
1: ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਰੇਡੀਓ ਜਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
2: ਰੇਡੀਓ ਜਾਲਾ ਮੇ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਕੀ ਯੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਜੇਲ ਮੇ ਬੰਦ ਸਭੀ ਕੈਦੀਓਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब के फरीदकोट की सेंट्रल मॉडर्न जेल में रेडियो उजाला की शुरुआत की गई है। ये न सिर्फ इस जेल में बंद कैदियों के मनोरंजन का माध्यम है बल्कि उनकी आवाज बनने का एक प्रयास भी है।
0: हाँ जी बंदी वीरों की हाल चाल, मैं सुखजीत रेडियो उजाला का थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: इसके जरिए बंदी अपने मन की बात, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं और जीवन से जुड़े विचार साझा कर सकेंगे। कई ऐसे बंदी होते हैं जो अपनी भावनाओं को किसी से कह नहीं पाते। रेडियो उजाला उन्हें एक ऐसा मंच देगा जहां वे बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकेंगे। इसके अलावा भक्ति संगीत, प्रेरणादायक संदेश, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी, कानूनी जागरूकता के साथ ही शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी इसके जरिए प्रसारित किए जाएंगे ताकि कैदियों का मानसिक तनाव कम हो और सकारात्मक सोच विकसित हो सके। साफ है ये कैदियों के जीवन को नई दिशा देने की पहल है।
3: में जो हमारे प्रिजनर्स हैं वही आरजे का रेडियो जॉकी का काम करेंगे, तो इससे प्रिजनर्स का मनोरंजन होगा। वो अपनी फरमाइश के अनुसार कोई सॉन्ग सुनना चाहें सॉन्ग सुन सकते हैं। सुबह और शाम के समय पे हम उनको गुरबानी का प्रसारण करेंगे। इसी के साथ ही कैदियों के हित में कोई भी अगर पॉलिसी लॉन्च होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम इससे दे पाएंगे। जेल का प्रशासन कैदियों के साथ इस रेडियो उजाला के माध्यम से एक डायरेक्ट कंटेक्ट में रहेगा जिससे कैदियों का काफी भला होगा।
2: करीब 5 लाख के बजट से इस रेडियो उजाला का सेटअप जेल के अंदर लगाया गया है। इस रकम से जेल में आधुनिक साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, स्पीकर और वायरिंग की व्यवस्था की गई है। रेडियो संचालन के लिए एक अलग स्टूडियो भी तैयार किया गया है।
3: दो दो स्पीकर हमने हर बैरिक में लगाए हैं। इसके साथ ही जो ओपन एरिया है जहां पे कैदी खेलते हैं या दिन के टाइम में शाम के टाइम पे सैर करते हैं उस एरिया पे भी हमने स्पीकर्स दिए ताकि जब वो सैर कर रहे हैं या अपना वैसे आइडल बैठे हैं तो भी उनके जो दिमाग है वो गुरबानी के साथ या किसी अच्छी विचारधारा के साथ ही जुड़ा है। हमारी जेल की कैपेसिटी जो है वो करीब 2000 प्रिजनर्स को रखने की है, लेकिन इस वक्त करीब 2700 इनमेट्स हमारी जेल में बंद हैं। तो सभी की बैरिक्स में इवन लेडीज वार्ड हमारे है यहाँ पे, इसमें करीब 150 के करीब लेडीज होती हैं, वहां पे भी हमने इसकी कनेक्टिविटी दी है।
2: कैदियों के तनाव को कम करने और उनमें सकारात्मक सोच लाने के मकसद से रेडियो उजाला के अलावा इस जेल में एक लाइब्रेरी की शुरुआत भी की गई है। यहाँ किताबों को रखने के लिए अलमारी तो पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल के भी माकूल इंतजामात हैं। अच्छी और प्रेरणादायक किताबें व्यक्ति की सोच बदलने की ताकत रखती हैं। जब कोई कैदी महान व्यक्तियों के जीवन की गाथाएं, नैतिक मूल्यों पर आधारित साहित्य, आध्यात्मिक पुस्तकें और प्रेरक कहानियां पढ़ेगा तो उसके भीतर आत्ममंथन की भावना पैदा होगी। इसी मकसद से इस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। यानी ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं बल्कि बंदियों के भविष्य को संवारने का माध्यम बनेगी।
3: इससे भी कैदियों का काफी जो है भला होगा। कैदी अपना जो टाइम है वो किसी अच्छी सोच में, अच्छी रीड में, अच्छी नॉलेज ले सकते हैं वहां बैठ के। तो लाइब्रेरी कैदियों के काफी काम आएगी।
4: कितनी बुक्स की स्पेस रखी गई है?
3: देखिए इस वक्त हमारे पास करीब 1500 से 1800 के बीच में किताबें हैं और हमें आस है कि जल्दी हम इसको और बढ़ाएंगे और अच्छी किताबें ऐड करेंगे।
2: प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल भावना गर्ग और एडीजीपी जेल आर के जायसवाल ने सरकार और विभाग की ओर से जहां कैदियों के हित में इस काम में जहां अपना पूरा सहयोग दिया, वहीं पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह सदवा के प्रयासों से लाइब्रेरी में मौजूद 1500 किताबों में से 1000 किताबें पंजाबी साहित्य अकादमी से मिली हैं। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह सदवा और जेल मंत्री रवजोत सिंह की मौजूदगी में रेडियो उजाला और लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जेल मंत्री ने रेडियो उजाला के जरिए कैदियों को अपना संदेश भी सुनाया। कुल मिलाकर इस पहल के जरिए जेल में बंद कैदियों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उनके जीवन को सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि वो जब यहाँ से निकले तो एक नई शुरुआत कर सके। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: आज मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। आज सेंसेक्स 249.70 अंक गिरकर 76,478.67 पर बंद हुआ, जबकि शुरुआत में इसमें बढ़त देखी गई थी। वहीं निफ्टी 80.50 अंक गिरकर 23,865.75 पर बंद हुआ। जानकारों की माने तो विदेशी फंड के न्यू एग्जिट और ब्लू चिप आईटी शेयरों में गिरावट ने बाजार की धारणा पर प्रभाव डाला। आज देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में जहां गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमतें बढ़ गई। आज सोने की कीमत 800 रुपए घटकर 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। आज चांदी की कीमत 6,000 रुपए बढ़कर 2,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर हुआ। आज एक यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरकर 94.65 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक विदेशों में डॉलर का मजबूत होना और निवेशकों का जोखिम लेने से बचना था, जिससे कि स्थानीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा, यानी रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया।
5: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
5: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक अभेद्य कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
9: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था उम्र से नहीं, सेवा के प्रति आपके जुनून से आंकी जाती है। इस सेवादार का जुनून भी उनकी आस्था की तस्दीक कर रहा है। वो धर्म की राह पर निकले लोगों की राह में जिस खुशी से फूल बिछा रहे हैं, वो साबित करता है कि उनकी आस्था की पैंट कितनी गहरी है। सोशल मीडिया पर फूल बरसाने और बिछाने का ये अंदाज यूजर्स को भावुक कर रहा है। इस बच्चे का एक्शन देखकर कौन कहेगा कि इसमें टैलेंट नहीं। इसके एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसी परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी प्रतिभा को जीवित रखा है और वो अभ्यास कर रही है। इस बच्ची का जुनून देखकर लोग इस पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चैन की एक घड़ी, होटल में सीनियर सिटीजंस की हर पल का आनंद लेते हुए तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। शांत सुंदर जगह पर होटल के ये सीनियर गेस्ट जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ उनके हंसी मजाक, संगीत और यादगार पल होटल में एक अजब माहौल पैदा करता है। उनके आराम और मस्ती भरे पलों को देख हर किसी को आनंद आ रहा है। इन तस्वीरों में ये बच्ची दुनिया को सिखा रही है प्यार की भाषा। खुद ही देखिए कैसे वो इस बेजुबान डॉग को भाव विभोर होकर प्यार से बुलाते हुए बैठ जाती है और डॉगी भी बिना किसी संशय के उसकी ओर चला आता है, उसकी गोद में सिर रख लेता है। दोनों का ये अबोला प्रेम बता रहा है कि सिर्फ एक ही भाषा हर कोई समझता है और वो है प्यार की भाषा। अब इन वायरल तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देख हर कोई इनका फैन बन गया है। बैंड बाजे की धुन पर लग रहा है मानो किसी बतख की बारात है, जिसमें दूल्हा बतख को एक शख्स ने हाथ में ऊपर उठाया हुआ है और बाकी बतखें बैंड बाजे की धुन पर एक सीध में इस बारात में चली जा रही है। बतखों की ये बारात देख हर किसी को शोर में भी इनका अनुशासन भा रहा है। जाहिर है इंसानों की बारातें कम से कम इन बतखों से सड़क पर चलने की सीख ले ही सकती है।
5: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की। दिल्ली ने प्रदूषण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल लिया है। राजधानी में पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नई ईवी पॉलिसी केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की योजना नहीं, बल्कि आने वाले 4 वर्षों में दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने का रोड मैप है। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अब राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हुई बैठक में नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी। नई पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की खरीद पर पहले साल 30,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि दूसरे साल में 20,000 रुपए और तीसरे साल में 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं पैसेंजर थ्री व्हीलर के लिए ये राशि सालाना आधार पर क्रमशः पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 40,000 रुपए और तीसरे साल में 30,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा N1 कैटेगरी यानी कि छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ग्राहकों को पहले साल 1,00,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी जिस दिन लागू होती है उसके 3 महीने के अंदर 3.5 टन से 12 टन तक के M2 कैटेगरी के ट्रक्स को नो एंट्री फ्री दी जाएगी, लेकिन ये नियम केवल पहले 1,000 इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ही लागू होगा। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, जो आगामी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल डीजल या फिर CNG वाहन है, उनका क्या होगा? क्या पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएंगी? क्या नई बाइक या फिर ऑटो खरीदना मुश्किल होगा? ये जानने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
10: मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय LG महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा।
11: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो कल यानी 1 जुलाई से लागू की जाएगी और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है राजधानी में प्रदूषण कम करना। तमाम ऑटो ड्राइवर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे अपनी इस चर्चा की। जिस तरीके से ये नई नीति आ रही है पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा देखते हुए, आपका नाम बताइए सबसे पहले।
12: मेरा नाम राजेंद्र सोनी है, मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और संबंधित भारतीय मजदूर संघ दिल्ली का महामंत्री हूँ मैं। ये जो पॉलिसी ला रहे हैं ना ईवी की, ठीक है, ये प्रदूषण सरकार कर रही है, प्रदूषण प्रदूषण का हल्ला मचा रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, आज तक के माध्यम से ये बताओ, जो 5.5 लाख 6 लाख पेट्रोल की मोटरसाइकिलें चल रही हैं, ये ऐप आधारित कंपनियाँ जो चला रही हैं दिल्ली के अंदर और क्या नाम है अदर स्टेट की जो टैक्सियां चल रही हैं, क्या ये प्रदूषण नहीं फैला रही? सिर्फ हमारे को निशाना बनाया है।
11: पॉलिसी सबके लिए है, सिर्फ एक ऑटो के लिए ही बात नहीं कर रहे, हर एक वाहनों के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, हर किसी के लिए।
12: हम ये कहते हैं जब ये CNG आई थी 1998 के अंदर, उस समय दिल्ली गवर्नमेंट BJP की सरकार थी, उन्होंने अंडरटेकिंग एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कहा था भाई ये CNG के अंदर प्रदूषण नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम ये सरकार ला रही है, ठीक है, हम इसका ये वो नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जबरदस्ती हमारे लोगों के साथ ना करी जाए, पहले इसका ढांचा तैयार करा जाए, फिर कितने कैसे इनको ये बिजली की बैटरियां मिलेंगी, कहाँ कहाँ बिजली के पंप लगेंगे, ये तो अभी सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी। सरकार ने आनन बानन में ये कह दिया ये अब ईवी पॉलिसी लागू, और हम इनको ये कह रहे हैं भाई क्या नाम है, दिल्ली के अंदर परमिट बंद हैं, परमिट बंद हैं, परमिट क्या नाम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परमिट बंद हैं। आज जो ऑटो है क्या नाम है 10 लाख रुपए का बढ़ता है, आज हम बेचें पुराना ऑटो 4.25 लाख रुपए का, 2 लाख और लगाओ 2.65, 7 लाख रुपए का ऑटो बढ़ता है ब्याज लगा के 10 लाख का। आपको अगर जाओ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 परमिट ईबी के ले लो ना।
5: लेकिन जिस तरीके से 50,000 की सब्सिडी मिलेगी तो आपको नहीं लगता ये आपके हित की चीज है?
12: नहीं
5: ये पूरी
12: नहीं, नहीं 50,000 वाली बात नहीं है मैम, 50,000 क्या नाम है जो ऑटो सीएनजी का है बजाज का, वो 3.5 लाख रुपए का है, और इसकी कीमत है जो क्या नाम है सीएनजी की, वो 2,70,000 और 75,000 के अंदर पड़ रहा है। जैसे ये वाला वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जो है वो 3.5 लाख का है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है जो टीवीएस की गाड़ी है वो 3,24,000 की है। अगर यदि ये गाड़ी सस्ती होगी, इसमें तो इंजन तो है नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो उसमें इंजन नहीं है, बल्कि वो गाड़ी हमारे हिसाब से 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं आप 1.5 लाख रुपये सब्सिडी दे दो उनको, 1.5 लाख गरीब तबके के लोग हैं, कोई इतने अमीर नहीं है,
5: 1.5 लाख।
12: और मैंने
5: लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है, आपको क्या लगता है कि अगर ये ईवी पॉलिसी जो कल से लागू होने वाली है, चार्जिंग इशू रहेगा, बैटरी का इशू रहेगा, या फिर कीमत जो है इसकी वो ज्यादा है वो इशू रहेगा, क्या लगता है?
13: ये सभी इशू हैं, वैसे सबसे ज्यादा तो ये है कि इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसके 2.5 लाख हो, 2.60 हो, बस इससे ज़्यादा नहीं।
5: अच्छा।
13: हाँ, और इसके जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो बढ़ाए जाएं, तभी कामयाब होगी।
5: अगर ऑटो ईवी ऑटो अगर आप लोग लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि खर्चा भी थोड़ा कम होगा, जिस तरीके से रोजाना सीएनजी आप लोग भरवाते हो उसकी जो खर्चे बढ़ते रहते हैं, एक बारी आप ईवी को आपको चार्ज करना पड़ेगा ये ऑटो को, उसके बाद लगता है कि खर्चों में भी थोड़ी कमी आएगी?
14: देखो जी, खर्चों में कमी आएगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है सीएनजी के हमारे पॉइंट ज़्यादा हैं, हमें एक बार सीएनजी भरवाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर हम चार्ज करते हैं तो हमारे 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे खराब होते हैं। अगर पॉइंट ज़्यादा लग जाए हमारे तो उससे हमारा टाइमिंग बच जाएगी, एक तो हमारी टाइमिंग बचेगी तो हम काम कर पाएंगे। अगर पॉइंट ज़्यादा नहीं होंगे तो हमें दिक्कत ये आएगी, हम तो मान लो 2-3 घंटे वहाँ खड़े हो गए तो हम क्या कमाएंगे, तो ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। दूसरी बात,
5: बहुत से लोग ये करते हैं कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की बात आती है तो वो पूरी रात लगा देते हैं, या फिर मतलब घर से निकलने से पहले उसको चार्जिंग पे लगाया जाता ताकि पूरा दिन जो है आपका उस बैटरी के साथ जो है वो निकल सके, आपको बीच बीच में चार्ज ना करना पड़े, ना ही आपके समय की बर्बादी हो, ना ही आपका जो आपकी कमाई है उसके ऊपर किसी तरीके का असर पड़े।
14: मैम वो आपकी बात सही है, लेकिन आप ये देखो ना, ऑटो वाले सबके पास अपना मकान नहीं है, सबसे मेन बात ये है किराए पर रह रहे हैं, अब आदमी किराए पे तो नहीं लगाएगा ना घर के अंदर, उसको तो बाहर चार्जिंग स्टेशन चाहिए, बाहर स्टेशन चाहिए, स्टेशन नहीं होंगे तो उसके संग प्रॉब्लम आएगी,
5: स्टेशन है तो भीड़
14: कम होगी, स्टेशन आप ज़्यादा करोगे तो भीड़ कम होगी, उसमें हमारे को थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, समय कम लगेगा तो हमारे को थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आपके तो घर पे हर एक के पास प्रोसीजर नहीं होता ना कि घर पे काम कर सकता है इस काम को।
5: वही चीज़ में सवाल करना था, आपको लगता है कि क्या अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पर्याप्त जो चार्जिंग स्टेशंस है वो इस वक्त मौजूद है या फिर और बढ़ने चाहिए?
15: नहीं बढ़ने चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें जब सीएनजी आई थी तो पंपों में कितनी आपने देखा हो कितनी लंबी लाइने थी, और इसमें एक चीज़ ये है कि बैटरी जो इसकी बैटरी की कीमत भी इतनी है कि हम तो पूरी सीएनजी जितनी सीएनजी हम साल भर में कहेंगे वो उसमें बैटरी में चला
5: जाए। बैटरी का खर्च सुनकर जो है डर लग रहा है,
15: बैटरी बहुत महंगी है इसकी, बैटरी का तो बहुत महंगा बताया इसका हिसाब।
5: आलिया की फिल्म अल्फा का नया प्रोमो रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
16: आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, बॉबी देओल, अनिल कपूर स्टारर फिल्म अल्फा का नया प्रोमो रिलीज किया गया, जिसमें आलिया और शर्वरी का स्वैग देखने लायक है। प्रोमो में दोनों अभिनेत्रियों का एक शानदार और वायरल डायलॉग भी है। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की ये एक्शन एंटरटेनर फिल्म 3 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। शिव रवैल निर्देशित फिल्म अल्फा की एडवांस बुकिंग 1 जुलाई से शुरू होगी। फिल्म तेरा यार हूं मैं के टाइटल ट्रैक के बाद मेकर्स ने अब फिल्म के दूसरे गाने तुम ही से प्यार का टीजर रिलीज किया। ये पूरा गाना 1 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। मिलाप मिलन जवेरी निर्देशित फिल्म तेरा यार हूं मैं से अमन इंद्र कुमार एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म में वो आकांक्षा शर्मा के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में परेश रावल भी अहम भूमिका में है। इसके अलावा जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, पूजा कतुडे, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला भी फिल्म में है। फिल्म तेरा यार हूँ मैं 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनी देओल ओटीटी पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली उनकी फिल्म इक्का का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसने फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में सनी देओल के अलावा धुरंधर वाले अक्षय खन्ना भी हैं। फिल्म इक्का के ट्रेलर में अक्षय और सनी के बीच कई सारे इंटेंस मोमेंट्स को दिखाया गया है। इस फिल्म में दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम जैसे दमदार कलाकार भी हैं। ये फिल्म 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू होगी।
5: अप्रूव कर सकते और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम के पंडरिया में शुरू हुआ लक्ष्य कोचिंग सेंटर ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात बन गया है। ये सेंटर CGPSC, नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त में तैयारी करा रहा है। इस सुविधा के अभाव में कई ग्रामीण युवाओं के सपने अक्सर पैसों की तंगी और उचित मार्गदर्शन न मिलने के चलते दम तोड़ देते थे, लेकिन अब लक्ष्य उनके उज्जवल भविष्य को नई दिशा और सपनों को नई उड़ान दे रहा है।

0: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का एक इलाका है पंडरिया, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हमर पंडरिया। यहां रहने वाले लोगों के गर्व और आन बान शान का उद्घोष सा लगता है। इस पंडरिया के भारत माता चौक के पास है एक मुफ्त कोचिंग सेंटर जिसका नाम है लक्ष्य। आज की तारीख में ग्रामीण युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के सपनों की किरण बनकर उभरा है निशुल्क कोचिंग सेंटर लक्ष्य। पंडरिया का लक्ष्य कोचिंग सेंटर ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। ये सेंटर CGPSC, नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों, खास तौर पर लड़कियों और महिला छात्रों को घर बैठे बेहतरीन शिक्षा का अवसर मिल रहा है। ग्रामीण टैलेंट के लिए आशा की किरण बना लक्ष्य आधुनिक डिजिटल क्लासेस, अनुभवी टीचर्स के गाइडेंस और रेगुलर परीक्षाओं के जरिए छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहा है। इस कोचिंग सेंटर की सूत्रधार कहती हैं कि पंडरिया के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने घर छोड़कर बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिससे यहाँ के कई टैलेंटेड छात्र आर्थिक तंगी के चलते अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी चिंता ने उनको पंडरिया में लक्ष्य की पहल के लिए प्रेरित किया।
1: बहुत लाभ होता है, क्योंकि बच्चे आज जो कुछ परेशानियों के अभाव में, फाइनेंशियली कंडीशन के कारण से जो बाहर नहीं आ पाते, कई बार स्थिति ये भी होती है कि उनकी पढ़ाई वहाँ छूट जाती है। कोई बच्चा सोच रहा है मैं IAS बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, अगर बेसिक फैसिलिटी कोचिंग की या उनको तैयारी कराने के लिए नहीं मिलती तो डेफिनेटली वो उसका ध्यान उस दिशा से भटक भी जाता है। फाइनेंशियली भी दिक्कतें काफ़ी सारी आती हैं, और आज जिस तरीके से लक्ष्य कोचिंग के बच्चों की जो संख्या है, मुझे खुशी है कि बच्चे उस कोचिंग का लाभ ले पा रहे हैं।
0: ये सेंटर लड़कियों और महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। जिन लड़कियों के परिवार उन्हें शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते, उनके लिए ये राहत का सबब है। आज अगर ये बाहर जाती भी तो कोचिंग फीस के अलावा उन्हें किराए, भोजन और रहन सहन के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते, लेकिन इस मुफ्त कोचिंग सेंटर ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। यहाँ वो गृहणियाँ जो घर परिवार की जिम्मेदारी के चलते पढ़ाई जारी नहीं रख पाती थीं, लक्ष्य सेंटर के आने के बाद से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो पा रही हैं। लक्ष्य के स्थापना के बाद से यहाँ लड़कियाँ और महिलाएं आश्वस्त हैं कि न सिर्फ अब उनके सपने साकार होंगे, बल्कि उनका हर लक्ष्य उन्हें जरूर मिलेगा।
2: अगर ये कोचिंग जैसे नहीं खुला रहता तो बाहर जाके पढ़ना पड़ता, उसके लिए बहुत सारी मतलब परेशानी भी उठानी पड़ती, जैसे घर रूम रेंट पे लेकर पढ़ना पड़ता, जैसे फाइनेंशियली भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती थी, जो कि इस कोचिंग के, लक्ष्य कोचिंग के जो भावना बोहरा मैडम के खुलवाने से बहुत सारी मतलब कि परेशानी जो है वो कम हो गई। जिनका ड्रीम रहा होगा CGPSC की तैयारी करना, तो उन लोग बाहर जाके पढ़ाई भी नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए तो बहुत मतलब समस्या रही होगी ये एक चीज़। तो भावना बोहरा मैडम के जैसे लक्ष्य कोचिंग खुलवाने से बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत सहूलियत हो गई है, और बहुत मतलब कि पढ़ाई में बहुत आगे आ रहे हैं जो बच्चे बाहर जाके पढ़ नहीं पाते हैं। वो
0: पहले पंडरिया के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रायपुर, बिलासपुर या भिलाई जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था। इन शहरों में उन्हें लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक का खर्च आता था, जिसे कई परिवारों के लिए खर्च कर पाना नामुमकिन ही था। अब इस मुफ्त कोचिंग सेंटर से यहाँ सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, जिससे उनकी प्रतिभा निखर रही है।
3: गांवों के बच्चे हैं, वो बिलासपुर नहीं जा सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छी है कि पंडरिया में उनको जो है CGPSC का जो तैयारी करने का मौका मिल रहा है, और दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं।
0: जब किसी गांव का कोई युवा छात्र या छात्रा प्रशासनिक अधिकारी या डॉक्टर बनता है, तो उसकी सफलता सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरा का पूरा इलाका प्रेरित होता है और दूसरे बच्चे भी बड़े सपने देखने के हौसला पाते हैं। आज पंडरिया का ये लक्ष्य मुफ्त कोचिंग सेंटर यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का एक सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चीन के गुआंगडोंग में रेनी नाइट ड्रैगन बोट रेस ने डीएजीआओ को रोमांचक हॉटस्पॉट बना दिया है। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: चीन के गुआंगडोंग में रेनी नाइट ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया गया। इस ड्रैगन बोट को लेकर यहां लोगों में जमकर क्रेज देखा गया। बारिश वाली रात में भी नावों का रोमांच देखने वाला था। यहां अंतर्राष्ट्रीय टीमें संयुक्त रूप से पानी में बोट्स पर उतरी। बोट रेस में चीन, हांगकांग, मकाओ, ताइवान की टीमें साथ उतरी। इस पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस ने सभी को लुभाया। यहाँ का डीएजीआओ ड्रैगन बोट रेस के लिए जबरदस्त हॉटस्पॉट बन गया है। युवा प्रतिभागियों ने जबरदस्त जोश और शानदार स्टैमिना के साथ बारिश में बोट रेस का रोमांच बढ़ा दिया। ट्रेनिंग रन में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दक्षिण चीन में ड्रैगन बोट आज एक ग्लोबल आकर्षण का केंद्र बन चुकी है, जहां संस्कृति और खेल का अनोखा संगम दिखता है। चीन के शिजांग में वांगुओ महोत्सव पर रोमांचक घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। वांगुओ महोत्सव यहाँ 1500 साल पुरानी तिब्बती परंपरा का एक भव्य उत्सव है, जो अच्छी फसल और अनुकूल मौसम की कामना के साथ मनाया जाता है। लोग इस महोत्सव में पारंपरिक गीत संगीत और लोक नृत्य के जरिए अच्छी फसल और मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं और ढोल नगाड़ों की गूंज से इस महोत्सव को मनाते हैं। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब का शानदार हवाई नजारा सभी को लुभा रहा है। जगरेब कैथेड्रल गोथिक वास्तुकला की शानदार मिसाल बन गया है, जिसमें मध्य यूरोप और भूमध्य सागरीय संस्कृति का अनोखा संगम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस वास्तुकला ने रोमन काल से आधुनिक यूरोपीय राजधानी तक का सफर तय किया है, जिसे लोग खूब सम्मान दे रहे हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना पर्यटकों की पहली पसंद बन रही है। पहाड़ों और एड्रियाटिक सागर के बीच बसा खूबसूरत शहर तिराना इतिहास और आधुनिकता का एक अनोखा संगम बन चुका है। यहाँ इटालियन और सोवियत शैली की वास्तुकला आकर्षण का केंद्र बन गई है, जिसने आधुनिक इमारतों के जरिए शहर को एक नया रूप दे डाला है। यहाँ का स्कैंडरबेग स्मारक और उसकी वास्तुकला इतिहास की शान है। आज यहाँ की ऐतिहासिक मस्जिदें संस्कृति, इतिहास और प्रकृति पर्यटकों को लुभा रही है, क्योंकि आज तिराना इन सब का शानदार मेल बन गया है और इसीलिए ये यूरोप का उभरता टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, जिसकी ओर सैलानी खिंचे चले आ रहे हैं। वियतनाम से दुबई आई एक नेल आर्टिस्ट आज यहाँ एक मिसाल बन चुकी है। ये नेल आर्टिस्ट अपने हुनर से हर महीने करीब 10 लाख रुपए कमा रही है। वियतनाम की फुलाहा 6 साल पहले दुबई पहुंची थी। अनजान शहर में कोई जान पहचान नहीं थी, बस अपने नेल आर्ट के हुनर पर भरोसा था। वो पिछले 12 सालों से 3D नेल आर्ट में बतौर एक्सपर्ट काम कर रही हैं। आज वो दुबई के सबसे चर्चित नेल आर्टिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने जुमेराह विलेज सर्कल में ब्यूटी बाय फुलाहा नाम से अपना सैलून शुरू किया है। उनकी कोशिश ग्राहकों को कम कीमत में यूनिक डिजाइन देने की होती है। इसी कोशिश ने फुलाहा को यहाँ युवाओं में काफी लोकप्रिय बना दिया है।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की, रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है।
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है।
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
0: जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान। इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
16: जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के लिए भी हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया है। शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं। एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट T20 फॉर्मेट में होंगे। ICC रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने की वजह से भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिल सकती है। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जापान में होने वाली एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। इसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरल की लॉन्ग जंपर NC सोजन ने महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम कर लिया। उन्होंने दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज के 6.83 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक के दौरान बनाया था। एनसी की इस उपलब्धि पर अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी उन्हें बधाई दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार हैदराबाद के शहर सिकंदराबाद में भी साफ नजर आ रहा है। यहाँ फुटबॉल के फैंस ने रिहायशी इलाकों को फैन जोन में बदल दिया। यहाँ कई इलाकों को बड़े झंडों, फुटबॉल थीम वाले बैनरों, खिलाड़ियों के कटआउट और रंग बिरंगी सजावट से पाट दिया है, जो किसी मेले के माहौल का अनुभव कराता है। फुटबॉल के दीवानों ने सड़कों को ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के रंगों से सजा दिया है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
0: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
17: क्या लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से सूर्य मजबूत होता है? क्या जरा सा तीखा खाने से मंगल और सूर्य पर असर पड़ता है? क्या परफ्यूम लगाने से बुध बेहतर हो जाता है? नवग्रहों को बेहतर करने के कौन से हैं छोटे छोटे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
18: Jack, come home. It's supper time.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
19: The roof is on fire. Jack, could you play that one song with the words?
6: Jack FM, playing what we want.
0: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
13: गुड न्यूज टुडे.
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
0: गुड न्यूज टुडे
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में

0: लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से सूर्य मजबूत होता है? क्या जरा सा तीखा खाने से मंगल और सूर्य पर असर पड़ता है? क्या परफ्यूम लगाने से बुध बेहतर हो जाता है? नव ग्रहों को बेहतर करने के कौन से हैं छोटे छोटे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक का भेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौत

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसके लिए सीआरपीएफ ने अभेद सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है और जमीन से लेकर जंगल तक चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च कर दिया गया है। यात्रा के दोनों रूट्स पर सीआरपीएफ की वैली कैट के कमांडोज कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको सीआरपीएफ के इन धुरंधरों से मिलवाने जा रहे हैं, उनकी तैयारी को दिखाएंगे। साथ ही साथ चलेंगे जम्मू, जहां पर शिव भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तवी रिवर फ्रंट पर टोकन लेने के लिए जैसे होड़ मची हुई है। यात्री निवास के पास भी श्रद्धालुओं का जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पहला जत्था निकलने में अब बहुत कम वक्त

बचा है। आज आपको तवी रिवर फ्रंट पर शुरू हो चुकी महाआरती की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑपरेशन शिवा के साथ। देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन और अमरनाथ यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत व्यवधान ना आए, इसके लिए सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हो चुके हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों और ड्रोन के साथ सीआरपीएफ के वैली कैट के कमांडोज लगातार गश्त कर रहे हैं सड़कों पर, स्टेशन पर और संवेदनशील जगहों पर इनकी निगहबानी है। इसके साथ ही सीआरपीएफ ने श्रीनगर के डल झील के आसपास सुरक्षा के घेरा बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

0: नजर दुश्मन पर, उंगली ट्रिगर पर, पलक झपकते होगा वार। इस अभेद्य सुरक्षा पंक्ति को पार सके भला किसकी है मजाल। बालटाल और पहलगाम के रास्ते जो बाबा बर्फानी के धाम तक जाते हैं, वहां मोर्चा संभाल लिया है सीआरपीएफ के कमांडो ने। एक दूसरे से कदम मिलाते हुए, तालमेल बनाते हुए, सड़क से लेकर जंगल तक, जमीन से हवा तक, चप्पे चप्पे पर है इनकी नजर। इनकी मौजूदगी अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वैली क्वाट का ऑपरेशन शिवा शुरू हो चुका है।
1: गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करके जो तैयारी की है उसके मुताबिक 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो बालटाल रूट और पहलगाम रूट में तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैली क्यूएटी के जो कमांडोज हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कमांडोज जो खतरनाक हथियार हैं उससे तो लैस ही हैं, साथ ही अगर किसी भी तरीके की आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए ये तमाम कमांडो जो हैं वो एक्शन में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ और जो ये रास्ता बालटाल के लिए जाता है, इस रास्ते में ऐसे ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क्समैन जो व्हीकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है और 360 इससे चारों तरफ जो कमांडो इसमें बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं। इसका सीधा मकसद ये है कि सुरक्षा का कड़े इंतजाम इस बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमरनाथ यात्रा को लेकर के किया है। 3 जुलाई से चलने वाली ये अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और इसके लिए जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम कमांडो आप देखिए।
0: अमरनाथ यात्रा में फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात हैं। सुरक्षा में किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं। सड़कों पर कदमताल करते कमांडो और उनकी मदद के लिए है बुलेट प्रूफ गाड़ियां। सेना और जम्मू कश्मीर के साथ सुरक्षा बल इसी तरह पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बेस कैंप और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और रोजाना यात्रा शुरू होने से पहले पूरे रूट का सैनिटाइजेशन होगा, चप्पे चप्पे की जांच होगी।
1: किस तरीके की तैयारियां इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के की गई?
2: अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए वैली क्यूएटी पूरी तरह से कृत संकल्पित है और यहाँ पे जितने भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर फिदाइन ऑपरेशन, स्मॉल टीम ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, ये सभी तरह के ऑपरेशन वैली क्यूएटी के द्वारा संपादित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो और किसी भी आतंकवादी संबंधी घटना को निगेट किया जा सके और इसके लिए पूरी तरह से वैली क्यूएटी कृत संकल्पित है।
1: इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किया जा रहा है, साथ ही फेसियल रिकॉग्निशन कैमरे भी अलग अलग जगहों पर लगाए गए, तो उसके लिए क्या तैयारियां की?
2: ड्रोन के द्वारा जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो NH44 के दोनों तरफ के जो एरिया हैं, जो संवेदनशील अति संवेदनशील एरिया हैं, उसको ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो फेस रिकॉग्निशन कैमरा है, जो ऐसे जगहों पे जहां पे यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है वहां पे फेस रिकॉग्निशन कैमरा के माध्यम से उनकी पहचान की जाती है ताकि उनकी एक्चुअल पहचान स्थापित की जा सके, वेरीफाई किया जा सके। तो हर तरह से जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसकी स्पेशल कमांडो यूनिट वैली क्यूएटी कृत संकल्पित है कि ये किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो और इस बार अमरनाथ यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से सम्पन्न हो सके।
0: ऊंची पहाड़ी, घने जंगल, ऐसे में छिपकर हमला करने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैली क्वाट के पास इसका भी तोड़ है। घने जंगल और सुनसान रास्तों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है।
1: बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है जिससे ये पता चल सके कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहां सड़कों पर तैनात किया गया है जिसका सीधा मकसद ये है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी व्यवस्था इस बार ये की गई है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक अमरनाथ यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में पहुंचता है तो उसको फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम से सीधे वहां पर इंफॉर्मेशन आ सके।
2: ड्रोन को हम 500 मीटर हाइट पे और 5 किलोमीटर जो है दूरी पे इसकी मदद से नजर रखा जा सकता है।
1: इसके साथ ही इसको जो ऑपरेट आप करते हो तो इसके फुटेज भी आप लोग सेव करके रखते हो कि अगर बाद में कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखी तो उस पर नजर रखी जा सके।
2: जी सर इसको जो है इसमें सर फोटो क्लिक और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती है सर, जो बाद में हमें किसी भी जरूरत के समय पे हमें हेल्प करता है सर।
0: अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पर हाईवे हो या कोई संवेदनशील जगह, सुरक्षा बल और कमांडो दिन रात निगेबान है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा श्रीनगर और खासकर डल झील की भी जरूरी है और इसके लिए सीआरपीएफ की टावर विंग मुस्तैदी से जुटी है।
1: सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहाँ पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहाँ पर स्थिति पैदा होती है उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहाँ पर मौजूद रहते हैं।
2: अपना साथ लगातार पेट्रोलिंग चलती है, डल डोमिनेशन चलता है। डल में चूंकि बहुत तरह के हाउस बोट यहाँ पे लगे हुए रहते हैं जिसमें सुरक्षा थ्रेट भी रहता है, जिस कारण से हम इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं और हमारी ये जो ये वाटर बोट है और वाटर विंग के द्वारा और ये कमांडोज के द्वारा इसका लगातार डोमिनेशन किया जाता है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो।
0: अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, दुश्मन अपनी किसी साजिश में कामयाब न हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर में हर जवान पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के लिए अबद्ध, प्रहार के लिए प्रतिबद्ध, जम्मू कश्मीर में जारी है ऑपरेशन शिवा।
3: 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है और उससे एक दिन पहले शिव भक्तों का जत्था जम्मू से रवाना होने वाला है। पहलगाम और बालटाल यात्रा के 2 मार्ग हैं और दोनों ही मार्गों पर सीआरपीएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां तालमेल के साथ तैयार हैं। और देखिए, सुरक्षा घेरे में जम्मू कश्मीर पुलिस की भी अहम जिम्मेदारी है जो लगातार मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को लगातार पुख्ता कर रही है। न सिर्फ मुश्किल हालात से निपटने की तैयारी है बल्कि आतंकी हमले को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। श्रीनगर के पास पुलिस की स्पेशल टीम ने मॉक ड्रिल करके बम धमाके को रोकने का अभ्यास किया। अगर यात्रा के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बम निरोधी दस्ता तुरंत एक्टिव हो जाएगा और न सिर्फ बम डिफ्यूज कर देगा बल्कि तुरंत ही पूरे इलाके का सैनिटाइजेशन हो जाएगा। सेना और सुरक्षा बलों के साथ जो सुरक्षा चक्र बनाया गया है उसमें पुलिस अहम कड़ी है और वो अपने एक्सपर्ट्स के साथ पूरी तरीके से तैयार है। और आइए बात करते हैं यात्रा के जोश की। जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकलने वाला है, उससे पहले हजारों की तादाद में शिवभक्त जम्मू पहुंच चुके हैं। ऑफलाइन टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए तवीर रिवर फ्रंट पर काउंटर बनाए गए हैं जहां पर लोगों का जोश जबरदस्त देखने को मिल रहा है। भक्तों की भीड़ यात्री निवास के पास भी मौजूद है और सभी जल्द से जल्द यात्रा पर निकलना चाहते हैं। भक्ति के इस महामेले में तवी नदी के किनारे हरिद्वार की तर्ज पर हो रही भव्य महाआरती भी आकर्षण का केंद्र है। रिपोर्ट देखिए।
4: गिनती के दिन 4, इधर भक्त तैयार। और अमरनाथ के कठिन रास्तों को भी जैसे श्रद्धा के सैलाब

0: दो महीने के लिए ही मिलता है ये अवसर, जब पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब विधिवत यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसीलिए अपने आराध्य को देखने, पूजने देश के हर हिस्से से चल पड़े हैं श्रद्धालु। पहली मंजिल जम्मू है। जहां करंट यानी तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इस बार प्रशासन ने 18 ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टोकन काउंटर्स बनाए हैं। इनमें 10 काउंटर तवी रिवर फ्रंट सेंटर पर हैं, बाकी के 8 गीता भवन, राम मंदिर, भगवती नगर और रेलवे स्टेशन पर हैं। टोकन आसानी से मिले और सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट पर है। तवी रिवर फ्रंट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और अधिकारियों की भी पूरी प्रक्रिया पर नजर है। बालटाल और पहलगाम यात्रा के दोनों रूट्स के लिए टोकन लेने की होड़ लगी है। महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, साधु संत सभी शामिल हैं। कोई पहली बार यात्रा करने जा रहा है, कोई दूसरी और कोई तीसरी बार।
1: तीसरी बार जा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से, और पिछले दो बार लगातार होके आए हैं हम। इस बार भी हम भोलेनाथ की कृपा से आज पहले जत्थे के साथ जाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
2: हम लोग बनारस से आए हुए हैं,
3: बाबा विश्वनाथ की नगरी, विश्वनाथ की नगरी से आए हुए हैं।
2: ये चौथी बार,
3: हमारा नाम अनिल कुमार, बाबा की नगरी से आए, ये दूसरी बार है मेरा लगातार।
2: प्रशासन की कमी,
3: प्रशासन की कमी से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, भीड़ ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, सब व्यवस्था अच्छे से हो रहा है। पहले जत्थे में दर्शन होगा, बाबा की कृपा से जय हो
4: जी। सर झांसी से आए हुए हम लोग, झांसी से तीसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं, बालटाल से करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।
0: बाबा के दर्शन की ऐसी लालसा है कि सभी पहले जत्थे में शामिल होना चाहते हैं, और सिर्फ इस साल नहीं, जब तक सांस है तब तक इसी तरह बाबा के दर्शन करते रहने की आस है।
5: भोले की बोल, सच्चे दरबार की जय। मैं भाई मुर्गेश चंद गुप्ता जी हूँ, नबीगंज से, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से 65 लोग आए हुए हैं, बरेली से सब लोग हैं, और बहुत बढ़िया व्यवस्था है भोलेनाथ की, और आपकी दुआ से सबकी और बढ़िया व्यवस्था है। सब लोग आते हैं, हर साल आ रहे हैं, इस साल 11वीं साल है हमारी, और तो बाकी लोगों की 21 साल है, 25 साल पर।
6: कितनी खुशी है पहले जत्थे में जाओ?
5: बहुत खुश हूँ भाई, भोलेनाथ की कृपा है कि जब तक सांसें रहेंगी तब तक आते रहेंगे। बोल महादेव बाबा की।
7: बहुत खुश है, नसीब भी अच्छा है कि हम जा रहे हैं इसकी जगह।
8: महाराष्ट्र से आए बाबा पर दर्शन काला, महाराष्ट्र। हाँ हाँ हाँ, दर्शन दर्शन करने के जाने।
0: भीड़ बहुत है, पर टोकन वितरण में सुविधा और सख्ती दोनों है, यानी एक आदमी को बस एक ही टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद EKYC और फिर RFID रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा के लिहाज से ये प्रक्रिया श्रम साध्य जरूर है, पर कतार में खड़े शिव भक्तों का जोश देखिए जरा। बाबा के दर्शन की मनोकामना ऐसी है कि मुश्किल पर नजर ही नहीं जाती। असल में इस साल से तवी रिवर फ्रंट अमरनाथ यात्रा का नया केंद्र बना है। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने यहीं पर श्रद्धालु के लिए रजिस्ट्रेशन और टोकन का इंतजाम किया है, और यहां हर रोज करीब 3500 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए वाटरप्रूफ टेंट, लंगर के साथ मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई गई है। लेकिन इसी के साथ तवी रिवर फ्रंट पर इस साल से महाआरती का भी आयोजन हो रहा है। दियों की चकमकाहट के साथ मंत्रों की गूंज, देखने में तस्वीर काशी या फिर हरिद्वार की तरह लगती है, पर ये है जम्मू के तवी रिवर फ्रंट की तस्वीर। पवित्र अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले सूर्यपुत्री माँ तवी की भव्य संध्या आरती का शुभारंभ हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ये एक अद्भुत आध्यात्मिक सौगात है, जिसका एक उद्देश्य श्रद्धालुओं को जम्मू की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी है। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और दीपों की रोशनी के बीच साधु संतों और पुरोहितों ने विधि विधान से माँ तवी की आरती संपन्न करवाई।
9: ये शंखनाद हो गया है कि जो श्रद्धालु देश भर से आने वाले हैं उनका आगमन जो है वो होना शुरू हो चुका है, और 3 तारीख को पहला जत्था जो कि जम्मू के यात्री निवास यानी भगवती नगर से होगा, और इस समय हम तवी रिवर फ्रंट पर हैं, क्योंकि तवी रिवर फ्रंट पर ये तमाम एक पहली बार यहाँ पर ये जो है वो प्रस्तुति आरती की जा रही है, ताकि श्रद्धालु जो है वो आकर्षण जो है केंद्र का आकर्षण बने। तो लगातार जो है वो जम्मू प्रशासन और यहाँ के लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस यात्रा को जो है वो सफल बनाया जाए।
0: पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु अब बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस महाआरती में शामिल हो सकते हैं और इस अद्भुत अनुभव को अपनी यादों में संजो सकते हैं। महाआरती के साथ ही तवी रिवर फ्रंट पर नौका विहार की भी योजना है, और इसके लिए शानदार लेजर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके जरिए श्रद्धालु बाबा बर्फानी की महिमा और अमरनाथ गुफा के इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की परंपरा है। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सोमवार को उपराज्यपाल इस पूजा में शामिल हुए। उससे पहले रविवार को तवी रिवर फ्रंट पर विशेष भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें जम्मू समेत देश भर से आए संत महात्मा और श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा और हवन के साथ ही यात्रा की सफलता और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की गयी।
10: तभी पुत्री के तट पर बाबा अमरनाथ स्वामी की प्रथम पूजा संपन्न हुई है। इस अवसर पर हमारे
11: करते हुए
10: एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू के अवसर पर उनकी मौजूदगी है, और मैं मानता हूँ लोग बाबा की यात्रा में आएंगे, और यहाँ पर यात्रा है जहाँ पर लाखों की संख्या में एक ऐसी जगह बनी है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आएंगे और भगवान की याद करेंगे।
12: शुभ कार्यक्रम का आगाज जो है ये बहुत अच्छे से हुआ, और इसी के साथ साथ अब ये आगे इसको कार्यक्रम को बढ़ाते हुए तवी आरती को भी ये रख रहे हैं इसी पूजन के साथ, ताकि जो अमरनाथ यात्रा के दौरान एक अट्रैक्शन बने और जो यात्रु है सभी आए और इस चीज़ का आनंद लें और अपना अपना आशीर्वाद।
13: आज सूरज पुत्री जो हमारे लिए पूजनीय है यहाँ पर तवी माँ तवी, इसके आज तट पर जो पूजन किया गया, आज पहली बार आने वाले अमरनाथ यात्रा जी को लेकर यहाँ से लाखों लोग श्रद्धा के साथ बम बम भोले के स्थान पे जाते हैं, पर इस स्थान का डेवलप होने का मतलब है आर्थिक रूप से जम्मू का विकास होना। जो निराशा थी बम बम भोले के कारण, आज पूजा के कारण यहाँ पे एक विकास की नई किरण जागी है। लोगों को लाखों की तादाद में तो लोग आते हैं, 2-3 महीने के लिए तो ये यहाँ पर बड़ा अच्छा मेला लगा रहता है, जिससे जम्मू के व्यापारियों को आर्थिक रूप से तरक्की मिलती है।
0: जम्मू में हजारों भक्तों के आने से पूरा माहौल शिवमय हो चुका है। जहां नजर डालिए वहीं शिव भक्तों का रीला नजर आएगा।
14: यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्यामना जी की यात्रा को लेकर यहाँ पर बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ जम्मू शहर पहुँच रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है, और जो श्रद्धालु है काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताए, आप कहते
15: हैं अंकित उपलाउदिया,
14: कहाँ के रहने वाले?
15: शाजापुर के।
14: मुझे बताएं मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप इस यात्रा के लिए आए?
15: जी जी बहुत हो रही है, बहुत उत्साहित है जाने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ पे।
14: आपका पंजीकरण हो चुका है?
15: जी हो चुका है।
14: अच्छा, आपको कौन सा तारीख मिली है, किस जत्थे में जा रहे हैं?
15: 4 तारीख।
14: अच्छा अच्छा
15: जी,
14: 4 तारीख में, तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति?
15: जी जी बहुत हो रही है। जी
14: आप कहाँ के रहने वाले?
16: आप MP इंदौर।
14: अच्छा, मन में कितनी खुशी है, क्या भाव है?
16: बहुत है।
14: अच्छा, तो पहली बार यात्रा के लिए?
11: नहीं, चौथी बार है।
14: अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा है अब तक का आपका अनुभव? आप चार बार यहाँ यात्रा करने के लिए?
11: अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, सुविधा भी बहुत बढ़िया है, सब आइए, सुरक्षा भी बहुत है, कुछ नहीं होता है।
14: मन में कोई डर भय?
11: नहीं, कुछ नहीं है। आप पिछली बार तो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बावजूद भी हम आए थे और सब आए थे, पूरी टीम आई थी हमारी।
14: एक बार सभी जय घोष कर दीजिए भगवान भोलेनाथ का।
16: एकारी बजरंगी हर हर महादेव।
14: आप कहाँ के रहने वाले?
16: इंदौर से सर।
14: अच्छा, मुझे बताया पहली बार यात्रा के लिए?
16: जी सर, पहली बार आ रहे हैं सारे दोस्तों के साथ। जी, हर बार आते हैं।
14: अच्छा, आप पहली बार आ रहे हैं?
16: जी पहली बार।
14: तो
16: आ रहे
14: हैं, क्या भाव है मन में पहली बार दर्शनों के लिए आए?
16: बहुत अच्छा लग रहा है और सभी के साथ आए तो और मजा आ रहा है और बढ़िया लग रहा है।
14: अच्छा, परिवार के साथ है, मित्रों के साथ?
16: मित्रों के साथ है सर।
14: अच्छा अच्छा, तो आपको?
16: हमारा बड़ा भाई भी आया है, वो भावे।
14: किस तारीख को जा रहे हैं आप यात्रा?
16: चार तारीख। चार,
14: आपको चार तारीख का?
16: चार तारीख का।
14: अच्छा, तो बृहस्पतिवार को पहला जत्था रवाना होगा, तीन तारीख को दूसरा जत्था रवाना होगा और शुक्रवार को जो है विधिवत तौर पर यात्रा शुरू हो जाएगी। तो क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ से जब आप पवित्र गुफा में पहुंचेंगे उनके दर्शन?
16: शांति समृद्धि सभी के लिए, सारे दोस्त मस्त रहे और हर बार इसी तरह बुलाते रहे हमें।
14: अच्छा अच्छा जी, आप बताइए आपका नाम?
17: आदित्य शरद नाथे, महाराष्ट्र से आए, अकोला जिल्ला। अरे एक नंबर है, ऐसा मुझे आनंद की बात कहा है, का
14: है? कितनी खुशी है।
17: अरे बाप रे, मन में बोले तो ऐसा स्वर्ग दिख रहा है कि वाह क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा बोले तो।
14: अच्छा, आप पहली बार आए?
17: पहली बार
14: हमारे पैसा ज्यादा।
17: अरे प्रसन्न बोले तो प्रसन्न वाटू राहल की कुठे आलो अपन, म्हणजे घरदार काशाजी आठवण नाही काही नाही, आणि असं भोलेनाथच एवढा आनंद की असं म्हणजे फर्स्ट टाइम बघत आहे लंगर जाय पण सर्व आणि सर्व
18: होत। पिछली बार भी हम आए थे, पिछली भी बहुत सुरक्षा का बहुत कड़ी इंतजाम थी।
14: आप पहली बार दूसरी बार आ रहे?
18: सेकंड बार आयो मैं।
14: सेकंड बार आ रहे, कैसा अनुभव रहा पिछली बार?
18: बहुत अच्छा रहा।
14: एक बार सभी जय घोष कर दीजिए
19: बम्बे भोले, बम्बे भोले, जय बाबा परवानी की जय हो, जय बाबा परवानी की जय हो, बम्बे भोले, बम्बे।
0: महादेव के धाम की ओर जाने वाले शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। घंटों तक लाइन में लगना और टोकन लेने के बाद जब यात्रा शुरू होगी तो कई किलोमीटर पैदल चलना होगा। इस मुश्किल यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार और प्रशासन दोनों हर तरह से तैयार है। बालचाल बेस कैंप में तैयारियां जोरों पर हैं। यहां हर बार की तरह एक पूरी टेंट सिटी बसाई गई है जिसमें यात्रियों के रहने खाने की सुविधाएं मौजूद है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
20: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
21: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
22: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
23: वो परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
24: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
25: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
26: और दुर्भाग्य कहता है
27: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
24: अविश्वास में विश्वास बसता है
25: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
28: गुड न्यूज टुडे

0: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
0: It was to live sports action.
2: To the near side corner, the wraparound, he scores!
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार लेटर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने पकड़ी रफ्तार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दमन के कई हिस्सों को पार किया, दिल्ली के साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी देगा दस्तक। मानसून का दस्तक के साथ ही हिमाचल के लिए IMD ने जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट, राज्य में 6 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना। कल से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा और मंडी में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सिक्किम के सिंगथाम में जबरदस्त भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा, सड़कें बंद। सीहोर में बरसे बदरा, भारी बरसात के बाद रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। गुजरात के सूरत में मानसून की जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में भर गया पानी, गर्मी से राहत लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त। मानसूनी बारिश के बाद सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे और दरारें, सड़क के बीच गड्ढे में फंसा कार। उधम सिंह नगर में भी मूसलाधार बारिश, गिरा तापमान लेकिन घरों से निकलना मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा कल दिल्ली में करेंगे डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयासों की समीक्षा। दिल्ली में 75 स्मारकों की कायाकल्प करने के लिए रेखा सरकार ने कसी कमर, स्मारक मित्र बनकर निजी कंपनियां, NGO, ट्रस्ट और PSU ने 75 स्मारकों को गोद लिया। गुलमर्ग में भी ट्रैक कंट्रोल के लिए दिल्ली जैसा ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया है, बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए योजना। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन की अवधि की विस्तार किया। वडोदरा में भारतीय वायुसेना का अनोखा प्रयास, इंडस्ट्री आउटरीच 2026 का भव्य आयोजन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एयरफोर्स स्टेशन हुआ आयोजन, इस कार्यक्रम में लगभग 200 कंपनियों ने हिस्सा लिया। भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्वदेशी तकनीकों पर भी की गई है चर्चा। हरियाणा में 4 और 5 जुलाई को होगी हरियाणा TET परीक्षा, जिला कलेक्ट्रेट ने धारा 163 लागू की। केंद्र ने फिल्म उद्योग को मजबूत करने के लिए सीमित समिति का गठन किया, प्रसून जोशी करेंगे अध्यक्षता। कल से बदल जाएंगे आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 प्रमुख वित्तीय नियम, इनमें क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड लाउंज एक्सपेंस भी शामिल। कल से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 के लॉन्च की उम्मीद है, सुविधा से EPFO सब्सक्राइबर्स UPI के जरिए निकाल पाएंगे PF का पैसा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 2026 आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल ID अपडेट कराना अब हो जाएगा फ्री। अब पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, कल से 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर 2,500। रेलवे यात्रा के नियम भी हो सकते हैं सख्त, इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने पर होगा जुर्माना। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से लेकर अमरनाथ तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात। हर पड़ाव और हर रास्ते में सभी संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाहें, बिना किसी भय के बाबा दर्शन कर रहे हैं भक्त। S44 पर वैली कैट यानी वैली कैट एक्शन टीम के जवान तैनात। ऊंचे पहाड़ी इलाकों और जंगलों में ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, करीब 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती। अमरनाथ यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, बालटाल रूट पर जम्मू कश्मीर और पुलिस ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जमकर लगाए जा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे। अमरनाथ यात्रा होगी आसान, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा टनल तैयार। रामबन के डिगडोल पंतीहाल के बीच 3.5 किलोमीटर लंबा टनल तैयार। श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आसान सफर करने के लिए पहलगाम और बालटाल रूट पर ट्रैक किया गया है चौड़ा। विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में बढ़ रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 13,61,000 का आंकड़ा पार। यात्रा शुरू होने के 2 महीने 8 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आकर भक्तों ने कायम किया है नया रिकॉर्ड। भले ही मानसून सीजन शुरू हो गया हो, बावजूद इसके हर रोज 7,000 से 8,000 के बीच भक्त कर रहे हैं दर्शन। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में निरीक्षण किया। सावन में होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की, सीसीटीवी कैमरे ड्रोन से होगी निगरानी। मुंबई में हुआ गणेशोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ, सितंबर महीने की 14 तारीख से शुरू होगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणेशोत्सव। गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले कार्यशालाओं की बढ़ी रंगत, बप्पा की विशाल मूर्तियां अभी से लेने लगी हैं आकार। राज्य भर के बड़े गणेश पंडालों ने अभी से दिए गणपति की भव्य और विशाल प्रतिमाओं के ऑर्डर्स। बोधगया में विश्व का अनोखा शांति स्तूप असलहों के अवशेषों से बना है। पीतल की परत से ढका स्तूप विश्व को शांति का दे रहा है संदेश, 33 सालों तक श्रीलंकाई सेना और लेट्टे के बीच स्तूप के लिए हुआ था गृह युद्ध। अलवर में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान हुए बीमार, 15 दिनों तक जड़ी बूटियों से होगा इलाज। अब 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में करेंगे विराजमान, काढ़ा औषधि से किया जाएगा इलाज। खाने में दलिया, खिचड़ी, फल, ड्राई फ्रूट्स का लगेगा भोग। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने ईवी बाइक से जगन्नाथ यात्रा के रूट में निरीक्षण किया, कई इलाकों में पुलिस बल तैनात। अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दिखा जश्न गानों का अंदाज, अखिलेश के एक बड़े बैनर को खेत में रखकर छोटे बच्चियों ने काटा केक। अखिलेश की दीर्घायु की प्रार्थना की गई, पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। मंजू नया ने रचा नया इतिहास, बनी भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी। कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कुराश प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन भी कर चुकी है मंजू, तक देश की कोई महिला नहीं कर सकी थी ये करिश्मा। फिलहाल गाजियाबाद के गुरुकुल 10 स्कूल में सीनियर कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है मंजू। वाराणसी भ्रमण पर निकली 40 ग्रामीण महिलाएं और बच्चे, बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन। इन ग्रामीण महिलाओं का ये पहला वाराणसी भ्रमण, मंदिर दर्शन के साथ मॉल्स में भी शॉपिंग। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया है एक टूर। मॉनसून के दौरान संभावित प्रकृति आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेज। इस मॉक ड्रिल की तैयारियों के तहत टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित, किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से हुए वो रिटायर, कार्यभार छोड़ा। इस मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, उन्होंने देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात समापन समारोह का आयोजन किया गया, रक्षा मंत्री शामिल। बरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल हुए। अलवर के सरिस्का में पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधा, बफर क्षेत्र में बनेगा नया एंट्री गेट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क, टॉयलेट और गेटों का होगा कायाकल्प। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बेंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समुद्र में फंसे 6 नाविकों की बचाई जान। देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए 8,120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर डिब्रूगढ़ पहुंची राष्ट्रीय साइकिलिस्ट आशा मालवीय। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, सितंबर से जापान में आयोजित होगी टूर्नामेंट। एशियंस गेम के लिए हरमनप्रीत को मिली है टीम की कप्तानी, स्मृति मंदना उपकप्तान। खराब फॉर्म से जूझ रही विकेटकीपर यास्तिका भाटिया को टीम से किया गया ड्रॉप। स्पिन ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में मिल गई जगह। आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद है। कल से इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहले टी20 सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की नजरें। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर रहेगी सभी की नजरें, आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था मौका। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए किया है बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर जारी किया। चेक रिपब्लिक में चर्चा का विषय बना अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का सबसे बड़ा फैन अर्जेंटीना के झंडे के रंग में रंगा हुआ है घर। अर्बनिक है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के इस दीवाने का नाम, घर के बगीचे में लगी है डिएगो माराडोना की मूर्ति। अर्जेंटीना के रंग में रंगी है अर्बनिक की गाड़ी, लाइसेंस प्लेट में लिखा है माराडोना। अर्बनिक के कलेक्शन में नेपाली के समय की डिएगो माराडोना की ओरिजिनल साइन की हुई तस्वीर भी शामिल है। 4 साल की उम्र से अर्बनिक हैं अर्जेंटीना टीम के फैन, उनके घर में हैं अर्जेंटीना के झंडे और सॉकर से जुड़ी हुई तमाम चीजें। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वायरल हुआ बत्तख मर्लिन। 12 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेक्सिको की 2-0 से जीत के बाद जश्न के दौरान बत्तख मर्लिन का वीडियो हुआ वायरल। रोम के नेशनल एक्ट्रेस म्यूजियम में फ्रैंक्विस टॉम को जनता के लिए किया गया पेश। बेल्जियम के जू ने अपने सबसे नए जिराफ का किया स्वागत, कोडोफन नाम है उनका। सिसली में माउंट एटना ज्वालामुखी से लाल चमकती नदी की एक तरह बहता हुआ नजर आया लावा। इमरान हाशमी स्टार और फिल्म आवारापन 2 का टीजर हुआ रिलीज, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होने जा रही है रिलीज। फिल्म अल्फा के प्रमोशन करने के लिए जयपुर पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी। अल्फा को सेंसर बोर्ड ने दे दी हरी झंडी, फिल्म को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट। जूनियर NTR की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ, NTR ने सोशल मीडिया पर लिखा शिव के पुत्र पार्वती के गौरव। सूर्या ने होमब्ले फिल्म्स के नए प्रोजेक्ट के लिए TJ ज्ञानवील के साथ हाथ मिलाया। सनी देओल और अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म इक्का का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ओडिशा में 5वीं की किताब में ऐश्वर्या राय का हिट गाना, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है निबोड़ा निबोड़ा। फिल्म हेरा फेरे 3 को लगा सबसे बड़ा झटका, फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन ने छोड़ी फिल्म। वेलकम टू द जंगल का कमाल, 4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार। पंजाबी फिल्म कैरी ऑन चट्टा 4 ने किया कमाल, जबरदस्त कलेक्शन के साथ 2 फिल्मों को पछाड़ा।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
12: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
14: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा, फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की, बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है।
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
16: लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से सूर्य मजबूत होता है क्या? जरा सा तीखा खाने से मंगल और सूर्य पर असर पड़ता है क्या? परफ्यूम लगाने से बुध बेहतर हो जाता है? नवग्रहों को बेहतर करने के कौन से हैं छोटे छोटे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भाई के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं नौ ग्रहों के बारे में, यानी कि अगर नौ ग्रहों की स्थितियां आपकी कुंडली में मजबूत ना हो तो कैसे छोटे छोटे उपायों के जरिए उन्हें बेहतर किया जा सकता है, उन्हें मजबूत किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अपनी कुंडली के चंद्रमा की खराब स्थिति से काफी परेशान हैं तो एक चांदी का गिलास ले लें या चांदी का लोटा ले लें और चांदी के पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं हर सोमवार को। ऐसा करने से चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति में सुधार होगा।
0: तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरुआत उसकी करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं 1 जुलाई 2026 यानी दिन बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि,

0: नहीं है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह पंडित जी से यहाँ पर बेहद ही सरल सवाल से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। नौ ग्रहों के बारे में पंडित जी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नौ ग्रहों की स्थिति, अगर किसी की कुंडली में मजबूत ना हो, तमाम ग्रह जो हैं डेबिलिटेटेड हो, किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है इनको कुंडली में, उसके बारे में बताएं
0: जी। हम आज आपको बता रहे हैं कि छोटे छोटे उपायों से, घरेलू नुस्खों से आप नौ ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर ग्रह की मानव जीवन में एक भूमिका होती है, एक विशेष महत्व होता है। जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह से संबंधित शारीरिक या मानसिक समस्या आ जाती है। ग्रहों को मजबूत जब आप करते हैं तो आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कठोर तपस्या करें, आप जान दे दें अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जीवनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने खान पान में और अपने स्वभाव में छोटे छोटे बदलाव करिएगा। इन बदलावों से बहुत जल्दी आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, मंत्र जप करने के, दान करने के, रत्न पहनने के, लेकिन हम जो आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे उनको बड़ी आसानी से आप अपने जीवन में ला सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या

0: क्या हो सकती है? अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब बात करते हैं सूर्य की, यानी सूर्य को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे आखिर कौन से हैं, ये पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर कुंडली में आप सूर्य को मजबूत कर लें तो कुंडली की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। सूर्य को कैसे मजबूत करेंगे? रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठिए। इसीलिए कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। शाम को सूरज की रोशनी रहते रहते ही सूर्यास्त के पहले भोजन कर लीजिएगा। तांबे का एक गिलास खरीदें या तांबे का एक लोटा ले आएं और उसी से पानी पीजिएगा। सामान्यतः जीवन में लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिएगा, लकड़ी की मेज का और कुर्सी का। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा ही, अपने भोजन में जरूर खाइएगा।
1: अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, कमजोर है, तो किस तरीके से उसे मजबूत किया जा सकता है, क्या छोटे छोटे उपाय हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, चंद्रमा आपका मन है। अगर आप अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं, मन को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? चंद्रमा को कैसे मजबूत करेंगे? रात में ठंडी चीजें खाना बंद कर दीजिए। भोजन हमेशा ताजा खाइए। जहां तक संभव हो बासी भोजन से परहेज करिएगा। रस वाले फल, संतरा, मौसमी, कीवी, इसको खाइए, और कच्ची सब्जियां और कच्चा सलाद खाइए। किसी भी हाल में पानी की बर्बादी मत करिएगा, पानी बर्बाद होने से बचाइए। अगर आपकी माँ हैं तो सप्ताह में एक दिन या जब भी मौका मिले माँ के हाथ से कुछ खाइए, मिठाई खाइए, या माँ अपने हाथ से पानी दे वो पानी पीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा।
1: तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मार्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, और अगर मार्स डेबिलिटेटेड है, कमजोर है आपकी कुंडली में, तो मंगल को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, मंगल का मतलब होता है आपका साहस और आपका आत्मविश्वास। तो मंगल को कैसे मजबूत करें कि साहस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, रोग बीमारी जल्दी ना पकड़े? जमीन पर सोने का प्रयास करिए, या अगर लो फ्लोर की पलंग है तो उस पर सोइएगा। सप्ताह में एक दिन कोशिश करिए मंगलवार को नमक मत खाइएगा। अपने भोजन में गुड़ का और दलिये का सेवन जरूर करिएगा। अगर मंगल बहुत कमजोर है और आप मंगल को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो लाल रंग के अंडर गारमेंट्स, लाल रंग के अंतः वस्त्र जरूर धारण करिए, या लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखना शुरू कर दीजिए।
1: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में मन में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: आज का पहला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है, और मनीषा जी हमें सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 3 जून 1990 का जन्म है, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है देहरादून। मनीषा कह रही हैं कि मैं पीएचडी कर रही हूं अभी, क्या मुझे आगे शिक्षा क्षेत्र में अच्छी नौकरी मिल सकेगी? मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी पाएंगी साल 2027 के जून के बाद। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सहारनपुर छोड़ना पड़ सकता है, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में आपका करियर अच्छा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर दिख रही है। एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। याद रखिए कि आप अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखें। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न मोहित जी ने हमें लिखा है और मोहित जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1998। जन्म का समय रात में 10:45। जन्म स्थान है मधुबनी बिहार। मोहित जी कह रहे हैं कि मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी करता हूं और मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? मोहित जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में अभी नहीं जाना चाहिए, अभी आप नौकरी करिए 2030 तक। 2030 के बाद आपके व्यापार के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे आपकी कुंडली ज्यादातर आपको नौकरी में तरक्की देगी। इधर उधर भटकने से बचिए वरना करियर में मुश्किलें आ सकती हैं। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध जो है वो कमजोर है, आप उसे मजबूत करना चाहते हैं तो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं इसे मजबूत करने के, आइए जानते हैं।
0: देखिए बुध का मतलब होता है आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, चीजों को समझने की क्षमता। तो अगर बुध कुंडली में कमजोर है और आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भोजन में हरी सब्जियां जरूर ग्रहण करिए, भोजन में हरी सब्जियां जरूर खाइए रेगुलर। सौंदर्य प्रसाधन का, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम से कम करिएगा। कोई ना कोई संगीत, जैसा भी म्यूजिक आपको अच्छा लगता है वैसा संगीत सुनने की आदत डालिए। नियमित रूप से स्नान करिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। परफ्यूम जरूर लगाइए और अगर छात्र हैं तो चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करना अच्छा होगा।
1: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को मजबूत करना है तो घरेलू नुस्खे कौन से हैं, पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए बृहस्पति का मतलब होता है ज्ञान, धर्म और ईश्वर की कृपा। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करिएगा। सात्विक भोजन यानी मांस मदिरा से मुक्त सात्विक भोजन ग्रहण करिए। बाल बहुत लंबे और बड़े मत रखिए, बाल छोटे रखिए। गले में चंदन की, तुलसी की, रुद्राक्ष की माला पहने और अपने माथे पर या कंठ पर तिलक लगाएं। सोने का या पीतल का एक छल्ला तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में अवश्य धारण करें। अगर आप ये उपाय करें तो बृहस्पति मजबूत होगा, और अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव ज्यादा होगा।
1: तो चलिए अब बात करते हैं शुक्र यानी वीनस की। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड है, कमजोर है शुक्र ग्रह, घरेलू नुस्खे कौन से हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, शुक्र का मतलब होता है जीवन का सुख, हैप्पीनेस और हार्मनी। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रोज स्नान करने के बाद सुगंध लगाइए, हल्की सी खुशबू, साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र धारण करिए। दोपहर के भोजन में थोड़ा सा ही सही, लेकिन दही जरूर खाइए। अपने बालों को हमेशा संवार कर रखिए। दाढ़ी मूछ रखते हैं तो बिखरी हुई दाढ़ी मूछ मत रखिए, उनको सेट रखिए। चमकदार सफेद रंग का, ब्राइट वाइट कलर का जीवन में प्रयोग करें। चमकदार सफेद रंग का एक रुमाल अपने पास हमेशा रखिएगा।
1: तो बातचीत हमारा ये जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, धन की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली में शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो शनि को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं।
0: देखिए, शनि का मतलब होता है आपके जीवन की मेहनत और आपके जीवन का संघर्ष। तो अगर आप शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, भोजन के लिए, शरीर की मालिश के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करिए। अंधेरे में मत रहिए, ज्यादा से ज्यादा जीवन में प्रकाश का प्रयोग करें। बाल बड़े रख सकते हैं, दाढ़ी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन उसको सेट करके रखिएगा। भोजन के लिए प्रयोग करने के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना अच्छा होगा। शनि को अगर प्रबल करना चाहते हैं तो जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट, ये काले रंग की अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए अब बात करते हैं छाया ग्रहों के बारे में, यानी राहु केतु। राहु केतु को कुंडली में आखिर कैसे मजबूत किया जा सके, कौन से वो अचूक उपाय हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, राहु केतु का मतलब जीवन की आकस्मिकता है। जीवन में अचानक लाभ और अचानक हानि राहु केतु से होती है। बीमारियां हो जाने पर उनका डायग्नोसिस ना हो पाए, इसके पीछे भी राहु केतु होते हैं। तो राहु केतु को कैसे मजबूत करेंगे, रोज सवेरे स्नान करिए, स्नान करना आवश्यक है। सुबह खाली पेट तुलसी के दो पत्ते ग्रहण करें। फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दें। सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान पर या मंदिर जाएं, अपने गुरु के आश्रम में जाएं या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाएं या चंदन की सुगंध लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता के योग हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न किसका ले रहे हैं पंडित जी, उसके बारे में बताएं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न किसलय ने हमें लिखा है और किसलय हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 दिसंबर सन 2001। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। किसलय कह रही हैं कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूं, क्या इस समय विदेश जाना मेरे लिए बेहतर होगा? किसलय आपकी कुंडली के हिसाब से संभवतः आप मीडिया, लैंग्वेज या कला के क्षेत्र की कोई पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन अभी आपके विदेश जाने का उपयुक्त समय नहीं है। आप भारत में ही रहकर अपनी पढ़ाई करिए। 2028 तक अगर स्थितियां ठीक रहीं तो 2028 के अंत में आपको विदेश भेजने का विचार करेंगे। दूसरी बात देखिए, आपकी कुंडली में ये है कि आपको इस समय भावनात्मक समस्याओं से, प्रेम आदि की दिक्कतों से बचना होगा, क्योंकि इमोशनली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन के पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। तो चलिए जल्दी से आपको बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं, यानी पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 1 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में रोजगार की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी, परिवार और घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो अच्छा होगा।
1: तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब फिलहाल पंडित जी से ये जानने का समय हो गया है कि आज के कार्यक्रम की जिज्ञासा क्या है, वो सवाल क्या है जो आप सभी के जहन में है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी आ गई, देवता आ गए। क्या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता आते हैं? देखिए, ये दरअसल एक विचित्र तरह की मानसिक स्थिति है और ये कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। किसी व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई देवी देवता नहीं आते, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल समस्या है।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर का समय और उसका उपाय आखिर क्या है।
0: दिनांक 1 जुलाई 2026, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 1 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की विशिष्टताएं क्या होती हैं। आज की गुड लक राशि है मीन। ये लोग बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने के चक्कर में अक्सर समस्या के शिकार हो जाते हैं।
1: तो चलिए कार्यक्रम यहाँ पर खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय हमारे दर्शकों के लिए क्या है। जी।
0: आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप किसी बड़ी सर्जरी के लिए जा रहे हो तो क्या करेंगे। सर्जरी के 1 दिन पहले हनुमान जी को अपनी उम्र के बराबर लड्डू अर्पित करें, या एक जटा वाला नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एक बार सुंदर कांड का पाठ कर लें, और याद रखें जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हैं सर्जरी के लिए लाल वस्त्र पहनकर मत जाइएगा।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: बात करते हैं मानसून की भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। दिल्ली में 4 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पर मुंबई में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन जोरदार बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया, जिससे लोगों को घरों से निकलने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा है।

0: मौसम के बदलते मिजाज से कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी। ऐसा लगता है कि जून की चिलचिलाती गर्मी हर वक्त इम्तिहान ले रही है, और ऐसे में अचानक मौसम मेहरबान हो जाए और झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो जाए तो लोगों के सुकून का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मायानगरी मुंबई में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की ये जोरदार बारिश एक तरफ जहां गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं जलभराव के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है।
1: मुंबई में मानसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालांकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबकी आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं।
0: इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सोमवार को मौसम के मिजाज में कुछ ऐसी ही तब्दीली हुई। अचानक हुई प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को दिन भर चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिली।
2: उत्तर भारत में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल से इसकी शुरुआत हुई और अगर आज यानी 30 जून की अगर हम बात करें तो अधिकतम हिस्सों में मॉनसून जो है वो अब दस्तक दे चुका है। आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अधिकतम हिस्सों में जो है मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि दिल्ली में मॉनसूनी बारिश कब देखने को मिलेगी। तो मॉनसून की जो आहट है वो भी जल्द दिल्ली एनसीआर में जो है वो सुनाई देने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई के आसपास का हमेशा समय होता है जब मॉनसून जो है दस्तक देता है। हालांकि आज 30 जून हो गया है, आने वाले 2 से 3 दिन के बाद जो है मानसूनी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि 1 से 3 जुलाई के बीच दिल्ली में अच्छी बारिश के साथ मानसून जो है उसके पहुंचने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है, और इसके साथ 2 से 6 जुलाई की अगर हम बीच की बात करें तो रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी चलेगी और कहीं कहीं भारी बारिश भी जो है वो देखी जा सकती है।
0: दरअसल दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी। दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन बारिश के इन फुहारों से मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया।
2: कुल मिलाकर अगर हम मॉनसून की स्थिति की बात करें तो मॉनसून तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दिल्ली में भी इसकी जो आहट है वो अब आपको सुनाई देती हुई नजर आएगी। लोग जो बाहर से आए उनसे भी बात करते हैं, कहाँ से आए आप?
3: राजस्थान से।
2: राजस्थान से आए, दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है?
3: अच्छा है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है।
2: ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब राजस्थान के लोगों को भी इंतजार है कि बारिश कब होगी, वहाँ पर भी है या यहाँ पे भी?
3: नहीं, ह्यूमिडिटी सेम है, वहाँ पे भी यही है अभी और यहाँ पे भी यही है।
2: यहाँ पर भी सेम है, लेकिन एंजॉय कर रहे हो अभी?
3: जी बिल्कुल।
2: थोड़ा मौसम शाम के टाइम थोड़ा बेहतर है?
3: नहीं, अभी ठीक है, बट आफ्टरनून में तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है।
2: सर कहाँ से आए, खुश लग रहे हो?
4: हैदराबाद से आए।
2: हैदराबाद से आए, वहाँ का मौसम कैसा है?
4: उधर तो ठंडा है बहुत ही, तो अभी इधर भी अच्छा हो रहा है ना, 2 डेज कल तो आज तो आगे थोड़ा बारिश के तो दिख रहे ना।
2: हाँ।
4: अभी थोड़ा अच्छा है मौसम, अच्छा बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं हम लोग मेरे बेटे की दोनों लेके
2: अच्छा।
4: इधर
2: आप दिल्ली का वेदर एंजॉय कर रहे हैं?
4: एंजॉय कर रहे हैं बहुत।
3: या टुडे इट्स बेटर देन यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे।
2: राजस्थान की गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि वहाँ पर भी जो है मौसम बदलने वाला है, आंधी बांधी जो है वो देखी जा सकती है। दिल्ली कैसा लग रहा है?
3: दिल्ली अच्छा लग रहा है, लेकिन मानसून साथ नहीं दे रहा है।
2: मानसून साथ नहीं, मानसून जल्दी दस्तक देगा,
3: पर अभी तो परेशान हो रहे हैं ना गर्मी से।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले ही संभावना जताई थी, जो कि सच साबित हुई। हालांकि दिल्ली में सूरज जिस तरह दिन भर तेवर दिखा रहा था उससे बारिश की संभावना ना के बराबर हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में राहत भरा मौसम रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
5: आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
0: राहत की ये बारिश प्री मानसून की है। दिल्ली में मानसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। वैसे सामान्य तौर पर मानसून 27 से 28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मानसून करीब एक हफ्ते देरी से पहुंच रहा है।
6: आज और कल फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमिड रहने से थोड़ी तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक तारीख में और फर्स्ट वीक में जुलाई में चेंजेस है, बारिशें हैं और फिर टेम्परेचर भी दिन के कम आ जाएंगे और ह्यूमिडिटी में रिलीफ मिलेगा। और अगर सही सिचुएशंस रही, अगर कंडीशंस रही, तो मानसून भी आ सकता है फर्स्ट वीक में।
0: जून के महीने में मानसूनी हवाएं काफी कमजोर रही। 8 से 15 जून के बीच मानसून पर ब्रेक लग गया था। उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस साल अलनीनो भी एक्टिव है, जो मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी।
6: थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो कि पश्चिम विक्षोभ से होती है जहाँ आमतौर पर समर्स में, वो उसकी गतिविधि से था, लेकिन अभी थोड़ा ईस्टर्ली विंड्स थोड़ी अप्रोच कर रही हैं, तो उससे फिर उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे मानसून जैसे वेस्ट यूपी, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर थोड़ा पंजाब, हरियाणा के भी कुछ नॉर्दर्न बेल्ट्स कवर हो सकते।
0: फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में मानसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
5: मानसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है, ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्र को कवर कर सकते हैं।
0: बता दें कि पूर्वी छोर पर अटका मॉनसून आज से रफ्तार पकड़ रहा है। एक साथ बने कई मौसमी सिस्टम ने सुस्त पड़े मॉनसून में जान फूंक दी है। अगले 3-4 दिन में देश के बचे हुए हर राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में मॉनसून अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है।
6: मॉनसून फिर से जो है थोड़ा एक्टिव हुआ है, उसमें तेजी भी आई है और अभी 2 से 3 दिनों में मानसून जो है पहाड़ों में आने के चांसेस हैं अभी तक की जो स्थिति है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, फिर बीच बीच में 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कुछ बदलाव आएगा, प्री मानसून कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिशें होंगी और अगर सिचुएशन ठीक रही तो कुछ एरियाज में मानसून भी जो है आ सकता है। तो अब ये है कि जो गर्मी अभी हम देख रहे थे उससे कुछ जो है रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मानसून का थोड़ा सा मूवमेंट्स है अब पहले से बेहतर है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी मानसून आगे बढ़ने के अनुकूल हालात बने हुए हैं। हालांकि पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मानसून के पूरे देश को कवर करने की सामान्य तिथि 8 जुलाई बताई जा रही है। बता दें कि 4 जून को केरलम में दस्तक के बाद मानसून काफी धीमी गति से बढ़ा है। जून में 5 तारीख को छोड़कर हर दिन सामान्य से कम बारिश हुई, यानी मानसून आने में देर भले ही हो रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मानसून दिल्ली ही नहीं बल्कि 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मानसून पूरे देश को करीब एक हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
7: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार रथ यात्रा का है।
8: धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है। इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
9: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ, जो बॉम्बे से बन के तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
8: रथ ही नहीं, इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
9: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
8: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके।
8: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
10: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
8: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
11: जहां पे ये खेल यहां पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में गए, तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे की सोसाइटी ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
8: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
12: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को, इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे, इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
8: भारतीय सेना के पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
14: आषाढ़ के महीने में देवी की पूजा क्यों की जाती है, आषाढ़ के महीने का किस नक्षत्र से संबंध है और आषाढ़ के महीने में किसकी पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, क्या है आषाढ़ के महीने की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
15: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
16: How they looked after game one.
17: I mean, they were frustrated.
15: The Daily.
18: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
15: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
14: आषाढ़ के महीने में देवी की पूजा क्यों की जाती है? आषाढ़ के महीने का किस नक्षत्र से संबंध है? और आषाढ़ के महीने में किसकी पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, क्या है आषाढ़ के महीने की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में बात मौसम के मिजाज की। देखिए, 4 जून को मॉनसून ने देश में दस्तक दी थी। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मॉनसून के बादलों ने कुछ खास सफर तय नहीं किया। यानी देश के कुछ हिस्सों में तो मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन वहीं देश के कुछ राज्यों में मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 शहर की ये तस्वीरें हैं और दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां दिल्ली की आंखें मॉनसून के बादलों की राह देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के इस हिस्से में मॉनसून कब दस्तक देगा और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके हुए खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद बड़े इंतजार के बाद मानसून ने सागर की दहलीज लांग भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदराग की दक्षिण से उत्तर पूर्व तक देश की धरती चमक उठी। जून की उंगली थाम मानसून के बादलों ने सफर शुरू किया तो लगा कि अब बस ये बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी निर्बाध चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी। लेकिन मानसूनी बादलों के पांव रास्ते में जाने क्यों थमते रहे। नतीजा ये हुआ कि जून की आखिरी तारीख तक मानसून के लिए

0: मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में एंट्री ली थी। यहां तक के सफर में मानसून ने देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक मानसून वहीं पर स्थिर हो गया। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के चलते मानसून इसी तरह 8 जून के बाद से लगभग 10 दिनों तक देश के पश्चिमी तट के पास अटका रहा था। जून के आखिरी हफ्ते में मानसून का फिर वही पैटर्न देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जून की भयानक गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है, लेकिन अब मानसून को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली वालों को राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
1: मानसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकते।
0: यानी मानसून आने में देर भले ही लग रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मानसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। दरअसल अब के साल मानसून की इस लेट लतीफी के पीछे एक बड़ी वजह है। इस सीजन उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मानसूनी हवाओं के रास्ते में लगातार रुकावट डाली है। साथ ही इस साल अल नीनो भी एक्टिव है, जो भारतीय मानसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन फिलहाल तो मौसम विभाग ने राहत का ही संकेत दिया है। मौसम विभाग की माने तो 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 4 जुलाई तक के इस पूर्वानुमान पर नजर डालें तो ये बदलाव साफ नजर भी आता है। राजधानी दिल्ली में जहां 27 जून के बाद से तापमान लगातार 40 के पार चल रहा है, वहीं तापमान 1 जुलाई से लगातार नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और 4 जुलाई तक तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। यानी दिल्ली NCR और बारिश को तरसते उत्तर भारत के दूसरे राज्यों को अगले 4 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। सोमवार की शाम से राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में ये तब्दीली नजर भी आने लगी। सोमवार शाम अचानक हुई प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को पिछले दिनों की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
2: ये जरूर राहत लेकर आई है। जिस तरह की गर्मी का सामना 2 दिन से दिल्ली NCR के लोग कर रहे थे, 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली NCR के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले से ही संभावना जताई थी, जो कि आखिरकार सच साबित हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में मंगलवार को भी राहत भरे मौसम का पूर्वानुमान जताया था। आंशिक रूप से बादल छाने और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। हीट वेव कंडीशन से निजात का ये शुभ समाचार लोगों के लिए राहत लेकर आया है।
1: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री

0: सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सके।
1: भले ही रात की बारिश प्री मॉनसून है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मॉनसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। आईएमडी के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, यानी जून जैसा गुजरा वैसा गुजरा, लेकिन जुलाई में देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून मेहरबान रहेगा और जमकर बदरा बरसेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए दिल्ली के बाद अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई पर मॉनसून खूब मेहरबान है। हालांकि अब की बार मुंबई में मॉनसून ने 23 जून को दस्तक दी थी और आमतौर पर 11 से 15 जुलाई के बीच मॉनसून मुंबई पहुंच जाता है। लगभग 10 दिनों की देर जो है वो जरूर हुई है, लेकिन मुंबई में मॉनसून के बादल अब झूम कर बरस रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात भी जरूर दिला दी है। एमसीडी ने अब की बार भी मॉनसून के पहले कई इंतजाम जल जमाव को रोकने के लिए किए हैं और ये इंतजाम काफी साबित होते हैं या नहीं मॉनसून के आने वाले हफ्ते बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई में मौसम का मिजाज और उसका असर कैसा है ये मुंबई से बता रही है हमारी सहयोगी विद्या।
3: मुंबई में मॉनसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालाँकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबके आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं। हालांकि इस वक्त हम हैं लोअर परेल इलाके में और लोअर परेल इलाके में यहाँ पे काफ़ी जल जमाव होता है। अगर आपको याद हो 2017 में बॉम्बे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर अमरापुरकर वो अचानक से यहाँ से, बहुत ट्रैफिक जाम था, पानी जल जमाव था, तो वो अचानक से गाड़ी से निकले और पैदल चल के घर की तरफ, सोचा उन्होंने जाएंगे तो, लेकिन एक ओपन मैनहोल, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनको लगा कि मैनहोल को खोल के रख देते हैं उससे पानी रिसाव जो है सड़क पर वो चला जाएगा, तो वो ओपन मैनहोल उनको नहीं दिखा था, उसकी वजह से वो उसमें गिर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 2017 से के बाद भी एक दो वाक्य और इस तरह के हुए थे, तो जो उस समय 2017 में ये निर्णय लिया गया था कि जितने मैनहोल्स हैं उनको जाली लगा दिया जाएगा, और यही वजह है कि तकरीबन अब बीएमसी का कहना है कि 73,000 से ज़्यादा जो जालियां हैं वो मैनहोल्स में लगा दिए गए हैं और तकरीबन 2,500 के आसपास मैनहोल्स हैं ऐसे जिन पर कोई तकनीकी दिक्कतें, जिसमें कि वो लोग वो जालियां नहीं लगा पाते, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जल जमाव की स्थिति नहीं है यहाँ मुंबई में, इसकी वजह से मुंबई वासियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई।
2: तो देखिए, कहीं इंतजार है तो कहीं मूसलाधार बारिश, लेकिन इसी के बीच मॉनसून की बारिश ने कहीं हाहाकार भी मचाया हुआ है। देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून राहत के साथ साथ आफत भी लाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश का कहर थम ही नहीं रहा है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इन सभी चीजों के बीच राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है।

0: पिछले कई दिनों से जहां देश के कई हिस्सों को मानसून के बादलों का इंतजार है, तो कई राज्यों में मानसून के इन्हीं बादलों ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं पूर्वोत्तर में आफत बनकर बरस रही बारिश ने इन कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें चार राज्यों की हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। पहले हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। हाईवे पर मलबा आ गया, आवाजाही ठप हो गई। अचानक आए इस सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंस गए। सोमवार को कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया से भी सामने आई थी, जहां बाढ़ के चलते अचानक मलबा मुगल रोड पर आ गया और कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ सबसे ज्यादा आफत अरुणाचल प्रदेश में मची है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की है। अरुणाचल में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर पत्थर और चट्टाने बिखरे पड़े हैं। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। रास्तों पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि इस रास्ते पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के साथ जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच फिलहाल हाईवे पूरी तरह ठप पड़ गया है। बिगड़े हालात के बीच सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, साथ ही दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है।
1: अरुणाचल की सरकार पूरे टीम तैनात है, आपका एसडीआरएफ बोलो, एनडीआरएफ बोली है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के एवोकेशन के लिए बोली है, जिन्होंने कुछ कुछ लोग वहां में फंसे हुए थे नदी के बीच में, उसको भी हेलीकॉप्टर से एवोकेट किया गया है। और जहाँ जहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, राशन जो पहुँच नहीं पा रहा, जो मेडिकल के मेडिसिन जो पहुँच नहीं पा रहा, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर पूरा तैनात किया हुआ है और जनता को कई प्रकार का तकलीफ होने नहीं देंगे।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें।
1: पूरा अपना जवान तैनात है और लोगों से भी, जनता से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मानसून सीजन में इस समय लोग ज्यादा यात्रा ना करें। अगर जिसका विशेष काम होने से, और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने उसी दिन, कल परसों दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ वीसी में कोऑर्डिनेशन का एक मीटिंग लिया है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
0: अरुणाचल ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने असम के लिए भी चुनौतियां बढ़ा दी है। धेमाजी, जोरहाट जैसे जिलों में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई है। असम के धेमाजी इलाके में करीब 70 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धेमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहीं की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं।
2: ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं, इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शायद उसी की वजह से हो रही है, और जो धाराकार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आज यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी जो भी है पार करने के लिए असुविधा हो रहा है। और यहाँ पे सामने में जितने भी गांव है, जो सामने मालबुक है, सिले है, केमी पंचायत के जो भी गांव है, पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से पानी आने जाने की असुविधा हो रही है।
0: अब असम के जोरहाट की तस्वीर देखिए, लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से धस गया है। जोरहाट का शहरी इलाका भी सैलाब के बीच घिरा नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में मौसम की मार से राहत जल्द मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम की मनमानी के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मानसून ने पहाड़ी राज्यों की चुनौती किस तरह बढ़ाई है, इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आई है। देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज बहाव के कारण नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 20 से 25 मीटर तक फैल गई है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल इन घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घाटों के अलावा नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की भी लोगों से अपील की है। लेकिन रुद्रप्रयाग में फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर अपडेट दे रहे हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल।
3: समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी ने अपना मूल बहाव क्षेत्र छोड़ दिया है और नदी मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर बह रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जो नदी किनारे स्थित घाट हैं वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिन घाटों में कल तक देश विदेश के तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचते थे, आज उन घाटों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा दूसरे छोर के घाट भी आप देख सकते हैं, यह घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल इन घाटों पर स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है। ये आप ठीक सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को देख रहे हैं। यह प्रतिमा नदी से तकरीबन 40 मीटर दूर है और इस प्रतिमा की जो हाइट है वह लगभग 10 फीट है। लेकिन नदी के तेज बहाव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। फिलहाल इन घाटों की ओर कोई नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। जगह जगह बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं।
0: तो मानसून के महीनों में देश का मौसम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग दिखा रहा है, लेकिन मौसम के एक रंग यूरोप भी इन दिनों दिख रहा है। देखिए, यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसी अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। देखिए, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तापमान हम भारतीयों के लिए ही लगभग सामान्य से बात हो गई है। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, तो ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी गर्मी के बनावट से निपटने के लिए बनाया गया है और ना ही वहां के लोगों के शरीर को इतना तापमान बर्दाश्त करने की आदत है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं।

0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फवारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं
1: पड़ी। Ő törülgette 28 fok. Ez volt a nyár. Hát ez most nem tudom mi. És jól nézzünk ki, mi vár ránk ezek után.
0: ये पोलैंड है, जहाँ के सोपोट शहर में सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ सूरज की तपश दोपहर जैसी महसूस हो रही है। बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और इसके साथ लाइफ गार्ड जोआना की 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जोआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जिसे यहाँ गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
2: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस. कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे.
3: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है. फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है. इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है. कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं. कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है. तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं. अब इस छुटकू को देखिए जरा. फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया. तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए. यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है. पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की बच्चा खिलखिलाने लगा. अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है.
4: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
2: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा. जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त. दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून. गर्मी और उमस से मिलेगी राहत. भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार. 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल. हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस. यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं. पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार. मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है.
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा. सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं. कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है. लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबर अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है. यहां हर किसी के हाथ में एक ऐसा कैमरा है और एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है. कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है. कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर हो. नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आनी शुरू होती है. लेकिन हम खबर की पड़ताल करते हैं, परत दर परत उसे खंगालते हैं और आप तक लाते हैं सही, सच्ची और सटीक खबर. आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया और फिर उसे जबरन जश्न बुलवाया गया। दावे की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है। हिंदुओं को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है देखिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जयश्रीराम बुलवाया गया। क्या है सच्चाई देखिए रिपोर्ट।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवती के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग एक मुस्लिम लड़की को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कुछ लोग मुस्लिम लड़की से जबरन जय श्री राम बुलवा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने भी वीडियो को शेयर करते हुए इसी तरह का मिलता जुलता दावा किया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। वीडियो किसी दुकान के बाहर का लग रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम महिला को घेर कर खड़े हैं। वीडियो में जय श्री राम का नारा भी सुनाई दे रहा है। आप भी सुनिए। लेकिन लोगों की लिपसिंग से ये ऑडियो मैच नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि इसे अलग से कहीं जोड़ा गया है क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसमें होंठ और आवाज आपस में मैच कर रहे होते लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ ये जरूर नजर आ रहा है कि महिला डरी सहमी हुई है। फैक्ट चेक टीम ने भी पाया कि वीडियो में बांग्ला सुनाई दे रही है। मतलब ये कि वायरल वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से हो सकता है लेकिन सच के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके बता सके कि वाकई यह खबर सही है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां इससे मुद्दा भी बनाती अगर इस तरह का कोई मामला वहां पर हुआ होता लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की सौटी पर कसा जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 16 दिसंबर 2025 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक युवती को पैसे चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। युवती ने मीरपुर कॉलेज मार्केट की एक दुकान से कैश चुराने की कोशिश की थी। असली वीडियो में जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर मिला। वीडियो को 17 सितंबर 2025 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के अनुसार युवती पर कैश चुराने का आरोप लगा था। महिला का नाम अनीता था। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी लेकिन उसकी चाची सास ने उसे कहा कि उसकी सैलरी काफी कम है और चोरी करके इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में महिला ने चोरी करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में भी जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो को एडिट कर इसमें ऑडियो अलग से लगाया गया है। असली वीडियो को सुनने पर हमने पाया कि 1:30 पर महिला से उसके एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। फिर वो कहती है कि बारिशाल के उजीरपुर से है।
9: बरिशाल
8: सर्च करने पर हमने पाया कि उजीरपुर बांग्लादेश के बारिशाल जिले में पड़ता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम महिला से जबरन जय श्री राम बुलवाने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। असल में ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश में हुई एक घटना का है। लड़की को दुकान में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इस घटना के वीडियो को एडिट कर जय श्री राम के नारे के ऑडियो को इसमें जोड़ा गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये एक नया वीडियो है जहां हिंदुओं को पत्थर मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंक कर उस पर पत्थर और डंडा चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक युवक के पीछे भीड़ खड़ी है, तभी एक व्यक्ति युवक को लात मारता है। दो आदमी युवक को पकड़कर गंदे नाले में फेंक देते हैं, उसके बाद लोग पत्थर मारने लगते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को बांग्लादेश का बताते हुए वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबाकर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंककर उस पर पत्थर और डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, दावा ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबोकर उन पर पत्थर बरसाया गया और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो सामने आया कि ये बंगला है। इसके अलावा वीडियो में कई लोग इस्लामिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं, मतलब ये कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। इसके अलावा वीडियो में कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं। जब हमने इसके नंबर प्लेट्स को जूम करके देखा तो साफ हुआ कि वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का ही है, क्योंकि इसमें बांग्ला नंबर प्लेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में बांग्लादेश से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, देखिए सच और झूठ क्या है।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें जून 2026 के एक ऐसे ही पोस्ट मिले जिसमें बांग्लादेशी यूजर्स ने इस घटना की निंदा की थी। कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों ने मिलते जुलते वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि ये घटना ढाका के जातराबारी की है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। भीड़ के हमले से बचने के लिए युवक कथित तौर पर एक नाले में कूद गया था। 16 जून की ग्राउंड से की गई वीडियो रिपोर्टिंग में भी घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए यही बताया गया कि जातराबारी इलाके में एक युवक मोबाइल छीनते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो में युवक को नाले से बाहर निकलने के बाद कान पकड़कर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका जिले के जातराबारी का है। 16 जून 2026 को मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
9: सोशल मीडिया पर बाप बेटी की एक बहुत भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुँचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ पे पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देखकर इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहा है। कहते हैं कि दोस्तों का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊदबिलाव और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहा होता है। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोस्ती काफी गहरी है। बच्ची डरने के बजाय खुश है और साही उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। साही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्ची से कह रहा हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं पीछे पीछे आऊंगा। वीडियो में बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमे वो सिंहली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वो इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्करा रहे हैं। इस वीडियो में कोलकाता की एक ट्यूशन टीचर ने अपने छात्रों के साथ बिताए कुछ खास पल दिखाए हैं। आमतौर पर ट्यूशन क्लास में पढ़ाई, होमवर्क और रिवीजन की बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बच्चों को अपनी टीचर के प्रति प्यार और अपनापन देखने को मिलता है। वीडियो में अलग अलग घरों में पढ़ाई के दौरान बच्चे टीचर को बड़े प्यार से खाने की चीजें ऑफर करते हुए नजर आते हैं। कोई उन्हें चाउमीन देता है तो कोई इडली सांभर खिलाता है। इसके अलावा वीडियो में चाइनीज फूड, फ्रेंच फ्राइज और जूस, पॉपकॉर्न्स, पकौड़े, चीला, चाय और मूंगफली जैसी कई चीजें भी बच्चे उन्हें देते हुए नजर आते हैं। वीडियो में बच्चों और टीचर के बीच की अच्छी बॉन्डिंग साफ नजर आती है। कई जगह बच्चे उन्हें मुस्कुरा कर हाय करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। यही छोटे छोटे पल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कभी कभी कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे दिल छू जाती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो बुजुर्ग दोस्त पूरे 78 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये भावुक पल देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त बचपन में साथ रहते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और दोनों अलग हो गए। कई दशक गुजर गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन दिल में दोस्ती की याद हमेशा बनी रही। करीब 78 साल बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर गले लगाकर अपनी एक बार फिर से दोस्ती को यादगार बना दिया। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। वीडियो में एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी, उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। आज के समय में भारी भरकम काम के लिए आमतौर पर मशीनों की मदद ली जाती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में मजदूरों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसा काम करके दिखाया जो इंसानों के लिए नामुमकिन था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मजदूर एक ट्रक के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रक में लोहे की लंबी और भारी सरिया भी भरी हुई है।
10: इन्हें उतारने के लिए किसी मशीन या क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके वजह सभी मजदूर एक कतार बनाकर खड़े हैं और एक दूसरे को तेजी से सरिया पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि कोई भी मजदूर जल्दबाजी या अफरा तफरी नहीं करता। हर व्यक्ति अपने काम को पूरी समझदारी और सही तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से भारी भरकम सरियों का भी पूरा बंडल कुछ ही पलों में खड़े ट्रक में लोड हो जाता है। मजदूरों का ये तालमेल इतना शानदार है कि देखने वाले उनके इस कारनामे को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक लड़की ने कॉकरोच को पकड़कर उसका पूरा मेकअप कर दिया। जिस कॉकरोच को देखकर घिन आती है, उसी कॉकरोच को देखकर लोग क्यूट बुलाने लगे। लड़की ने कॉकरोच को गुलाबी रंग से रंगा, नेल पेंट लगाए और उसे पिंक बैडी बना दिया। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करते हुए नजर आ रही। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करती हुई नजर आई। वो पहले उसे गुलाबी पेंट से रंगती है, फिर छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करती है। कॉकरोच शुरू में हिलता डुलता है, लेकिन लड़की उसे पकड़े रखती है। आखिरकार वो एक खूबसूरत पिंक बैडी में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी का जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया जा रहा है। हाथी के लिए एक बड़े लकड़ी के टेबल पर तरबूज, आम, पपीता, केला और कई दूसरे फलों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा माहौल किसी बर्थडे पार्टी जैसा नजर आ रहा है। आसपास मौजूद लोग इस खास पल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब हाथी को सरप्राइज देने के लिए उसे पीजे की तरफ चलते हुए बूफे तक लाया जाता है। जैसे ही वो मुड़कर सामने रखे फलों को देखता है, उसकी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। वो तुरंत अपनी सूंड बढ़ाकर फल उठाने लगता है और बड़े चाव से उन्हें खाने लगता है। हाथी भी पूरे आराम और खुशी के साथ अपनी पसंदीदा दावत का आनंद लेता है।
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
10: जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया। वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है। कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसी हरकतें करने लगता है मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो।
9: सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता है। ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह से पता है कि लंगूर बहुत फुर्तीले और शरारती होते हैं। अगर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
11: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
12: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
11: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
13: Williams keeps it. First down. Touchdown.
11: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार रथ यात्रा का है।
14: धाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है। इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
15: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ जो बॉम्बे से बन के तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
14: रथ ही नहीं इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
15: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
14: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके।
14: 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
16: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
14: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
17: जहां पे ये खेल यहां पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में गए। तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
14: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
18: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को। इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे। इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
14: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: तो ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में बात मौसम के मिजाज की। देखिए, 4 जून को मॉनसून ने देश में दस्तक दी थी। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मॉनसून के बादलों ने कुछ खास सफर तय नहीं किया। यानी देश के कुछ हिस्सों में तो मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन वहीं देश के कुछ राज्यों में मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 शहर की ये तस्वीरें हैं और दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां दिल्ली की आंखें मॉनसून के बादलों की राह देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के इस हिस्से में मॉनसून कब दस्तक देगा और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके हुए खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद बड़े इंतजार के बाद मानसून ने सागर की दहलीज लांग भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण से उत्तर पूर्व तक देश की धरती चमक उठी। जून की उंगली थाम मानसून के बादलों ने सफर शुरू किया तो लगा कि अब बस ये बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी निर्बाध चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी। लेकिन मानसूनी बादलों के पांव रास्ते में जाने क्यों थमते रहे। नतीजा ये हुआ कि जून की आखिरी तारीख तक मानसून के लिए दिल्ली दूर ही रही। तय कैलेंडर के हिसाब से तो मानसून को 27 से 28 जून तक दिल्ली आ जाना चाहिए था, लेकिन आधा एमपी और थोड़ा गुजरात पार कर मानसून के पांव मानो ठिठक गए। ऐसा लगा कि कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में एंट्री ली थी। यहां तक के सफर में मानसून ने देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक मानसून वहीं पर स्थिर हो गया। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के चलते मॉनसून इसी तरह 8 जून के बाद से लगभग 10 दिनों तक देश के पश्चिमी तट के पास अटका रहा था। जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का फिर वही पैटर्न

0: दिल्ली वालों को राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
1: मानसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्र को कवर कर सकते।
0: यानी मॉनसून आने में देर भले ही लग रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मॉनसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। दरअसल अब के साल मॉनसून की इस लेट लतीफी के पीछे एक बड़ी वजह है। इस सीजन उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मॉनसूनी हवाओं के रास्ते में लगातार रुकावट डाली है। साथ ही इस साल अल नीनो भी एक्टिव है, जो भारतीय मॉनसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन फिलहाल तो मौसम विभाग ने राहत का ही संकेत दिया है। मौसम विभाग की माने तो 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 4 जुलाई तक के इस पूर्वानुमान पर नजर डालें तो ये बदलाव साफ नजर भी आता है। राजधानी दिल्ली में जहां 27 जून के बाद से तापमान लगातार 40 के पार चल रहा है, वहीं तापमान 1 जुलाई से लगातार नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और 4 जुलाई तक तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। यानी दिल्ली NCR और बारिश को तरसते उत्तर भारत के दूसरे राज्यों को अगले 4 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। सोमवार की शाम से राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में ये तब्दीली नजर भी आने लगी। सोमवार शाम अचानक हुई प्री मॉनसून बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को पिछले दिनों की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
2: ये जरूर राहत लेकर आई है। जिस तरह की गर्मी का सामना 2 दिन से दिल्ली NCR के लोग कर रहे थे, 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली NCR के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले से ही संभावना जताई थी, जो कि आखिरकार सच साबित हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में मंगलवार को भी राहत भरे मौसम का पूर्वानुमान जताया था। आंशिक रूप से बादल छाने और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। हीट वेव कंडीशन से निजात का ये शुभ समाचार लोगों के लिए राहत लेकर आया है।
1: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
0: भले ही रात की बारिश प्री मॉनसून है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मॉनसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। IMD के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। यानी जून जैसा गुजरा वैसा गुजरा, लेकिन जुलाई में देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून मेहरबान रहेगा और जमकर बदरा बरसेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: के बाद अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई पर मॉनसून खूब मेहरबान है। हालांकि अब की बार मुंबई में मॉनसून ने 23 जून को दस्तक दी थी और आमतौर पर 11 से 15 जुलाई के बीच मॉनसून मुंबई पहुंच जाता है। लगभग 10 दिनों की देर जो है वो जरूर हुई है, लेकिन मुंबई में मॉनसून के बादल अब झूमकर बरस रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात भी जरूर दिला दी है। एमसीडी ने अब की बार भी मॉनसून के पहले कई इंतजाम जल जमाव को रोकने के लिए किए हैं और ये इंतजाम काफी साबित होते हैं या नहीं मॉनसून के आने वाले हफ्ते बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई में मौसम का मिजाज और उसका असर कैसा है ये मुंबई से बता रही है हमारी सहयोगी विद्या।
1: मुंबई में मॉनसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालाँकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबके आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं। हालांकि इस वक्त हम हैं लोअर परेल इलाके में और लोअर परेल इलाके में यहाँ पे काफ़ी जल जमाव होता है। अगर आपको याद हो 2017 में बॉम्बे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर अमरापुरकर वो अचानक से यहाँ से, बहुत ट्रैफिक जाम था, पानी जल जमाव था, तो वो अचानक से गाड़ी से निकले और पैदल चल के घर की तरफ सोचा उन्होंने जाएंगे तो, लेकिन एक ओपन मैनहोल, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनको लगा कि मैनहोल को खोल के रख देते हैं उससे पानी रिसाव जो है सड़क पर वो चला जाएगा, तो वो ओपन मैनहोल उनको नहीं दिखा था, उसकी वजह से वो उसमें गिर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 2017 से के बाद भी एक दो वाक्य और इस तरह के हुए थे, तो जो उस समय 2017 में ये निर्णय लिया गया था कि जितने मैनहोल्स हैं उनको जाली लगा दिया जाएगा। और यही वजह है कि तकरीबन अब बीएमसी का कहना है कि 73,000 से ज़्यादा जो जालियां हैं वो मैनहोल्स में लगा दिए गए हैं और तकरीबन 2,500 के आसपास मैनहोल्स हैं ऐसे जिन पर कोई तकनीकी दिक्कतें, जिसमें कि वो लोग वो जालियां नहीं लगा पाते, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जल जमाव की स्थिति नहीं है यहाँ मुंबई में, इसकी वजह से मुंबई वासियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई।
0: तो देखिए, कहीं इंतजार है तो कहीं मूसलाधार बारिश, लेकिन इसी के बीच मॉनसून के बारिश ने कहीं हाहाकार भी मचाया हुआ है। देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून राहत के साथ साथ आफत भी लाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश का कहर थम ही नहीं रहा है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इन सभी चीजों के बीच राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है।

0: पिछले कई दिनों से जहां देश के कई हिस्सों को मानसून के बादलों का इंतजार है, तो कई राज्यों में मानसून के इन्हीं बादलों ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं पूर्वोत्तर में आफत बनकर बरस रही बारिश ने इन कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें चार राज्यों की हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। पहले हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। हाईवे पर मलबा आ गया, आवाजाही ठप हो गई। अचानक आए इस सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंस गए। सोमवार को कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया से भी सामने आई थी, जहां बाढ़ के चलते अचानक मलबा मुगल रोड पर आ गया और कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ सबसे ज्यादा आफत अरुणाचल प्रदेश में मची है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की है। अरुणाचल में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर पत्थर और चट्टाने बिखरे पड़े हैं। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। रास्तों पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि इस रास्ते पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के साथ जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच फिलहाल हाईवे पूरी तरह ठप पड़ गया है। बिगड़े हालात के बीच सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, साथ ही दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है।
1: अरुणाचल की सरकार पूरी टीम तैनात है, आपका एसडीआरएफ बोलो, एनडीआरएफ बोली है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के एवोकेशन के लिए बोली है, जिन्होंने कुछ कुछ लोग वहां में फंसे हुए थे नदी के बीच में, उसको भी हेलीकॉप्टर से एवोकेट किया गया है। और जहाँ जहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, राशन जो पहुँच नहीं पा रहा, जो मेडिकल के मेडिसिन जो पहुँच नहीं पा रहा, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर पूरा तैनात किया हुआ है। और जनता को कई प्रकार का तकलीफ होने नहीं देंगे।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें।
1: पूरा अपना जवान तैनात है, और लोगों से भी, जनता से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मानसून सीजन में इस समय लोग ज्यादा यात्रा ना करें। अगर जिसका विशेष काम होने से, और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने उसी दिन कल परसों दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ वीसी में कोऑर्डिनेशन का एक मीटिंग लिया है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
0: अरुणाचल ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने असम के लिए भी चुनौतियां बढ़ा दी है। धेमाजी, जोरहाट जैसे जिलों में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई है। असम के धेमाजी इलाके में करीब 70 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धेमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहीं की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं।
2: ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं, इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से, और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद उसी की वजह से हो रही है, और जो धाराकार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आज यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी जो भी है पार करने के लिए असुविधा हो रहा है। और यहाँ पे सामने में जितने भी गांव है, जो सामने मालबुक है, सिले है, केमी पंचायत के जो भी गांव है, पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से पानी आने जाने की असुविधा हो रही है।
0: अब असम के जोरहाट की तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से धस गया है। जोरहाट का शहरी इलाका भी सैलाब के बीच घिरा नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में ये मौसम के मार से राहत जल्द मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम की मनमानी के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून ने पहाड़ी राज्यों की चुनौती किस तरह बढ़ाई है, इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आई है। देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज बहाव के कारण नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 20 से 25 मीटर तक फैल गई है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल इन घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घाटों के अलावा नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की भी लोगों से अपील की है। लेकिन रुद्रप्रयाग में फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर अपडेट दे रहे हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल।
3: समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी ने अपना मूल बहाव क्षेत्र छोड़ दिया है और नदी मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर बह रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जो नदी किनारे स्थित घाट हैं वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिन घाटों में कल तक देश विदेश के तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचते थे, आज उन घाटों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा दूसरे छोर के घाट भी आप देख सकते हैं, यह घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल इन घाटों पर स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है। ये आप ठीक सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को देख रहे हैं। यह प्रतिमा नदी से तकरीबन 40 मीटर दूर है और इस प्रतिमा की जो हाइट है वह लगभग 10 फीट है। लेकिन नदी के तेज बहाव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। फिलहाल इन घाटों की ओर कोई नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। जगह जगह बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं।
0: तो मॉनसून के महीनों में देश का मौसम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग दिखा रहा है, लेकिन मौसम के एक रंग यूरोप भी इन दिनों देख रहा है। देखिए, यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसी अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। देखिए, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तापमान हम भारतीयों के लिए ही लगभग सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, तो ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी गर्मी की बनावट से निपटने के लिए बनाया गया है और ना ही वहां के लोगों के शरीर को इतना तापमान बर्दाश्त करने की आदत है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं।

0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फव्वारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी।
1: Még a drága nagymamám, ő törülgette 28 fok. Ez volt a nyár. Hát ez most nem tudom mi. És jól nézünk ki, mi vár ránk ezek után.
0: Ye Poland hai, jahan ke Sopot shahar mein subah ke sirf 9 baje hain. Lekin yahan suraj ki tapash dopahar jaisi mehsoos ho rahi hai. Beach par logon ki bhari bheed umad chuki hai aur iske saath lifeguard Joanna ki 11 ghante ki lambi duty shuru ho chuki hai. जुआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसे यहां गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
2: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ballgame.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे.
3: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है. फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है. इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है. कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं. कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है. तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं. अब इस छुटकू को देखिए जरा. फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया. तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए. यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है. पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की बच्चा खिलखिलाने लगा. अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है.
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: Good news today is really good. In this case, there is no more news. And chilla-chilli.
6: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा. जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त. दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर. अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून. गर्मी और उमस से मिलेगी राहत. भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व. जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार. 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल. हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला. मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस. यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं. पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार. मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति. मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला.
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा. सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं. कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है. लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबर अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है. यहाँ हर किसी के हाथ में एक ऐसा कैमरा है और एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है. कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है. कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर हो. नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है. लेकिन हम खबर की पड़ताल करते हैं, परत दर परत उसे खंगालते हैं और आप तक लाते हैं सही, सच्ची और सटीक खबर. आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया और फिर उसे जबरन जश्न बुलवाया गया. दावे की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे. अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है. हिंदुओं को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है. इसकी सच्चाई क्या है देखिए आगे. शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की.
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया, फिर उससे जबरन जयश्रीराम बुलवाया गया। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवती के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग एक मुस्लिम लड़की को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कुछ लोग मुस्लिम लड़की से जबरन जय श्री राम बुलवा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने भी वीडियो को शेयर करते हुए इसी तरह का मिलता जुलता दावा किया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की दावे की सच्चाई जानने के लिए। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। वीडियो किसी दुकान के बाहर का लग रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम महिला को घेर कर खड़े हैं। वीडियो में जय श्री राम का नारा भी सुनाई दे रहा है, आप भी सुनिए। लेकिन लोगों की लिपसिंग से ये ऑडियो मैच नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि इसे अलग से कहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसमें होंठ और आवाज आपस में मैच कर रहे होते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर नजर आ रहा है कि महिला डरी सहमी हुई है। फैक्ट चेक टीम ने भी पाया कि वीडियो में बांग्ला सुनाई दे रही है, मतलब ये कि वायरल वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से हो सकता है, लेकिन सच के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, बता सके कि वाकई यह खबर सही है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां इससे मुद्दा भी बनाती अगर इस तरह का कोई मामला वहां पर हुआ होता, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की सौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 16 दिसंबर 2025 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक युवती को पैसे चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। युवती ने मीरपुर कॉलेज मार्केट की एक दुकान से कैश चुराने की कोशिश की थी। असली वीडियो में जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर मिला। वीडियो को 17 सितंबर 2025 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के अनुसार युवती पर कैश चुराने का आरोप लगा था। महिला का नाम अनीता था, वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन उसकी चाची सास ने उसे कहा कि उसकी सैलरी काफी कम है और चोरी करके इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में महिला ने चोरी करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में भी जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो को एडिट कर इसमें ऑडियो अलग से लगाया गया है। असली वीडियो को सुनने पर हमने पाया कि 1:30 पर महिला से उसके एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। फिर वो कहती है कि बारिशाल के उजीरपुर से है। सर्च करने पर हमने पाया कि उजीरपुर बांग्लादेश के बारिशाल जिले में पड़ता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम महिला से जबरन जय श्री राम बुलवाने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। असल में ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश में हुई एक घटना का है। लड़की को दुकान में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इस घटना के वीडियो को एडिट कर जय श्री राम के नारे के ऑडियो को इसमें जोड़ा गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये एक नया वीडियो है जहां हिंदुओं को पत्थर मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंक कर उस पर पत्थर और डंडा चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक युवक के पीछे भीड़ खड़ी है, तभी एक व्यक्ति युवक को लात मारता है। दो आदमी युवक को पकड़कर गंदे नाले में फेंक देते हैं, उसके बाद लोग पत्थर मारने लगते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को बांग्लादेश का बताते हुए वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबाकर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंककर उस पर पत्थर और डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, दावा ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबोकर उन पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो सामने आया कि ये बंगला है। इसके अलावा वीडियो में कई लोग इस्लामिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं, मतलब ये कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। इसके अलावा वीडियो में कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं। जब हमने इसके नंबर प्लेट्स को जूम करके देखा तो साफ हुआ कि वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का ही है, क्योंकि इसमें बांग्ला नंबर प्लेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में बांग्लादेश से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, देखिए सच और झूठ क्या है।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें जून 2026 के एक ऐसे ही पोस्ट मिले जिसमें बांग्लादेशी यूजर्स ने इस घटना की निंदा की थी। कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों ने मिलते जुलते वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि ये घटना ढाका के जातराबारी की है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। भीड़ के हमले से बचने के लिए युवक कथित तौर पर एक नाले में कूद गया था। 16 जून की ग्राउंड से की गई वीडियो रिपोर्टिंग में भी घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए यही बताया गया कि जातराबारी इलाके में एक युवक मोबाइल छीनते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो में युवक को नाले से बाहर निकलने के बाद कान पकड़कर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका जिले के जातराबारी का है। 16 जून 2026 को मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
7: और वक्त है फैक्चर की, आखिरी सफर का आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर बाप बेटी की एक बहुत भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुँचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ पे पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देखकर इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहा है। कहते हैं कि दोस्तों का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊदबिलाव और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहा होता है। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोस्ती काफी गहरी है। बच्ची डरने के बजाय खुश है और साही उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। साही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्ची से कह रहा हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं पीछे पीछे आऊंगा। वीडियो में बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें वो सिंहली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वो इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग मुस्करा रहे हैं। इस वीडियो में कोलकाता की एक ट्यूशन टीचर ने अपने छात्रों के साथ बिताए कुछ खास पल दिखाए हैं। आमतौर पर ट्यूशन क्लास में पढ़ाई, होमवर्क और रिवीजन की बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बच्चों को अपनी टीचर के प्रति प्यार और अपनापन देखने को मिलता है। वीडियो में अलग अलग घरों में पढ़ाई के दौरान बच्चे टीचर को बड़े प्यार से खाने की चीजें ऑफर करते हुए नजर आते हैं। कोई उन्हें चाउमीन देता है तो कोई इडली सांभर खिलाता है। इसके अलावा वीडियो में चाइनीज फूड, फ्रेंच फ्राइज और जूस, पॉपकॉर्न, पकौड़े, चीला, चाय और मूंगफली जैसी कई चीजें भी बच्चे उन्हें देते हुए नजर आते हैं। वीडियो में बच्चों और टीचर के बीच की अच्छी बॉन्डिंग साफ नजर आती है। कई जगह बच्चे उन्हें मुस्कुराकर हाय करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। यही छोटे छोटे पल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कभी कभी कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे दिल छू जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बुजुर्ग दोस्त पूरे 78 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये भावुक पल देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त बचपन में साथ रहते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और दोनों अलग हो गए। कई दशक गुजर गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन दिल में दोस्ती की याद हमेशा बनी रही। करीब 78 साल बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो इसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर गले लगाकर अपनी एक बार फिर से दोस्ती को यादगार बना दिया। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। वीडियो में एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। आज के समय में भारी भरकम काम के लिए आमतौर पर मशीनों की मदद ली जाती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में मजदूरों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसा काम करके दिखाया जो इंसानों के लिए नामुमकिन था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मजदूर एक ट्रक के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रक में लोहे की लंबी और भारी सरिया भी भरी हुई है।
11: इन्हें उतारने के लिए किसी मशीन या क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके बजाय सभी मजदूर एक कतार बनाकर खड़े हैं और एक दूसरे को तेजी से सरिया पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि कोई भी मजदूर जल्दबाजी या अफरा तफरी नहीं करता। हर व्यक्ति अपने काम को पूरी समझदारी और सही तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से भारी भरकम सरियों का भी पूरा बंडल कुछ ही पलों में खड़े ट्रक में लोड हो जाता है। मजदूरों का ये तालमेल इतना शानदार है कि देखने वाले उनके इस कारनामे को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक लड़की ने कॉकरोच को पकड़कर उसका पूरा मेकअप कर दिया। जिस कॉकरोच को देखकर घिन आती है, उसी कॉकरोच को देखकर लोग क्यूट बुलाने लगे। लड़की ने कॉकरोच को गुलाबी रंग से रंगा, नेल पेंट लगाए और उसे पिंक बैडी बना दिया। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करते हुए नजर आ रही। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करती हुई नजर आई। वो पहले उसे गुलाबी पेंट से रंगती है, फिर छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करती है। कॉकरोच शुरू में हिलता डुलता है, लेकिन लड़की उसे पकड़े रखती है। आखिरकार वो एक खूबसूरत पिंक बैडी में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी का जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया जा रहा है। हाथी के लिए एक बड़े लकड़ी के टेबल पर तरबूज, आम, पपीता, केला और कई दूसरे फलों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा माहौल किसी बर्थडे पार्टी जैसा नजर आ रहा है। आसपास मौजूद लोग इस खास पल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब हाथी को सरप्राइज देने के लिए उसे पीजे की तरफ चलते हुए बूफे तक लाया जाता है। जैसे ही वो मुड़कर सामने रखे फलों को देखता है, उसकी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। वो तुरंत अपनी सूंड बढ़ाकर फल उठाने लगता है और बड़े चाव से उन्हें खाने लगता है। हाथी भी पूरे आराम और खुशी के साथ अपनी पसंदीदा दावत का आनंद लेता है।
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
11: जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया। वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है। कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसी हरकतें करने लगता है मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता है। ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह से पता है कि लंगूर बहुत फुर्तीले और शरारती होते हैं। अगर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
12: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
13: La Que Buena.
12: ESPN Radio.
14: We know LeBron has to be the best player on the planet to
12: get The Daily.
15: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
12: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, अब इंतजार रथ यात्रा का है।
16: धाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है, इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
17: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ जो बॉम्बे से बन के तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
16: रथ ही नहीं, इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
17: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
16: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके।
16: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
18: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में, जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
16: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
19: जहाँ पे ये खेल यहाँ पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में गए। तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
16: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
20: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को। इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे। इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
16: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं।
6: पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार। मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति। मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में बात मौसम के मिजाज की। देखिए, 4 जून को मॉनसून ने देश में दस्तक दी थी। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मॉनसून के बादलों ने कुछ खास सफर तय नहीं किया। यानी देश के कुछ हिस्सों में तो मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन वहीं देश के कुछ राज्यों में मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 शहर की ये तस्वीरें हैं और दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां दिल्ली की आंखें मॉनसून के बादलों की राह देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के इस हिस्से में मॉनसून कब दस्तक देगा और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके हुए खड़ा हुआ है।

0: बड़ी उम्मीद बड़े इंतजार के बाद मानसून ने सागर की दहलीज लांग भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण से उत्तर पूर्व तक देश की धरती चमक उठी। जून की उंगली थाम मानसून के बादलों ने सफर शुरू किया तो लगा कि अब बस ये बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी निर्बाध चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी, लेकिन मानसूनी बादलों के पांव रास्ते में जाने क्यों थमते रहे। नतीजा ये हुआ कि जून की आखिरी तारीख तक मानसून के लिए दिल्ली दूर ही रही। तय कैलेंडर के हिसाब से तो मानसून को 27 से 28 जून तक दिल्ली आ जाना चाहिए था, लेकिन आधा एमपी और थोड़ा गुजरात पार कर मानसून के पांव मानो ठिठक गए। ऐसा लगा कि कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में एंट्री ली थी। यहां तक के सफर में मानसून ने देश के 22 राज्य को कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक मानसून वहीं पर स्थिर हो गया। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के चलते मॉनसून इसी तरह 8 जून के बाद से लगभग 10 दिनों तक देश के पश्चिमी तट के पास अटका रहा था। जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का फिर वही पैटर्न देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जून की भयानक गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है, लेकिन अब मानसून को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली वालों को राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
1: मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है

0: ही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मॉनसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। दरअसल अब के साल मॉनसून की इस लेट लतीफी के पीछे एक बड़ी वजह है। इस सीजन उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मॉनसूनी हवाओं के रास्ते में लगातार रुकावट डाली है। साथ ही इस साल अल नीनो भी एक्टिव है, जो भारतीय मॉनसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन फिलहाल तो मौसम विभाग ने राहत का ही संकेत दिया है। मौसम विभाग की माने तो 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 4 जुलाई तक के इस पूर्वानुमान पर नजर डालें तो ये बदलाव साफ नजर भी आता है। राजधानी दिल्ली में जहां 27 जून के बाद से तापमान लगातार 40 के पार चल रहा है, वहीं तापमान 1 जुलाई से लगातार नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और 4 जुलाई तक तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। यानी दिल्ली NCR और बारिश को तरसते उत्तर भारत के दूसरे राज्यों को अगले 4 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। सोमवार की शाम से राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में ये तब्दीली नजर भी आने लगी। सोमवार शाम अचानक हुई प्री मॉनसून बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को पिछले दिनों की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
1: ये जरूर राहत लेकर आई है, जिस तरह की गर्मी का सामना 2 दिन से दिल्ली NCR के लोग कर रहे थे। 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली NCR के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले से ही संभावना जताई थी, जो कि आखिरकार सच साबित हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में मंगलवार को भी राहत भरे मौसम का पूर्वानुमान जताया था। आंशिक रूप से बादल छाने और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। हीट वेव कंडीशन से निजात का ये शुभ समाचार लोगों के लिए राहत लेकर आया है।

0: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
1: भले ही रात की बारिश प्री मॉनसून है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मॉनसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। IMD के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, यानी जून जैसा गुजरा वैसा गुजरा, लेकिन जुलाई में देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून मेहरबान रहेगा और जमकर बदरा बरसेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए दिल्ली के बाद अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई पर मॉनसून खूब मेहरबान है। हालांकि अब की बार मुंबई में मॉनसून ने 23 जून को दस्तक दी थी और आमतौर पर 11 से 15 जुलाई के बीच मॉनसून मुंबई पहुंच जाता है। लगभग 10 दिनों की देर जो है वो जरूर हुई है, लेकिन मुंबई में मॉनसून के बादल अब झूम कर बरस रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात भी जरूर दिला दी है। MCD ने अब की बार भी मॉनसून के पहले कई इंतजाम जल जमाव को रोकने के लिए किए हैं और ये इंतजाम काफी साबित होते हैं या नहीं मॉनसून के आने वाले हफ्ते बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई में मौसम का मिजाज और उसका असर कैसा है, ये मुंबई से बता रही है हमारी सहयोगी विद्या।
3: मुंबई में मॉनसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है उसे

0: मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जलजमाव का सामना करना पड़ता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालाँकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जलजमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबके आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं। हालांकि इस वक्त हम हैं लोअर परेल इलाके में और लोअर परेल इलाके में यहाँ पे काफ़ी जलजमाव होता है। अगर आपको याद हो 2017 में बॉम्बे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर अमरापुरकर अचानक से यहाँ से, बहुत ट्रैफिक जाम था, पानी जलजमाव था, तो वो अचानक से गाड़ी से निकले और पैदल चल के घर की तरफ, सोचा उन्होंने जाएंगे तो, लेकिन एक ओपन मैनहोल, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनको लगा कि मैनहोल को खोल के रख देते हैं उससे पानी रिसाव जो है सड़क पर वो चला जाएगा, तो वो ओपन मैनहोल उनको नहीं दिखा था, उसकी वजह से वो उसमें गिर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 2017 से के बाद भी एक दो वाक्य और इस तरह के हुए थे, तो जो उस समय 2017 में ये निर्णय लिया गया था कि जितने मैनहोल्स हैं उनको जाली लगा दिया जाएगा, और यही वजह है कि तकरीबन अब बीएमसी का कहना है कि 73,000 से ज़्यादा जो जालियां हैं वो मैनहोल्स में लगा दिए गए हैं और तकरीबन 2,500 के आसपास मैनहोल्स हैं ऐसे जिन पर कोई तकनीकी दिक्कत है जिसमें कि वो लोग वो जालियां नहीं लगा पाते, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जलजमाव की स्थिति नहीं है यहाँ मुंबई में, इसकी वजह से मुंबई वासियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई।
1: तो देखिए, कहीं इंतजार है तो कहीं मूसलाधार बारिश, लेकिन इसी के बीच मॉनसून की बारिश ने कहीं हाहाकार भी मचाया हुआ है। देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून राहत के साथ साथ आफत भी लाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वही नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश का कहर थम ही नहीं रहा है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इन सभी चीजों के बीच राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है।

0: पिछले कई दिनों से जहां देश के कई हिस्सों को मानसून के बादलों का इंतजार है, तो कई राज्यों में मानसून के इन्हीं बादलों ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं पूर्वोत्तर में आफत बनकर बरस रही बारिश ने इन कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें चार राज्यों की है। असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। पहले हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। हाईवे पर मलबा आ गया, आवाजाही ठप हो गई। अचानक आए इस सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंस गए। सोमवार को कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया से भी सामने आई थी, जहां बाढ़ के चलते अचानक मलबा मुगल रोड पर आ गया और कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ सबसे ज्यादा आफत अरुणाचल प्रदेश में बची है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की है। अरुणाचल में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर पत्थर और चट्टाने बिखरे पड़े हैं। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। रास्तों पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि इस रास्ते पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के साथ जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच फिलहाल हाईवे पूरी तरह ठप पड़ गया है। बिगड़े हालात के बीच सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है, साथ ही दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है।
1: अरुणाचल की सरकार पूरी टीम तैनात है, आपका एसडीआरएफ बोलो, एनडीआरएफ बोली है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के एवोकेशन के लिए बोली है, जिन्होंने कुछ कुछ लोग वहां में फंसे हुए थे नदी के बीच में, उसको भी हेलीकॉप्टर से एवोकेट किया गया है। और जहाँ जहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, राशन जो पहुँच नहीं पा रहा, जो मेडिकल के मेडिसिन जो पहुँच नहीं पा रहा, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर पूरा तैनात किया हुआ है, और जनता को कई प्रकार का तकलीफ होने नहीं देंगे।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें।
1: पूरा अपना जवान तैनात है, और लोगों से भी, जनता से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मानसून सीजन में इस समय लोग ज्यादा यात्रा ना करें। अगर जिसका विशेष काम होने से, और डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने उसी दिन कल परसों दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ वीसी में कोऑर्डिनेशन का एक मीटिंग लिया है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
0: अरुणाचल ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने असम के लिए भी चुनौतियां बढ़ा दी है। धेमाजी, जोरहाट जैसे जिलों में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई है। असम के धेमाजी इलाके में करीब 70 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धेमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहीं की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं।
2: ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं, इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से, और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद उसी की वजह से हो रही है, और जो धाराकसार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आज यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी जो भी है पार करने के लिए असुविधा हो रहा है, और यहाँ पे सामने में जितने भी गांव है, जो सामने मालबुक है, सिले है, केमी पंचायत के जो भी गांव है, पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से पानी आने जाने की असुविधा हो रही है।
0: अब असम के जोरहाट की तस्वीर देखिए, लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से धस गया है। जोरहा का शहरी इलाका भी सैलाब के बीच घिरा नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में मौसम के मार से राहत जल्द मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम की मनमानी के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून ने पहाड़ी राज्यों की चुनौती किस तरह बढ़ाई है, इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आई है। देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज बहाव के कारण नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 20 से 25 मीटर तक फैल गई है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल इन घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घाटों के अलावा नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की भी लोगों से अपील की है। लेकिन रुद्रप्रयाग में फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल।
3: समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी ने अपना मूल बहाव क्षेत्र छोड़ दिया है और नदी मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर बह रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जो नदी किनारे स्थित घाट हैं वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिन घाटों में कल तक देश विदेश के तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचते थे, आज उन घाटों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा दूसरे छोर के घाट भी आप देख सकते हैं, यह घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल इन घाटों पर स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है। ये आप ठीक सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को देख रहे हैं। यह प्रतिमा नदी से तकरीबन 40 मीटर दूर है और इस प्रतिमा की जो हाइट है वह लगभग 10 फीट है, लेकिन नदी के तेज बहाव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। फिलहाल इन घाटों की ओर कोई नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। जगह जगह बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं।
0: तो मॉनसून के महीनों में देश का मौसम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग दिखा रहा है, लेकिन मौसम के एक रंग यूरोप भी इन दिनों दिख रहा है। देखिए, यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसी अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। देखिए, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तापमान हम भारतीयों के लिए ही लगभग सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, तो ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी गर्मी के बनावट से निपटने के लिए बनाया गया है और ना ही वहां के लोगों के शरीर को इतना तापमान बर्दाश्त करने की आदत है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं।

0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फवारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी।
1: Huszonnyolc fok, még a drága nagymamám, ő törülgette, 28 fok. Ez volt a nyár. Hát ez most nem tudom mi. És jól nézünk ki, mi vár ránk ezek után.
0: Ye Poland hai, jahan ke Sopot shahar mein subah ke sirf 9 baje hain. Lekin yahan suraj ki tapash dopahar jaisi mehsoos ho rahi hai. बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और इसके साथ लाइफ गार्ड जोआना की 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जोआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जिसे यहाँ गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
2: It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water, of course. We need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will
0: from the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ballgame.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: चलिए वो आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस. कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे.
3: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है. फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है. इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है. कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं. कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है. तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं. अब इस छुटकू को देखिए जरा. फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया. तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए. यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है. पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की बच्चा खिलखिलाने लगा. अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है.
4: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
6: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा. जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त. दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर. अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून. गर्मी और उमस से मिलेगी राहत. भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व. जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार. 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल. हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला. मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस. यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं. पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार. मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति. मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं.
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा. सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं. कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है. लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबर अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है. यहां हर किसी के हाथ में एक ऐसा कैमरा है और एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है. कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है. कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर हो. नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है. लेकिन हम खबर की पड़ताल करते हैं, परत दर परत उसे खंगालते हैं और आप तक लाते हैं सही, सच्ची और सटीक खबर. आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया और फिर उसे जबरन जश्न बुलवाया गया। दावे की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है। हिंदुओं को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है देखिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जयश्रीराम बुलवाया गया। क्या है सच्चाई देखिए रिपोर्ट।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवती के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग एक मुस्लिम लड़की को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कुछ लोग मुस्लिम लड़की से जबरन जय श्री राम बुलवा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने भी वीडियो को शेयर करते हुए इसी तरह का मिलता जुलता दावा किया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। वीडियो किसी दुकान के बाहर का लग रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम महिला को घेर कर खड़े हैं। वीडियो में जय श्री राम का नारा भी सुनाई दे रहा है। आप भी सुनिए। लेकिन लोगों की लिपसिंग से ये ऑडियो मैच नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि इसे अलग से कहीं जोड़ा गया है क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसमें होंठ और आवाज आपस में मैच कर रहे थे लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ ये जरूर नजर आ रहा है कि महिला डरी सहमी हुई है। फैक्ट चेक टीम ने भी पाया कि वीडियो में बांग्ला सुनाई दे रही है। मतलब ये कि वायरल वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से हो सकता है लेकिन सच के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके बता सके कि वाकई यह खबर सही है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां इससे मुद्दा भी बनाती अगर इस तरह का कोई मामला वहां पर हुआ होता लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 16 दिसंबर 2025 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक युवती को पैसे चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। युवती ने मीरपुर कॉलेज मार्केट की एक दुकान से कैश चुराने की कोशिश की थी। असली वीडियो में जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर मिला। वीडियो को 17 सितंबर 2025 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के अनुसार युवती पर कैश चुराने का आरोप लगा था। महिला का नाम अनीता था। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी लेकिन उसकी चाची सास ने उसे कहा कि उसकी सैलरी काफी कम है और चोरी करके इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में महिला ने चोरी करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में भी जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो को एडिट कर इसमें ऑडियो अलग से लगाया गया है। असली वीडियो को सुनने पर हमने पाया कि 1 मिनट 30 सेकंड पर महिला से उसके एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। फिर वो कहती है कि बारिशाल के उजीरपुर से है।
9: बरिशाल
8: सर्च करने पर हमने पाया कि उजीरपुर बांग्लादेश के बारिशाल जिले में पड़ता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम महिला से जबरन जय श्री राम बुलवाने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। असल में ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश में हुई एक घटना का है। लड़की को दुकान में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इस घटना के वीडियो को एडिट कर जय श्री राम के नारे के ऑडियो को इसमें जोड़ा गया है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये एक नया वीडियो है जहां हिंदुओं को पत्थर मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंक कर उस पर पत्थर और डंडा चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक युवक के पीछे भीड़ खड़ी है, तभी एक व्यक्ति युवक को लात मारता है। दो आदमी युवक को पकड़कर गंदे नाले में फेंक देते हैं, उसके बाद लोग पत्थर मारने लगते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को बांग्लादेश का बताते हुए वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबाकर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंककर उस पर पत्थर और डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते दावा ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबोकर उन पर पत्थर बरसाया गया और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो सामने आया कि ये बंगला है। इसके अलावा वीडियो में कई लोग इस्लामिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं, मतलब ये कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। इसके अलावा वीडियो में कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं। जब हमने इसके नंबर प्लेट्स को जूम करके देखा तो साफ हुआ कि वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का ही है, क्योंकि इसमें बांग्ला नंबर प्लेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में बांग्लादेश से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, देखिए सच और झूठ क्या है।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें जून 2026 के एक ऐसे ही पोस्ट मिले जिसमें बांग्लादेशी यूजर्स ने इस घटना की निंदा की थी। कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों ने मिलते जुलते वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि ये घटना ढाका के जात्राबारी की है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। भीड़ के हमले से बचने के लिए युवक कथित तौर पर एक नाले में कूद गया था। 16 जून की ग्राउंड से की गई वीडियो रिपोर्टिंग में भी घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए यही बताया गया कि जात्राबारी इलाके में एक युवक मोबाइल छीनते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो में युवक को नाले से बाहर निकलने के बाद कान पकड़कर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका जिले के जात्राबारी का है। 16 जून 2026 को मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
7: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Hey,
9: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
7: चिल्लाते फैक्चर की आखिरी सफर का आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर बाप बेटी की एक बहुत भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुँचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ पे पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देखकर इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहा है। कहते हैं कि दोस्तों का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊदबिलाव और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहा होता है। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोस्ती काफी गहरी है। बच्ची डरने के बजाय खुश है और साही उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। साही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्ची से कह रहा हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं पीछे पीछे आऊंगा। वीडियो में बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसपे वो सिंहली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वो इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग मुस्करा रहे हैं। इस वीडियो में कोलकाता की एक ट्यूशन टीचर ने अपने छात्रों के साथ बिताए कुछ खास पल दिखाए हैं। आमतौर पर ट्यूशन क्लास में पढ़ाई, होमवर्क और रिवीजन की बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बच्चों को अपनी टीचर के प्रति प्यार और अपनापन देखने को मिलता है। वीडियो में अलग अलग घरों में पढ़ाई के दौरान बच्चे टीचर को बड़े प्यार से खाने की चीजें ऑफर करते हुए नजर आते हैं। कोई उन्हें चाउमीन देता है तो कोई इडली सांभर खिलाता है। इसके अलावा वीडियो में चाइनीज फूड, फ्रेंच फ्राइज और जूस, पॉपकॉर्न्स, पकौड़े, चीला, चाय और मूंगफली जैसी कई चीजें भी बच्चे उन्हें देते हुए नजर आते हैं। वीडियो में बच्चों और टीचर के बीच की अच्छी बॉन्डिंग साफ नजर आती है। कई जगह बच्चे उन्हें मुस्कुराकर हाय करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। यही छोटे छोटे पल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कभी कभी कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे दिल छू जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बुजुर्ग दोस्त पूरे 78 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये भावुक पल देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि ये दोनों दोस्त बचपन में साथ रहते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और दोनों अलग हो गए। कई दशक गुजर गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन दिल में दोस्ती की याद हमेशा बनी रही। करीब 78 साल बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर गले लगाकर अपनी एक बार फिर से दोस्ती को यादगार बना दिया। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। वीडियो में एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। आज के समय में भारी भरकम काम के लिए आमतौर पर मशीनों की मदद ली जाती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में मजदूरों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसा काम करके दिखाया जो इंसानों के लिए नामुमकिन था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मजदूर एक ट्रक के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रक में लोहे की लंबी और भारी सरिया भी भरी हुई है। इन्हें उतारने के लिए किसी मशीन या क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके बजाय सभी मजदूर एक कतार बनाकर खड़े हैं और एक दूसरे को तेजी से सरिया पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि कोई भी मजदूर जल्दबाजी या अफरा तफरी नहीं करता। हर व्यक्ति अपने काम को पूरी समझदारी और सही तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से भारी भरकम सरियों का भी पूरा बंडल कुछ ही पलों में खड़े ट्रक में लोड हो जाता है। मजदूरों का ये तालमेल इतना शानदार है कि देखने वाले उनके इस कारनामे को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक लड़की ने कॉकरोच को पकड़कर उसका पूरा मेकअप कर दिया। जिस कॉकरोच को देखकर घिन आती है, उसी कॉकरोच को देखकर लोग क्यूट बुलाने लगे। लड़की ने कॉकरोच को गुलाबी रंग से रंगा, नेल पेंट लगाए और उसे पिंक बैडी बना दिया। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करते हुए नजर आ रही। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करती हुई नजर आई। वो पहले उसे गुलाबी पेंट से रंगती है, फिर छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करती है। कॉकरोच शुरू में हिलता डुलता है, लेकिन लड़की उसे पकड़े रखती है। आखिरकार वो एक खूबसूरत पिंक बैडी में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी का जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया जा रहा है। हाथी के लिए एक बड़े लकड़ी के टेबल पर तरबूज, आम, पपीता, केला और कई दूसरे फलों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा माहौल किसी बर्थडे पार्टी जैसा नजर आ रहा है। आसपास मौजूद लोग इस खास पल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब हाथी को सरप्राइज देने के लिए उसे पीजे की तरफ चलते हुए बूफे तक लाया जाता है। जैसे ही वो मुड़कर सामने रखे फलों को देखता है, उसकी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। वो तुरंत अपनी सूंड बढ़ाकर फल उठाने लगता है और बड़े चाव से उन्हें खाने लगता है। हाथी भी पूरे आराम और खुशी के साथ अपनी पसंदीदा दावत का आनंद लेता है।
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
2: जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया।
10: वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है। कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसी हरकतें करने लगता है मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता है। ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह से पता है कि लंगूर बहुत फुर्तीले और शरारती होते हैं। अगर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
11: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, अब इंतजार रथ यात्रा का है।
12: धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है, इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
13: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ जो बॉम्बे से बन के तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
12: रथ ही नहीं इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
13: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
12: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में हैं। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके।
12: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
14: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में, जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
12: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
15: जहां पे ये खेल यहां पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में गए। तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
12: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
16: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को। इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे। इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
12: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में बात मौसम के मिजाज की। देखिए, 4 जून को मॉनसून ने देश में दस्तक दी थी। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मॉनसून के बादलों ने कुछ खास सफर तय नहीं किया। यानी देश के कुछ हिस्सों में तो मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन वहीं देश के कुछ राज्यों में मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 शहर की ये तस्वीरें हैं और दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां दिल्ली की आंखें मॉनसून के बादलों की राह देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। लगातार आ रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के इस हिस्से में मॉनसून कब दस्तक देगा और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके हुए खड़ा हुआ है।

0: बड़ी उम्मीद बड़े इंतजार के बाद मानसून ने सागर की दहलीज लांग भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदराग की दक्षिण से उत्तर पूर्व तक देश की धरती चमक उठी। जून की उंगली थाम मानसून के बादलों ने सफर शुरू किया तो लगा कि अब बस ये बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी निर्बाध चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी। लेकिन मानसूनी बादलों के पांव रास्ते में जाने क्यों थमते रहे। नतीजा ये हुआ कि जून की आखिरी तारीख तक मानसून के लिए दिल्ली दूर ही रही। तय कैलेंडर के हिसाब से तो मानसून को 27 से 28 जून तक दिल्ली आ जाना चाहिए था, लेकिन आधा एमपी और थोड़ा गुजरात पार कर मानसून के पांव मानो ठिठक गए। ऐसा लगा कि कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में एंट्री ली थी। यहां तक के सफर में मानसून ने देश के 22 राज्य को कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक मानसून वहीं पर स्थिर हो गया। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के चलते मॉनसून इसी तरह 8 जून के बाद से लगभग 10 दिनों तक देश के पश्चिमी तट के पास अटका रहा था। जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का फिर वही पैटर्न देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जून की भयानक गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है। लेकिन अब मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली वालों को राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मॉनसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
1: मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकते।
0: यानी मॉनसून आने में देर भले ही लग रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मॉनसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। दरअसल अब के साल मॉनसून की इस लेट लतीफी के पीछे एक बड़ी वजह है। इस सीजन उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मॉनसूनी हवाओं के रास्ते में लगातार रुकावट डाली है। साथ ही इस साल अल नीनो भी एक्टिव है जो भारतीय मॉनसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन फिलहाल तो मौसम विभाग ने राहत का ही संकेत दिया है। मौसम विभाग की माने तो 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 4 जुलाई तक के इस पूर्वानुमान पर नजर डालें तो ये बदलाव साफ नजर भी आता है। राजधानी दिल्ली में जहां 27 जून के बाद से तापमान लगातार 40 के पार चल रहा है, वहीं तापमान 1 जुलाई

0: दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। सोमवार की शाम से राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में ये तब्दीली नजर भी आने लगी। सोमवार शाम अचानक हुई प्री मानसून बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को पिछले दिनों की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
1: ये जरूर राहत लेकर आई है, जिस तरह की गर्मी का सामना दो दिन से दिल्ली NCR के लोग कर रहे थे। 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली NCR के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले से ही संभावना जताई थी, जो कि आखिरकार सच साबित हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में मंगलवार को भी राहत भरे मौसम का पूर्वानुमान जताया था। आंशिक रूप से बादल छाने और रात के समय गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। हीट वेव कंडीशन से निजात का ये शुभ समाचार लोगों के लिए राहत लेकर आया है।
2: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
0: भले ही रात की ये बारिश प्री मानसून है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मानसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। IMD के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, यानी जून जैसा गुजरा वैसा गुजरा, लेकिन जुलाई में देश के तमाम हिस्सों में मानसून मेहरबान रहेगा और जमकर बदरा बरसेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए दिल्ली के बाद अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई पर मॉनसून खूब मेहरबान है। हालांकि अब की बार मुंबई में मॉनसून ने 23 जून को दस्तक दी थी और आमतौर पर 11 से 15 जुलाई के बीच मॉनसून मुंबई पहुंच जाता है। लगभग 10 दिनों की देर जो है वो जरूर हुई है, लेकिन मुंबई में मॉनसून के बादल अब झूम कर बरस रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात भी जरूर दिला दी है। MCD ने अब की बार भी मानसून के पहले कई इंतजाम जल जमाव को रोकने के लिए किए हैं और ये इंतजाम काफी साबित होते हैं या नहीं मानसून के आने वाले हफ्ते बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई में मौसम का मिजाज और उसका असर कैसा है, ये मुंबई से बता रही है हमारी सहयोगी विद्या।
4: मुंबई में मॉनसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है, उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था, वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है, उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपिर टिपिर जो बरसात होती है, वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालांकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबके आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं। हालांकि इस वक्त हम हैं लोअर परेल इलाके में और लोअर परेल इलाके में यहाँ पे काफ़ी जल जमाव होता है। अगर आपको याद हो 2017 में बॉम्बे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर अमरापुरकर, वो अचानक से यहाँ से, बहुत ट्रैफिक जाम था, पानी जल जमाव था, तो वो अचानक से गाड़ी से निकले और पैदल चल के घर की तरफ सोचा उन्होंने जाएंगे तो, लेकिन एक ओपन

0: मैनहोल, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनको लगा कि मैनहोल को खोल के रख देते हैं, उससे पानी रिसाव जो है सड़क पर वो चला जाएगा। तो वो ओपन मैनहोल उनको नहीं दिखा था, उसकी वजह से वो उसमें गिर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 2017 से के बाद भी एक दो वाक्य और इस तरह के हुए थे। तो जो उस समय 2017 में ये निर्णय लिया गया था कि जितने मैनहोल्स हैं उनको जाली लगा दिया जाएगा, और यही वजह है कि तकरीबन अब बीएमसी का कहना है कि 73,000 से ज़्यादा जो जालियां हैं वो मैनहोल्स में लगा दिए गए हैं, और तकरीबन 2,500 के आसपास मैनहोल्स हैं ऐसे जिन पर कोई तकनीकी दिक्कत है, जिसमें कि वो लोग वो जालियां नहीं लगा पाते, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जल जमाव की स्थिति नहीं है यहाँ मुंबई में, इसकी वजह से मुंबई वासियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई।
1: तो देखिए, कहीं इंतजार है तो कहीं मूसलाधार बारिश, लेकिन इसी के बीच मॉनसून की बारिश ने कहीं हाहाकार भी मचाया हुआ है। देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून राहत के साथ साथ आफत भी लाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश का कहर थम ही नहीं रहा है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इन सभी चीजों के बीच राहत की खबर यह है कि जो लोग बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है।

0: पिछले कई दिनों से जहां देश के कई हिस्सों को मानसून के बादलों का इंतजार है, तो कई राज्यों में मानसून के इन्हीं बादलों ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं पूर्वोत्तर में आफत बनकर बरस रही बारिश ने इन कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें चार राज्यों की हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। पहले हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। हाईवे पर मलबा आ गया, आवाजाही ठप हो गई। अचानक आए इस सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंस गए। सोमवार को कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया से भी सामने आई थी, जहां बाढ़ के चलते अचानक मलबा मुगल रोड पर आ गया और कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ सबसे ज्यादा आफत अरुणाचल प्रदेश में बची है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की है। अरुणाचल में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर पत्थर और चट्टाने बिखरे पड़े हैं। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। रास्तों पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि इस रास्ते पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के सात जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच फिलहाल हाईवे पूरी तरह ठप पड़ गया है। बिगड़े हालात के बीच सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, साथ ही दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है।
1: अरुणाचल की सरकार पूरी टीम तैनात है, आपका एसडीआरएफ बोलो, एनडीआरएफ बोली है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के एवोकेशन के लिए बोली है, जिन्होंने कुछ कुछ लोग वहां में फंसे हुए थे नदी के बीच में, उसको भी हेलीकॉप्टर से एवोकेट किया गया है। और जहाँ जहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, राशन जो पहुँच नहीं पा रहा, जो मेडिकल के मेडिसिन जो पहुँच नहीं पा रहा, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर पूरा तैनात किया हुआ है। और जनता को कई प्रकार का तकलीफा होने नहीं देंगे।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें।
1: पूरा अपना जवान तैनात है, और लोगों से भी, जनता से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मानसून सीजन में इस समय लोग ज्यादा यात्रा ना करें। अगर जिसका विशेष काम होने से, और डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने उसी दिन कल परसों दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ वीसी में कोऑर्डिनेशन का एक मीटिंग लिया है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
0: अरुणाचल ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने असम के लिए भी चुनौतियां बढ़ा दी है। धेमाजी, जोरहाट जैसे जिलों में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई है। असम के धेमाजी इलाके में करीब 70 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धेमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहीं की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं।
2: ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं, इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से, और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है शायद उसी की वजह से हो रही है, और जो धाराकार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आज यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी जो भी है पार करने के लिए असुविधा हो रहा है। और यहाँ पे सामने में जितने भी गांव है, जो सामने मालबुक है, सिले है, केमी पंचायत के जो भी गांव है, पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से पानी आने जाने की असुविधा हो रही है।
0: अब असम के जोरहाट की तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से धस गया है। जोरहाट का शहरी इलाका भी सैलाब के बीच घिरा नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में ये मौसम के मार से राहत जल्द मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम की मनमानी के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून ने पहाड़ी राज्यों की चुनौती किस तरह बढ़ाई है, इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आई है। देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज बहाव के कारण नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 20 से 25 मीटर तक फैल गई है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल इन घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घाटों के अलावा नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की भी लोगों से अपील की है। लेकिन रुद्रप्रयाग में फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल।
3: समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी ने अपना मूल बहाव क्षेत्र छोड़ दिया है और नदी मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर बह रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जो नदी किनारे स्थित घाट हैं वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिन घाटों में कल तक देश विदेश के तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचते थे, आज उन घाटों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा दूसरे छोर के घाट भी आप देख सकते हैं, यह घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल इन घाटों पर स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है। ये आप ठीक सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को देख रहे हैं। यह प्रतिमा नदी से तकरीबन 40 मीटर दूर है और इस प्रतिमा की जो हाइट है वह लगभग 10 फीट है। लेकिन नदी के तेज बहाव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। फिलहाल इन घाटों की ओर कोई नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। जगह जगह बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं।
0: तो मानसून के महीनों में देश का मौसम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग दिखा रहा है, लेकिन मौसम के एक रंग यूरोप भी इन दिनों दिख रहा है। देखिए, यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसी अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। देखिए, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तापमान हम भारतीयों के लिए ही लगभग सामान्य से बात हो गई है। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, तो ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी गर्मी के बनावट से निपटने के लिए बनाया गया है और ना ही वहां के लोगों के शरीर को इतना तापमान बर्दाश्त करने की आदत है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं।

0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फवारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं
1: पड़ी।
0: ये पोलैंड है, जहाँ के सोपोट शहर में सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ सूरज की तपश दोपहर जैसी महसूस हो रही है। बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और इसके साथ लाइफगार्ड जोआना की 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जोआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसे यहां गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
2: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस. कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे.
3: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है. फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है. इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है. कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं. कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है. तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं. अब इस छुटकू को देखिए जरा. फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया. तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए. यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है. पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की, बच्चा खिलखिलाने लगा. अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है.
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
2: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा. जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त. दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर. अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून. गर्मी और उमस से मिलेगी राहत. भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व. जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार. 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल. हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला. मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस. यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं. पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार. मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति. मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली.
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा. सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं. कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है. लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबर अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है. यहाँ हर किसी के हाथ में एक ऐसा कैमरा है और एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है. कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है. कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर हो. नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आनी शुरू होती है. लेकिन हम खबर की पड़ताल करते हैं, परत दर परत उसे खंगालते हैं और आप तक लाते हैं सही, सच्ची और सटीक खबर. आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया और फिर उसे जबरन जश्न बुलवाया गया। दावे की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है। हिंदुओं को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है देखिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जश्न राम बुलवाया गया। क्या है सच्चाई देखिए रिपोर्ट।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवती के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग एक मुस्लिम लड़की को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कुछ लोग मुस्लिम लड़की से जबरन जय श्री राम बुलवा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने भी वीडियो को शेयर करते हुए इसी तरह का मिलता जुलता दावा किया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
7: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। वीडियो किसी दुकान के बाहर का लग रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम महिला को घेर कर खड़े हैं। वीडियो में जय श्री राम का नारा भी सुनाई दे रहा है। आप भी सुनिए। लेकिन लोगों की लिपसिंग से ये ऑडियो मैच नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसे अलग से कहीं जोड़ा गया है क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसमें होंठ और आवाज आपस में मैच कर रहे थे लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ ये जरूर नजर आ रहा है कि महिला डरी सहमी हुई है। फैक्ट चेक टीम ने भी पाया कि वीडियो में बांग्ला सुनाई दे रही है। मतलब ये कि वायरल वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से हो सकता है लेकिन सच के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके बता सके कि वाकई यह खबर सही है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां इससे मुद्दा भी बनाती अगर इस तरह का कोई मामला वहां पर हुआ होता लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की सॉटी पर कसा जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 16 दिसंबर 2025 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक युवती को पैसे चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। युवती ने मीरपुर कॉलेज मार्केट की एक दुकान से कैश चुराने की कोशिश की थी। असली वीडियो में जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर मिला। वीडियो को 17 सितंबर 2025 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के अनुसार युवती पर कैश चुराने का आरोप लगा था। महिला का नाम अनीता था। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी लेकिन उसकी चाची सास ने उसे कहा कि उसकी सैलरी काफी कम है और चोरी करके इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में महिला ने चोरी करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में भी जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो को एडिट कर इसमें ऑडियो अलग से लगाया गया है। असली वीडियो को सुनने पर हमने पाया कि 1 मिनट 30 सेकंड पर महिला से उसके एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। फिर वो कहती है कि बारिशाल के उजीरपुर से है।
9: बरिशाल
8: सर्च करने पर हमने पाया कि उजीरपुर बांग्लादेश के बारिशाल जिले में पड़ता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम महिला से जबरन जय श्री राम बुलवाने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। असल में ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश में हुई एक घटना का है। लड़की को दुकान में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इस घटना के वीडियो को एडिट कर जय श्री राम के नारे के ऑडियो को इसमें जोड़ा गया है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
7: सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये एक नया वीडियो है जहां हिंदुओं को पत्थर मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंक कर उस पर पत्थर और डंडा चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक युवक के पीछे भीड़ खड़ी है, तभी एक व्यक्ति युवक को लात मारता है। दो आदमी युवक को पकड़कर गंदे नाले में फेंक देते हैं, उसके बाद लोग पत्थर मारने लगते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को बांग्लादेश का बताते हुए वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबा कर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
7: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंककर उस पर पत्थर और डंडे चलाते नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते दावा ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबोकर उन पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो सामने आया कि ये बंगला है। इसके अलावा वीडियो में कई लोग इस्लामिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं, मतलब ये कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। इसके अलावा वीडियो में कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं। जब हमने इसके नंबर प्लेट्स को जूम करके देखा तो साफ हुआ कि वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का ही है, क्योंकि इसमें बांग्ला नंबर प्लेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में बांग्लादेश से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, देखिए सच और झूठ क्या है।
8: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें जून 2026 के एक ऐसे ही पोस्ट मिले जिसमें बांग्लादेशी यूजर्स ने इस घटना की निंदा की थी। कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों ने मिलते जुलते वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि ये घटना ढाका के जात्राबारी की है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। भीड़ के हमले से बचने के लिए युवक कथित तौर पर एक नाले में कूद गया था। 16 जून की ग्राउंड से की गई वीडियो रिपोर्टिंग में भी घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए यही बताया गया कि जात्राबारी इलाके में एक युवक मोबाइल छीनते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो में युवक को नाले से बाहर निकलने के बाद कान पकड़कर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका जिले के जात्राबारी का है। 16 जून 2026 को मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
7: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena,
10: La que buena.
9: ESPN Radio.
11: We know LeBron has to be the best player on the planet to
9: have. The Daily.
12: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
9: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
7: फैक्चर के आखिरी सफर का आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
13: सोशल मीडिया पर बाप बेटी की एक बहुत भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुँचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ पे पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देखकर इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहा है। कहते हैं कि दोस्तों का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊदबिलाव और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहा होता है। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोस्ती काफी गहरी है। बच्ची डरने के बजाय खुश है और साही उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। साही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्ची से कह रहा हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं पीछे पीछे आऊंगा। वीडियो में बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें वो सिंहली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वो इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग मुस्करा रहे हैं। इस वीडियो में कोलकाता की एक ट्यूशन टीचर ने अपने छात्रों के साथ बिताए कुछ खास पल दिखाए हैं। आमतौर पर ट्यूशन क्लास में पढ़ाई, होमवर्क और रिवीजन की बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बच्चों को अपनी टीचर के प्रति प्यार और अपनापन देखने को मिलता है। वीडियो में अलग अलग घरों में पढ़ाई के दौरान बच्चे टीचर को बड़े प्यार से खाने की चीजें ऑफर करते हुए नजर आते हैं। कोई उन्हें चाउमीन देता है तो कोई इडली सांभर खिलाता है। इसके अलावा वीडियो में चाइनीज फूड, फ्रेंच फ्राइज और जूस, पॉपकॉर्न्स, पकौड़े, चीला, चाय और मूंगफली जैसी कई चीजें भी बच्चे उन्हें देते हुए नजर आते हैं। वीडियो में बच्चों और टीचर के बीच की अच्छी बॉन्डिंग साफ नजर आती है। कई जगह बच्चे उन्हें मुस्कुराकर हाय करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। यही छोटे छोटे पल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कभी कभी कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे दिल छू जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बुजुर्ग दोस्त पूरे 78 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये भावुक पल देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त बचपन में साथ रहते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और दोनों अलग हो गए। कई दशक गुजर गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन दिल में दोस्ती की याद हमेशा बनी रही। करीब 78 साल बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो इसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर गले लगाकर अपनी एक बार फिर से दोस्ती को यादगार बना दिया। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। वीडियो में एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। आज के समय में भारी भरकम काम के लिए आमतौर पर मशीनों की मदद ली जाती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में मजदूरों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसा काम करके दिखाया जो इंसानों के लिए नामुमकिन था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मजदूर एक ट्रक के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रक में लोहे की लंबी और भारी सरिया भी भरी हुई है।
2: इन्हें उतारने के लिए किसी मशीन या क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके वजह सभी मजदूर एक कतार बनाकर खड़े हैं और एक दूसरे को तेजी से सरिया पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि कोई भी मजदूर जल्दबाजी या अफरा तफरी नहीं करता। हर व्यक्ति अपने काम को पूरी समझदारी और सही तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से भारी भरकम सरियों का भी पूरा बंडल कुछ ही पलों में खड़े ट्रक में लोड हो जाता है। मजदूरों का ये तालमेल इतना शानदार है कि देखने वाले उनके इस कारनामे को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक लड़की ने कॉकरोच को पकड़कर उसका पूरा मेकअप कर दिया। जिस कॉकरोच को देखकर घिन आती है, उसी कॉकरोच को देखकर लोग क्यूट बुलाने लगे। लड़की ने कॉकरोच को गुलाबी रंग से रंगा, नेल पेंट लगाए और उसे पिंक बैडी बना दिया। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करते हुए नजर आ रही। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करती हुई नजर आई। वो पहले उसे गुलाबी पेंट से रंगती है, फिर छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करती है। कॉकरोच शुरू में हिलता डुलता है, लेकिन लड़की उसे पकड़े रखती है। आखिरकार वो एक खूबसूरत पिंक बैडी में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी का जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया जा रहा है। हाथी के लिए एक बड़े लकड़ी के टेबल पर तरबूज, आम, पपीता, केला और कई दूसरे फलों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा माहौल किसी बर्थडे पार्टी जैसा नजर आ रहा है। आसपास मौजूद लोग इस खास पल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब हाथी को सरप्राइज देने के लिए उसे पीजे की तरफ चलते हुए बूफे तक लाया जाता है। जैसे ही वो मुड़कर सामने रखे फलों को देखता है, उसकी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। वो तुरंत अपनी सूंड बढ़ाकर फल उठाने लगता है और बड़े चाव से उन्हें खाने लगता है। हाथी भी पूरे आराम और खुशी के साथ अपनी पसंदीदा दावत का आनंद लेता है।
7: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
2: जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया। वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है। कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसी हरकतें करने लगता है मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो।
13: सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता है। ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह से पता है कि लंगूर बहुत फुर्तीले और शरारती होते हैं। अगर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
10: Jack, you're killing me.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार रथ यात्रा का है।
2: धूमधाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है। इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
3: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ, जो बॉम्बे से बनके तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए हैं। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है, ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
2: रथ ही नहीं, इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
3: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं, और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
2: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर।
1: जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके।
2: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
4: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में, जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
2: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
5: जहाँ पे ये खेल यहाँ पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे हमारी जो नई जनरेशन है इन लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में दे, तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे के सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
2: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
6: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को, इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे, इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
2: भारतीय सेना की पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो गुरेज की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में बात मौसम के मिजाज की। देखिए, 4 जून को मॉनसून ने देश में दस्तक दी थी। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मॉनसून के बादलों ने कुछ खास सफर तय नहीं किया। यानी देश के कुछ हिस्सों में तो मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन वहीं देश के कुछ राज्यों में मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 शहर की ये तस्वीरें हैं और दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां दिल्ली की आंखें मॉनसून के बादलों की राह देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। लगातार आ रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के इस हिस्से में मॉनसून कब दस्तक देगा और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके हुए खड़ा हुआ है।

0: बड़ी उम्मीद बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांग भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदराग की दक्षिण से उत्तर पूर्व तक देश की धरती चमक उठी। जून की उंगली थाम मानसून के बादलों ने सफर शुरू किया तो लगा कि अब बस ये बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी निर्बाध चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी। लेकिन मानसूनी बादलों के पांव रास्ते में जाने क्यों थमते रहे। नतीजा ये हुआ कि जून की आखिरी तारीख तक मानसून के लिए दिल्ली दूर ही रही। तय कैलेंडर के हिसाब से तो मानसून को 27 से 28 जून तक दिल्ली आ जाना चाहिए था, लेकिन आधा एमपी और थोड़ा गुजरात पार कर मानसून के पांव मानो ठिठक गए। ऐसा लगा कि कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में एंट्री ली थी। यहां तक के सफर में मानसून ने देश के 22 राज्य को कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक मानसून वहीं पर स्थिर हो गया। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के चलते मॉनसून इसी तरह 8 जून के बाद से लगभग 10 दिनों तक देश के पश्चिमी तट के पास अटका रहा था। जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून का फिर वही पैटर्न देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जून की भयानक गर्मी हर वक्त सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है। लेकिन अब मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली वालों को राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मॉनसून उत्तर अरब सागर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और इलाकों तक पहुंच सकता है और 4 जुलाई तक इसके दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है।
1: मॉनसून जो है रेगुलरली एडवांस कर रहा है अभी, हालांकि जो नॉर्मल डेट्स है उससे थोड़ा सा अभी ये पीछे चल रहा है। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का कवर कर सकता है। इसके बाद की उसके आने वाले जो 3 दिन रहेंगे, 2 से 3 दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये फिर जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र को कवर कर सकते।
0: यानी मॉनसून आने में देर भले ही लग रही हो, लेकिन अब पूरी संभावना है कि मॉनसून दिल्ली ही नहीं 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। दरअसल अब के साल मॉनसून की इस लेट लतीफी के पीछे एक बड़ी वजह है। इस सीजन उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं ने कमजोर मॉनसूनी हवाओं के रास्ते में लगातार रुकावट डाली है। साथ ही इस साल अल नीनो भी एक्टिव है जो भारतीय मॉनसून को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन फिलहाल तो मौसम विभाग ने राहत का ही संकेत दिया है। मौसम विभाग की माने तो 2 जुलाई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 4 जुलाई तक के इस पूर्वानुमान पर नजर डालें तो ये बदलाव साफ नजर भी आता है। राजधानी दिल्ली में जहां 27 जून के बाद से तापमान लगातार 40 के पार चल रहा है, वहीं तापमान 1 जुलाई से लगातार नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और 4 जुलाई तक तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। यानी दिल्ली NCR और बारिश को तरसते उत्तर भारत के दूसरे राज्यों को अगले 4 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। सोमवार की शाम से राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में ये तब्दीली नजर भी आने लगी। सोमवार शाम अचानक हुई प्री मॉनसून बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे लोगों को पिछले दिनों की चिलचिलाती गर्मी और उमस से फौरी राहत मिली।
2: ये जरूर राहत लेकर आई है। जिस तरह की गर्मी का सामना 2 दिन से दिल्ली NCR के लोग कर रहे थे, 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान था और जो फील लाइक सिचुएशन थी वो लगभग 50 डिग्री के आसपास थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में लोग बस राहत की बारिश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्या यह मानसून की बारिश है, मौसम विभाग ने अभी ऐसा कंफर्म करने से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल इस बारिश से जो उमस, जो गर्मी जिसका सामना दिल्ली NCR के लोग पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे, उससे फौरी तौर पर एक राहत मिलती जरूर दिखाई पड़ रही है।
0: मौसम विभाग ने 29 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की पहले से ही संभावना जताई थी, जो

0: तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। हीट वेव कंडीशन से निजात का ये शुभ समाचार लोगों के लिए राहत लेकर आया है।
1: अगर हम बात करें तो आज जो है तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो तापमान जरूर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रह सकते हैं आज भी। हालांकि इसके बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी और हीटवेव कंडीशन से भी हमें राहत मिलेगी। अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फिर गिर सकता है।
0: भले ही रात की बारिश प्री मॉनसून है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मॉनसून इस वीकेंड तक दस्तक दे सकता है। आईएमडी के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, यानी जून जैसा गुजरा वैसा गुजरा। लेकिन जुलाई में देश के तमाम हिस्सों में मॉनसून मेहरबान रहेगा और जमकर बदरा बरसेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए दिल्ली के बाद अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई पर मॉनसून खूब मेहरबान है। हालांकि अब की बार मुंबई में मॉनसून ने 23 जून को दस्तक दी थी और आमतौर पर 11 से 15 जुलाई के बीच मॉनसून मुंबई पहुंच जाता है। लगभग 10 दिनों की देर जो है वो जरूर हुई है, लेकिन मुंबई में मॉनसून के बादल अब झूम कर बरस रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तेज बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात भी जरूर दिला दी है। एमसीडी ने अब की बार भी मॉनसून के पहले कई इंतजाम जल जमाव को रोकने के लिए किए हैं और ये इंतजाम काफी साबित होते हैं या नहीं मॉनसून के आने वाले हफ्ते बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई में मौसम का मिजाज और उसका असर कैसा है ये मुंबई से बता रही है हमारी सहयोगी विद्या।
3: मुंबई में मॉनसून ने भले ही देर से दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है उससे मुंबई के जो आसपास का इलाका है उसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो गया, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है और यही वजह है कि मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से हर बार के जैसे गड्ढों और जल जमाव का सामना करना पड़ता था वैसे ही हो रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है उसके बावजूद येलो अलर्ट जैसे सोमवार को भी था, लेकिन सोमवार को तेज़ धूप निकल गई थी। आज जिस तरीके से बरसात हो रही है, कहीं कहीं तेज़ बरसात है, कभी कभी बीच बीच में, लेकिन बूंदाबांदी की जो बरसात है, टिपर टिपर जो बरसात होती है वो तकरीबन पूरे शहर भर में हो रही है। हालाँकि अच्छी बात यही है कि इस वक्त किसी कहीं पे जल जमाव अभी इस वक्त नहीं दिख रहा है। सवेरे से काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, उन सबके आवाजाही में कोई दिक्कतें नहीं पेश आई हैं। हालांकि इस वक्त हम हैं लोअर परेल इलाके में और लोअर परेल इलाके में यहाँ पे काफ़ी जल जमाव होता है। अगर आपको याद हो 2017 में बॉम्बे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर अमरापुरकर वो अचानक से यहाँ से, बहुत ट्रैफिक जाम था, पानी जल जमाव था, तो वो अचानक से गाड़ी से निकले और पैदल चल के घर की तरफ सोचा उन्होंने जाएंगे तो, लेकिन एक ओपन मैनहोल, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनको लगा कि मैनहोल को खोल के रख देते हैं उससे पानी रिसाव जो है सड़क पर वो चला जाएगा, तो वो ओपन मैनहोल उनको नहीं दिखा था, उसकी वजह से वो उसमें गिर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। 2017 से के बाद भी एक दो वाक्य और इस तरह के हुए थे, तो जो उस समय 2017 में ये निर्णय लिया गया था कि जितने मैनहोल्स हैं उनको जाली लगा दिया जाएगा। और यही वजह है कि तकरीबन अब बीएमसी का कहना है कि 73,000 से ज़्यादा जो जालियां हैं वो मैनहोल्स में लगा दिए गए हैं और तकरीबन 2,500 के आसपास मैनहोल्स हैं ऐसे जिन पर कोई तकनीकी दिक्कतें, जिसमें कि वो लोग वो जालियां नहीं लगा पाते, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जल जमाव की स्थिति नहीं है यहाँ मुंबई में, इसकी वजह से मुंबई वासियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई।
2: तो देखिए, कहीं इंतजार है तो कहीं मूसलाधार बारिश, लेकिन इसी के बीच मॉनसून की बारिश ने कहीं हाहाकार भी मचाया हुआ है। देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून राहत के साथ साथ आफत भी लाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश का कहर थम ही नहीं रहा है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इन सभी चीजों के बीच राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है।

0: पिछले कई दिनों से जहां देश के कई हिस्सों को मानसून के बादलों का इंतजार है, तो कई राज्यों में मानसून के इन्हीं बादलों ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला तेज हो गया है, तो वहीं पूर्वोत्तर में आफत बनकर बरस रही बारिश ने इन कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें चार राज्यों की हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश आफत बन गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भी मौसम की मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी है। पहले हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां ग्लेशियर पिघलने से झालमा नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का बड़ा हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। हाईवे पर मलबा आ गया, आवाजाही ठप हो गई। अचानक आए इस सैलाब की वजह से 50 पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंस गए। सोमवार को कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपिया से भी सामने आई थी, जहां बाढ़ के चलते अचानक मलबा मुगल रोड पर आ गया और कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं। मॉनसून की शुरुआत के साथ सबसे ज्यादा आफत अरुणाचल प्रदेश में बची है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 13 की है। अरुणाचल में हाईवे का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्तों पर पत्थर और चट्टाने बिखरे पड़े हैं। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। रास्तों पर पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं मलबा बिखरा पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि इस रास्ते पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये रास्ता अरुणाचल प्रदेश के सात जिलों को जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश की मार के बीच फिलहाल हाईवे पूरी तरह ठप पड़ गया है। बिगड़े हालात के बीच सरकार ने लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रभावित इलाकों में NDRF, SDRF की टीमें तैनात की गई हैं, साथ ही दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है।
1: अरुणाचल की सरकार पूरी टीम तैनात है, आपका SDRF बोलो, NDRF बोली है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के एवोकेशन के लिए बोली है, जिन्होंने कुछ कुछ लोग वहां में फंसे हुए थे नदी के बीच में, उसको भी हेलीकॉप्टर से एवोकेट किया गया है। और जहाँ जहाँ सामान नहीं पहुँच रहा, राशन जो पहुँच नहीं पा रहा, जो मेडिकल के मेडिसिन जो पहुँच नहीं पा रहा, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर पूरा तैनात किया हुआ है। और जनता को कई प्रकार का तकलीफें होने नहीं देंगे।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें।
1: पूरा अपना जवान तैनात है, और लोगों से भी, जनता से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मानसून सीजन में इस समय लोग ज्यादा यात्रा ना करें। अगर जिसका विशेष काम होने से, और डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने उसी दिन कल परसों दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ VC में कोऑर्डिनेशन का एक मीटिंग लिया है, और ऑनरेबल CM साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
0: अरुणाचल ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने असम के लिए भी चुनौतियां बढ़ा दी है। धेमाजी, जोरहाट जैसे जिलों में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई है। असम के धेमाजी इलाके में करीब 70 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिससे 15,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। धेमाजी के बदतर हालात का अंदाजा वहीं की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी भर चुका है, कमर भर पानी में डूबकर लोग आने जाने को मजबूर हैं।
2: ये अरुणाचल में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सब आप देख रहे हैं, इस तरफ आपके गाड़ी आने जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपके वो जो जंगल कटाई की वजह से, और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शायद उसी की वजह से हो रही है, और जो धाराकार बारिश हो रही है, जो आज कल रात से जो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आज यहाँ पे आने जाने की सुविधा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी जो भी है पार करने के लिए असुविधा हो रहा है। और यहाँ पे सामने में जितने भी गांव है, जो सामने मालबुक है, सिले है, केमी पंचायत के जो भी गांव है, पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से पानी आने जाने की असुविधा हो रही है।
0: अब असम के जोरहाट की तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते पुल एक ओर से धस गया है। जोरहाट का शहरी इलाका भी सैलाब के बीच घिरा नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों ही राज्यों में इन दिनों बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ और भीषण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों के टूटने और पुलों के दरकने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में मौसम की मार से राहत जल्द मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम की मनमानी के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून ने पहाड़ी राज्यों की चुनौती किस तरह बढ़ाई है, इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आई है। देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज बहाव के कारण नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 20 से 25 मीटर तक फैल गई है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल इन घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घाटों के अलावा नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की भी लोगों से अपील की है। लेकिन रुद्रप्रयाग में फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल।
3: समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी ने अपना मूल बहाव क्षेत्र छोड़ दिया है और नदी मूल बहाव क्षेत्र से तकरीबन 15 से 20 मीटर दूर बह रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जो नदी किनारे स्थित घाट हैं वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिन घाटों में कल तक देश विदेश के तीर्थयात्री और स्थानीय लोग पहुंचते थे, आज उन घाटों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा दूसरे छोर के घाट भी आप देख सकते हैं, यह घाट भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल इन घाटों पर स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है। ये आप ठीक सामने भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा को देख रहे हैं। यह प्रतिमा नदी से तकरीबन 40 मीटर दूर है और इस प्रतिमा की जो हाइट है वह लगभग 10 फीट है। लेकिन नदी के तेज बहाव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, शिव की प्रतिमा तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। फिलहाल इन घाटों की ओर कोई नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। जगह जगह बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं।
0: तो मानसून के महीनों में देश का मौसम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रंग दिखा रहा है, लेकिन मौसम के एक रंग यूरोप भी इन दिनों दिख रहा है। देखिए, यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसी अब से पहले कभी किसी ने नहीं देखी हो। यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। देखिए, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री तापमान हम भारतीयों के लिए ही लगभग सामान्य से बात हो गई है। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, तो ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी गर्मी के बनावट से निपटने के लिए बनाया गया है और ना ही वहां के लोगों के शरीर को इतना तापमान बर्दाश्त करने की आदत है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं।

0: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फवारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुँच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी।
1: Még a drága nagymamám, ő törülgette 28 fok. Ez volt a nyár. Hát ez most nem tudom mi. És jól nézünk ki, mi vár ránk ezek után.
0: Ye Poland hai, jahan ke Sopot shahar mein subah ke sirf 9 baje hain. Lekin yahan suraj ki tapash dopahar jaisi mehsoos ho rahi hai. Beach par logon ki bhari bheed umad chuki hai aur iske saath lifeguard Joanna ki 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जुआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसे यहां गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
2: Firstly, I would have a hat on for the whole day. It's really important because it's really dangerous to sit with the hat without a hat. I need to care for my water. Of course, we need to stay hydrated.
0: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
4: This is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: To right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run.
5: And that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
7: फुटबॉल फीवर के बीच एक फुटबॉलर बच्चे की डबलिंग करती हुई तस्वीर वायरल है। फुटबॉलर जर्सी पहने बच्चा फुटबॉल डबलिंग कर रहा है और आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। इस बच्चे को देख यूजर्स को उस पर बहुत प्यार आ रहा है। कई यूजर्स तो उसे भविष्य के खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अभी ही चैंपियन नजर आ रहा है। तारीफ हो भी क्यों ना, उसका खेल देखकर ही अलग लग रहा है कि लोग सही कहते हैं कि चैंपियन जन्म से नहीं होते बल्कि प्रैक्टिस से बनते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा। फिश पेडिक्योर के लिए उसके पैरों को मछलियों और पानी से भरे टब में डुबोया गया। तमाम डॉक्टर फिश उसके नन्हे नन्हे पैरों के पास जमा हो गए। यूं तो ये स्किन स्पा प्रोसेस है, मगर बच्चे को लगा कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। पानी में पैर डुबोने के लिए लाया गया बच्चा पहले शांत था, लेकिन जैसे ही मछलियों ने गुदगुदी की बच्चा खिलखिलाने लगा। अब उसकी ये खिलखिलाहट कई चेहरों को खिला रही है।
8: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से आसमान तक अभेद कवच, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया स्थायी ट्रेनिंग बेस, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार, मेडिसन स्क्वायर के पास की सड़कें बंद रखने की मांगी अनुमति, मेहमानों से भी वेन्यू रखा गया सीक्रेट।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबर अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक ऐसा कैमरा है और एक हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से बिल्कुल दूर हो। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन हम खबर की पड़ताल करते हैं, परत दर परत उसे खंगालते हैं और आप तक लाते हैं सही, सच्ची और सटीक खबर। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया और फिर उसे जबरन जश्न बुलवाया गया। दावे की सच्चाई क्या है आगे आपको बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आया है, हिंदुओं को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है देखिए आगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को धार्मिक एंगल देकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला को पहले पीटा गया फिर उससे जबरन जश्न बुलवाया गया, क्या है सच्चाई देखिए रिपोर्ट।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक युवती के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग एक मुस्लिम लड़की को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे भी सुने जा सकते हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कुछ लोग मुस्लिम लड़की से जबरन जय श्री राम बुलवा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने भी वीडियो को शेयर करते हुए इसी तरह का मिलता जुलता दावा किया है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
10: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की दावे की सच्चाई जानने के लिए। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। वीडियो किसी दुकान के बाहर का लग रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम महिला को घेर कर खड़े हैं। वीडियो में जय श्री राम का नारा भी सुनाई दे रहा है, आप भी सुनिए। लेकिन लोगों की लिपसिंग से ये ऑडियो मैच नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि इसे अलग से कहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर इसमें होंठ और आवाज आपस में मैच कर रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर नजर आ रहा है कि महिला डरी सहमी हुई है। फैक्ट चेक टीम ने भी पाया कि वीडियो में